0: ज्वाला सिंह ने तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
1: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
2: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
1: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
3: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
1: त्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरिबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
4: ये रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
1: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
2: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
0: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
1: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
5: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरिबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
1: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
6: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गिरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा छत से।
7: शरीर पर भी काफी,
6: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
1: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
3: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
1: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना। 2027 का चुनाव, सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
8: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा, कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
1: इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
9: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
10: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी یہی رویہ اختیار کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے.
7: سڑک پہ نماز قطعی طور پہ ادا نہیں کی جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی مذاہب کے مذہبی رسومات ہیں, چاہے جلسے جلوس ہوں یا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں, وہ بھی اسی طریقے سے سڑکوں پر کرنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے.
1: یہ سب جانتے ہیں کہ سی ایم یوگی ہندوتو کے برانڈ امبیسڈر ہیں. یو پی میں 80 بنام 20 کا نعرہ بھی سی ایم یوگی کھلے طور پر دے چکے ہیں, اور اب 2027 کا ودھان سبھا چناؤ ہے. تو کیا بقرعید سے عین پہلے سڑک پر نماز کو لے کر بیان چیتاونی کے ساتھ سوچ سمجھ کر آیا ہے؟
8: اراجکتا نہیں سڑکوں پہ پھیلنے دیں گے. پیار سے مانیں گے ٹھیک بات ہے, نہیں مانیں گے تو دوسرا طریقہ اپنائیں گے. ہمارا کام ہے سمباد بنانا. آپ سمباد سے مانیں گے سمباد سے, نہیں تو سنگھر سے بھی دیکھ لو. بریلی میں لوگوں نے ہاتھ آزمانے کا کاریہ کیا, دیکھ لیے طاقت. اس لیے سرکار ان سسٹم کے ساتھ پوری ویوستھا کو جوڑنا چاہتی ہے.
1: یوگی آدتیہ ناتھ صرف اور صرف ہندوتو کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور اب سی ایم یوگی سڑک پر نماز پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں پیار سے مانو گے تو ٹھیک, ورنہ طریقے دوسرے بھی ہیں. اب وپکش اسی پر سوار ہے.
11: یہ بیان یہ درساتا ہے کہ ماننی مکھنتی جی کے من میں کسی دھرم کو لے کر کے یا سماج کو لے کر کے کتنی نفرت بھری ہے. ماننی پردھان منتری جی یو اے ای گئے, وہ وہاں شیخ کو کس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر کے گلے لگا رہے ہیں, اور آپ یہاں گالی دے رہے ہیں.
12: دیکھیں, کسی کو رستے پہ دھوپ میں بارش میں نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا, یہ تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے اس کے کارن کوئی 5 منٹ نماز پڑھ لیا رستے میں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے کیا؟ ارے ہم تو کبھی نہیں آبجیکشن دیتے, ہمارے ہندو بھائیوں کو ہم نے دیکھا کتنی بار ٹرینوں کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر بھجن کیرتن کرتے ہوئے پرارتھنا کرتے ہوئے, ہم تو کبھی کوئی آپتی نہیں اٹھاتا.
13: بڑے ہنومان جی کا مندر لکھنؤ یونیورسٹی کے سامنے پوری کی پوری ایک سڑک پرماننٹلی بند کر کے مندر کو دے دی گئی اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. یہ قانون کا راج ہے کہ مسلمان تو نماز نہیں پڑھ سکتا سڑک پر, لیکن پوری سڑک بند کر کے مندر کے حوالے کر دی گئی.
1: اور اب یو پی کی طرز پر پشچم بنگال میں سی ایم شبھیندو ادھیکاری نے کرسی سنبھالتے ہی ہندوتو کا پریوگ شروع کر دیا ہے. بنگال میں گائے کاٹنے پر روک لگا دی گئی ہے. بنا فٹنس سرٹیفکیٹ کے کسی بھی مویشی یا بھینس کو کاٹنا پوری طرح سے بین ہے. بنا لائسنس کے چلنے والے سبھی پشو بازاروں کو بین کر دیا گیا ہے. سکولوں میں وندے ماترم گائن انیوارے کر دیا گیا ہے. سڑک پر نماز کو لے کر بھی آدیش دیا گیا ہے کہ سڑکوں پر نماز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. مسجد میں اب لاؤڈ سپیکر پر اذان کو بین کر دیا گیا ہے. اویدھ نرماڑوں پر بھی بلڈوزر کی پرمیشن دے دی گئی ہے.
14: 12 سال کا سوشیل داس نے وندے ماترم بولا تھا, اس کو 12 چابک مارا گیا تھا. اتنا سیکریفائس اس اور سماج کو اتنا بڑا پریرنا دیا جو سنگیت, وہ بنگال میں گانے کے لیے اس کو انمتی نہیں ہے. اس کا ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور آج سے ہر اسکول میں اس کا گائن ہوگا.
15: دیکھیے, بلڈوزر تو پورا دیش میں چلے گا, جہاں جہاں اویدھ روپ سے نرمان ہوگا, دخلداری ہوگا, بلڈوزر چلے گا. اور ہماری بنگال کی سرکار, جو نئی سرکار آئی ہے بی جے پی کی, پہلے دن سے یہ کام ہم نے شروع کیا ہے. سرکاری جگہ پر اتکرمن قطعی ہم اس کا برداشت نہیں کریں.
1: شبھیندو سرکار میں منتری دلیپ گھوش نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بنگال میں حالات جموں کشمیر سے بھی بدتر ہیں, لیکن اب سرکار بدل گئی ہے.
14: بار بار ہم بولتے ہیں کہ بنگال کا حالت جموں کشمیر سے بھی خراب ہے, پتہ چل رہا ہے, لیکن بھول جانا چاہیے, نہیں بھولنا چاہیے کہ سرکار بدل گیا ہے, کلچر بدل گیا ہے. رام نومی میں کسی بس میں اگر اور اونکار کا جھنڈا تھا, اس کو اتار دیا گیا, یہ ہم بھولے نہیں ہیں, سب کا حساب ہوگا.
1: اب یو پی اور بنگال دونوں میں ہندوتو کا ماڈل چل رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہندوتو کے ماڈل پر بنگال میں پہلی بار بی جے پی کی سرکار آئی ہے, جبکہ یو پی میں ہندوتو کے ماڈل پر بی جے پی سرکار کی ہیٹرک کی تیاری شروع ہو گئی ہے. آج تک بیورو.
3: اور اب بات کریں گے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں, جو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پیپر لیک کے گرو گھنٹال. جی ہاں, کیسے ایک اسسٹنٹ پروفیسر پی وی کلکرنی اور سینئر ٹیچر منیشا ماندرے نے این ٹی اے سے پیپر چرائے. اب پیپر لیک کے گرو گھنٹالوں کی پوری کنڈلی کھل رہی ہے. नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
1: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
16: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
1: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
17: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
1: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
18: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
1: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ माद्रे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
19: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है।
20: लोटन
19: लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
20: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
21: हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
20: ऐसे रेंग कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
21: हम सिर्फ यह विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर क्या भगवान बन

0: सरकार की तरफ से नहीं गया,
1: सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए
0: सर सरकार निमित्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारे मामला का निस्तारण हो जाएगा।
2: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
3: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
4: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
2: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता आया, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
5: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
2: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
6: अब बात वहां की जहां प्रधानमंत्री के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने केरल में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया है। बीडी सतीशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
7: കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ
8: ഇസി സാഥി കേരളം മേ കോൺഗ്രസ് എക് ബാർ ഫിർ സത്താ മേ ആയി ഓർ വി ഡി സതീശൻ കേരളം കെ 13വേ മുഖ്യമന്ത്രി ബനെ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

युवाओं को 15% आरक्षण, 5 साल में 50 साल के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। भोपाल के टिशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीपीआर देते दिखे घर वाले, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। गर्मी से बेहाल हुआ दिल्ली एनसीआर, यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान तक हीटवेव का अलर्ट, पारा 47 डिग्री के पार, पछुआ गर्म हवाओं की वजह से बदला बड़ी मुश्किल। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध के आसार, ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुका हमला, लेकिन सेना आक्रमण को तैयार, ईरान को दो टूक नहीं करेंगे आत्मसमर्पण।

नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम को इटली के लिए होंगे रवाना।

0: सभी का आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन पर अचानक से शंटिंग के दौरान उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दरअसल वॉशिंग लाइन पर अचानक ट्रेन अनियंत्रित हो गई और बफर स्टॉप से जाकर टकरा गई। हादसे में ट्रेन के पीछे लगे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। तेज धमाके की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन हादसे की वजह की जांच अभी की जा रही है। 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, बफर स्टॉप से जाकर तेज रफ्तार से ट्रेन टकरा गई। उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ऋषिकेश में ट्रेन हादसा हुआ है बड़ा। बात एक मॉडल की मौत मिस्ट्री की कर लेते हैं। भोपाल में ट्रिशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिवाला सिंह के घर का। गिरिवाला सिंह की बहू ट्रिशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्रिशा के घर वालों का आरोप है कि मामला सनसनीखेज हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाव में जुटी हुई है। और आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी क्या है, देखिए।
1: बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
2: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्रिशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्रिशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्रिशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
3: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद। तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
2: आज ट्रिशा इस दुनिया में नहीं है और ट्रिशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिवाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्रिशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्रिशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
4: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो MP के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं। ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
2: घर वालों के मुताबिक ट्रिशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गईं। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्रिशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्रिशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्रिशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्रिशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
3: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की। तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
2: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
5: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
2: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: तो त्विशा के घर वालों का आरोप है कि चार दीवारी के अंदर हत्या को खुदकुशी का एक रंग दिया गया। इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलील है कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमे में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनेगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया। आरोपियों की जांच करने के बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया है।
2: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
4: ये रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
2: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
5: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ
3: जी। 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
2: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
6: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
2: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था, एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्च्यूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
7: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
8: शरीर पर भी काफी,
7: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
2: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: लेते सड़क पर धर्म संकट की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस छिड़ गई है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
2: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
9: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
2: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
10: एक मुख्यमंत्री इस तरीके के जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे?
11: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को। इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
12: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
2: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
9: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
2: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
13: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
14: देखिए, किसी को रस्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
15: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
2: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
16: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
17: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
2: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
16: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
2: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक की, जो कि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल जी। हाँ, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मंधारे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं।
2: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
18: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
2: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10 की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
19: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
2: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
20: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
2: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ माधरे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
22: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
23: राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनके विवाद जीवन से दूर हो जाते हैं, कौन सी राशि के लोग अगर शनिदेव का दीपक जलाएं तो विवादों से छुटकारा मिल जाता है, और कौन सी राशि के लोग अगर शिव जी को जल चढ़ाएं तो जीवन से विवाद और शत्रुता शांत हो जाती है। कैसे दूर करें जीवन से विवाद, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
21: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
24: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC.

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, शाम को इटली के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण, 5 साल में 50 साल के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। भोपाल के टिशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीपीआर देते दिखे घर वाले। दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। गर्मी से बेहाल हुआ दिल्ली एनसीआर, यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान तक हीटवेव का अलर्ट, पारा 47 डिग्री के पहुंचा पार। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध के आसार, ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुका हमला, लेकिन सेना आक्रमण को तैयार, ईरान की दो टूक नहीं करेंगे आत्मसमर्पण।

0: सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर है, यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन में भारत की धमक देखने को मिली। पीएम इस वक्त नॉर्वे में है और इटली उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। आज पीएम मोदी नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और इसके बाद इटली के लिए रवाना भी पीएम मोदी हो जाएंगे। नॉर्वे में पीएम मोदी अभी मौजूद हैं, शाम को इटली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी आयरलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोपहर 1:45 पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। तो पूरा कार्यक्रम क्या होने वाला है वो आप समझिए। दोपहर 2:30 डेनमार्क की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। वहीं 4:15 पर शाम को भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 5:55 पर नॉर्डिक पीएम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद शाम 7:30 इटली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। तो यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन में भारत की धमक देखने को मिली और उसके बाद इटली के लिए शाम को 7:30 पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे।
1: एशिया में महायुद्ध की सुगबुगाहट के बीच भारत की कूटनीति पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। 5 देशों के पीएम मोदी के दौरे में वॉर जोन यूएई से लेकर नॉर्वे तक मोदी की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में आज शाम इटली के लिए रवाना होंगे, जहां इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे।
2: I can say that the visit is aimed at some key areas of cooperation. First of course is to further increase the trade and investment between the two countries. We are also inviting Italian companies to look at India for long-term presence and long-term business collaborations. Defense will be an important area.
1: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में इटली का कुल प्रत्यक्ष निवेश 3.66 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मोदी और मेलोनी के सौहार्दपूर्ण संबंध हाल के वर्षों में कूटनीतिक चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। 2023 से ही दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकातों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उनकी इस नवीनतम मुलाकात से भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों में और गहराई आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी हैं, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और इसके बाद इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। इटली में भी पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो 5 देशों की यात्रा काफी ज्यादा खास है, जहां पर पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया है। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, वही डीजल की कीमत में करीब 87 पैसे का उछाल आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम अभी हाल ही में भी बढ़े थे, अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं 90 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वहीं डीजल की कीमत में करीब 87 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और माना जा रहा है कि आगे भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। अभी हाल ही में भी कई पैसे की बढ़ोतरी हुई थी पेट्रोल के दाम में, अब करीब 90 पैसे प्रति लीटर ये पेट्रोल बढ़ी है और वही डीजल के दाम भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर काफी ज्यादा असर इसका पड़ने वाला है। वहीं आगे बढ़ते हैं, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है और सूत्रों के मुताबिक ताजा प्रस्ताव में तेहरान संघर्ष का स्थायी समाधान, अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, साथ ही समंदर में नाकेबंदी हटाने की बात कही गई है। लेकिन ईरान शुरुआती चरण में परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चरणबद्ध तरीके से ईरानी धन का केवल 25% ही जारी करने को तैयार है। हालांकि ईरान का नवीनतम प्रस्ताव अभी भी अंतिम समझौते के लिए आवश्यक शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। वहीं तेहरान ने अपने प्रस्ताव में केवल नाममात्र के सुधार किए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने पर सहमति जताई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया अधिकारियों के हवाले से मिल रही एक खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
3: ईरान के खिलाफ कार्रवाई

0: तो ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा है, जिसमें तेहरान संघर्ष का स्थायी समाधान, अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने, साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समंदर में नाकेबंदी हटाने की बात उस प्रस्ताव में कही गई है। 14 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान का, ये आपको बता रहे हैं, युद्ध का स्थायी समाधान और साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात उसमें कही गई है। वहीं अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर होने वाला अभी जो युद्ध है वो रोका गया है, लेकिन सेना अलर्ट पर है और किसी भी क्षण हमले के लिए तैयार है।
1: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी फिर शुरू होने वाला है, महायुद्ध। अमेरिकी फौज तैयार, कभी भी शुरू हो सकता है महाविनाश। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की ओर से अंतिम प्रस्ताव का इंतजार है। खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल रोक रखा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने अनुरोध किया कि ईरान से गंभीर वार्ता चल रही है, उनके विचार में जल्द समझौता हो जाएगा जो अमेरिका के साथ ही मध्य पूर्व और अन्य देशों को स्वीकार्य होगा। मैंने निर्देश दिया है कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षण बड़े हमले के लिए सेना तैयार रहे। ट्रंप की धमकियों और समझौते को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि संवाद का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान अपनी गरिमा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वार्ता में शामिल है, किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल फिर से व्यापक सैन्य तैयारियों में जुटे हैं। अमेरिका यदि ईरान पर हमला करता है तो इस बार सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचों और यूरेनियम के संभावित भंडार को टारगेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन जा रहे हैं। ट्रंप की बीजिंग यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद क्रेमलिन ने एक बयान जारी कर पुतिन की चीन यात्रा का ऐलान किया है और अमेरिका और ईरान में महायुद्ध की संभावनाओं के बीच पुतिन का यह चीन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ट्रंप के बाद अब पुतिन का ये चीन दौरा है, जहां पर काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। 2 दिन के चीन दौरे पर पुतिन जाएंगे। ऊर्जा संकट के बीच पुतिन का ये दौरा कई मायनों में अहम है। ट्रंप की बीजिंग यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद क्रेमलिन ने एक बयान जारी कर यह बताया है।
1: अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दुनिया की निगाहें इस वक्त चीन में चल रही हलचल पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के फौरन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। रूस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दौरे से हमें बेहद उम्मीदें हैं, हम और हमारे चीनी मित्र इसे एक विशेष रूप की रणनीतिक साझेदारी मानते हैं। पुतिन के साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में उप प्रधानमंत्री, सरकार मंत्री और कंपनियों के प्रमुख शामिल हैं। पुतिन अपनी इस यात्रा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन पर बात आगे बढ़ सकती है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 मंगोलिया के रास्ते रूस के आर्कटिक गैस क्षेत्रों से चीन को जाने वाली प्रस्तावित पाइपलाइन है। इसे लेकर प्लानिंग चल रही है। इससे चीन को सालाना अतिरिक्त 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जा सकती है। हाल के वर्षों में चीन रूस का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बनकर उभरा है, खासतौर से तब जब रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने मॉस्को को कई वैश्विक बाजारों से अलग थलग कर दिया। चीन रूसी जीवाश्म ईंधन के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, जो प्रतिबंधों के दबाव के बीच रूस की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को अमेरिकी अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ अमेरिका ने सभी आपराधिक मामले बंद कर दिए हैं। यह फैसला जांच के दौरान सबूत न मिलने की वजह से लिया गया।
1: अमेरिका में गौतम अडानी को बड़ी राहत, रिश्वतखोरी की साजिश का मामला खारिज, नहीं मिले सबूत, केस हमेशा के लिए बंद। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर चल रहे आपराधिक आरोपों को हमेशा के लिए वापस ले लिया है। 2024 के अंत में अमेरिकी नियामक SEC और न्याय विभाग की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। आरोप था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सौर ऊर्जा के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। अमेरिकी निवेशकों और ऋणदाताओं से पैसा लेते वक्त इस बात को छुपाया गया। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच की गई और समीक्षा के बाद न्याय विभाग ने केस वापस लेने का फैसला किया। अमेरिकी सरकारी वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की समीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपों को साबित करने के पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोप खारिज करने का आदेश दे दिया। इस मामले को अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। अमेरिकी आपराधिक मामलों में किसी केस का पूर्वाग्रह के साथ खारिज होना आम बात नहीं है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक जांच के दौरान अभियोजकों को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले और केस अडानी परिवार के पक्ष में मुड़ता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब युवाओं की नौकरी के हक की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे। ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप विभाग पर केस लटकाने का लगता है।
2: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
3: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
4: हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारे पास कोई मौका नहीं है।
3: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़
4: गई? हम सिर्फ यहाँ विनती करने आए हैं। जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम, आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं। हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। अब उन्हीं का आज बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31 कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
3: सर सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए?
4: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
2: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
5: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
6: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
2: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
7: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थी को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
8: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनके विवाद जीवन से दूर हो जाते हैं? कौन सी राशि के लोग अगर शनिदेव का दीपक जलाएं तो विवादों से छुटकारा मिल जाता है? और कौन सी राशि के लोग अगर शिव जी को जल चढ़ाएं तो जीवन से विवाद और शत्रुता शांत हो जाती है? कैसे दूर करें जीवन से विवाद, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
0: बात टिशा की करते हैं क्योंकि उसके घर वालों का आरोप है कि चार दीवारी के अंदर हत्या को खुदकुशी का रंग दिया गया। इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलील है कि टिशा की सास जज है और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। टिशा के गुनेगारों की बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया। आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया है।
11: त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरिबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
12: जी रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया, वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
11: ससुराल वालों ने त्रिशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है और त्रिशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्रिशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्रिशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्रिशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्रिशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
13: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
14: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गंवार है, तू गंवार है, बिल्कुल कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसने सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
11: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
15: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरिबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
11: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने

0: दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्च्यूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे।
1: ओरल हेल्थ का सच।

देश में एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल करीब 90 पैसे और डीजल करीब 87 पैसे प्रति लीटर महंगा। एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ोतरी। नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम को इटली के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। 5 साल में 50 साल के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। भोपाल के टिशा केस में नया मोड़। छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीपीआर देते दिखे घर वाले। दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध के आसार। ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुका हमला, लेकिन सेना आक्रमण को तैयार। ईरान को दो टूक नहीं करेंगे आत्मसमर्पण।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करें जिससे जीवन में बेवजह का विवाद ना हो, जिससे जीवन में बेवजह की शत्रुता ना हो। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और

दिन कितना शुभ है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मई 2026, दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने राशि के अनुसार आप कौन सा उपाय करें जिससे जीवन में विवाद ना हो, शत्रुता ना हो, झगड़े झंझट ना हो। सबसे पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों को बता दूं कि आप धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके विवाद धन के मामले में होते हैं और विवादों से बचने के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, आप विवादों से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, जहां तक हो सके अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपका क्रोध, आपकी वाणी और आपकी जिद ये विवाद और शत्रुता का कारण बनती है। साथ ही साथ भगवान शिव को हर शुक्रवार को अगर आप इत्र अर्पित करें, सुगंध अर्पित करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप विवाद करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में झगड़े बढ़ जाते हैं, अति विश्वास को कम करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, वाद विवाद और शत्रुता से आप बचे रहेंगे। बाकी राशियों के उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जानते हैं कि कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के लोग शत्रुता से और विवाद से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए, कर्क राशि की अगर बात करें तो जोश में आकर, भावनाओं में आकर रिश्ते मत बिगाड़िए, क्योंकि आपके बिगड़े हुए रिश्ते ही भविष्य में आपके शत्रु बन जाते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीला तिलक लगाइए, संभव हो तो मंदिर में जाकर दर्शन करिए। ऐसा करने से विवाद और शत्रुता से बचे रहेंगे। सिंह राशि, क्रोध बहुत है, ईगो बहुत है और इस वजह से दुश्मनी शत्रुता जल्दी होती है, तो अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर काबू रखिए ताकि विवाद ना हो। और हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, यानी प्रकाश का दान करिए हर शनिवार को, विवाद और शत्रुता से बच जाएंगे। कन्या राशि, हर काम में अपना स्वार्थ मत देखिए, ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि बड़बोलेपन से चीजें बिगड़ जाती हैं। हर शनिवार को अन्न का और जल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें, विवादों से और शत्रुता से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बाकी राशियों के उपाय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न बीनू श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और बीनू श्रीवास्तव हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 7:20। जन्म का स्थान है सिरसा, हरियाणा। बीनू, देखिए आपके विवाह का समय चल रहा है और जहां तक ज्योतिष की संभावना की बात है, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन चूंकि कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हैं तो कुंडली मिला करके ही विवाह करना आपके लिए उचित होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग ऐसा क्या करें जिससे जीवन में झगड़े ना हो, विवाद ना हो और शत्रुता ना हो। देखिए, अगर तुला राशि की बात करें तो पैसे रुपए की लिखा पढ़ी में, धन की लिखा पढ़ी में हमेशा सावधानी रखिए ताकि विवाद ना हो। और हर बृहस्पतिवार को भगवान को पीले फूल अर्पित करते रहिएगा, किसी भी तरह के विवाद से, शत्रुता से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, बदला लेने की आदत है, षड्यंत्र करने की आदत है, इससे बचिए, क्योंकि आपकी इस आदत की वजह से आपके बहुत सारे शत्रु पैदा होते हैं और जीवन में विवाद चलता रहता है। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाते रहिए, किसी भी तरह के विवाद और शत्रुता से बचे रहेंगे।
धनु राशि, जबरदस्ती झगड़ा करना, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना, इन आदतों से बचिए क्योंकि इससे शत्रुता पैदा होगी, बेवजह के विवाद होंगे। विवाद और शत्रुता से बचने के लिए हर शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा, आपके जीवन से विवाद समाप्त होंगे, शत्रुता शांत होगी। बाकी राशियों के विवाद और शत्रुता पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या के योग बन रहे हैं, बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग क्या उपाय करें जिससे जीवन में विवाद ना हो, किसी तरह की शत्रुता जीवन में ना आए। मकर राशि की बात करें तो अपनी वाणी से और अपने अहंकार से शत्रु मत बनाइए। आपकी वाणी की वजह से बहुत झगड़े पैदा होते हैं। हर बुधवार को भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित करें

कुंभ राशि, आपको हमेशा अपने करीब के लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ आगे चल करके विवाद होते हैं और आपके नजदीकी लोग ही आपके शत्रु बन जाते हैं। हर सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, आपके विवाद शांत होंगे और आपकी शत्रुता समाप्त होगी। मीन राशि, पारिवारिक मामलों में परिवार में आपकी दुश्मनी शत्रुता ज्यादा होती है और परिवार में विवाद की नौबत भी ज्यादा आती है, तो अपने पारिवारिक मामलों में आपको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को लाल फूल डालकर जल चढ़ाइए या जल में जरा सी रोली मिला करके जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, आपके विवाद शांत होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि माता काली का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो स्मशान का चित्र है, रौद्र रूप का चित्र है, उसको घर में लगाना उचित नहीं होगा। क्या ऐसा है? देखिए, माता काली जो हैं वो तंत्र की देवी हैं। 10 महाविद्या का पहला जो स्वरूप है वो माता काली का स्वरूप है। स्वरूप उनका भले ही भयंकर हो लेकिन माता काली की पूजा उपासना से जीवन की हर बाधा दूर होती है और अगर आप उनकी तंत्र साधना करते हैं तो आपको मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए माता काली की पूजा करने में या घर में उनका चित्र लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, माता काली की अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी गुरु के पूछे हुए अपने मन से ना करें। सामान्य रूप से आप उनका चित्र लगा सकते हैं, उनके सामने दीपक जला करके रोज उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न जनार्दन जी ने हमें लिखा है और जनार्दन जी पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1975। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे के आसपास। जन्म का स्थान है नालंदा बिहार।
ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे स्वास्थ्य की लगातार दिक्कतें परेशान कर रही हैं, तो मैं कब तक स्वस्थ हो पाऊंगा और क्या उपाय करूं? जनार्दन जी, सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराइए। आपको हड्डियों की, पेट की गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, चेकअप कराएं और डॉक्टर का बताया हुआ इलाज फॉलो करें। खुद अपना इलाज मत करिए, चेकअप पहले प्रॉपर करवा लीजिए। साथ में आपका जीवन बेहतर हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिएगा। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खा करके जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाना है तो जरा सा सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वालों के लिए करियर में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, काम आपके बीच में रुक सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, कोई भी नया काम ना करें, नए काम की शुरुआत ना करें। आज अगर आप जल का और गुड़ का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को, लोगों को पानी पिलाएं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पश्चिम एशिया संकट का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तेल कंपनियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98.64 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा, जबकि डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए बढ़ाए थे। इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पिछले 12 वर्षों में भारत का आर्थिक डीएनए पूरी तरह से बदल गया। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा रही बेहद खास। ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर बनी सहमति। नॉर्वे के दिग्गज सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात। भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर में मजबूत साझेदारी बढ़ाने पर हुआ मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ पीएम मोदी का विदेशी दौरा कल तक रहेगा जारी। अब इटली दौरे पर दुनिया की नजर। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सभी धार्मिक भत्ते बंद करने का ऐलान किया। कहा, अब छात्र को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाउडस्पीकर पर बोली बंगाल के मंत्री अग्निमित्रा पॉल। कहा, लाउडस्पीकर किसी धर्म का मुद्दा नहीं, ये केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी राजकुमार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी के पीएम मर्डर केस में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी, कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया। अभिषेक बनर्जी ने साइबर थाने में दर्ज एफआईआर को दी चुनौती। कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 21 मई को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर राजनीतिक हलचल तेज। फलता में पुनर्मतदान में जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को दी राहत। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पेशी के दौरान परिवार से मिलकर हुआ भावुक। यूपी में सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को सख्त संदेश। कहा, अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे अब बढ़ाकर अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। एसपी अध्यक्ष सीबीएसई बारहवीं ने सीबीएसई बारहवीं के परिणामों पर सवाल उठाया। ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। आज से राहुल गांधी का 2 दिनों का रायबरेली दौरा। लालगंज में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आज बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले गृहमंत्री अमित शाह, 31 मार्च के बाद बस्तर में आजादी का सूर्योदय। भारत में खत्म हो चुका है नक्सलवाद, अब नए अध्याय की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार। 155 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़के अरविंद केजरीवाल। बोले, उसने बीजेपी ज्वाइन नहीं की इसलिए अरेस्ट किया। दिल्ली में मंडी मेट्रो अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी की बड़ी पहल। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो। दिन भर में 24 फेरे लगाएंगी ट्रेन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से किया सफर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अपील। कहा, मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते नजर आए। मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मेट्रो ट्रेन से की यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील की। एनडीएमसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में रहे मौजूद। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपना काफिला छोड़ा, साइकिल चलाकर पहुंचे सचिवालय।
गाजीपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी नेताओं ने पेट्रोलियम मंत्री का फूंका पुतला। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बीच तेल आपूर्ति को लेकर इंडियन ऑयल ने जताया भरोसा। कहा सभी पेट्रोल पंप पर सामान्य सप्लाई जारी। लोगों से की अफवाहों से बचने की अपील। ऊर्जा संकट के बीच दिल्ली के राजेश चौरंगी ने कार पूलिंग को बनाया मिशन। रूट का स्टिकर लगाकर रोज राहगीरों को देते हैं मुफ्त में लिफ्ट। ईंधन बचाने का संदेश दिया। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का कानपुर में विरोध हुआ। वकीलों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष। प्रदेश भर में हड़ताल की चेतावनी। अमृतसर में सड़क पर बहाया गया हजारों लीटर दूध। मिलावटखोरी के खिलाफ डीसी दफ्तर के बाहर किसानों और दूधिया यूनियन का हंगामा। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपने काफिला छोड़ा। साइकिल चलाकर पहुंचे सचिवालय। चरखी दादरी के नवदंपति ने शादी को बनाया सामाजिक जागरूकता का अभियान। बाबा साहेब की तस्वीर के सामने लिया जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तेहरान में हजार जोड़ों का होगा सामूहिक निकाह समारोह। कार्निवल इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक निकाला जाएगा जुलूस। बागपत में नन्ही कली पहल की शुरुआत। डीएम ने किया शुभारंभ। डॉक्टर बोले बच्चियों के इलाज में 70% तक की छूट। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की नवजात बच्चियों को मिलेगा लाभ। नवजात बेटियों को नन्ही कली गुड़िया गिफ्ट करके दिया जाएगा सकारात्मक संदेश। आगरा में आज सभी स्कूल बंद। भीषण गर्मी और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आदेश जारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े। हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में हीट वेव की स्थिति जारी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले हफ्ते में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की आईएमडी की चेतावनी। 24 मई तक कई राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप तेज। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की चेतावनी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तापमान बढ़ने की संभावना। समय घर से बाहर निकलने से बचने की सबको सलाह दी जा रही है। खासकर बच्चों बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश। प्रयागराज के सिविल लाइन्स में होटल में लगे भयंकर आग। ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद लपटों से मचा हड़कंप। इंदौर में धू धू कर जला टेंट हाउस का गोदाम। दूर तक छाया धुएं का गुबार। मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के ग्वालियर में फोम और कबाड़ गोदाम में लगे भयंकर आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पटना के किराना गोदाम में लगी भयंकर आग। 4 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 14 महीने पहले हुई शादी दर्दनाक घटना में तब्दील विवाहिता ने छत से कूदकर जान दी। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। पति और ससुर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा। गलत लेन में जाकर ट्रक से टकराई मैजिक। मौके पर 10 लोगों की मौत हुई। 4 की हालत गंभीर। सीट के बीच में कई लोगों के फंसने की भी वजह से जान गई। लखीमपुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। सोनीपत में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। कुछ युवकों ने महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा। अलवर में दिन दहाड़े कोरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसे बदमाश ने लूटपाट की। चाकू की नोक पर महिला और मासूम को बनाया बंधक। जेवर और नकदी लेकर फरार। अमृतसर पुलिस की ड्रग तस्करों के बड़े गिरोह के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मौके से 7 पिस्तल और 2 किलो हेरोइन बरामद। पाकिस्तानी तस्कर से जुड़े था। महाराष्ट्र के वाशी में दिनदहाड़ी कार का शीशा तोड़कर 20 लाख की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास फायरिंग। अवैध कारोबार को लेकर 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवार से इलाके में दहशत। 6 गिरफ्तार। नागपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला। अमरावती में दफन युवती का शव दोबारा निकाला गया। गला दबने के कारण आशंका। जांच तेज। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से पिता पुत्र की मौत। मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़। युवती समेत 5 गिरफ्तार। कई शहरों में 7 से अधिक लोगों को बनाया शिकार। मथुरा में वृंदावन बांके बिहारी पुलिस चौकी के पास दरोगा ने युवक पर बरसाए थप्पड़। वीडियो बनाने की गलत फहमी के कारण की मारपीट। मेरठ में दुकान खाली कराने को लेकर किरायेदार और मालिक के बीच मारपीट हुई। समय से किराया न देने को लेकर बढ़ा विवाद। कर्नाटक के कोडागू स्थित डुबारे एलिफेंट कैंप में 2 हाथियों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। चपेट में आई महिला पर्यटक की मौत। लातूर नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज। आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 10 पहुंची। पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति सख्त। एनटीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया।
संसदीय समिति ने जांच एजेंसियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी। आईपीएल के 63वें मैच में

0: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires.
1: Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2016. Dealer for warranty details.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
7: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: एक हिंट तो देते।
7: बड़े आराम से।
9: Lion O's family, super action family. Lion.
10: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। Lion O's family, super action family.
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
16: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
17: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
18: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
17: आप कैसे कर लेते हो?
18: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
19: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
20: नहीं
19: और म्यूचुअल फंड्स है
20: सही।
21: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
22: Like I said before, we better own the sins.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
23: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
24: इसमें माइक्रोफाइबर है।
23: माइक्रोफाइबर यानी
24: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
23: हमारे सीमेंट में नहीं है,
24: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
25: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
14: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
0: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
7: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
8: विक्रम एक हिंट तो देते
9: विक्रम
8: हिंट
7: बड़े आराम से
10: और वही कहाँ गए थे घूमने
11: जीके मैक्स
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
13: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहाँ स्वाद वहाँ जेके
14: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही

0: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे।
1: चलाई गई है।
0: ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है?
2: जा रहे हैं।
0: भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कार पूलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में। ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, यानी हर बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है।

पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियों के बीच ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुके अटैक, लेकिन सेना आक्रमण के लिए तैयार। ईरान की दो टूक, बात करने का मतलब सरेंडर नहीं। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, शाम को इटली के लिए होंगे रवाना।

बिहार में नए अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण, 5 साल में 50 साल के नुकसान की होगी भरपाई। भोपाल में ट्रिशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीपीआर देते दिखे घरवाले, केस दर्ज होने के बाद फरार पति समर्थ की तलाश तेज।

0: शो जो आपको आज की हर बड़ी खबर से रूबरू कराता है। इससे पहले कि हम आपको देश दुनिया का पूरा हाल बताएं, बड़ी खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जी हाँ, और वहीं ईरान को ट्रंप ने नई धमकी दी है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। कैलिफोर्निया में कहां पर शूटिंग हुई है वो भी आपको बताएंगे। नॉर्वे में भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। बारामूला में आग से ऐसी तबाही की सेना बुलानी पड़ी है, वो खबर भी आपको पूरी बताएंगे। वहीं देश पर 47 डिग्री गर्मी का टॉर्चर कब तक, और आईपीएल में चेन्नई की हार के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल, ये पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से दिखाएंगे। अभी सबसे पहले और अहम खबर यह है कि एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ और पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। चार दिन पहले यानी 15 मई को ही तेल की कीमतें बढ़ी थी, और अब आज से एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में करीबन 90 पैसे का इजाफा हुआ है, और तत्काल प्रभाव से उस पर अमल भी शुरू हो गया है। इस खबर के साथ आपको महानगरों में तेल के भाव की जानकारी भी दे देते हैं। 15 मई को पहली बार तेल के भाव बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए मिल रहा था, अब जब ये नई दर 98.64 रुपए पर हो गई है, वही दिल्ली में जो डीजल अब तक 90.67 रुपए मिल रहा था वो अब 91.58 रुपए हो गया है। तो एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अब आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि कहां पर कितने दाम अभी तक पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं। मुंबई की बात करें तो अब तक पेट्रोल 106.68 रुपए लीटर बिक रहा था। देखिए, पेट्रोल डीजल काफी महंगा हो गया है, पहले 57 रुपए पेट्रोल के दाम थे, अब जो कि 58.64 रुपए हो गए हैं। दिल्ली में ये हाल बता रहे हैं आपको पेट्रोल डीजल का, वही मुंबई में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 106.68 रुपए मुंबई में दाम थे, वही अब बढ़कर मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, अब 94 रुपए पहुंच गए हैं। कोलकाता में भी हाल बढ़ गया है, 109.70 रुपए पर पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं, पहले काफी कम था। ये पूरा एक हफ्ते में ही दो बार दाम बढ़े हैं। पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, यानी अभी कुछ दिन ही हुए हैं, और उसके बाद चेन्नई में भी हाल कुछ ऐसा ही है। डीजल में बढ़ोतरी हुई है, 96.11 रुपए पर अब डीजल के दाम पहुंच गए हैं। तो एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। इसे समझना होगा कि आम आदमी की जेब पर काफी ज्यादा असर इससे पड़ने वाला है। पहले जो कि दिल्ली में 90.67 रुपए पेट्रोल के दाम थे, वही अब बढ़कर 107 रुपए हो गए हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, अभी कुछ ही समय पहले पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई थी, कुछ ही समय हुआ है, अभी क्या लग रहा है आगे और इजाफा होने वाला है?
1: देखिए, जो परिस्थितियां उनको देखकर तो बिल्कुल लग रहा है कि दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जब 3 रुपए जब 15 मई को रेट बढ़ाए गए थे तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे थे उस दिन, और लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि शायद 8 से 10 रुपए बढ़ेगा, इसलिए 3 रुपए की बढ़ोतरी कुछ लोगों को खास नहीं लग रही थी। आज जब हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो हम आप देखिए, आज के अगर आप डीजल की बात करेंगी तो 51.58 रुपए है, जो कि कल के रेट से करीब 83 पैसे ज्यादा है, और पेट्रोल का रेट 98.64 रुपए है, जो कि 87 पैसे यानी कुल 87 पैसे की बढ़ोतरी यहां पेट्रोल के रेट में है, और 83 से 84 पैसे के करीब करीब बढ़ोतरी जो है वो डीजल के रेट में की गई है। ये दिल्ली की है आज की जो रेट की अगर हम बात करें, और 4 दिन में ये दूसरी बार बढ़ोतरी है, लेकिन जो पहली बार बढ़ोतरी थी वो करीब 3 रुपए की थी, और दूसरी है वो 1 रुपए से कम है। अब चूंकि वर्किंग डे है, कुछ देर में इन तमाम पेट्रोल पंप पर, क्योंकि मैं नई दिल्ली इलाके के कनॉट प्लेस में पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, कुछ देर में यहां लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। जाहिर तौर पर 4 दिन के अंदर जब दोबारा बढ़ोतरी हुई है,
0: ठीक है मानसू, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं विदेश की कुछ खबरों का। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, कैलिफोर्निया से एक सन्न करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सैन डिएगो काउंटी के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर के बाहर दो नाबालिग बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गोलीबारी में सुरक्षा गार्ड सहित तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावरों ने भी पास के एक गली में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और स्थानीय पुलिस इस घटना को मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर किया गया संदिग्ध हेट क्राइम मानकर जांच कर रही है। गोलीबारी में सुरक्षा गार्ड सहित तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। फायरिंग के बाद दोनों संदिग्धों ने खुद भी आत्महत्या कर ली, एक गली में जाकर खुद को गोली मार। पुलिस के मुताबिक हेट क्राइम का यह पूरा मामला लग रहा है। अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, कैलिफोर्निया से तस्वीर है जहां पर सैन डिएगो काउंटी के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर के बाहर ये दो नाबालिग बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ये तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए और उसके बाद खुद भी इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये हड़कंप कैलिफोर्निया में ही नहीं पूरी दुनिया में है। वजह है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी जो कि एक बार फिर से महायुद्ध का रूप ले सकती है। अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि परमाणु हथियार का लक्ष्य उसे हर हाल में छोड़ देना चाहिए। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में ये बताया गया है कि ईरान जल्द से जल्द लड़ाई का अंत चाहता है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। व्हाइट हाउस की ओर से अब बयान जारी किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी को लेकर महायुद्ध का रूप ये तनातनी ले सकती है। एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि परमाणु हथियार का लक्ष्य उसे हर हाल में छोड़ देना चाहिए। तो वही व्हाइट हाउस से जारी इस बयान से ठीक पहले ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा और सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में तेहरान संघर्ष का स्थायी समाधान, अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने और समंदर में नाकेबंदी हटाने की बात कही गई है। लेकिन ईरान शुरुआती चरण में परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चरणबद्ध तरीके से ईरान की फ्री संपत्ति से सिर्फ 25% ही जारी करने को राजी है। हालांकि ईरान का नया प्रस्ताव अब भी अंतिम समझौते के लिए जरूरी शर्तों पर खरा नहीं उतरता। ऐसे में तेहरान ने अपने प्रस्ताव में नाम मात्र के बदलाव किए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने पर सहमति जताई है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ईरान ने 14 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है और ऐसे में अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठी हुई है। इसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या है, युद्ध का स्थायी समाधान, वहीं समंदर से नाकेबंदी जो की गई है उसको हटाने की शर्त रखी गई, वहीं आर्थिक प्रतिबंधों की मुक्ति की भी बात इसमें कही गई है, हॉर्मूज खोलने की लगातार अपील की जा रही है, परमाणु मुद्दे पर अगले चरण में बात होगी ये कहा जा रहा है। तो ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव आपने समझा और साथ ही जरूरी शर्तों पर खरा नहीं उतरा ये प्रस्ताव, ये US मीडिया ने साफ कहा है। उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है। इस प्रस्ताव के बाद ईरान के प्रस्ताव में नामात्र का सुधार है, US मीडिया ने ये साफ कहा है। ये साथ ही ईरानी तेल निर्यात पर ईरानी मीडिया ने ये दावा किया है। तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव के बाद यूएस की तरफ से बयान जारी किया गया है। तेल निर्यात पर प्रतिबंध में ढील पर सहमति नहीं है, तेल निर्यात पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो ईरान ने 14 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है तो अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठी है। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर होने वाला फिलहाल जो हमला है वो रोका गया, लेकिन सेना अलर्ट मोड में है और किसी भी क्षण हमले के लिए तैयार है।
2: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी फिर शुरू होने वाला है महायुद्ध। अमेरिकी फौज तैयार, कभी भी शुरू हो सकता है महाविनाश। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की ओर से अंतिम प्रस्ताव का इंतजार है। खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल रोक रखा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने अनुरोध किया कि ईरान से गंभीर वार्ता चल रही है। उनके विचार में जल्द समझौता हो जाएगा जो अमेरिका के साथ ही मध्य पूर्व और अन्य देशों को स्वीकार्य होगा। मैंने निर्देश दिया है कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षण बड़े हमले के लिए सेना तैयार रहे। ट्रंप की धमकियों और समझौते को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि संवाद का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान अपनी गरिमा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वार्ता में शामिल है। किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल फिर से व्यापक सैन्य तैयारियों में जुटे हैं। अमेरिका यदि ईरान पर हमला करता है तो इस बार सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचों और यूरेनियम के संभावित भंडार को टारगेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है, लेकिन यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों की अपील पर अमेरिका ने फिलहाल हमला रोका है। अगर ईरान से समझौता नहीं होता तो हमला पिछली बार से बड़ा होगा। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है, लेकिन यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसी खाड़ी देशों की अपील पर अमेरिका ने फिलहाल इस हमले को रोका हुआ है।
3: Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: तो अमेरिका और ईरान में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दौरे पर आज से चीन जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान में महायुद्ध की आशंका के बीच पुतिन का चीन दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। दरअसल अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी चीन से होकर आए हैं और अब पुतिन का चीन जाना कूटनीतिक लिहाज से बेहद ही अहम है। 2 दिन के दौरे पर आज चीन जा रहे हैं पुतिन। अभी थोड़े समय पहले ही चीन का दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का था और उसके बाद पुतिन का यह दौरा कई लिहाज से खास माना जा रहा है।
2: अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दुनिया की निगाहें इस वक्त चीन में चल रही हलचल पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के फौरन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। रूस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दौरे से हमें बेहद उम्मीदें हैं। हम और हमारे चीनी मित्र इसे एक विशेष रूप की रणनीतिक साझेदारी मानते हैं। पुतिन के साथ जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में उप प्रधानमंत्री, सरकार मंत्री और कंपनियों के प्रमुख शामिल हैं। पुतिन अपनी इस यात्रा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन पर बात आगे बढ़ सकती है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 मंगोलिया के रास्ते रूस के आर्कटिक गैस क्षेत्रों से चीन को जाने वाली प्रस्तावित पाइपलाइन है। इसे लेकर प्लानिंग चल रही है। इससे चीन को सालाना अतिरिक्त 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जा सकती है। हाल के वर्षों में चीन रूस का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बनकर उभरा है, खासतौर से तब जब रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने मॉस्को को कई वैश्विक बाजारों से अलग थलग कर दिया। चीन रूसी जीवाश्म ईंधन के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, जो प्रतिबंधों के दबाव के बीच रूस की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो कूटनीति सिर्फ चीन में ही नहीं चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर है। पीएम अभी नॉर्वे में है और इसके बाद अपने इस विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव पर वो इटली के लिए रवाना होंगे। यूएई, नीदरलैंड और साथ ही स्वीडन में भारत की धमक देखने को मिली है। तो वहीं नॉर्वे में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। आज पीएम मोदी नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। उसके बाद शाम में वो इटली के लिए भी रवाना होंगे। तो यूएई, नीदरलैंड और उसके बाद अब इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी।
2: एशिया में महायुद्ध की सुगबुगाहट के बीच भारत की कूटनीति पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। पांच देशों के पीएम मोदी के दौरे में वॉर जोन यूएई से लेकर नॉर्वे तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में आज शाम इटली के लिए रवाना होंगे, जहां इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे।
4: I can say that the visit is aimed at some key areas of cooperation. First, of course, is to further increase the trade and investment between the two countries. We are also inviting Italian companies to look at India for long-term presence and long-term business collaborations. Defense will be an important area.
2: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में इटली का कुल प्रत्यक्ष निवेश 3.66 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मोदी और मेलोनी के सौहार्दपूर्ण संबंध हाल के वर्षों में कूटनीतिक चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। 2023 से ही दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकातों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उनकी इस नवीनतम मुलाकात से भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों में और गहराई आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब अगली खबर भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अडानी से जुड़ी हुई, जिन्हें अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। जी हां, उनके खिलाफ अमेरिका ने सभी आपराधिक मामले बंद कर दिए हैं और यह फैसला जांच के दौरान सबूत ना मिलने की वजह से लिया गया।
2: अमेरिका में गौतम अडानी को बड़ी राहत, रिश्वतखोरी की साजिश का मामला खारिज, नहीं मिले सबूत, केस हमेशा के लिए बंद। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर चल रहे आपराधिक आरोपों को हमेशा के लिए वापस ले लिया है। 2024 के अंत में अमेरिकी नियामक SEC और न्याय विभाग की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। आरोप था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सौर ऊर्जा के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। अमेरिकी निवेशकों और ऋणदाताओं से पैसा लेते वक्त इस बात को छुपाया गया। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच की गई और समीक्षा के बाद न्याय विभाग ने केस वापस लेने का फैसला किया। अमेरिकी सरकारी वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की समीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपों को साबित करने के पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोप खारिज करने का आदेश दे दिया। इस मामले को अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। अमेरिकी आपराधिक मामलों में किसी केस का पूर्वाग्रह के साथ खारिज होना आम बात नहीं है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक जांच के दौरान अभियोजकों को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले और केस अडानी परिवार के पक्ष में मुड़ता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि कुलकर्णी की नीट पेपर तक पहुंच हो गई थी और नीट के लिए 5 पेपर के सेट भी बनते थे और 2 फाइनल होते थे। खबरों के मुताबिक वहां तक इसने पहुंच बना ली थी। सवाल है कि आखिरकार NTA में उसे कौन लाया था और NTA के कौन से अधिकारी इसके संपर्क में थे। CBI अब इसकी पूरी जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2019 से ही NTA में पेपर सेटर था। NTA में ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में जुड़ा था, लेकिन बाद में सभी पेपर तक इसकी पहुंच हो गई थी। बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ में हत्या के हड़कंप की खबर आपने देखी। अब एक खबर उत्तरी कश्मीर की भी, जहां पर बारामूला में भीषण आग से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। हादसा कानेली बाग इलाके में हुआ। एक गोदाम में भीषण आग लगी। इतनी भयानक आग हो गई, फैल गई कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आने लगी। स्थिति इतनी भीषण थी कि हालात पर काबू करने के लिए सेना, पुलिस और दमकल की गाड़ियों को लगना पड़ा। और अब खबर देश में बढ़ते पारे के सितम की। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। हालात ऐसे हैं कि दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सोमवार को यूपी के बांदा में तो तापमान 47 डिग्री के पार चला गया और अभी आशंका यह जताई जा रही है कि गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स और थाला के फैंस को डबल झटका लगा है। जी हां, आईपीएल के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से मात देकर उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को धुंधला कर दिया है। चेन्नई ने चेपाक स्टेडियम में टॉस जीतकर 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने सिर्फ 13 गेंदों में 27 रन ठोक दिए। इसके बाद कार्तिक शर्मा ने 19 गेंदों पर 32 रन की तेज पारी खेली।

0: तो आईपीएल में कौन सी टीम किस नंबर पर है? अभी के हिसाब से आरसीबी 18 अंकों के साथ टॉप पर है। दूसरा नंबर है गुजरात का, जो कि दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अभी फिलहाल आरसीबी है, फिर गुजरात टाइटंस, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद। तो चलिए अब देखते हैं सुपर एट में फटाफट न्यूज। पहली खबर गुजरात के सुरेंद्र नगर की, जो कि चोटिला राजकोट नेशनल हाईवे पर एक बस शोलो में तब्दील हो गई। इसमें 40 यात्री सवार थे, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक अपार्टमेंट में कल शाम अचानक आग लगी, तीसरी और चौथी मंजिल पर हादसे में मची अफरा तफरी, किसी को चोट नहीं पहुंची। सिंगरौली में 15 मई को किडनैप हुई 2 साल की बच्ची को आखिरकार पुलिस ने खोज निकाला। करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद झारखंड में मिली मासूम, अपहरण के आरोपी भी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्या के 2 आरोपी गोली लगने से घायल, आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, चाकू और 2 बाइक भी बरामद। चंडीगढ़ में पुलिस के ऑपरेशन सेल ने 3 कथित गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया, फिलहाल तीनों गिरफ्त में। आरोपियों की गोलीबारी में बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बचा पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज रफ्तार कंटेनर का कहर, 2 लोगों को मारी टक्कर, उन दोनों को बचाने के दौरान बुजुर्ग की गई जान। राजस्थान के पाली में पेट्रोल नहीं मिलने से नाराज लोगों ने किया हंगामा, पेट्रोल पंप पर की धक्का मुक्की और तोड़फोड़, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाले हालात। गुजरात के बनासकांठा और वावथराद में एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल की किल्लत, किसान और वाहन चालक परेशान, पेट्रोल पंपों पर दिखी लंबी कतार। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
5: Gone! Home run!
4: NHL.
5: He scores!
4: College basketball.
6: He shoots it immediately.
7: He makes it in!
4: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
8: One lap to go.
4: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: Sokudo.
11: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
12: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
13: एक हिंट तो देते।
14: विक्रम!
13: हिंट
14: बड़े आराम से।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
3: JK Maxx Paints, खुशियों के रंग।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
14: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
15: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
15: हमारे सीमेंट में नहीं है?
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
18: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
19: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
18: आप कैसे कर लेते हो?
19: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
18: नहीं
19: और म्यूचुअल फंड्स है
18: सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
21: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
22: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
23: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
24: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
25: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
26: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
27: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

रशिया संकट का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। इस बार पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तेल कंपनियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98.64 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा, जबकि डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपये बढ़ाए थे। इसके अलावा सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारत नॉर्वे व्यापार और एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पिछले 12 वर्षों में भारत का आर्थिक डीएनए पूरी तरह से बदल गया। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा रही बेहद खास। ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर बनी सहमति। नॉर्वे के दिग्गज सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात। भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर में मजबूत साझेदारी बढ़ाने पर हुआ मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ पीएम मोदी का विदेशी दौरा कल तक जारी रहेगा। अब इटली दौरे पर दुनिया की नजरें। बंगाल सीएम शिवेंदु अधिकारी ने बंगाल में सभी धार्मिक भत्ते बंद करने का ऐलान किया। कहा, अब छात्रों को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाउडस्पीकर पर बोली बंगाल के मंत्री अग्निमित्रा पॉल। कहा, लाउडस्पीकर किसी धर्म का मुद्दा नहीं, ये केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय। शिवेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी राजकुमार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया। अभिषेक बनर्जी ने साइबर थाने में दर्ज FIR को दी चुनौती। कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 21 मई को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर राजनीतिक हलचल तेज। हल्ता में पुनर्मतदान में जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट मिली। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को दी राहत। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पेशी के दौरान परिवार से मिलकर हुआ भावुक। यूपी में सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी। कहा, सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को सख्त संदेश। कहा, अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे बढ़ाकर अब अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। एसपी अध्यक्ष सीबीएसई बारहवीं ने सीबीएसई बारहवीं के परिणामों पर सवाल उठाए। ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। आज से राहुल गांधी का 2 दिनों का रायबरेली दौरा। लालगंज में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आज बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले गृहमंत्री अमित शाह, 31 मार्च के बाद बस्तर में आजादी का सूर्योदय। भारत में खत्म हुआ चुका है नक्सलवाद, अब नए अध्याय की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार। 155 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़के अरविंद केजरीवाल। बोले, उसने बीजेपी ज्वाइन नहीं की इसलिए अरेस्ट किया। दिल्ली में मंडी मेट्रो अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी की बड़ी पहल। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो। दिन भर में 24 फेरे लगाएगी ट्रेन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से किया सफर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अपील। कहा, मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते आए नजर। मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मेट्रो ट्रेन से किया यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील की। एनडीएमसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में रहे मौजूद। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपना काफिला छोड़ा, साइकिल चलाकर पहुंचे सचिवालय। गाजीपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी नेताओं ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बीच तेल आपूर्ति को लेकर इंडियन ऑयल ने जताया भरोसा। कहा, सभी पेट्रोल पंपों पर सामान्य सप्लाई जारी। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। लातूर नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज हुई। आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 पहुंची। पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति सख्त। एनडीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया।
संसदीय समिति ने जांच एजेंसियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी। ऊर्जा संकट के बीच दिल्ली के राजेश चौरंगी ने कार पूलिंग को बनाया मिशन। रूट का स्टिकर लगाकर रोज राहगीरों को देते हैं मुफ्त में लिफ्ट। ईंधन बचाने का दिया संदेश। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का कानपुर में विरोध हुआ। वकीलों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम योगी को सौंपा गया। लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष। प्रदेश भर में हड़ताल की चेतावनी। अमृतसर में सड़क पर बहाया गया हजारों लीटर दूध। मिलावटखोरी के खिलाफ डीसी दफ्तर के बाहर किसानों और दूधिया यूनियन का हंगामा हुआ। आगरा में आज सभी स्कूल बंद। भीषण गर्मी और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आदेश जारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हीटवेव की स्थिति जारी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले हफ्ते में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की आईएमडी की चेतावनी। 24 मई तक कई राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप तेज। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की चेतावनी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तापमान बढ़ने की संभावना। समय रहते हुए घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह लोगों को दी जा रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश। प्रयागराज के सिविल लाइन्स में होटल में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद लपटों से मचा हड़कंप। इंदौर में धू कर जला टेंट हाउस का एक गोदाम। दूर तक छाया धुएं का गुबार। मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के ग्वालियर में फोम और कबाड़ गोदाम में भयंकर आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पटना के किराना गोदाम में लगी भयंकर आग। 4 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 14 महीने पहले हुई शादी दर्दनाक घटना में तब्दील। विवाहिता ने छत से कूद कर दी जान। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। पति और ससुर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा। गलत लेन में जाकर ट्रक से टकराए एक मैजिक। मौके पर 10 लोगों की मौत हुई। 4 की हालत गंभीर। सीट के बीच में कई लोगों के फंसने की वजह से गई जान। लखीमपुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। सोनीपत में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। कुछ युवकों ने महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा। अलवर में दिनदहाड़े कोरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसे बदमाश ने लूटपाट की। चाकू की नोक पर महिला और मासूम को बनाया बंधक। जेवर और नकदी लेकर फरार। अमृतसर पुलिस की ट्रक तस्करों के बड़े गिरोह के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से 7 पिस्तल और 2 किलो हीरोइन बरामद। पाकिस्तानी तस्करों से जुड़े तार। महाराष्ट्र के वाशी में दिनदहाड़े कार का शीशा तोड़कर 20 लाख की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास फायरिंग। अवैध कारोबार को लेकर 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवार से इलाके में दहशत। 6 गिरफ्तार। नागपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। अमरावती में दफन युवती का शव दोबारा निकाला गया। गला दबने की आशंका से जांच तेज। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर की वजह से पिता पुत्र की मौत। मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़। युवती समेत 5 गिरफ्तार। कई शहरों में 7 से अधिक लोगों को बनाया गया शिकार। आईपीएल के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 19 ओवर में ही 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की। 47 गेंदों में बनाए धुआंधार 70 रन जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहे।

तनाव कम होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या के योग बन रहे हैं, बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

टाइम ना ले, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन

0: और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है।
1: पीएम मोदी को स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी बोले, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान।
0: स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान।
1: स्वीडन के साथ हुए कई समझौते विदेशी धरती पर बढ़ा भारत का मान। ये दो देशों की दोस्ती की मजबूती का प्रमाण था। ये लम्हा था 140 करोड़ लोगों के मान का, सम्मान का। क्राउन प्रिंस विक्टोरिया के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो ये पल भारत और स्वीडन के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला एक सुनहरा अध्याय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही पीएम मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की तादाद बढ़कर 31 पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को देश की जनता के नाम समर्पित किया। गुटेनबर्ग में पीएम मोदी की यात्रा का एक एक लम्हा यादगार बन गया। रविवार को जैसे ही उनके विमान ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, वहां की वायुसेना के अत्याधुनिक ग्रिपेन वॉर प्लेस ने उनके विमान को अपनी सुरक्षा घेरे में लिया। आसमान में एयर इंडिया वन की सुरक्षा की ये तस्वीर भारत की अहमियत को दर्शाती है। फिर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने खुद मौजूद रहकर पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। गुटेनबर्ग की सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था।
2: We are very grateful that this visit happened through our Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, and these are our friends who have been supporting this visit, and I think we should get this visit more often in the future.
1: इस मौके पर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच कई समझौते भी हुए। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी माना कि पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा एक मील का पत्थर है। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक के क्षेत्र में भी और कूटनीति के तौर पर भी। पीएम मोदी की स्वीडन और यूरोप के बाकी देशों की यात्रा बदलती दुनिया के बदलावों के साथ न सिर्फ कदम ताल करने की एक कोशिश है, बल्कि दुनिया को भारत की अहमियत बताने का भी एक मिशन है।
0: अपना योगदान देते रहें।
1: आज तक ब्यूरो।

करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े

लगातार बढ़ती कीमतों का असर। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियों के बीच ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुके अटैक, लेकिन सेना आक्रमण के लिए तैयार। ईरान की दो टूक, बात करने का मतलब सरेंडर नहीं। स्वीडन के बाद नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम। आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, शाम को इटली के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण, 5 साल में 50 साल के नुकसान की होगी भरपाई।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ईद से पहले यूपी में सड़क पर नमाज और अजान पर फिर उठा विवाद। योगी ने कहा संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए नमाज। कोलकाता में सत्ता बदलने के बाद अब मिटेगी ममता की निशानी। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर से हटेगी मूर्ति, ममता ने डिजाइन की थी मूर्ति। त्रिशा की संदिग्ध मौत पर आमने सामने दो परिवार, पहली बार मीडिया के सामने आई, सास क्या कहा, अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसका सीधा सरोकार आपकी जेब से है, आपकी कमाई से है, क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई हैं। आज पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 90 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे 4 दिन पहले यानी कि 15 मई को तेल की कीमतें 3 रुपए बढ़ाई गई थी। पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया था। आज एक बार फिर से इजाफे की नई खेप सामने आई है। पेट्रोल के दाम 98.64 रुपए हो गए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो डीजल अब तक 90.67 रुपए मिल रहा था वो अब 91.58 रुपए का हो गया है। मुंबई में अब तक पेट्रोल 106.68 रुपए में बिक रहा था, अब बढ़ने के बाद ये रेट 107.59 रुपए हो गए हैं। मुंबई में डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जो अब तक 93.14 रुपए प्रति लीटर था। अब बात कोलकाता की, वहां पेट्रोल अब तक 109.70 रुपए था, अब ये भाव बढ़कर 108.74 रुपए हो गया है। डीजल का भाव पहले 95.13 रुपए था, जो अब बढ़कर 96.07 रुपए हो गया है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये तो प्रत्याशित था, माना जा रहा था कि धीरे धीरे करके यानी कि इंस्टॉलमेंट से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, और ठीक वैसा हुआ, हालांकि इस बार मार्जिनल इंक्रीज है।
1: बिल्कुल नया, देखिए काटा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ता है झटका आम आदमी की जेब को लगता है, लेकिन इस मामले में जो करंट के तार हैं वो भारत से नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के युद्ध से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 90% आयात जो हमारा होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए होता है, जिसकी वजह से आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा कि लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो दिल्ली में 87 पैसे का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ है। निर्भर करता है कि आप किस पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं। 98.64 रुपए अगर आप भारत पेट्रोलियम पर जाकर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो प्रति लीटर ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। डीजल की बात करें तो 91 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है कीमतों में, तो 91.58 रुपए प्रति लीटर आपको डीजल की कीमत देनी पड़ेगी अगर आप दिल्ली में भारत पेट्रोलियम के पंप पर तेल भरवाते हैं। अहम बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आम लोगों को सचेत किया था कि ईंधन की खपत को कम किया जाए। उसका कारण क्या था, जो 90% हमारा आयात है, टोटल आयात, उसका 90% आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, वो ब्लॉक पड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियां जो है OMCs हैं, उन्होंने लंबे समय तक इस लॉस को अब्सॉर्ब किया और अब वो समय आ गया है जब ये धीरे धीरे कर आम लोगों पर पास ऑन किया जा रहा है इस बर्डन को। और निश्चित रूप से जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो जो आम व्यक्ति है, जैसे ये तेल भरा रहे हैं अपने काम पे जाने के लिए, तो सिर्फ उनके
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर उन्होंने लिखा है कि जनता पर महंगाई मैन, मोदी का हंटर फिर चला है। पेट्रोल डीजल 90 पैसे महंगा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 4 दिन में 4 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल 109 रुपए और डीजल 96 रुपए पहुंच गया है। ये तो बस शुरुआत है, महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। और बात बहुचर्चित त्रिशा मौत मामले की। त्रिशा शर्मा ने जिस रोज कथित तौर पर खुदकुशी की थी उस दिन का एक CCTV फुटेज सामने आया है। 12 मई के इस वीडियो में त्रिशा शाम को छत पर जाती हुई दिख रही है। कुछ देर बाद त्रिशा को उसका पति समर सिंह और 2 अन्य लोग सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। CCTV में सीढ़ियों पर त्रिशा को CPR देते हुए भी देखा जा सकता है। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में त्रिशा फांसी पर लटकी पाई गई थी। मायके वाले से दहेज मामले में हत्या बता रहे हैं, जबकि ससुराल वाले से सुसाइड करार दे रहे हैं। इस केस में कल पहली बार त्रिशा की सास रिटायर्ड जज गिरबाला ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने त्रिशा के परिवार के सभी आरोपों को नकारते हुए त्रिशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि त्रिशा मानसिक बीमारी की दवा लेती थी।
2: उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब भी इसने एमटीपी स्वच्छ अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन दैट इज दो तीन दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही, पॉसिबल है वो सब कुछ। बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ।
0: और इसी के विपरीत त्रिशा के पिता ने पति पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगाया। सुनिए।
3: समर्थ उसको थ्रेट करता था क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया था, उनकी मदर को, कि ही इज अंडर ड्रग। समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी ड्रग एडिक्ट की, और आज भी बहुत बड़े लेवल पर ड्रग कंज्यूम करते थे। तो उनकी मदर को मैंने बोला कि आप प्लीज चेक करिए अपने बेटे को, बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं वो, और इतनी ड्रग्स कर रहे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। लड़की शिकायत कर रही है कि ये इनको ध्यान नहीं रहता, ये उल्टी उल्टी करके अपने इनके जो पड़े रहते हैं ये, तो प्लीज चेक इट। तो उनको इस बात का बहुत बुरा लग गया, तो उस बात से उसको प्रताड़ित करने लगे बहुत बुरी तरीके से, और बोले लगे तेरे बाप के नाक रगड़वाऊंगा मैं। मैंने बोला कि अगर बेटे मेरा किसी बात से बुरा लग गया हो, बीइंग ए फादर ऑफ लड़की, मैं माफी मांग लेता। ये बात आई सामने के सामने, तो ये एक पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ये अपने बेटे का ड्रामा मेरी लड़की पर थोपा जा रहा है कि जो काम वो खुद करता है वो लड़की को थोप रहा है कि उसने ऐसा किया।
0: वहीं त्रिशा की मौत से पहले उसने मां से जो व्हाट्सएप चैट्स किए हैं उन्हें पढ़ने से साफ हो रहा है कि त्रिशा पर ऐसे आरोप लगाने की पहले से तैयारी थी। उसने लिखा है, इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूं इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। जैसे एक चैट में त्रिशा ने लिखा कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, ना रोने देंगे ये ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूं। एक और चैट में उसने ये लिखा है कि बहुत ज्यादा निर्दयी है मम्मी ये सब लोग, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है, बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते हैं, मेरा दम घुटता है यहां। एक और चैट है जिसमें लिखा है कि मुझे पूछ रहा है कि वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं, मैं अपने घटियापन, ये अपने घटियापन की हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, कैसे रह लूं उसके साथ, श्राप लगेगा इसे मेरा। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, चैट से ये साफ हो रहा है कि त्रिशा मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जो उसकी सराउंडिंग्स थी, जिस तरह से उसके ससुराल वाले उसके साथ बिहेव कर रहे थे। अब प्राथमिक जो एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवार वालों ने, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, उसमें कौन कौन से आरोपी हैं जो नामित हैं, और अब उसका पति क्यों फरार है? अगर सास इतनी सफाई दे रही है तो पति क्यों फरार है?
4: बिल्कुल, कल यही सवाल हमारा भी था गिरिबाला सिंह से, जब वो पत्रकारों से रूबरू हुई तो सवाल यही था कि आप खुद एक जज रह चुकी हैं, आप न्यायपालिका में रही हैं, वर्तमान में कंज्यूमर फोरम में आप जज हैं, तो बावजूद इसके न्यायपालिका पे आपको भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप ही का बेटा फरार है, क्या उसे पुलिस पर भरोसा नहीं, उसे कानून पर भरोसा नहीं है, या आपको कानून पर भरोसा नहीं? तो इसका उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। जहां तक बात एफआईआर की है, तो देखिए एफआईआर में दहेज प्रताड़ना का जिक्र है, एफआईआर में साफ तौर पे डाउरी डेथ इसे माना गया है, और दो आरोपी बनाए गए हैं, गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह। गिरिबाला के पति हैं वो 1999 में शहीद हो चुके हैं, और फिलहाल जो गिरिबाला हैं वो यहाँ अपने बेटे के साथ अकेले रहती हैं, और शादी जब हुई थी तो त्रिशा, उनके बेटे समर्थ और गिरिबाला सिंह, ये तीन लोग इस फ्लैट में रहते थे जहाँ पे ये हादसा हुआ है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो त्विशा है वो छत की ओर जा रही है और कुछ देर बाद तीन लोग जो है वो त्विशा को नीचे लेकर के आ रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, फिर उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में पुलिस जो है वो फिलहाल 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है समर्थ पर, जो कि फरार चल रहा है और उसकी तलाशी में कई टीमें पुलिस की बनाई गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर समर्थ सही है और एक जज का बेटा है तो फिर उसे न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए और उसे तुरंत या तो पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है और इसीलिए इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। त्विशा के वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए।
5: मैंने 7 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिकली बैंक खातों में, 5,25,000 समर्थ सिंह ने और 1,82,000 रुपए श्रीमती गिरिबाला सिंह ने अंतरित किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली लड़की के खाते में और 50,000 रुपए लड़की के भाई हर्षित शर्मा के खाते में उसकी शादी के अवसर पर। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मैं 2 लाख रुपयों के लिए उनको परेशान कर रहा था और FIR में मुझ पर इल्जाम है कि लड़की के पास हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पिता कहते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए। मेरा इस स्तर पर यह प्रश्न उठा रहा हूं कि 7.5 लाख रुपए 4.5 महीने के अंतराल में लड़की के खाते में गए, आखिरकार उसको इतने पैसे कहां खर्च करने पड़ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति उसको पैसों के लिए परेशान कर रहा था।
0: और बात यूपी की सियासत की करेंगे। यूपी में बकरीद से पहले नमाज पर जंग छिड़ गई है। बकरीद से पहले सड़क पर नमाज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया है। योगी ने साफ कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए दी जाने वाली उस दलील को खारिज किया कि मस्जिदों में जगह नहीं होती इसलिए सड़क पर नमाज पढ़ी जाती।
6: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
0: और योगी के इस बयान पर विपक्ष और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए।
7: कितनी नफरत भरी है, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी पिछड़ों के खिलाफ।
8: कह रहे हैं कि सड़क पर तमाशा नहीं होने देंगे।
7: हम लोग व्यवस्था के खिलाफ कभी भी नहीं है कि कोई व्यवस्था बिगड़े, लेकिन आप भाषा से व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं।
9: हम हमारे हिसाब से करें, क्या करेंगे? आप सबको मार डालेंगे, क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे, क्या करेंगे आप? या आप नहीं करते क्या ये कावड़ यात्रा निकालते? हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पर ट्रैफिक जाम कर लिए। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। अगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है ये।
10: जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं।
11: सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों के हजार एंट्री जोड़ के आके पढ़ते थे, नींद में तो भट हो जाती, अनुदान नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी का अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्य अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं।
0: और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बंगाल में धर्म के आधार पर चलने वाली सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। सीएम ने कहा है कि धर्म के आधार पर चलाई जा रही सभी वित्तीय सहायताओं और योजनाओं को पूरी तरह से बंद करने का फैसला महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा की बदलने वाला एक वैचारिक यूटर्न है। नई भाजपा सरकार का स्पष्ट रुख है, कल्याणकारी योजनाएं धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने कई लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है।
12: छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया चार नाम लेकर, बताओ चार नाम। हा सुनना चाहता है ना? एक बेलेघाटा का राजू नस्कर, अठरापो पार्टी। दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला, जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा।
0: वही बंगाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर स्थापित फुटबॉल टीम वाली मूर्ति को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। खेल मंत्री निशीत प्रमाणिक ने इसे भद्दा बताया। ममता बनर्जी के कार्यकाल के इस मूर्ति का अनावरण फीफा अंडर 17 विश्व कप के पहले 2017 में किया गया था। स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास स्थापित इस मूर्ति में फुटबॉल खेलते हुए विशालकाय पैर बिस्वा बांग्ला लोगों में विलीन होते हुए दिखाई देते हैं और फुटबॉल पर जॉय शब्द लिखा हुआ है। ममता की डिजाइन की गई इस मूर्ति पर बुलडोजर चलेगा। सॉल्ट लेक के बाहर ये मूर्ति हटाई जाएगी, इसे भद्दा बताया गया सरकार द्वारा और कहा गया है कि यही वजह है कि इस मूर्ति को अब हटाया जा रहा है। तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये देखिए स्वाभाविक तो है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस चीज को ममता ने बनाया उसे हम वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि ममता जिस तरीके से इस बार गई है चुनाव के बाद, उसके बाद एक और झटका देने की तैयारी इस माध्यम द्वारा।
13: जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे पहले ही कह दिया था कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन जो है वो पिछले सरकार के दौरान खूब हुआ था और उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी जाएगी। इसके अलावा भी हम इस तरीके के कदम उठाते हुए हम देख रहे हैं कि नीला और सफेद रंग जो कोलकाता पश्चिम बंगाल का ट्रेडमार्क रंग रहा है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो एक स्टैचू बनाया गया था अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान, ममता बनर्जी ने उस स्टैचू को डिजाइन किया था, उसे भी हटाने का फैसला किया गया है। निशित प्रमाणिक ने इसकी पुष्टि की है। तो ये स्वाभाविक है कि पिछले सरकार की तरफ से सरकार के जो जितने भी ट्रेडमार्क्स थे उन्हें हटाने की मुहिम में इस समय जुटे हैं यह नया सरकार, और साफ तौर पर कहा है कि लोगों के हित के लिए काम होगा, किसी परिवार के लिए, किसी की पार्टी के लिए काम नहीं होगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कोई भी शख्स हो, भाजपा के किसी के पक्ष में नहीं होगा। तो इसी को सामने रखते हुए आम लोगों के लिए ये सरकार काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, और इसी को दिखाते हुए एक के बाद एक नए कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। फिलहाल इस मूर्ति को हटाने की जो फैसला है वो ले लिया गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस मूर्ति को तोड़ा जाएगा और वहां से हटाकर वहां पश्चिम बंगाल सरकार का एम्ब्लेम को लगाया जाएगा।
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर से एक शूटर को गिरफ्तार किया है। इस केस में चौथी गिरफ्तारी है। राजकुमार सिंह नाम का ये शूटर भलिया का रहने वाला है। सीबीआई की टीम मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। आरोपी राजकुमार हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन तभी सीबीआई और यूपी पुलिस की टीम ने उसे नेशनल हाईवे 58 के टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। चंद्रकांत दत्त की 6 मई को मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 2 दिन बाद हुई थी।
14: एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो सीबीआई और हमारी छपार पुलिस के संयुक्त प्रयास से किया गया है। रहने वाला बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था और हरिद्वार छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में पकड़ा गया है। वहां बंगाल में जो घटना हुई थी पिछले दिनों में उसमें वांछित चल रहा था और आवश्यक बल लगाकर और उसे गिरफ्तार किया गया है वहां पर, और ट्रांजिट रिमांड बनाकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध जो है सीबीआई ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है।
0: तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, अब तो 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उनसे क्वेश्चनिंग हुई होगी, पूछताछ में क्या पता चला है, किसने करवाई ये हत्या, कौन है मास्टरमाइंड?
13: जी देखिए, किसने करवाई है हत्या इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि सीबीआई की ओर से नहीं की गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी पश्चिम बंगाल सरकार के, उनके तरफ से 3 गिरफ्तारी हो चुकी थी और ये राजकुमार सिंह जिन्हें गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा, उसे भी ट्रांजिट रिमांड में कोलकाता में ले आकर आज पेशी की जाएगी, उसे सीबीआई अपने हिरासत में लेगी। जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि राजकुमार सिंह इस पूरे अपराध को संगठित करने का एक अहम भूमिका निभाया था, उसे पुलिस ढूंढ रही थी और जब से ये 3 लोगों को पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था तब से ये छिपा फिर रहा था और वो फिराद में था कि वो दिल्ली भाग जाए और एक के बाद एक वो ठिकानों को बदल रहा था, लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है और सूत्रों के मुताबिक ये 3 जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे उनसे पूछताछ करके कुछ बयान उनका रिकॉर्ड किया गया, कई तत्व सामने आए हैं और इसे भी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है पूछताछ है वो किया गया है, लेकिन अपने हिरासत में लेकर इसे और भी ज्यादा पूछताछ किया जाएगा और आने वाले समय में 3 अपराधी जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया इनके सामने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ किया जाएगा ताकि ये बयानों को टैली किया जाए, लेकिन एक अहम भूमिका रहा है इस अपराध को संगठित करने के पीछे ये राजकुमार सिंह का एक अहम भूमिका रहा है, सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इतना पता चला है।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात नीट पेपर लीक मामले के इस पूरे मामले में लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां पूरे देश भर से हुई हैं, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे इस नेटवर्क में अब एक एक कड़ी जुड़ रही है।
15: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
16: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
15: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
17: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब विवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
15: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात उस शपथ की करेंगे जो गृहमंत्री अमित शाह ने ली थी और उसे पूरा भी कर दिया है। वो सौगंध थी नक्सल मुक्त भारत की। गृहमंत्री अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज वो सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सीना तान कर कह सकते हैं कि भारत अब नक्सल मुक्त भारत है।
18: आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा सपना था जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
0: गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर जितेंद्र बहादुर सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
19: नक्सल मुक्त भारत घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बस्तर का पहला बड़ा दौरा है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर जन प्रशिक्षण केंद्र जो है उसमें यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोकल उत्पाद हैं उनको किस तरीके से डेवलप करना है और किस तरीके से इसके लिए काम करना है, गृह मंत्री अमित शाह जो है ये तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जनसेवा केंद्र जो कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं वहां पर इसी तरीके से खोला जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह तस्वीरों में यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि लोगों से संवाद कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से विकास के कार्यों को यहां पर किया जाना है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहां छत्तीसगढ़ के लोग जो फॉक डांस कर रहे हैं इनके बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और ये खास तरीके की तस्वीरें इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका, कभी ये कहा जाता था कि नक्सल प्रभावित पूरी तरीके से रहा है लेकिन अब यहाँ से नक्सलियों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया है। भारत जब से नक्सल मुक्त हुआ है वैसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इन तमाम इलाकों का दौरा करके जो यहाँ के गांव के आसपास के लोग हैं उनके लिए खास तरीके की व्यवस्थाएं भी उनके द्वारा दी जा रही हैं। इस तरीके के प्रशिक्षण केंद्र जो हैं वो खोले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं हैं वो देख रही हैं प्रशिक्षण केंद्र के अंदर से कि यहाँ जो आम चीजें हैं जैसे पशु आहार, मुर्गी आहार, मछली पालन के लिए बायो कंपोस्ट और ये तमाम चीजें जो बनाई गई हैं उसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप इमली प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर जो बनाई गई है तस्वीरों में देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया और इसका सीधा मकसद यह है कि तमाम जो इलाके हैं खासतौर से जो बस्तर में साउथ बस्तर के इलाके हैं बीजापुर के साथ साथ सुकमा, नारायणपुर, इन तमाम इलाकों में जो लोकेशन है जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है उसमें इस तरीके के कौशल केंद्र खोले जाएं और इसके लिए बड़े कदम बढ़ाए जाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने इन तमाम कौशल केंद्रों का उद्घाटन किया और जन सुविधा उनके दरवाजे तक पहुंचे इसके लिए बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बढ़ाया गया। नेतानार से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह आज तक।
0: और प्रधानमंत्री के अब नॉर्वे दौरे की बात करेंगे। कल वहां उन्हें नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहरस्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कहा कि केवल सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती।
20: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का के समर्थन करते हैं।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।

तर फिर बड़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे, डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा, कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियों के बीच ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुके अटैक, लेकिन सेना आक्रमण के लिए तैयार, ईरान की दो टूक, बात करने का मतलब सरेंडर नहीं। स्वीडन के बाद नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम, आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, शाम को इटली के लिए होंगे रवाना।

साल में 50 साल के नुकसान की होगी भरपाई। भोपाल के ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीपीआर देते दिखे घर वाले। केस दर्ज होने के बाद फरार पति समर्थ की तलाश तेज। साढ़े नौ बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। पश्चिम एशिया का संकट अब भारत पर नजर आने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। इस बार पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98.64 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंची। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए, डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए बढ़ाए थे। इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम नारायण सिंह सैनी ने साइकिल से किया सफर। स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का दिया संदेश। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में साइकिल से पहुंचे मंत्री, दिया फिटनेस और पर्यावरण का संदेश। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं। गुजरात के बनासकांठा में पिछले एक सप्ताह से पेट्रोल डीजल की कमी के कारण किसानों और वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। राजस्थान के पाली में पेट्रोल पंप द्वारा ड्रम में डीजल नहीं देने पर ग्राहकों ने जमकर मारपीट की, पेट्रोल की हो रही किल्लत। मनीष सिसोदिया ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर कहा, तेल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, रुपया गिर गया, लेकिन एक भी क्षेत्र में मोदी जी कौशल नहीं दिखा पा रहे। भवानीपुर में गर्जे शुभेंदु अधिकारी, घुसपैठियों को अब देश से बाहर भेजने का समय आ गया है, मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी पर सबक सिखाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी, अब समय आ गया है डिपोर्ट करने का। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आरजी कार हत्याकांड के असली दोषी को मिले कड़ी सजा, सच को दबाया नहीं जा सकता। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी सरकार पर हमला, बहन अभया को न्याय मिले, शुभेंदु ने सोशल मीडिया पोस्ट से उठाई मांग। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सभी धार्मिक भत्ते बंद करने का ऐलान किया। अब छात्रों को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाउड स्पीकर पर बोली बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का, लाउड स्पीकर किसी धर्म का मुद्दा नहीं, ये केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले पुलिस को बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी राजकुमार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर मामले में 4 की गिरफ्तारी, कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया। अभिषेक बैनर्जी ने साइबर थाने में दर्ज की एफआईआर को दी चुनौती, कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर 21 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर राजनीतिक हलचल तेज। हलता में पुनर्मतदान में जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को दी राहत। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पेशी के दौरान परिवार से मिलकर हुए भावुक। प्रधानमंत्री मोदी आज नौवे से इटली के लिए रवाना होंगे, विदेशी दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत नौवे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, पिछले 12 वर्षों में भारत का आर्थिक डीएनए पूरी तरह से बदल गया है। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा की बेहद खास, ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर बनी सहमति। नॉर्वे के दिग्गज सीईओ से पीएम की मुलाकात, भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर में मजबूत साझेदारी बढ़ाने पर मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ पीएम का विदेशी दौरा कल तक जारी रहेगा, अब इटली दौरे पर दुनिया की नजर। यूपी में सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी, कहा सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को सख्त संदेश, कहा अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो प्रशासन दूसरा तरीका अपनाएगा। सीएम योगी ने कहा सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ओबीसी आयोग के गठन को दी मंजूरी, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। पासपोर्ट केस में रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ी, क्राइम ब्रांच ने समन भेजा। एसपी अध्यक्ष सीबीएसई 12वीं ने के परिणामों पर उन्होंने उठाए सवाल, ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए।
आज से राहुल गांधी दो दिवसीय रायबरेली दौरे पर, लालगंज महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन, बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बस्तर में बोले गृहमंत्री अमित शाह, 31 मार्च के बाद बस्तर में आजादी का सूर्योदय, भारत में खत्म हो चुका है नक्सलवाद, अब नए अध्याय की शुरुआत। यूपीएससी एग्जाम में बड़ा बदलाव, अब प्रीलिम्स के तुरंत बाद आएगी आंसर की। लातूर नीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिन की पुलिस हिरासत भेजा, पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10। पेपर लीक मामले में संजय समिति सख्त, एनटीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया। आगरा में आज सभी स्कूल बंद, भीषण गर्मी और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जारी आदेश। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में हीट वेव की स्थिति जारी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले हफ्ते में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की आईएमडी की चेतावनी। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप तेज, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की चेतावनी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री पार जाने की आशंका। सिकंदराबाद में बीजेपी के नगर पालिका के चेयरमैन का बयान हो रहा है वायरल, टीएमसी सांसद पर सिर काटने पर 1 करोड़ के इनाम की घोषणा। विवादित बयान पर बीजेपी नेता ने कहा, वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, छवि खराब करने की कोशिश है। द्वारका में कार में आग लगने से पिता और बेटी की मौके पर मौत, मां घायल। ग्रेटर नोएडा में लिप गैंग का भंडाफोड़, राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को लूटने वाले 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बलिया में एक मेडिकल स्टोर की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। प्रयागराज के सिविल लाइन्स में होटल में लगी भीषण आग, ट्रांसफॉर्मर में धमाके के बाद लपटों से मचा हड़कंप। इंदौर में धू धू कर जला टेंट हाउस का गोदाम, दूर तक छाया धुएं का गुबार, अफरा तफरी का माहौल। एमपी के ग्वालियर में फोम और कबाड़ गोदाम में भयंकर आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पटना के किराना गोदाम में लगी आग, 4 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग, लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 14 महीने पहले हुई शादी की दर्दनाक घटना में तब्दील, विवाहिता ने छत से कूदकर दी जान, परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा, गलत लेन से ले जाकर ट्रक ने टकराई मैजिक से, मौके पर 10 की मौत, 4 की हालत गंभीर। लखीमपुर सड़क हादसे में सीएम योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। सोनीपत में दो पक्षों के बीच मामली बात को लेकर विवाद, कुछ युवकों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा। अलवर में दिन दहाड़े कुरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसे बदमाश ने की लूटपाट, चाकू की नोक पर महिला और मासूम को बनाया बंधा। अमृतसर पुलिस की ड्रग तस्करों के बड़े गिरोह के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, मौके से 7 पिस्टल, 2 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी तस्करों से जुड़े तार। महाराष्ट्र के वाशिम में दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 20 लाख की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास फायरिंग, अवैध कारोबार को लेकर, 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, गैंग वॉर से इलाके में दहशत। नागपुर में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, अमरावती में दफन युवती का शव दोबारा निकाल गया, गला दबाकर हत्या की आशंका। गुजरात की गिर सोमनाथ में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से पिता पुत्र की मौत, मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, युवती समेत 5 गिरफ्तार, 7 से अधिक लोगों को बनाया शिकार। आईपीएल के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए, हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की, 47 गेंदें बनाए, 2,070 रन, 7 चौके, 6 छक्के शामिल। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल प्लेऑफ की रेस में राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें बरकरार, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही बाहर होने के बाद अब सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार टाइटल ट्रैक आउट, गाने में दिखी सितारों की भीड़, 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। स्पोर्ट्स ड्रामा पेडी का ट्रेलर लॉन्च, क्रिकेट से पहले पहलवानी तक में रामचरण बने महारथी, एक्ट्रेस जानवी कपूर ने किया कमाल। कॉमेडी और मेलोड्रामा भरपूर, रजनी की बारात का ट्रेलर जारी, उल्का गुप्ता की नई अंदाज में वापसी, 29 मई को फिल्म होगी रिलीज। कन्नड़ एक्शन ड्रामा बेल का टीजर आउट, शिव राजकुमार का दमदार लुक जारी, स्वैग और स्टाइल जीत रहा है फैंस का दिल। सिंगर हनी सिंह के नए सॉन्ग जवानी राखी का फर्स्ट लुक आउट, पूरा गाना 6 जून को हनी सिंह के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई आम की 14 किस्में।
पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर, आम्रपल्ली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबारी, जमादार, काला जमादार, हापुस और तोतापरी शामिल। ग्राफ्टिंग तकनीक से वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके 14 किस्मों का आम एक ही पेड़ पर उगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज में युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। रजौरी बैरी विकास बिहार नए पुल से ब्लॉक सैरी और ब्लॉक लामबेरी के बीच बेहतर संपर्क। दुनिया के

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद
6: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba.

0: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे।
1: चलाई गई है।
0: ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है?
2: जा रही है।
0: भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कारपूलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में। ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे, लेकिन

एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुके अटैक, लेकिन सेना आक्रमण के लिए तैयार। ईरान की दो टूक बात करने का मतलब सरेंडर नहीं। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम को इटली के लिए होंगे रवाना। ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर में कहा, अभिषेक बैनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत 4 लोगों की जांच होगी, लूटने वाले नहीं बचेंगे। भोपाल के ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीपीआर देते दिखे घरवाले। केस दर्ज होने के बाद फरार पति समर्थ की तलाश तेज।

नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आज तक के खास कार्यक्रम आज सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, इस वक्त जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक नाबालिग लड़के का जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। 17 साल का लड़का रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था और परिवार वालों का आरोप है कि जबरन उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया है। वहीं कश्मीर की एक मस्जिद की ओर से जारी घोषणा पत्र में किशोर के इच्छा से इस्लाम स्वीकार करने का दावा किया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है और स्थानीय हिंदू संगठनों ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बिजनौर जिले के रावली रोड इलाके का एक किशोर कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा गया था और परिजनों के मुताबिक अचानक एक अज्ञात नंबर से उनके पास कॉल और वीडियो मैसेज आया। वीडियो में किशोर को इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। किशोर के चाचा ने बताया कि जिस नंबर से कॉल आई उस व्यक्ति ने कहा कि अब लड़के को भूल जाओ क्योंकि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है।

0: तो चलिए आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखाती हैं जो इस मामले को बयां करती है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कुपवाड़ा से, जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। ये वो वीडियो आपको जो दिखा रहे हैं जहां धर्म परिवर्तन कथित तौर पर किया गया है, उसकी ये तस्वीर सामने आई थी। और दूसरा वीडियो हम आपके लिए बिजनौर से लेकर आ रहे हैं, जो परिवार वाले हैं जो दुखी हैं, चिंतित हैं अपने बेटे को लेकर कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है।
1: तो ऐसा ना होना चाहिए कि आप अपनी रजा और खुशी से किसी किस्म का आप पर दबाव है जो यहाँ जामे मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं। अगर इसमें किसी ने आप पे दबाव डाला है
2: लाने
1: का या कुछ लालच दिए चलो हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी से रजा से ईमान लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान में भी फरमाया, आप पहले ही पारे में जब यहाँ मदरसे में नज़दीक ही पढ़ोगे, भला मन असलमा वजहु लिल्लाह वह मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी कायनात को देख के मेरी कुदरत को देख के ईमान लाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके लिए किसी किस्म का दुनिया में न कोई खौफ होगा न आखिरत में कोई डर होगा।
3: बताओ
1: पर किसी ने
4: जबरदस्ती से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
3: अभी दूसरा नहीं
2: सीखा।
3: अशहदु अल्ला इलाहा तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमे में पढ़ा तो तर्जुमे ही बता दो।
1: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके साथ कोई भी शरीक नहीं। لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर कोई भी इबादत के लायक नहीं।
0: और आइए अब सुन लेते हैं कि इस मसले पर परिवार के लोग और पुलिस क्या कह रहे हैं।
5: वसीम अहमद काजी वाले से हमारे भाई को लेके गया, ठीक है काम के लिए, लेकिन वहाँ पे ले जाके उन्होंने जबरदस्ती उसको इस्लाम कबूल कराया। और यहाँ पे हम एसपी के पास आए हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने। और
6: क्या चाहते हैं पुलिस से?
5: हमें वो मालूम नहीं।
7: कुछ साल पहले काजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
0: और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अशरफ वानी जो कि श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, और साथ में आशीष श्रीवास्तव लखनऊ से। अशरफ पहले आपके पास आते हैं। इस पूरे मामले में मेरे लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि लड़का 17 साल का है, शायद 13 साल की उम्र में वो वहां चला गया, क्योंकि वो कह रहा है 4 साल से मैं कलमा पढ़ रहा था, मुझे इस बारे में मालूम है, मैंने पढ़ाई की है। तो नाबालिग बच्चा होने की वजह से चिंता बहुत ज्यादा है।
8: अंजलि, अगर हम कश्मीर की बात करें तो और बिजनौर जिले की बात करें, यहाँ पर जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो बिजनौर के बहुत सारे लोग कश्मीर में काम करने आते थे, और खासतौर से अगर हम कहें तो यहाँ पर जो सैलून का बिजनेस है, जो नाई के काम करते हैं, जगह जगह गांव गांव और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में, यहाँ तक कि अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, वहां पर ये पूरी तरह से जो है बिजनौर के लोगों का वर्चस्व है, खासतौर से सैलून दुकानों को लेकर। तो माना जा रहा है कि शायद ये पहले किसी सैलून मालिक जो कि मुस्लिम था उसके पास काम करने आया था और जो प्रैक्टिसेस कर रहा था इसका मालिक उसी हिसाब से ये भी उसको फॉलो कर रहा था और मस्जिदों में जाता था। जो यहाँ पर लोगों से बातें सामने आ रही है और जो क्योंकि बिजनौर के बहुत सारे लोग जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर काम करते हैं कश्मीर में, न सिर्फ पिछले कुछ सालों से बल्कि जब आतंकवाद भी कश्मीर में था, तो उस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक खुलासा उसका नहीं हुआ है। लेकिन यदि यूपी पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच करने के लिए कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा। इससे पहले भी पिछले साल एक मामला ऐसा ही सामने आया था, यूपी का एक युवक जो है श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में जो है उसने इस्लाम कबूल किया था, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। यहां तक कि वक्फ बोर्ड जो देखरेख करता है यहाँ की दरगाहों और मस्जिदों की, उन्होंने उस इमाम के खिलाफ कार्रवाई।
0: अशरफ आप हमारे साथ बने रहेंगे, आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, तो जैसा कि अशरफ कह रहे हैं ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो पुलिस इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई करती आई और इस बच्चे के बारे में भी क्या हो रहा है?
2: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि ये जो धर्मांतरण है इसका एक नया ये प्रारूप है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वीडियो जारी किया गया है और साफ ये कहा गया है कि वो मर्जी से कर रहा है, इस पैटर्न को अपनाया गया है कि जिससे कि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से इसमें बाधित ना हो पाए, और यही वजह है कि इसको माना गया है कि इस नाबालिग का।
0: सवाल ये भी उठता है कि 17 साल के बच्चे की क्या मर्जी होती है? 17 साल का बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता इस देश में, तो धर्म परिवर्तन की मर्जी है उसकी?
2: बिल्कुल, देखिए बिल्कुल धर्म परिवर्तन की मर्जी नहीं है और यही परिवार वालों का भी कहना है, और कहीं ना कहीं नाबालिग होने के नाते पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब एक टीम सेटअप करके इस पूरी कार्रवाई भी आगे की जा रही है। जिस तरीके से वो एक सिर्फ रोजगार करने के लिए कश्मीर जाता है और उस रोजगार की तलाश में, क्योंकि पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस वजह से वो जाता है, लेकिन वहां पर जाकर अगर धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं ये फोर्सफुली उसके परिवार का कहना है और अन्य जो सामाजिक लोग हैं कि फोर्सफुली कराया गया। अब उसको रेस्क्यू कराने की बात कही जा रही है कि उस लड़के को रेस्क्यू कराया जाएगा, पुलिस की टीम बनाई गई है और इस पूरे मामले पर चूंकि जिस पैटर्न को अपनाया गया है वो पैटर्न कहीं ना कहीं इस लड़के को जो कि नाबालिग है 17 वर्ष का है उसको लेकर ये पूरी कहानी शुरू गई। और कितने ऐसे लड़के हैं जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से ऐसे काम के लिए बाहर गए हैं और जहां पर उनका धर्मांतर जैसी परिस्थिति सामने आई है।
0: जी आशीष, तो
2: काफी संगीन अपराध भी,
0: बिल्कुल संगीन मामला है। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो इस पर जांच जरूरी हो जाती है क्योंकि बच्चा नाबालिग है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ता जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी क्योंकि सड़कें आवागमन के लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है, इसलिए लोग शिफ्ट में या अपने धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ें। बातचीत से न मानने वालों के खिलाफ सरकार दूसरे कड़े तरीके अपनाएगी, इस तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जाहिर तौर पर विपक्ष अब हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस बयान को नफरत भरा बता दिया है।
9: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत
10: कितनी नफरत भरी है, कभी मुसलमानों के खिलाफ कभी पिछड़ों के खिलाफ।
11: कह रहे हैं कि सड़क पर तमाशा नहीं होने देंगे।
10: हम लोग व्यवस्था के खिलाफ कभी भी नहीं है कि कोई व्यवस्था बिगड़े, लेकिन आप भाषा से व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं।
12: हम हमारे हिसाब से करें, क्या करेंगे, आप सबको मार डालेंगे, क्या करेंगे, सबको गोली मार देंगे, क्या करेंगे आप? यहाँ आप नहीं करते क्या, ये कावड़ यात्रा निकालते? हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पर ट्रैफिक जाम कर लिए। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। अगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है ये।
0: और इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और एक और बड़ा फैसला लिया गया है। चिकन नेक जो इलाका कहलाता है उसकी 120 एकड़ जमीन केंद्र को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अब केंद्र सरकार को। साथ ही 7 नेशनल हाईवे स्ट्रेच केंद्र को ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला लिया गया है। हस्तांतरण की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर पहले ही शुरू हो चुकी है। ये जमीन भारत के सबसे खतरनाक 22 किलोमीटर के चेक पॉइंट के भीतर स्थित है, जो पूरे पूर्वोत्तर की जीवन रेखा मानी जाती है। एक तरफ बांग्लादेश की सीमा है, दूसरी तरफ नेपाल और भूटान का दबाव है। चीन ऊपर से इस पर नजर रखता है, इसीलिए यहां संकीर्ण जगह होने की वजह से इसे चिकन नेक कहा जाता है। शुभेंदु सरकार का यह कदम पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार दावा कर रही है कि यह ऐसे उठाया जा रहा है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र। अनुपम, अपने इस फैसले के लिए क्या दावा कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार, वो इसे कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं?
13: देखिए, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी पहले से कह रही थी कि बहुत सारी जमीनें जो बीएसएफ को पहले ही दे देनी चाहिए थी वो राज्य सरकार जानबूझकर रोक के रखी थी, नहीं दे रही थी। तो ऐसे में जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने जो जमीन हस्तांतरण है उसका काम शुरू कर दिया है। और जो जमीनें बॉर्डर इलाके में है, खासतौर पर जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटी हुई जमीनें हैं, जो बाकी रह गई थी, जो जमीन का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था, जहां पर काजेदार नहीं बन पा रहे थे, इसके अलावा नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा जो चिकन लेक के अंतर्गत आता है, ये सभी जमीनें देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट दे दी गई है। अब इस पर किस तरह से केंद्र सरकार काम करती है, बीएसएफ काम करती है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी जगहों पर जो बाढ़ है, कांटा है, कांटा तार है, वो लगाने की बात है। इसके अलावा नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है वो चिकन नेक के पास पड़ता है, उसे भी राज्य सरकार ने बहुत दिनों से रोक के रखा था, उसे भी अब केंद्र सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सौंप दिया गया है।
0: जी, तो सीमा को सशक्त करना ये बताया जा रहा है कारण। आप हमारे साथ बने रहे अनुपम, आपके पास थोड़ी देर में लौट कर आएंगे। बात अभी भी चल रही है पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार का एक्शन जारी है। बंगाल में धर्म के आधार पर चलने वाली सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में कथित तौर पर भ्रष्ट नेताओं पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 4 लोगों के संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है, जिसमें राजू नास्कर, सोना पप्पू, अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी विधायक जावेद खान का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा इनकी संपत्ति के सोर्स का पता लगाया जाएगा और कानूनी जांच की जाएगी।
14: छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर। बताओ 4 नाम। हाँ, सुनना चाहता है ना? एक बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी। दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा।
0: तो एक एक कर फैसलों की झड़ी लगा दी गई है बंगाल सरकार की तरफ से। एक और बड़ा फैसला लिया गया है, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर स्थापित फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को सरकार ने अब हटाने का फैसला कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये है कि खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने इसे भद्दा बता दिया है। ममता बैनर्जी के कार्यकाल में इस मूर्ति का अनावरण फीफा अंडर 17 विश्व कप से पहले 2017 में किया गया था। स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास स्थापित इस मूर्ति में फुटबॉल खेलते हुए विशालकाय पैर बिस्वा बंगला लोगों में विलीन होते हुए दिखाई देते हैं और फुटबॉल पर जोई शब्द लिखा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस मूर्ति की। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का, जानने की कोशिश करते हैं क्या है। अनुपम, सवाल यह है क्या ये सिर्फ मूर्ति के भद्दा होने की वजह से यह फैसला लिया गया, जैसा कि वो मानते हैं कि यह भद्दी है, या इसका प्रतीकात्मक तौर पर अगर आप देखें तो कुछ गहरा मतलब भी है?
13: जी देखिए, बीजेपी सरकार के आते ही ताबड़तोड़ बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें से कुछ फैसले तो ऐसे हैं जहां पर जो पिछली सरकार पर आरोप था कि वो नहीं काम कर रही है उसके रिलेटेड फैसले हैं। लेकिन ये जो सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर वाला स्टैच्यू है, ये अब जो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया है, खासतौर पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी ओर से, कि ये भद्दा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। तो आधिकारिक तौर पर तो इस स्टैचू को देखने में भद्दा बताया जा रहा है और इसे तोड़ने की वजह, इसे गिराने की वजह यही बताई जा रही है फिलहाल। तो ऐसे में अभी अगर एक दो और इस तरह की स्थितियां या फैसले आते हैं तब ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये एक तरह से टीएमसी सरकार की जो कार्रवाई थी पिछले दिनों में उनके जो प्रतीक थे उनको समूचा खत्म करने की कोशिश है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये एक फैसला है जहां पर इस जो स्टैचू है इसको भद्दा बताया गया है।
0: जी शुक्रिया अनुपम। तो जाहिर तौर पर ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि ममता बैनर्जी का डिजाइन था, उन्हीं के दिमाग की उपज थी ये। और अब बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक शूटर को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आ रही है कि इस केस में ये चौथी गिरफ्तारी है। राजकुमार सिंह नाम का ये शूटर बलिया का रहने वाला है। सीबीआई की टीम मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही थी। आरोपी राजकुमार हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन तभी सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 58 के टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया उसे। चंद्रकांत रथ की 6 मई को मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 2 दिन बाद हुई थी।
15: एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो सीबीआई और हमारी छपार पुलिस के संयुक्त प्रयास से किया गया है। रहने वाला बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था और हरिद्वार छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में पकड़ा गया है। वहां बंगाल में जो घटना हुई थी पिछले दिनों में उसमें वांछित चल रहा था और आवश्यक बल लगाकर और उसे गिरफ्तार किया गया है वहां पर और ट्रांजिट रिमांड बनाकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध जो है सीबीआई ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और लाएंगे आपके लिए देश और दुनिया की खबरें। देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
17: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
18: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
19: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
20: So they were disallowed from speaking their language.
19: In-depth conversations with A-list celebrities.
21: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
19: True crime podcasts you just can't stop listening to.
22: Others escape justice to live and die in infamy. These
19: plus the news and sports content you crave in podcast form.
23: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
19: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
24: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
25: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
14: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: Like I said before, we better own the sins.
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कच्चे तेल के लगातार बढ़ती कीमतों का है असर। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रुके अटैक, लेकिन सेना आक्रमण के लिए तैयार। ईरान की दो टूक, बात करने का मतलब सरेंडर नहीं। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, शाम को इटली के लिए होंगे रवाना। ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर में कहा अभिषेक बैनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत 4 लोगों की जांच होगी, लूटने वाले नहीं बचेंगे। भोपाल के ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सीपीआर देते दिखे घरवाले। केस दर्ज होने के बाद फरार पति समर्थ की तलाश तेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बिजनौर के नाबालिग के जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन वाले मामले में अब कुपवाड़ा में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। सूत्रों ने बताया है कि युवक का कहना है कि उसने बिना किसी दबाव के या जोर जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। उसकी उम्र की भी तस्दीक की जा रही है क्योंकि परिवार वालों ने उसके नाबालिग होने का दावा किया है। तो आपको बता देते हैं मामला दरअसल क्या है। एक कथित तौर पर 17 साल का युवक जो बिजनौर से आया काम सीखने के लिए, करीब 4 साल से वो इस इलाके में कुपवाड़ा में रह रहा था, उसका अचानक एक वीडियो उसके परिवार वालों तक पहुंचा जिसमें उसने इस्लाम कबूल करने की बात कही। एक फोन कॉल भी परिवार वालों के पास आया जिसमें कहा गया कि युवक ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और अब उसे भूल जाया जाए। ऐसे में ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं श्रीनगर से हमारे सहयोगी अशरफ वानी। अशरफ, क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसकी डिटेल्स हैं हमारे पास?
3: अंजलि, बिल्कुल, जो पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि कुपवाड़ा जिले का ये मामला है और कुपवाड़ा जिले में ही ये पूरा मामला सामने आया था। वहां पर जो है पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है और जांच के लिए टीम भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गठित की गई है जो ये पता लगाएगी कि क्या किसी तरह का दबाव इस युवक पर, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, उस पर पड़ा था, और ये भी देखा जा रहा है कि वो किसके पास काम कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अंजलि कि कश्मीर में ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, सबसे बड़ी दरगाह हजरतबल में भी इसी तरह जो है एक युवक ने जो है ओपन में इस्लाम कबूल किया था हजारों की तादाद की भीड़ में। तब उसके बाद जो है उस मस्जिद के इमाम पर यहाँ के वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई की थी, उनको हटाया गया था पद से जांच पूरी होने तक, लेकिन फिलहाल उनको उस पद से हटाया गया था। अब यहाँ पर भी कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि पता लगाया जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या फोर्स जो है धर्म परिवर्तन है या फिर जो युवक है उसने अपनी मर्जी से ये किया है और वीडियो क्यों बनाया गया, किसने ये वीडियो बनाया, इस सब को लेकर जो है पुलिस की तरफ से कुपवाड़ा में जांच हो रही है।
0: जी अशरफ, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिजनौर के युवक के जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक्शन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी पुलिस की एक टीम, कहा जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर जा सकती है। कुपवाड़ा का ये मामला है तो पुलिस कुपवाड़ा तक जा सकती है और कुपवाड़ा की पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, ये पता चल गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये लड़का नाबालिग है जैसा कि इसके परिवार का दावा है।
4: तो ऐसा ना होना चाहिए कि आप अपनी रजा और खुशी से किसी किस्म का आप पर दबाव है जो यहाँ जामे मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं। अगर इसमें किसी ने आप पे दबाव डाला है
5: लाने
4: का या कुछ ला लीजिए चलो हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी से रजा से ईमान लाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान में भी फरमाया, आप पहले ही पारे में जब यहाँ मदरसे में नज़दीक है पढ़ोगे, भला मन असलमा वजहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी कायनात को देख के मेरी कुदरत को देख के ईमान लाएगा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके लिए किसी किस्म का दुनिया में न कोई खौफ होगा न आखिरत में कोई डर होगा।
6: कुछ साल पहले कादीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
0: और आइए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पुलिस अब जाएगी कुपवाड़ा?
7: हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए पुलिस कुपवाड़ा के लिए अब जाएगी, टीम सेटअप कर दी गई है और वहां पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात है पुलिस को जांच में ये भी मिला है कि मरकजी जामिया मस्जिद ने ये वीडियो जो जारी किया था वो घर वालों से कहा है कि अब उस लड़के को भूल जाओ, अब वो इस्लाम कबूल कर चुका है। यानी पूरी साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर उसने मर्जी से किया था तो वीडियो जारी करके घर पर धमकाने वाली बात भी सामने आई है। यानी कि ये पूरी तरीके से जब वो काम करने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर जाता है तो वहां पर साजिशन उसको इस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है। पुलिस को शुरुआती जांच में इस तरीके के संकेत मिले हैं और अब पुलिस टीम बनाकर कश्मीर की तरफ रवाना हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में उसकी नाबालिग एज दर्ज है उसके बावजूद कैसे उसको इतने लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया, पुलिस के सामने ये भी जांच का
0: विषय है। आशीष सबसे बड़ी बात, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ये तय हो गया है कि कुपवाड़ा पुलिस जाएगी, माफ कीजिएगा, बिजनौर की पुलिस जाएगी कुपवाड़ा, मुझे माफ कीजिएगा। और अब हम खबरें लेकर आते हैं मध्य एशिया के यूथ से, जहां ये स्पेशल सेगमेंट आपके लिए ला रहे हैं कि युद्ध रुका है पर खत्म नहीं हुआ है।

0: और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि परमाणु हथियार का लक्ष्य उसे हर हाल में छोड़ देना चाहिए। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है, बताया गया है कि ईरान जल्द से जल्द लड़ाई का अंत चाहता है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है। उधर ईरान ने 14 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, तो अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठी है। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर होने वाला हमला फिलहाल रोका गया है, लेकिन सेना अलर्ट मोड में है और किसी भी क्षण हमले के लिए तैयार है।
1: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी फिर शुरू होने वाला है, महायुद्ध। अमेरिकी फौज तैयार, कभी भी शुरू हो सकता है महाविनाश। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की ओर से अंतिम प्रस्ताव का इंतजार है। खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल रोक रखा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने अनुरोध किया कि ईरान से गंभीर वार्ता चल रही है, उनके विचार में जल्द समझौता हो जाएगा जो अमेरिका के साथ ही मध्य पूर्व और अन्य देशों को स्वीकार्य होगा। मैंने निर्देश दिया है कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षण बड़े हमले के लिए सेना तैयार रहे। ट्रंप की धमकियों और समझौते को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि संवाद का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान अपनी गरिमा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वार्ता में शामिल है, किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल फिर से व्यापक सैन्य तैयारियों में जुटे हैं। अमेरिका यदि ईरान पर हमला करता है तो इस बार सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचों और यूरेनियम के संभावित भंडार को टारगेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: भले ही ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील की शर्तों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी भी दे दी है। चेतावनी में यही कहा है कि पीस डील की शर्तों पर अगर ईरान राजी नहीं हुआ तो हमला तय है। वहीं ईरान ने ऐलान किया है कि उनके सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक हमला करेगा। मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है।

0: पहले अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों की इसराइल के टॉप सैन्य कमांडरों के साथ ईरान को लेकर मीटिंग हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की तैयारी को लेकर नेतन्याहू से बातचीत की है। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद नेतन्याहू ने यरूशलम में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ सुरक्षा बैठक बुलाई। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए अपने बारूदी इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, उन्हें बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वक्त बेहद अहम है। ट्रंप की इस चेतावनी को ईरान पर हमले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की धमकी से पहले अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे हमले से पहले का रिहर्सल मान रहे हैं। तो ईरान उकसावे वाली कार्रवाई। हमले की आशंका को देखते हुए ईरानी सेना ने यूएई के बराका परमाणु ठिकाने के साथ साथ सऊदी अरब पर ड्रोन से हमला किया है। यूएई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमले में परमाणु सेंटर की बाउंड्री के करीब एक जनरेटर को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही कोई रेडियो धर्मी रिसाव हुआ। यूएई के एटमी सेंटर पर हुए हमले की निंदा मिडिल ईस्ट के सभी मुल्कों ने की है, लेकिन ये हमले ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी है। अगर फिर युद्ध शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट के मुल्क ईरान की हिट लिस्ट पर होंगे। अगर युद्ध छिड़ता है तो उसकी सशस्त्र सेनाएं दुश्मन के लिए नए आश्चर्य लेकर आएंगी। ईरान अपने विरोधियों को जवाब देना बखूबी जानता है। अमेरिका ने यह सीख लिया है कि धमकियां और आर्थिक दबाव ईरान को अपने अधिकारों का पालन करने से नहीं रोक सकते। दरअसल ईरान ने यूएई के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। ईरान का आरोप है कि युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, यहां तक कि यूएई ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए थे। ऐसे में यूएई के परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। यूएई ने भी ईरान पर पलटवार के संकेत दिए हैं। मतलब यही है कि महायुद्ध का सायरन बजने लगा है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का दावा है कि अगली बार ईरान के तेल ठिकानों पर हमले तय हैं, यानी खाद द्वीप पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता। ईरान की ऊर्जा व्यवस्था उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो मैं ऊर्जा ढांचे को सबसे ऊपर रखूंगा। ईरान समय निकालने और खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की टीम भी मानती है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अड़ा हुआ है, लिहाजा अब पीस डील की संभावना कम बची है। दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं। ईरान के इरादों को देखते हुए ट्रंप एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। संभव है कि इस बार हमले ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ तेल और गैस के अड्डों पर हों।
1: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We had the other day there was a man that tried to get into the chute. You know, we saw there was a door that was blown to smithereens, and we know everything that's happening. If they ever moved on, and I told them that if they have send a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs, and that's going to be the end of that. They won't do it. I said we have 9 cameras on that site, on those 3 sites, 24 hours a day. We know exactly what's happening.
0: ईरान ने भी अमेरिका के साथ दो दो हाथ की पूरी तैयारी कर रखी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटाई गई, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि घेराबंदी खत्म कर दें, इससे पहले कि ओमान सागर उनकी कब्रगाह बन जाए। जितनी लंबी ये नौसैनिक नाकेबंदी चलेगी, दुनिया के देशों को उतना ज्यादा नुकसान होगा। अब अमेरिका को व्यवहार से साबित करना होगा कि वो भरोसेमंद है। हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे बैठी है और साथ ही कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको दिखाते हैं कैसे ईरान के साथ सीज फायर के बीच इसराइल का एक्शन जारी है। जी हाँ, हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। लेबनान में इसराइली एयरफोर्स ने भारी तबाही मचाई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास का टॉप कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड इज अल दीन अल हदाद मारा गया है।
3: लेबनान में घमासान, 3 की गई जान। इसराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीजफायर के दौरान इसराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है जो ईरान का साथ देते आए हैं और इसराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इसराइली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीजफायर बढ़ने के बावजूद इसराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इसराइल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इसराइल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इस अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। खान यूनिस में इसराइल के हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: As a truck driver, I've learned how important road safety is. I know that large trucks need more time and room to stop. That's why I always hang back and follow other vehicles at a safe distance. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, try to remember to always give trucks extra space when you merge in front of them. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
8: So they were disallowed from speaking their language.
10: In-depth conversations with A-list celebrities.
11: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
10: True crime podcasts you just can't stop listening to.
12: Others escape justice to live and die in infamy. These
10: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
13: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
10: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
14: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
15: In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
16: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
17: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
18: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
19: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
20: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
18: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
21: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
19: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
18: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद
22: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
23: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में कहा, दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत 4 लोग की फाइल खुलेगी, लूटने वाले नहीं बचेंगे।
1: यूपी के बिजनौर से जम्मू कश्मीर गए नाबालिग के धर्म परिवर्तन से हड़कंप परिवार का आरोप, जबरन इस्लाम कबूल करवाया, कुपवाड़ा में दर्ज FIR, यूपी पुलिस जाएगी कश्मीर।
0: एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे, डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा, कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर।
1: वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मीटिंग से पहले कहा, खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला लेकिन सेना तैयार, तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल ही नहीं।
0: स्वीडन के बाद नॉर्वे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी, आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत, शाम को इटली के लिए होंगे रवाना।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शतक आज तक के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
1: पश्चिम एशिया संकट पर भारत पर भी दिखने लगा असर, सरकारी तेल कंपनीज ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की, इस बार पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर लगभग 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई, तेल कंपनीज ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे जबकि डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए बढ़ाए थे, इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साइकिल से किया सफर, स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में साइकिल से पहुंचे मंत्री, दिया फिटनेस और पर्यावरण का संदेश। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं। गुजरात के बनासकांठा में पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते किसानों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। राजस्थान के पाली में पेट्रोल पंप द्वारा ड्रम में डीजल नहीं देने पर ग्राहकों ने जमकर की मारपीट, पेट्रोल की किल्लत हो रही है।
0: मनीष सिसोदिया ने पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों पर कहा, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, रुपया गिर गया, लेकिन एक भी क्षेत्र में मोदी जी कौशल नहीं दिखा पा रहे। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग लागू। भवानीपुर में गर्जी, शुभेंदु अधिकारी बोले, घुसपैठियों को अब देश से बाहर भेजने का समय आ गया है, मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूं, 4 लोगों की संपत्तियों की होगी जांच। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी पर सबक सीखने का काम बीजेपी की सरकार करेगी, अब समय आ गया है डिपोर्ट करने का। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आजकर कांड के असली दोषियों को मिले कड़ी सजा, सच को दबाया नहीं जा सकता। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी सरकार पर हमला, बहन अभ्या को न्याय मिले, शुभेंदु ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठाई मांग। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सभी धार्मिक भत्ते बंद करने का ऐलान किया, बोले अब छात्रों को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी राजकुमार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। एक्सट्रॉशन मामले में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस के डीएसपी और टीएमसी करीबी शांतनु सिन्हा विश्वास के आलिशान घर का पता चला है। बीजेपी का आरोप, शांति सिन्हा विश्वास के हाल ही के घर में पुनर्निर्माण में 2.5 करोड़ खर्च किए गए।
1: पश्चिम बंगाल में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस, सरकारी दफ्तरों का खर्च घटाने का आदेश। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया। अभिषेक बैनर्जी ने साइबर थाने में दर्ज FIR को दी

0: नाथी कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर 21 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर राजनीतिक हलचल तेज। हल्दा में पुनर्मतदान में जहांगीर खान को 25 मई को गिरफ्तारी तक छूट हुई है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को राहत दी। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए होंगे रवाना। विदेश दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा 12 वर्षों में भारत का आर्थिक डीएनए पूरी तरह बदल गया। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा बेहद खास रही। ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर सहमति बनी। नॉर्वे के दिग्गज सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात। भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर, साझेदारी बढ़ाने पर मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ था पीएम मोदी का विदेशी दौरा, कल तक रहेगा जारी। अब इटली के दौरे पर दुनिया भर की निगाह।
1: यूपी की सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी, कहा सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को सख्त संदेश, का अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन दूसरा तरीका अपनाएगा। सीएम योगी ने कहा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। पासपोर्ट केस में रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ी, क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। एसपी अध्यक्ष सीबीएसई 12वीं ने परिणामों पर सवाल उठाए, ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लखनऊ के वकीलों के लाठीचार्ज मामले में वायरल तस्वीर में मौजूद वकील को भेंट की रामचरितमानस, अखिलेश यादव ने तस्वीर की शेयर। पंजाब सरकार ने मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पेशी के दौरान परिवार से मिलकर भाव। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों में गंभीर चिंता जताई, कोर्ट ने कहा यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
0: यूपीएससी एग्जाम में बड़ा बदलाव, अब प्रीलिम्स के तुरंत बाद आएगी आंसर की। लातूर पेपर नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज, आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा, पूछताछ जारी है। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 पहुंचे। नीट पेपर लीक मामले में संसदीय समिति सख्त, एनटीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े, हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली में हीट वेव की स्थिति जारी। उत्तराखंड में भी हीट वेव का अलर्ट, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री पार टेम्परेचर जाने की आशंका। हीट वेव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित, अस्पतालों में ओआरएस, आईवी फ्लूड, दवाइयां, विशेष बेड की व्यवस्था करने का निर्देश। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भारी बारिश, सड़कों पर जल भराव देखा। यातायात प्रभावित भी हुआ, कई जगहों पर लंबी लंबी कतार वाहनों की दिखी।
1: श्रीनगर में उमड़े पर्यटक, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कश्मीर पहुंचे लोग। हावड़ा में वैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू किया ध्वस्तीकरण, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हावड़ा नगर निगम के वार्ड 44 में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कहा वैध इमारतों को नहीं बख्शा जाएगा। अलवर में दिनदहाड़े कोरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसे बदमाश ने लूटपाट की, चाकू गिरोह पर महिला और मासूम को बनाया बंधक, जेवर और नकदी लेकर फरार। अमृतसर पुलिस की ड्रग तस्करों के बड़े गिरोह के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, मौके से 7 पिस्टल, 2 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी तस्करों से जुड़े तार। सिकंदराबाद में बीजेपी के नगर पालिका के चेयरमैन का बयान हो रहा है वायरल, टीएमसी सांसद को सिर काटने पर 1 करोड़ के इनाम की घोषणा। विवादित बयान पर बीजेपी नेता ने कहा वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये छवि खराब करने की कोशिश है। द्वारका में कार में आग लगने से पिता और बेटी की मौत हो गई, मां घायल। ग्रेटर नोएडा में लिप गैंग का भंडाफोड़, रागीदो और टैक्सी ड्राइवर को लूटने वाले 5 छात्र बदमाश गिरफ्तार। बलिया में एक मेडिकल स्टोर की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक।
0: गाजियाबाद में रेप आरोपी की जेल से बाहर आते ही रोड पर रोड शो, समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, जमानत पर रिहाई के बाद फूल मालाओं से स्वागत, वीडियो वायरल। पटना में 27 लाख लूट मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी। अहमदाबाद में 1,66,00,000 रुपए के गहने चुराकर भागती युवती गिरफ्तार, प्रेमी ने धोखा दिया, 1 करोड़ के गहने लेकर फरार। पटना के किराना गोदाम में आग, 4 दमकल की गाड़ियों ने बुझाया आग, लाखों रुपए का नुकसान। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 14 महीने पहले हुई शादी और दर्दनाक घटना में तब्दील विवाहिता ने छत से कूदकर जान दी, दहेज प्रताड़ना का आरोप, पति और ससुर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वाशिम में दिनदहाड़े कार का शीशा तोड़कर 20 लाख की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय के पास फायरिंग, अवैध कारोबार को लेकर दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंग वॉर से इलाके में दहशत, छह गिरफ्तार। नागपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला, अमरावती में दफन युवती का शव दोबारा निकाला गया, गलत दबाने की आशंका से जांच तेज। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से पिता पुत्र की मौत, मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, युवती समेत पांच गिरफ्तार, कई शहरों में 7 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार।
1: आईपीएल में 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए, जवाब में हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदें बनाए, 70 रन, 3 छक्के और 7 चौके शामिल। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल प्ले ऑफ की रेस में राजस्थान रॉयल्स की विजय बरकरार, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही बाहर होने के बाद अब सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार टाइटल ट्रैक आउट, गाने में देखी सितारों की भीड़, फिल्म 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। फॉर ड्रामा पैडी का ट्रेलर रिलीज, क्रिकेट से लेकर पहलवानी तक रामचरण बने महारथी। कॉमेडी और मेल ड्रामा से भरपूर रजनी की बारात का ट्रेलर जारी, उल्का गुप्ता का नए अंदाज में वापसी। कन्नड़ एक्शन ड्रामा बेल का टीजर आउट, शिव राजकुमार का दमदार लुक जारी, स्वैग और स्टाइल जीत रहा है फैंस का दिल। सिंगर हनी सिंह के नए सॉन्ग जवानी ईरानी का फर्स्ट लुक आउट, पूरा गाना 6 जून को हनी सिंह के यूट्यूब चैनल पर होगा लॉन्च।
0: अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाए आम की 14 किस्में। पेड़ पर उगने वाले किस्मों में केसर, आम्रपाली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबारी, जमादार, काला जमादार, हापुस, तोतापुरी आदि शामिल हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके उगाए गए 14 किस्मों में किए आम के पेड़ को देखने के लिए अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य के युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हुआ। राजौरी में बहरे विकास की बैर, नए पुल से ब्लॉक सीरी और ब्लॉक लंबेरी के बीच में अब संपर्क बेहतर। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से कमजोर, शुरुआती ट्रेंड में 18 पैसे की गिरावट। बेलारूस के रास्ते नेटो पर हमले का यूक्रेन की तरफ से दावा खारिज, क्रेमलिन ने कहा कि जेलेंस्की का बयान जवाब के लायक ही नहीं, वो स्थिति को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के दक्षिणी इलाके ग्वांगशी में भूकंप के जबरदस्त झटके और तबाही, दो लोगों की मौत, लगभग कई घायल हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया।
1: इस बीच आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा है, सख्त आदेश देते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते जिससे बच्चों और बुजुर्गों पर हमले किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय रात्रि भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए। साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग वाली डॉग लवर्स की अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसका मतलब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों को से कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। सार्वजनिक परिसर से कुत्तों को बाहर किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बढ़ती आवारा कुत्तों की घटनाओं को लेकर कोर्ट ने फरमान जारी किया है। पहले ये आदेश दिया गया था, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अब आदेश को बरकरार रखा है।
0: तो डॉग लवर्स कोर्ट पहुंचे थे लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिली नहीं है और डॉग लवर्स की अपनी दलील है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट जो छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, आम नागरिकों पर घटनाएं बढ़ रहे हैं, झुंड का झुंड आकर टूट पड़ता है, उनको काटता है, सार्वजनिक जगहों पर उनको खाना खिलाया जाता है और वो फिर धीरे धीरे एग्रेसिव होते चले जाते हैं, उनसे बच्चों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वही बरकरार रखा है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एनजीओ की याचिका खारिज कर दी गई संजीव, लेकिन क्या क्या दलील दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या तर्क रहा है, विस्तार से बताएं।
2: एनजीओ की तरफ से दलीलें ये दी गई कि ये कुत्तों के प्रति अन्याय होगा और वो बेजुबान जानवर हैं, उनके ऊपर करुणा बरसानी चाहिए और वो चूंकि हर एक कुत्ता काटने वाला नहीं होता है, तो ऐसे में जो सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने की बात कही गई है, उनके स्टरलाइजेशन की बात कही गई है, ये कतई उचित नहीं है, लिहाजा कोर्ट इसमें बदलाव करे। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव नहीं किया है। कोर्ट का ये कहना है कि लगातार राज्य सरकारें कह रही हैं कि उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। हवाई अड्डे के अंदर, दिल्ली में हवाई अड्डे के अंदर रनवे तक पर कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है और स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। लिहाजा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक है कि कुत्तों की कीमत पर इंसान की जान को नहीं तोला जा सकता है। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है कि फिलहाल 7 नवंबर को जो पिछले साल ऑर्डर आया था, उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आवारा कुत्तों के कहर से, उनके काटे जाने से लोगों को, आम जनता को बचाया जा सके, खास करके बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को।
1: इसके साथ ही संजय, ये बात और ये फैसला उन लोगों को परेशान करेगा जो कि डॉग लवर्स हैं, और इसी मामले में उन्होंने याचिका भी दायर की थी। उनका ये कहना था कि इसमें कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो कुत्तों को परेशान करने वाले हों, स्ट्रे डॉग्स को खास तौर पर, जिस तरीके से उनका स्टेरिलाइजेशन करने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी स्थान से पूरी तरह से हटाने की जरूरत है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनका ये कहना है कि इसमें हानि पहुंचेगी।
2: जी हाँ, उनका यही कहना है कि कुत्ते बेजुबान जानवर हैं और उनके प्रति करुणा दिखानी चाहिए, और उनका ये कहना है कि उनको जिस तरह से शेल्टर्स में जगह नहीं है, शेल्टर्स में अगर 100 कुत्तों की जगह है तो वहां 1,000 कुत्ते घुसे हुए हैं, उनको रखा गया है, तो इससे वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होने की वजह से फिर वापस जब उन्हें स्टरलाइजेशन के बाद सोसाइटी में छोड़ा जाता है तो वो फिर लोगों को काट पीट करते हैं। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतने उपायों के बावजूद, राज्य सरकारें दावा तो कर रही हैं कि उन्होंने उपाय किए हैं, लेकिन इनके बावजूद कुत्ते काटने की घटनाओं में कमी नहीं आई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। लिहाजा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और सख्त कदम उठाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को, ये कहा गया था कि एक फीडिंग पॉइंट होगा, वहीं पर कुत्तों
0: जी
2: को खाना
0: संजय,
2: दिया जाए, आवारा कुत्तों को इधर उधर खाना ना दिया जाए। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि हमने जो निर्णय दिया है 7 नवंबर 2025 को, वही लागू होगा, उसमें किसी तरह की तब्दीली की जरूरत नहीं,
0: बिल्कुल।
2: बल्कि उसमें और सख्ती से उसे लागू करने की जरूरत है।
0: अब देखना यह कि राज्य सरकारें क्या वाकई सख्ती से लागू कर भी पाती हैं या नहीं। संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक की और उससे जुड़े हुए एक्शन की, और अब हैंड रिटन नीट का गेस्ट पेपर सामने आया है। आज तक के पास में नीट का यह हैंड रिटन पीडीएफ, गेस्ट पेपर का पीडीएफ बनाकर जो है लीक किया गया था, हाथ से लिखे गए थे ये गेस्ट पेपर, परीक्षा में सवाल भी आए, कई सवाल नीट की परीक्षा में सेम एग्जैक्ट दिखाई दिए थे, तो हाथ से लिखा हुआ नया ये पेपर।
1: बिल्कुल, दरअसल इसे गेस्ट पेपर कहा जा रहा था, ये एक्चुअल पेपर था राजीव, और इसे नाम गेस्ट पेपर का दिया गया ताकि इसे छुपाया जा सके और शक ना हो, लेकिन ये पीडीएफ बनाकर बेचा गया, उसके बाद हैंड रिटन इसे किया गया ताकि शक और ज्यादा ना गहराए। ये हैंड रिटन पेपर अब आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि हूबहू यही पेपर आया था। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये वही पेपर है जिसके जरिए चीटिंग की गई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें कई बार ये आगे फॉरवर्ड किया गया, फॉरवर्ड इन मेनी टाइम्स लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन इसका ओरिजिनल पॉइंट कहाँ था? क्या ये प्रोफेसर साहब के थ्रू लीक हुआ, वही इसका ओरिजिनल पॉइंट था?
3: बिल्कुल नहीं, आपने बड़ी बात कह दी कि ओरिजिनल पॉइंट कहाँ था। ये पीवी कुलकर्णी जो 7 साल से एनटीए में पेपर सेटर है, किसके जरिए गया पता नहीं, सीबीआई बताएगी या फिर एनटीए बताएगा, मगर पीवी कुलकर्णी का जो एक्सेस था, जो 5 सेट तैयार होते हैं उस 5ों सेट तक था, आखिरी में तो जो सेट सेलेक्ट होते हैं एक सेट बैंक के लिए रखा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, जो सेंटर पे पेपर भेजे जाते हैं तो दूसरे सेट का उपयोग किया जाएगा, उस तक इसकी पहुंच था। चूंकि ये मराठी में ट्रांसलेशन भी करता था इसलिए बाकी पेपरों तक भी इसकी पहुंच थी, तो माना जा रहा है कि ये हैंड रिटन जो है वो वहां से सारे, चूंकि इसका एक्सेस था एनटीए में और इतना पुराना हो गया था, मजबूत था, इसलिए वो हाथ से सारे क्वेश्चन लिख कर लाया, उसके बाद प्लानिंग करके इन्होंने 60 पेज का एक पीडीएफ बनाया, उसमें 400 से ज्यादा सवाल रखे, और सभी जुलोजी बोटनी के 45 45 सवाल आते हैं नीट में, केमिस्ट्री के 45 आते हैं, फिजिक्स के 45 आते हैं, सभी 90 जो है सवाल वो मनीषा जो है वो और ये मिलकर हाथ से बायोलॉजी का लिख लिए और केमिस्ट्री का उन्होंने लिख लिया, पीवी कुलकर्णी ने और ये लाकर बाहर पीडीएफ बनाकर इन्होंने आगे बेच दिया। अब ये तो नेहा पता ही है अपने को कि किस तरह से दिनेश बिवाल का जो लड़का था पढ़ने वाला था नहीं ऋषि।
0: शरद शरद आप हमारे साथ बने रहे, आप जो जानकारी दे रहे दर्शकों को बड़ी खबर भी देते हैं। इस मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब जानकारी मिली है कि कुलकर्णी को उसके नीट पेपर तक पहुंचती और नीट के लिए पांच पेपर के सेट बनते थे, दो फाइनल इसमें होते थे। खबरों के मुताबिक वहां तक इसने पहुंच बना ली थी। सवाल है कि आखिरकार एनटीए में उसे कौन लेकर आया था और एनटीए के कौन से अधिकारी इसके संपर्क में थे।
1: शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। शरद, हर कोई यही जानना चाहता है कि एनटीए का वो बड़ा अधिकारी कौन है जिसके पूरे संज्ञान में ये सब कुछ चल रहा था, अभी तक उस तक हाथ नहीं पहुंचे या फिर उसका नाम छुपाया जा रहा है।
3: देखिए नेहा, ये बड़ी बात है। सीबीआई का ऐसा मानना है कि एनटीए के उस अधिकारी तक इनकी पहुंच हो गई है, मगर चूंकि पूछताछ की जा रही है दो अधिकारियों पर शक है। दो अधिकारी हैं जो इस पेपर लीक से जुड़े हुए थे और पीवी कुलकर्णी के साथ लगातार वहां पर टच में रहते थे। एनटीए के पूरे कामकाज के तरीकों को सीबीआई ने खंगाल लिया है। पीवी कुलकर्णी से पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हुए हैं जिसकी जानकारी सीबीआई ने मानव संसाधन मंत्रालय को भी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कब से कर रहा था, क्या पहली बार किया था, आगे भी किया था, पहले अगर किया है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर सीबीआई को जो जांच कर रही है उसमें मानव संसाधन मंत्रालय को फैसला लेना है। लेकिन एनटीए के कामकाज को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह से ऐसे
0: जितने पेशेवर तरीके से किया। शरद, ये तो तय है कि ऐसा नहीं कि इसने पहली बार किया होगा, पहले भी जरूर किया होगा। मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
4: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जेके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
13: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat.
1: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
2: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और एस आई पी करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
6: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
7: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड से
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
12: हमारे सीमेंट में नहीं है?
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
15: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
16: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
17: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
18: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
19: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
17: शुभेंदु अधिकारी,
16: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
20: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सेन गुप्ता,
21: अनुपम मिश्र,
22: मेहमत भारद्वाज,
23: पीयूष मिश्रा,
24: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

पहले यूएई में ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर हुए कई समझौते। हॉर्मुज के हालात से लेकर ईरानी हमलों तक पर भी चर्चा। फिर नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर सेक्टर का समझौता। भारत की सुरक्षा, भारत का विकास और दोस्त देशों को भारत का भरोसा। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा में कई ऐसे समझौते हो रहे हैं जो सुनहरे भविष्य का खाका खींचने का काम करेंगे। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की शुरुआत हुई यूएई के साथ, वो देश जो ईरान के साथ महायुद्ध की आग में भी झुलसा है और उसने पलटवार भी किया। इधर भारत के साथ कई मोर्चों पर यूएई कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ा है। यूएई में शानदार स्वागत के बाद बारी थी एक दूसरे की सुरक्षा और विकास के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाने की। पीएम मोदी ने भारत और यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया। मुलाकात हुई, बात हुई तो चर्चा महायुद्ध तक भी हुई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के होनी चाहिए और शांति कायम करने की कोशिशें तेज होनी चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौते हुए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। पीएम की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच सेमीकंडक्टर उपकरणों की दिग्गज कंपनी ASML ने भारत में चिप बनाने के लिए एक अहम समझौते पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत में टैक्स से लेकर लेबर लॉ तक में कई बदलाव किए गए हैं। नीदरलैंड के दौरे पर सिर्फ बेहतर भविष्य का खाका ही नहीं खींचा गया बल्कि वैभवशाली विरासत को सहेजने का काम भी किया गया। नीदरलैंड में हुए खास समारोह में 11वीं सदी के चोल राजवंश के ऐतिहासिक ताम्र पत्र भारत को वापस सौंप दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए समारोह के जरिए भारत को 21 तांबे की प्लेटें वापस मिल गईं, जिनकी वापसी के लिए देश 2012 से लगातार कोशिश कर रहा था। राजराजा चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़े और करीब 30 किलो के ताम्रपत्र चोल साम्राज्य के सबसे प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों और भारत के बाहर मौजूद सबसे अहम तमिल विरासतों में से एक माने जाते हैं। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी का मूल मंत्र विदेशी निवेशकों को भारत लाना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना, AI के क्षेत्र में तेजी से काम करना और सरहद की सुरक्षा के लिए दोस्त देशों के साथ रिश्ते और मजबूत करना है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी, कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते।
1: ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर में कहा दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत 4 लोगों की फाइल खुलेगी, लूटने वाले बचेंगे नहीं।
0: यूपी के बिजनौर से जम्मू कश्मीर गए नाबालिग के धर्म परिवर्तन से हड़कंप, परिवार का आरोप जबरन इस्लाम कबूल करवाया, कुपवाड़ा में दर्ज हुई FIR, यूपी पुलिस जाएगी कश्मीर।
1: एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल लगभग 87 पैसे, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा, कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर।
0: वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे ट्रंप, मीटिंग से पहले कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला, तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल ही नहीं। तो बंगाल में बीजेपी को अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बीजेपी ने असंभव को संभव बना दिया, अब यूपी की बारी है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में बंगाल वाला फॉर्मूला आजमाने की तैयारी है।
1: ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज न अदा करने को लेकर कड़ी हिदायत दी, ऐसी हिदायत वो पहले भी देते रहे लेकिन इस बार चेतावनी का दायरा बड़ा है, इतना बड़ा कि योगी के बयान को नए नए नजरिए से देखा जाने लगा है।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे, कैसे होगा? हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
3: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
4: बकरीद का त्योहार करीब आता है और सड़क पर नमाज को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर पहले से ज्यादा सख्त हो जाते हैं।
2: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे।
4: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलती है, बीजेपी का राज आता है और नई सरकार की प्राथमिकताओं से पर्दा हटने लगता है, साफ हो जाता है कि निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है।
3: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
4: यूपी में सीएम सड़क पर नमाज को लेकर कायदा बताते हैं।
2: सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु पत्थरबाजों और घुसपैठियों को हिदायत जारी करते हैं।
3: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का, डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
4: यूपी में अवैध मस्जिदों मकबरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, नए बंगाल में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में सार्वजनिक नमाज पर सख्त पाबंदी है, बंगाल में भी सड़क पर नमाज की मनाही है। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहे हैं, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा हो रही है। जो एक्शन प्लान पहले यूपी में दिख रहा था वो अब बंगाल में दिखने लगा है, लेकिन बंगाल में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद और बंगाल में बीजेपी की बंपर विजय के बाद सीएम योगी के भी अंदाज बदले बदले दिख रहे हैं। इसलिए अब चर्चा इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि क्या बंगाल में बीजेपी की विजय से योगी ने यूपी के लिए कोई सियासी सूत्र तलाशा है। आज तक ब्यूरो।
0: बकरीद नजदीक आ रही है और सड़क पर नमाज जैसी समस्याएं ईद बकरीद के दौरान आ जाती हैं, लेकिन इस बार योगी ने पहले से ही खबरदार कर दिया। योगी ने कह दिया है कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है तो शिफ्ट में नमाज अदा करिए।
1: लेकिन योगी ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर भी निशाना साधा, तो पहले एक बार फिर से देखिए कि योगी ने मुस्लिमों को लेकर क्या कहा और फिर इसके पीछे की सियासत भी दिखाएंगे।
2: उन्होंने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
4: तो क्या बंगाल में अभूतपूर्व विजय ने बीजेपी को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि सार्वजनिक नमाज पर चेतावनी देते देते सीएम योगी संख्या नियंत्रित करने की सलाह देने और सामर्थ्य बताने तक आ गए। पहले योगी ने क्या कहा ये जानिए। सड़क चलने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में की जाए, संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो। प्यार से मानोगे बात तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो।
2: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें।
4: ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
5: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
4: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है, और दूसरी बड़ी वजह 2027 का चुनाव है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बकरीद इसलिए क्योंकि ईद और बकरीद में ही मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज की इजाजत मांगता रहा है।
6: इनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा।
7: क्या करेंगे आप, सबको मार डालेंगे क्या, करेंगे सबको गोली मार देंगे क्या, करेंगे आप नहीं करते क्या, ये कावड़ यात्रा निकालते हैं। हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पर ट्रैफिक जाम कर लिए। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर, मगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है। ये
8: हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है, और एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे, आप इस बात का।
1: और बात अब पश्चिम बंगाल के करते हैं, शुभेंदु अधिकारी की भी, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी स्टेटमेंट दी उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ भी इस खबर पर जुड़ गए। समर्थ, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो भाषण था सीएम का वो सिर्फ चुनावी है, क्योंकि ऑपोजिशन भी कहने लगा है कि भाई जगराते होते हैं, जागरण होते हैं, सड़कों पर डीजे बजाते हुए कांवड़ यात्रा होती है, आप उनके लिए तो कुछ नहीं कहते हैं।
9: देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान कई मायनों से देखा जा रहा है। पहला ये कि 27 मई को बकरीद है, और बकरीद में अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी जहां सड़क पर नमाज करते समुदाय विशेष के लोग नजर आते हैं। दूसरा, अगर आप राजनीतिक स्वरूप इसका देखें तो वो भी कहा जाएगा, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह की लाइन शुरुआत से ली है उसके तहत इस तरह का बयान है। हालांकि वो इस पूरे बयान में एक बात और साफ करते हैं, कोशिश संवाद से होगी, लेकिन अगर संवाद से बात नहीं बनती है तो संघर्ष के लिए भी हम तैयार हैं। और यहां पर वो उदाहरण देते हैं बरेली की उस घटना का, जहां ऐसा एक विवाद होता है और उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज होता है, और सबको याद है बरेली में उसके बाद क्या होता है, के बाद एक लोगों को हिरासत में लिया जाता है, और फिर जो है वहां पर जो एक तरह से मामला बढ़ता है उसे शांत कराया जाता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सड़कें जो हैं वो आम लोगों के लिए हैं, आवागमन के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए सड़कें नहीं बनाई गई हैं, उसके लिए एक अलग जगह है, वहां अगर जगह कम पड़ रही है तो आप शिफ्ट्स में लगाएं। इवन यहां पर भी मुख्यमंत्री नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि जब लोग हमसे कहते हैं कि जहां लोग कम पड़ या जगह कम पड़ जाती है, तो मेरा कहना साफ है कि आप अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दें। यानी कि मुख्यमंत्री यहां पर यह तक कहते हैं कि आप जनसंख्या उतनी ही बढ़ाएं जितने में आप अपनी जो नमाज है वो अदा कर पाए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का एक ये बयान साफ तरीके से दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री की वो लाइन जो डेवन पर थी वो आज भी कायम है। 27 का चुनाव सामने है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री एक तरीके से मुखर होकर इन बातों को कहते नजर आ रहे हैं।
0: अगर सड़क पर नमाज अदायगी होती है दिशा निर्देश के बावजूद, तब क्या एक्शन लिया जाएगा? उन्हें लाठीचार्ज से हटाया जाएगा, लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाएगा? क्योंकि ऐसे में तो स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी और बेहद संवेदनशील मामला है।
9: देखिए नेहा, लखनऊ की बात अगर मैं करूं आपसे, तो यूजुअली बकरीद के समय या ईद के समय इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, और हमेशा ईद से 2-3 दिन पहले पुलिस जो होती है, अगर संबंधित थाने हो गए या किसी के डीसीपीज हो गए, वो एक बैठक करते हैं जो आसपास के क्षेत्रीय मौलाना होते हैं, और उन्हें एक तरीके से संदेश दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री ने जहां पर यह कहा कि संवाद, तो संवाद ये है जहां पर पुलिसकर्मी और प्रशासन ये समझाएंगे कि आप सड़क पर नमाज ना अदा करें, शिफ्ट्स में करें, अपनी अपनी छतों पर कर लें या मस्जिदों में कर लें। लेकिन अगर संवाद पहली चीज है, और अगर संवाद से बात नहीं बनी, यानी कि नंबर 2 एक्शन, जहां पर मुख्यमंत्री बरेली का उदाहरण दे रहे हैं, तब फिर जैसा कि लाठीचार्ज आपको देखने को मिला था, वैसी कोई सिचुएशन भी आपको प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत अहम होने वाला है इस दफा कि क्या संवाद से नंबर 1 बात बनती है, नंबर 2 अगर संवाद से बात नहीं बनती तो मुख्यमंत्री की भाषा में जो संघर्ष है वो शायद धरातल पर एक लाठीचार्ज की भूमिका निभा सकता है।
1: देखना ही होगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को रोकने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं और ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण वाली योजनाओं पर भी लगातार चोट कर रहे हैं।
3: वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
10: शुभेंदु अधिकारी तेजी से अपनी इमेज बदल रहे हैं। चुनाव में जो धार दिखाई थी उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। उनके फैसले, उनकी घोषणाएं, उनके शब्द बड़े गौर करने वाले हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा एक्शन पर गौर करें। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
11: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए।
10: शुभेंदु पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि बंगाल की जनता को ये एहसास हो जाए कि राज्य में नई सरकार का आगाज हो चुका है। वो कानून व्यवस्था के सवाल पर सख्त अंदाज दिखा रहे हैं।
11: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है, मैं नहीं।
10: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का असर सड़क से स्कूल तक दिख रहा है। सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु इस कोशिश में दिख रहे हैं कि जनता के जहन से ममता राज की यादें जल्द से जल्द मिटा दी जाए। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
0: अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये जो ममता राज की यादें मिटाने का एजेंडा है, इसमें सबसे पहले आता है जीरो टॉलरेंस, यानी कि हिंसा मुक्त पश्चिम बंगाल, इसके लिए क्या एजेंडे में सर्वप्रथम 5 पॉइंट्स हैं शुभेंदु अधिकारी के?
12: जी देखिए, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे और पब्लिक न्यूसेंस भी बनते जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तो माइक का जो लाउड स्पीकर का जो आतंक था, चाहे वो पूजा हो या मस्जिद हो, कहीं से भी हो, उसको सबसे पहले आके बंद किया गया है। अभी कुछ दिनों में जो असर देखने को मिल रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ बेहद कम हो गई है पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा कल ही जो एक फैसला लिया गया है कि मौज़िम और इमाम और पुरोहितों को जो भत्ता दिया जा रहा था वो भत्ता से बंद किया जा रहा है और उस पैसे को जो शिक्षा है बच्चों की उसमें लगाया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ममता सरकार की यादें मिटाने वाली बात से ये कितना वो है वो उस पर संदेह है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले जरूर लिए जा रहे हैं जिसको प्रॉमिस किया गया था बीजेपी की ओर से मैनिफेस्टो में, और ये सब फैसले बीजेपी की ओर से मैनिफेस्टो में ही ज्यादातर बातें कही गई थी कि हम जब अगर सरकार में आते हैं तो ऐसी बातें करेंगे, ये चीजें करेंगे। तो फिलहाल वही सारी बातें जिनका क्रियान्वयन हो रहा है वो हमें देखने को मिल रही है। हालांकि तुरंत मतलब सत्ता में आने के 10-11 दिनों के भीतर ही बहुत सारे फैसले, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और इससे एक बात तो साफ है कि इस फैसले लेने के मामले में बीजेपी सरकार देरी नहीं करना चाहती है और बहुत जल्द ही
1: दिखने भी लगा है। अनुपम, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं क्योंकि शुभेंदु सरकार का एक्शन लगातार जारी है। ममता राज के भ्रष्ट नेताओं पर शुभेंदु अधिकारी शिकंजा कसना शुरू कर चुके हैं। सीएम ने 4 लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है, जिसमें राजू नास्कर, सोना पप्पू, अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी विधायक जावेद खान का नाम शामिल है। सीएम ने कहा कि इनकी संपत्ति के सोर्सेस का पता लगाया जाएगा, कानूनी जांच भी की जाएगी।
0: इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने कई नेताओं पर भी शिकंजा कसा है, अवैध संपत्ति मामले में जिसमें सबसे सर्वप्रथम अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
3: छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर, बताओ 4 नाम। सुनना चाहता है ना? एक बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बैनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा।
0: इस बीच बड़ी खबर, बंगाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर स्थापित फुटबॉल की वाली मूर्ति को सरकार ने हटाने का फैसला किया है। खेल मंत्री निशीत प्रमाणिक ने इसे भद्दा बताया। ममता बनर्जी के कार्यकाल में इस मूर्ति का अनावरण फीफा अंडर 17 विश्व कप से पहले 2017 में किया गया। स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास स्थापित इस मूर्ति में फुटबॉल खेलते हुए विशालकाय पैर बिस्वा बांग्ला लोगों में विलीन होते हुए दिखाई देते हैं और फुटबॉल पर जॉई शब्द लिखा हुआ है। अब इसे हटाया जाएगा। ममता बनर्जी ने खुद ये मूर्ति डिजाइन की थी, तो ये बड़ा संदेश पिछली सरकार को कि जो निर्माण इस तरीके के किए गए हैं उन्हें अब ध्वस्त किया जाएगा।
1: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
15: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
14: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
16: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
17: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
18: In association with
19: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
20: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
21: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
22: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
23: I have no idea how this election is going to play out,
22: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
24: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
22: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
25: ने कहा कि 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जो मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं।
26: यस, मैं उनको देखो, एक मुहावरा है ना कि हम उनको 21 तोपों की सलामी, मतलब हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं।
25: और जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी सलामी
26: नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके हैं, बस चला चुके हैं, और आज तो हमने ऑटो में ऑटो पुल किया, इलेक्ट्रिक बैटरी वाला ऑटो था ना, बैटरी वाले ऑटो में हम और कुलजीत चहल आए हैं। तो हम ऑटो पुल भी कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं।
25: आप गाड़ी से भी ट्रैवल पहले करते रहे, अपने अपने क्षेत्र भी जाते रहे, लोगों से मिलते भी रहे। आज जब आप सीपी पहुंचे मेट्रो में, और पहले जब आप गाड़ी से आते थे, इन दोनों में यात्राओं में कितना फर्क है, और कितना आराम की अगर हम बात करें?
26: एक तो आपको बता दूं, मैं 7 दिन पहले ईवी ले लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल
25: ले चुके हैं।
26: हाँ, मैंने एक वीडियो भी डाला था और आपने भी उसको देखा था कि खुशी जाहिर कर रहे थे आज तक वाले भी। हम अब जब 7 दिन ईवी पे चल दिए ना, अब हमको दूसरी गाड़ी लगता है कि इसको अब क्या करेंगे, क्योंकि बेचना भी ठीक नहीं है किसी को, किसको बेचेंगे? तो अब हम उसको खड़ी ही रखेंगे।
25: अच्छा।
26: और अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलेंगे।
25: मेट्रो से गाड़ी में कितना ट्रैवल में कितना फर्क है?
26: बहुत, जमीन आसमान का फर्क है। इतना आराम है, इतना चैन है, और सांसों को बहुत आनंद है।

मिडिल क्लास की पूरी दुनिया एक ही गणित के इर्द गिर्द घूमती है और वो है घर का बजट। कभी महंगाई की मार इस बजट को बिगाड़ देती है तो कभी बैंक की किश्तों का बोझ। पिछले कुछ समय से भले ही ब्याज दरें थमी हुई थी, लेकिन अब बाजार की अंदरूनी हलचल चिंता का माहौल पैदा करने लगी है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बैंक की किश्तें सस्ती होने की जगह महंगी होने का डर सताने लगा है। बाजार के ताजा हालात इशारा कर रहे हैं कि खाड़ी देशों के संकट की वजह से बढ़ती महंगाई आरबीआई की नींद उड़ा सकती है। अंदेशा है कि रिजर्व बैंक इस साल के आखिर तक ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। जिस तरह से मार्च के बाद अप्रैल में भी महंगाई दर में इजाफा हुआ है, वो नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बड़ी वजह है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। यानी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि घर या गाड़ी का लोन जल्द सस्ता होगा, उनके लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अगले महीने होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में तो उम्मीद है कि ब्याज दरों को स्थिर रखा जाएगा। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी से दिसंबर तक ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी, जिससे रेट घटकर 0.25% पर आ गए थे। लेकिन इस साल की दोनों बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब हवा बदल रही है। बाजार की गहराई में झांके तो पता चलता है कि आप जेब पर पड़ने वाला बोझ सरकारी अनुमान से कहीं ज्यादा होने वाला है। दरअसल अल नीनो की वजह से खेती और खाने पीने के सामान की सप्लाई बिगड़ने का जोखिम है। रुपये की गिरती कीमत और महंगा कच्चा तेल आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि आने वाले वक्त में रेपो रेट में इजाफा हो सकता है। बाजार का एक बड़ा हिस्सा मान रहा है कि 2026 की दूसरी छमाही के दौरान दो बार ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी ईएमआई का

0: आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी। कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर में कहा दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत 4 लोगों की फाइल खुलेगी, लूटने वाले नहीं बचेंगे। यूपी के बिजनौर से जम्मू कश्मीर गए नाबालिग के धन परिवर्तन से हड़कंप। परिवार का आरोप जबरन इस्लाम कबूल करवाया। कुपवाड़ा में दर्ज हुई FIR। यूपी पुलिस जाएगी कश्मीर। एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा। कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर। वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे ट्रंप। मीटिंग से पहले कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला। तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल नहीं है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुट।
0: बारह बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं इस सिलसिले की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको सुप्रीम कोर्ट से देते हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। ये डॉग लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। डॉग लवर्स और एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, याचिका दाखिल की थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है और अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों बुजुर्गों पर हो रहे हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों पर आंख नहीं बंद कर सकते जिनमें बच्चों जिनमें बुजुर्गों पर हमले हुए उनको नोचा गया। अदालत ने कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए, अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं के शिकार हुए हैं।
3: सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते और उनके हमले के शिकार हो रहे बुजुर्ग बच्चे महिलाएं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारों की के प्रयास के दावे वो लगातार खोखले हुए हैं और कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे। जो गाइडलाइंस दी गई हैं लागू होंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक अब सार्वजनिक जगहों पर पार्क स्कूल सड़कें इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। जिन एनजीओ ने ये दावा किया था और ये आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें कुत्तों के कुत्ते चूंकि बेजुबान जीव हैं उन पर करुणा और दया बरसानी चाहिए, कोर्ट ने उन सारे लोगों को निराश किया है और उन सारे लोगों से कहा है कि वो जो लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, उसमें कुत्ते काटने और कुत्ते के भय के बिना जीने का अधिकार शामिल है, लिहाजा इसको इसी रूप में लिया जाए।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप अगली खबर जयपुर से जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में हैंड रिटन नीट का एक गेस्ट पेपर सामने आया है। गेस्ट पेपर सिर्फ नाम का है, नीट का ही पेपर था जो लीक हुआ। आज तक के पास में इस नीट के इस हैंड रिटन PDF का जो फोटोग्राफ है हम आपको दिखा भी रहे हैं। पेपर लीक माफिया ने इसे गेस्ट पेपर बनाकर PDF बनाकर लीक किया था। हाथ से लिखा गया था ताकि किसी को शक न हो। गेस्ट पेपर के कई सवाल असली प्रश्न पत्र में हूबहू मैच हुए। इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रोफेसर PV कुलकर्णी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक कुलकर्णी की नीट पेपर तक पहुंच थी। नीट के लिए 5 पेपर के सेट बनते थे जिसमें से 2 फाइनल होते थे। खबरों के मुताबिक वहां तक इसने अपनी पहुंच बना रखी थी। मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी को लेकर लगातार खुलासे, इन्वेस्टिगेशन हो रही, पूछताछ हो रही है। अब बड़ा सवाल है, इस बार के पेपर लीक में तो शामिल था, क्या इससे पहले के पेपर लीक में पेपर सेट करने में वो शामिल था, पेपर सेटर था? अब चीटर भी निकला है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। लेकिन अब NTA का कौन सा अधिकारी साथ में था वो जांच का विषय है।
4: नीट पेपर लीक में प्रोफेसर PV कुलकर्णी को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। PV कुलकर्णी की पहुंच नीट के तैयार

0: किए गए पांचों सेट तक थी और आखिर में जो दो सेट फाइनल होते थे उस तक पीवी कुलकर्णी की पहुंच थी। अब सीबीआई इस बात का पता लगा रही है कि एनटीए में वो कौन लोग थे जो पीवी कुलकर्णी के साथ शामिल थे।
1: 12:12 रिपोर्टर में अब अगली खबर भोपाल से बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी हुई है और इसमें बड़ा अपडेट आया है। ट्विशा शर्मा ने जिस रोज कथित तौर पर खुदकुशी की थी उसी दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 12 मई की इस वीडियो में ट्विशा शर्मा को छत पर जाता हुआ देखा जा सकता है। ये देखिए वो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर के बाद ट्विशा का उसके पति समर सिंह और दो अन्य लोग सीढ़ियों से उसे नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में सीढ़ियों पर ही ट्विशा को सीपीआर देते हुए भी देखा जा सकता है। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा फांसी पर लटकी पाए गए। मायके वाले इसे दहेज हत्या का केस बता रहे हैं जबकि ससुराल पक्ष से सुसाइड कह रहे हैं। इस विवाद में मौत के इतने दिन के बाद भी अब तक ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। ये वो विजुअल है, वो तस्वीर जिसमें सीपीआर और उसके बाद नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ट्विशा के चैट्स हैं वो भी सामने आए हैं और उनसे भी बहुत सारे सवाल और संदेह पैदा होता है।
2: ट्विशा की मौत मामले में सोमवार को आरोपी पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं दूसरी तरफ सोमवार शाम को जमानत याचिका खारिज होने के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आई। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के मानसिक रूप से बीमार होने और भोपाल के मनोचिकित्सक के पास उसका इलाज जारी रहने के दावे किए। लेकिन इन सबके बीच पिछले कई दिनों से ट्विशा का शव भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा हुआ है क्योंकि ट्विशा के परिजन उसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं करना चाहते जब तक उसका सेकंड पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और इसीलिए ट्विशा का परिवार आज भोपाल जिला अदालत में ट्विशा के सेकंड पोस्टमार्टम का आवेदन लगाने वाला है। परिवार चाहता है कि ट्विशा का पोस्टमार्टम अब मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली में हो ताकि ट्विशा की मौत की सही जानकारी उनको मिल सके। कैमरामैन अमरीश के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: इस केस में कल पहली बार ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ट्विशा के परिवार के सभी आरोपों को नकारते हुए ट्विशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्विशा मानसिक बीमारी की दवा लेती थी। हालांकि ट्विशा की मारेखा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज किया है।
3: She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं। क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुलजिम हूं तो मैंने बहुत हाइपर टेक्निकल रूप से आपको मैंने आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है मुझे इतनी उम्मीद थी अब अच्छी तरह ना हम पार कर पाएंगे एंड वी हैव फेल्ड इन दैट।
4: दो साल बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा था, दो साल के लिए उसको वहां से हटाया है, दो साल के लिए सस्पेंड किया है ड्रग्स के चक्कर में। वो खुद ड्रग्स लेता था सब, तो सारी मेरी बेटी है नहीं तो वो तो सब कुछ सारे इल्जाम लगाएगा मेरी बेटी पे गंदे गंदे।
5: वो केस को भटकाने
4: वो
5: के
4: केस बस
5: तो आपके
4: वो होती तो अपना सबूत देती, वो मेरी बेटी अब है नहीं तो कुछ भी बोल दो।
1: अब अगली खबर लखनऊ की, जहां पर सियासत चल रही। रविवार को वकीलों के अवैध चैंबर पर पुलिस ने लाठियां बांध दी, उनको जमींदोज किया गया और इसी दौरान रामचरितमानस लिए हुए एक वकील पर भी पुलिस वाले ने लाठी बरसाई। वो तस्वीर अखिलेश यादव ने साझा की, यूपी सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रभु राम का नाम अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए करती है। अखिलेश के इस आरोप के बाद समाजवादी पार्टी ने पार्टी प्रवक्ता पूजा शुक्ला के हाथों पीड़ित वकील को रामचरितमानस भेंट की। ये वो तस्वीर है, अखिलेश यादव ने इस तस्वीर को साझा करते हुए राज्य सरकार को घेरा है जबकि नगर निगम का कहना है कि हमें तो हाईकोर्ट के आदेश थे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने तो अवैध अतिक्रमण को हटाया और ये लोग विरोध कर रहे थे उनको हटाने के लिए हमने बल का प्रयोग किया। लेकिन इस दरमियान जब हाथ में रामचरितमानस थी तो इसे अब समाजवादी पार्टी एक मुद्दा बनाने में लगी।
6: आप जब अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर की है तो क्या आपसे कुछ उन्होंने कहा था कि आप मिलें भेंट करें उनसे या रामचरितमानस, या फिर ये प्योर आपका आइडिया था?
7: देखिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और रामचरितमानस के प्रति हम सब सैकड़ों सनातनियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा रामचरितमानस का सम्मान किया है तो मैं स्वतः गई और मैंने उनको जाकर के भेंट किया और मुझे खुशी इस बात की कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस चीज को शेयर किया और कहीं ना कहीं इन अधर्मी भाजपाइयों का पर्दाफाश करने का काम किया।
6: लखनऊ में वकीलों पर लाठी चार्ज, एक वकील की हाथ में रामचरितमानस लिए वायरल तस्वीर और सियासत। एक बात तो साफ है, 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव बीजेपी को उसी की हिंदुत्व की पिच पर जाकर जवाब देने का मन बना चुके हैं। नतीजा, एक दिन पहले एक एक्स पर पोस्ट रामचरितमानस को लेकर और अगले दिन अपनी प्रवक्ता पूजा शुक्ला को भेजकर उसी वकील को रामचरितमानस भेंट कराने की वो तस्वीर मात्र एक तस्वीर नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी को जवाब देने की एक नई सियासी इबारत है जिसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भुनाना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी पलटवार करती कहती है कि जो पार्टी के नेता राम मंदिर दर्शन नहीं कर पाए वो रामचरितमानस भेंट कर रहे हैं। सियासी उबाल प्रदेश में जारी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: रामचरितमानस का हवाला देकर अखिलेश यादव के सवाल उठाने पर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी या बीजेपी अब आमने सामने है।
8: रामचरितमानस जो हमारे आस्था का प्रतीक है और संविधान में भी भगवान राम की तस्वीर है, वो पकड़े हुए और पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि बीजेपी के लोगों का कर्म जो है वो भ्रष्टाचार है, धर्म जो है वो पैसा है। तो इनको केवल भ्रष्टाचार पैसे से मतलब है, ना इनको रामचरितमानस से मतलब है, ना गीता से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना संस्कृति और हमारे सभ्यता से मतलब है।
9: प्रभु राम में अगर आस्था होती तो प्रभु राम की जन्मभूमि के मंदिर बनाने में सहयोग करते, रुड़े न खाते, कार सेवकों पर गोली न चलवाते। प्रभु राम लला के मंदिर का दर्शन करने तो जरूर जाते, लेकिन प्रभु राम लला के मंदिर का दर्शन करने तक नहीं। पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता रामचरितमानस को फाड़ने और फूंकने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास का बार बार अपमान कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा रामचरितमानस और रामायण को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी आज वोट बैंक सहेजने के लिए, चुनावी लाभ के लिए जानबूझ करके इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनके हृदय में न राम है न रामचरितमानस।
1: प्रतापगढ़ कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कुंडा इलाके में आयोजित एक कथा में उन्होंने कहा कि आज जितने मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं वो सभी पहले हिंदू थे। राजा भैया की यह टिप्पणी और मंच से उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले सब हिंदू थे।
10: मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, इकोनू अरब से वहां से नहीं आए हैं। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं, आप नारा लगाओ थे जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़े आए कहे कि हिंदू बाहुल आए हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टों में खबरों का सिलसिला जारी है। अगली रिपोर्ट यूपी से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यूपी से एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरनगर से एक शूटर गिरफ्तार किया गया है और ये इस केस में चौथी गिरफ्तारी है। राजकुमार सिंह नाम का ये शूटर है, बलिया का रहने वाला है और सीबीआई की टीम मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर काम भी कर रही थी। आरोपी राजकुमार हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन तभी सीबीआई और यूपी पुलिस के संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 58 के टोल प्लाजा से इसे गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रकांत रथ की हत्या 6 मई को मध्यग्राम में गोली मारकर कर दी गई थी, भून दिया गया था। और यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के घोषणा के 2 दिन के बाद हुई थी और यूपी से यह गिरफ्तारी।
11: मामले में चौथी गिरफ्तारी की गई है और यह चौथी गिरफ्तारी बलिया के रहने वाले राजकुमार सिंह की हुई है और यह गिरफ्तारी मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा से सीबीआई की टीम ने उस समय गिरफ्तार किया जब राजकुमार सिंह हरिद्वार से मुजफ्फरनगर लौट रहा था। इससे पहले सीबीआई की टीमों ने बलिया के रहने वाले राज सिंह और बक्सर के रहने वाले मयंक मिश्रा और विक्की मौर्या को गिरफ्तार किया और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में राजकुमार सिंह का नाम आया और बलिया से राज सिंह के बाद एक दूसरा आरोपी राजकुमार सिंह गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इन चौथे आरोपी से गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्याकांड की तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी है।
1: अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता से मिटाई जाएंगी ममता बनर्जी की निशानी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को हटाया जाएगा। शुभेंदु सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया है। खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने जानकारी दी है, साथ ही टिप्पणी भी की। प्रमाणिक के मुताबिक ये मूर्ति बड़ी अजीब है, इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा पिछली सरकार की बदकिस्मती उसी क्षण शुरू हो गई थी जब ये प्रतिमा लगाई गई। ये पूरी तरह अर्थहीन है, भद्दी है। ममता बनर्जी के कार्यकाल के इस मूर्ति का अनावरण फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले 2017 में किया गया था। स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास में स्थापित इस मूर्ति में फुटबॉल खेलते हुए विशाल काय पैर बिस्वा बांग्ला लोगो में जो है विलीन होते हुए दिखाई देता है और फुटबॉल पर जो ई शब्द लिखा हुआ है।
12: कोलकाता के मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर ये मूर्ति सालों से लगी हुई है और ममता बनर्जी ने इसे डिजाइन किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार इसे तोड़ने वाली है और इसे तोड़ने की वजह बताई जा रही है इसका भद्दा होना। बीजेपी सरकार में खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा है कि ये जो मूर्ति है इसका जो डिजाइन है ये देखने में बहुत भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है और इसी वजह से इसे तोड़ दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये मूर्ति स्टेडियम के बाहर है, स्टैचू स्टेडियम के बाहर है, सालों से है, लेकिन कब तोड़ा जाएगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस स्टैचू को यहां रखा नहीं जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में बुलडोजर भी दौड़ रहा है और हावड़ा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने ग्राउंड प्लस 5 इमारत तोड़ने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा नगर निगम के 44 नंबर वार्ड में एक भवन निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बताया जा रहा है कि संबंधित भवन के लिए केवल G+1 निर्माण की अनुमति थी, लेकिन नियमों को ताक पर रख दिया गया, G+5 इमारत खड़ी कर दी गई। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से इस अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। तस्वीरें भी सामने आई है और इस निर्माण कार्य को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया है और नियमों की अवहेलना के बेहद गंभीर आरोप अब शुभेंदु सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। और बात करते हैं मुंबई के, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। बांद्रा ईस्ट स्टेशन के पास में अवैध झुग्गियों पर एक्शन होने हटाया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा गरीब नगर में ये कार्रवाई की जा रही है और एक्शन दिख रहा है। लगभग 400 अवैध ढांचों को तोड़ा जा रहा है। ये मुंबई की तस्वीरें, बांद्रा ईस्ट स्टेशन के पास ये बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। बुलडोजर चलता हुआ और अवैध अतिक्रमण को ढाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नहीं कई बुलडोजर पहुंचे हुए हैं और इस काम में लगे हुए हैं। स्टेशन के पास ये अवैध झुग्गियां बनी हुई थी जिसमें लोग भी रह रहे थे और उन्हें एक एक करके हटाया जा रहा है। लगभग 400 अवैध ढांचे हैं और इन ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे की जमीन और उस पर ये झुग्गियां बन गई थी और लंबे समय से थी, हटाई नहीं जा रही थी। नोटिसेस भी दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हटे और उसके बाद अंतिम में बुलडोजर चलाना पड़ा और उनको एक एक करके इस तरह ध्वस्त किया गया। कार्रवाई आपके सामने तस्वीरें। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस खबर पर जुड़ गए। मुस्तफा, ये कितना बड़ा इलाका है, 400 झुग्गियां है, कितना बड़ा इलाका इन लोगों ने अतिक्रमण इस पर किया था?
13: बहुत बड़ा इलाका है, आप देखेंगे यहाँ पर ये बांद्रा स्टेशन को लग करके बड़ा इलाका है। प्राइम लैंड बांद्रा माना जाता है। ईस्ट में ये आप कह सकते हैं हर रोज ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को आने जाने की समस्या होती है। और हाईकोर्ट में ये केस गया है, हाईकोर्ट ने कहा कि डेमोलिशन करना चाहिए। उसके बाद 2021 के बाद के जो स्ट्रक्चर है उसको डेमोलिश किया जा रहा है। बड़ा जो पुलिस बंदोबस्त है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेसीबी आप देख सकते हैं कितना डेमोलिशन कर चुके हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये डेमोलिशन आगे भी चलता रहेगा। वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ रहे हैं। काफी आप कह सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ी वेस्टर्न रेलवे को अपनी ही जमीन से इन लोगों को हटाने के लिए, क्या कहना था?
14: देखिए, ये जो आज की एक्टिविटी है हमारी, इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं हम, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात करते हैं हम, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की एक्टिविटी हम इमीडिएटली एग्जीक्यूट करें और जो हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इमीडिएटली हम इसको जो है एग्जीक्यूट करें। आज की जो ये एक्टिविटी है, इसकी तैयारी और इसकी जो नींव है वो ऑलमोस्ट 9 साल से ज्यादा पुरानी है। 2017 के पहले हमने एक्टिविटी ये एविक्शन करने की कोशिश की थी अंडर पीपीई एक्ट। फाइनली ये 2017 के एंड में
1: और अधिकारी बता रहे हैं कि काफी समय से इसकी तैयारियां में कर रहे थे और कोर्ट के आदेश पर एक्शन चल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब वो खबर जिसका सरोकार आपसे जुड़ा हुआ, आपकी जेब से जुड़ा हुआ, आपकी कमाई से जुड़ा हुआ है। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई है, फिर इजाफा हो गया आज पेट्रोल डीजल के दाम में। हालांकि पैसों में ही इजाफा हुआ है लेकिन 90 पैसे का इजाफा हुआ है और इससे 4 दिन पहले यानी 15 मई को तेल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे पैसे पैसे बढ़ रहा है। आज जो इजाफे हुए हैं उसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 98 रुपए 64 पैसे हो गया है। दिल्ली में जो डीजल का दाम है 90 रुपए 67 पैसे हो गया है और 91 रुपए 58 पैसे अब रेट बढ़कर डीजल का हो गया है। मुंबई में अब तक 106 रुपए 68 पैसे लीटर पेट्रोल बिक रहा था, अब बढ़कर रेट 107 रुपए 59 पैसे हो गया है। मुंबई में डीजल अब 94 रुपए 8 पैसे लीटर मिलने लगा है। अगर हम बात कोलकाता की करें तो यहां पर पेट्रोल 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और अब तक ये भाव वहां पर 108 रुपए 74 पैसे था। डीजल का भाव पहले 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर था जो बढ़कर अब 96 रुपए 7 पैसे हो चुका है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे की। कल पीएम मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से उनको सम्मानित किया गया और ये पीएम मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी ने ओस्लो में ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहरस्ट्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर भी बातचीत की और कहा केवल सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। आज पीएम मोदी इटली के लिए रवाना होंगे।
15: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का के समर्थन करते हैं।
16: भारत और नॉर्वे ने अपनी दोस्ती में नए रंग जोड़ने का फैसला किया है। दोनों देश मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे। इसके अलावा समुद्री उत्पादों वाली ब्लू इकोनॉमी में भी दोनों देश अपनी साझेदारी बढ़ाएंगे। इसके अलावा सफेद बर्फ वाले आर्कटिक क्षेत्र में भी भारत और नॉर्वे मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे में जबकि पूरी दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, भारत और यूरोप अपनी दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। नॉर्वे की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि चाहे रूस यूक्रेन की जंग का मोर्चा हो या पश्चिम एशिया का तनाव, बम धमाकों और फौज के जरिए किसी तरीके का समाधान नहीं निकलेगा। उनकी इस बात का नॉर्वे के नेतृत्व ने भी समर्थन किया।
1: और अब खबर उस सौगंध की जो गृहमंत्री अमित शाह ने ली थी और उसे पूरा भी कर दिया है। वो सौगंध थी नक्सल मुक्त भारत की। गृहमंत्री अमित शाह अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और आज वो सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। और एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सीना तान कर कह सकते हैं कि भारत अब नक्सल मुक्त है।
17: आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा सपना था जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया।
1: बस्तर में अपने दौरे में गृहमंत्री अमित शाह ने उन बहादुर जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने इस अपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं बहादुर जवानों के साथ देखिए जितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट।
18: नक्सलवाद को खत्म करने में जिन जवानों की सबसे बड़ी भूमिका रही उसको लेकर के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में मंच पर सभी जवानों को सम्मानित किया। जी हां, उसमें से सबसे ज्यादा जिनकी प्रशंसा की वो जवान थे डीआरजी के, छत्तीसगढ़ पुलिस से जुड़े हुए जवान जो तमाम कमांडो हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में तैनात थे और उस दौरान इन्होंने किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया। यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि महिला कमांडोज भी इसमें शामिल हैं जिनको की लेकर के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि ये तमाम महिला कमांडो छत्तीसगढ़ में इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और जब ऑपरेशन उस दौरान किए जा रहे थे नक्सलियों के खिलाफ तो ये सभी कमांडोज उस ऑपरेशन में मौजूद थे। गृहमंत्री ने इनकी सबकी प्रशंसा की। इसके साथ ही कोबरा कमांडो और जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उन सब लोगों की प्रशंसा करते हुए उनको सम्मानित किया।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में वक्त हो चला छोटा सा ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
20: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
21: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
22: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
23: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
24: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
25: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
13: जेके मैक्स पेंट्स।
12: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध जैसे हालात बरकरार हैं। ट्रंप ने भले ही कुछ समय के लिए युद्ध टालने का दावा किया है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि नेतन्याहू से बातचीत के बाद ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार है। ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का इशारा कर सकते हैं। उधर फिर से युद्ध के खतरे के बीच में ईरान अपने रुख पर अड़ा है। ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा अटैक हुआ पूरी ताकत के साथ पलटवार होगा।

0: getting ready to do a very major attack tomorrow.
1: जब ईरान में फिर से तबाही का प्लान तैयार था, ट्रंप नेतन्याहू के बीच क्लियर बातचीत हो चुकी थी, मिसाइल हमले के टारगेट सेट थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए ईरान में विध्वंस टाल दिया?
0: Getting ready to do a very major attack tomorrow.
1: आखिर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है? क्या ट्रंप को ईरान के फिर बातचीत के टेबल पर आने का भरोसा है, या फिर ये भी ईरान में बड़ी बर्बादी के प्लान का ही हिस्सा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना आज ही ईरान पर बड़ा और विनाशकारी सैन्य हमला करने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे रोक दिया गया। ट्रंप ने दावा ये भी किया कि खाड़ी के तीन शक्तिशाली देशों के नेताओं के सीधे हस्तक्षेप के बाद हमले की योजना को कुछ समय टाल दिया गया।
0: Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: तो क्या ईरान पर अचानक हमला टालने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस समय पर्दे के पीछे अमेरिका ईरान में बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं, क्योंकि कतर, यूएई और सऊदी तीनों ही देश खाड़ी में खासा प्रभाव रखते हैं और उनके दखल से ही हमले की योजना टली है। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर फिर से बम बरसाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं और फिर से युद्ध छेड़ने से पहले तमाम देशों को भरोसे में ले रहे हैं। युद्ध भले ही कुछ समय के लिए टला हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया रुख से साफ है कि जंग का इशारा कभी भी हो सकता है। कभी भी मध्य पूर्व में फिर से जंग की आग धधक सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाला हमला टाल दिया है, लेकिन वो अब भी आर पार के मूड में है। राष्ट्रपति ट्रंप आज सिचुएशन रूम में सुरक्षा टीम के साथ महाबैठक करने वाले हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन विटक्लिफ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल कीन समेत कई आला सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। आज की बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले का पूरा खाका तैयार हो गया है, टारगेट भी सेट है, जमीनी तैयारी हो चुकी है और दोनों देशों के बीच में फिर से युद्ध वाली स्थिति बनती जा रही है। इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक युद्ध टालने की बात कही। कुछ जानकारी से दोनों देशों के बीच समझौते का आखिरी प्रयास मान रहे हैं। ट्रंप के रुख से साफ है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर भीषण हमला तय है।
1: जब ईरान से दोबारा युद्ध का प्लान तैयार हो रहा है, जब ईरान पर बड़े हमले से पहले बैठकों और रणनीति का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले से पहले ट्रंप की प्लानिंग के दो सबसे अहम बिंदु हैं। पहला, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बहाली और दूसरा, ईरान में तय ठिकानों पर बमबारी। पहले ऑपरेशन का मकसद ईरान पर हमला कर फिर से तबाही मचाना है, वहीं दूसरा अभियान ईरान में जमीन के अंदर छिपे परमाणु भंडार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत अटकने का ये सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है।
3: I would rather get it, but We have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We had the other day, there was a man that tried to get into the chute. You know, we saw there was a door that was blown to smithereens. And we know everything that's happening. If they ever moved on, and I told them that, if they have send a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs, and that's going to be the end of that. They won't do it. I said, we have 9 cameras on that site. On those 3 sites, 24 hours a day. We know exactly what's happening.
1: एक चर्चा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की दोबारा बहाली की भी है, ताकि होर्मुज रूट के जरिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, जिससे ट्रंप अपने देश में ये दिखा सकेंगे कि उन्होंने कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही बाधित है, हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान से सीजफायर हुए 40 दिन बीत गए हैं, डील का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। अब ट्रंप को ये फैसला लेना है कि क्या ईरान पर फिर से बम बरसेंगे या बातचीत का रास्ता निकलने की एक आखिरी कोशिश होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसे लेकर ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। अगर हर कूटनीति फिर फेल हुई तो जल्द ही मध्य पूर्व में फिर युद्ध की घड़ी आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: दोनों देशों में जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि परमाणु हथियार का लक्ष्य उसे हर हाल में छोड़ देना चाहिए। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान जल्द से जल्द लड़ाई का अंत चाहता है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अब व्हाइट हाउस से जारी इस बयान से ठीक पहले ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में तेहरान संघर्ष का स्थायी समाधान, अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और समंदर में नाकेबंदी हटाने की बात कही है, लेकिन ईरान शुरुआती चरण में परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चरणबद्ध तरीके से ईरान की फ्री संपत्ति से सिर्फ 25% ही जारी करने को राजी है। हालांकि ईरान का नया प्रस्ताव अब भी अंतिम समझौते के लिए जरूरी शर्तों पर खरा नहीं उतरता। तेहरान ने अपने प्रस्ताव में नाम मात्र के बदलाव किए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने पर सहमति जताई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ईरान ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है तो अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठी है और इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों के अपील पर ईरान पर होने वाला हमला फिलहाल रोका गया, लेकिन सेना अलर्ट पर है, किसी भी समय हमले के लिए तैयार है।
4: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी फिर शुरू होने वाला है, महायुद्ध। अमेरिकी फौज तैयार, कभी भी शुरू हो सकता है महाविनाश। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की ओर से अंतिम प्रस्ताव का इंतजार है। खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल रोक रखा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने अनुरोध किया कि ईरान से गंभीर वार्ता चल रही है, उनके विचार में जल्द समझौता हो जाएगा जो अमेरिका के साथ ही मध्य पूर्व और अन्य देशों को स्वीकार्य होगा। मैंने निर्देश दिया है कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षण बड़े हमले के लिए सेना तैयार रहे। ट्रंप की धमकियों और समझौते को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि संवाद का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान अपनी गरिमा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वार्ता में शामिल है, किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल फिर से व्यापक सैन्य तैयारियों में जुटे हैं। अमेरिका यदि ईरान पर हमला करता है तो इस बार सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचों और यूरेनियम के संभावित भंडार को टारगेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
2: अब अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान को महायुद्ध से बचना है तो उसके 5 शर्तें मान्य होंगी, वरना तो ईरान हमले झेलने के लिए तैयार रहे। जबकि ईरान एक तरफ तो नए युद्ध की तैयारी कर रहा है, महिलाएं भी AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, दूसरी तरफ फोर्मोस में भी ईरान ने अपने जहाजों की सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए हैं।
1: डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करके आ गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम होने के बजाय महायुद्ध के खतरे तक पहुंच रही है, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार स्थायी रोक के बजाय 20 साल के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने की बात कही। साथ ही ईरान को चेतावनी दी कि उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी। एक तरफ तो अमेरिका ईरान से 5 शर्तें मनवाने के लिए पूरा दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के हैंडल पर भी युद्ध छेड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडे वाला मध्य पूर्व का एक मैप पोस्ट किया, जिसमें सभी दिशाओं से ईरान में दाखिल होने का निशान दिख रहा है। क्या ये ईरान में चारों तरफ से जमीनी सैन्य आक्रमण है या कुछ और? चूंकि ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने AI से बनाई गई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो दिखा रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन और लेजर की मदद से समंदर के ऊपर बनराने वाले ईरानी विमान और समंदर का चक्कर लगाने वाली ईरानी बोट नष्ट की जा चुकी हैं। इनके अलावा ट्रंप एक AI जनरेटेड वीडियो में ईरान के विमान को बटन दबाकर उड़ाने की एक्टिंग करते दिख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच AI युद्ध। अगर ट्रंप ने ईरान पर AI से बनी तस्वीरों और वीडियो से निशाना साधा, तो ईरान ने भी ट्रंप पर फिल्मी तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए फिल्म द अप्रेंटिस का एक वीडियो शेयर किया है। ये फिल्म ट्रंप के शुरुआती करियर पर आधारित है। वीडियो में ट्रंप के मेंटोर रॉय कोहन जीतने के नियम बताते नजर आ रहे हैं। इसमें कहा गया है, चाहे कुछ भी हो, जीत का दावा करो और कभी हार मत मानो। वीडियो में ये भी कहा गया है कि सफल होने के लिए इंसान को किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार रहना पड़ता है। चूंकि ट्रंप लगातार ईरान पर जीत के दावे कर रहे हैं, लिहाजा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके ही जीवन पर बनी फिल्म की क्लिप को पोस्ट कर उन्हें बेनकाब करना चाहा है। हुर्मुज़ पर ईरान ने किया अमेरिकी दावों का खंडन। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि हुर्मुज़ जल डमरू मध्य अब IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। उसने ये ताज़ा वीडियो जारी कर दिखाया है कि हुर्मुज़ में ईरान ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। ईरान का कहना है कि किसी भी तरह की आवाजाही के लिए ईरानी पक्ष यानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होगा। IRGC की नौसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि वो हुर्मुज़ जल डब्लू मध्य पर अपने नियंत्रण और अधिकार के दायरे का विस्तार कर रही है। उनका कहना है कि हुर्मुज़ जल डब्लू मध्य अब पूरी तरह से IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि किसी भी सैन्य जहाज या पोत को इस जल डब्लू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मित्र देश के जहाजों और पोतों को तो यहाँ से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन विरोधी देशों के जहाजों को इस जल डब्लू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। पिछले 2-3 दिन में लगभग 30 से 40 जहाज और पोत इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर चीनी कंपनियों के थे। समंदर में ईरान का नया टैक्स सिस्टम। अब ईरान का इरादा है कि वो हुर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले इंटरनेट केबल के बदले एक फीस वसूलेगा। अगर इस फीस को देने से इनकार किया गया तो उसने यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को तबाह करने की धमकी दी है, जो इसी इलाके से होकर जाती है।
5: अगर ऐसा हुआ तो बैंक डिजिटल सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ठप पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों की सर्विस के ठप होने की नौबत आ सकती है। ईरान की महिलाओं ने उठाई AK-47 असॉल्ट राइफलें। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल छोड़ने और खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को AK-47 को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया गया। हाल के दिनों में ईरानी सरकारी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां आम नागरिकों को सैन्य तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े वीडियो भी जारी कर रही है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC ट्रेनर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए थे। यानी ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका से टकराने को तो तैयार है, लेकिन अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। खासकर एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ईरान अपनी नीति और नियत पर अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयारी में जुटा है, और भले ही ईरान को पहले के हमलों में भारी नुकसान हुआ हो सैन्य अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंद दूसरी तरफ लागू हुए, लेकिन तेहरान ने अपनी रणनीतिक क्षमता का पूरा हिस्सा बचाए रखा है और इसी के दम पर मजबूत जवाबी कार्रवाई का दम भी ईरान भर रहा है।

0: अमेरिका इसराइल फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, रणनीति बन रही है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर से युद्ध संकट के बीच ईरान की तैयारी क्या है? अगर फिर से भीषण हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा? क्या अमेरिका इसराइल के हमले से पहले वो बातचीत की मेज पर लौटेगा? क्या फिर से युद्ध का और भी खतरनाक मोर्चा खुलेगा? जंग की शुरुआत से सीजफायर तक ईरान का रुख एक जैसा है। दावा यही है कि हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एक बार फिर युद्ध टालने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। दरअसल तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए 5 शर्तें सामने रखी हैं और इन्हीं शर्तों को लेकर दोनों देशों में बातचीत अटकी हुई है। ईरान की मांग है कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान खत्म हो, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। अमेरिका इन शर्तों पर राजी नहीं और ईरान का रुख नरम नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान ने कहा है कि दुनिया अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि दुनिया के बदलावों को ईरान ने तेज किया और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। ऐसे बयानों से साफ है कि ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हट रहा और ऐसे में अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Owning a home is full of surprises, some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी, कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में शुभेंदु सर।

कार। भवानीपुर में कहा दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत चार लोगों की फाइल खुलेगी, लूटने वाले नहीं बचेंगे। यूपी के बिजनौर से जम्मू कश्मीर गए नाबालिग के धर्म परिवर्तन से हड़कंप, 5 तक की खबर के बाद एक्शन में यूपी पुलिस, कुपवाड़ा जाएगी यूपी पुलिस की 3 टीमें, कड़े रैकेट का शक। एक हफ्ते के भीतर फिर बड़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे, डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा।

लीटर महंगा, राहुल गांधी का निशाना कहा लोग परेशान है और पीएम विदेश घूम रहे हैं। वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे ट्रंप, मीटिंग से पहले कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला, तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल ही नहीं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। रुक करेंगे नॉनस्टॉप 100 का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Acoje, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
0: पश्चिम एशिया संकट का असर अब भारत में दिखने लगा है। सरकारी तेल कंपनी ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में की बढ़ोतरी। इस बार पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी। कंपनी ने एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाए दाम। दिल्ली पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98.64 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। डीजल की कीमत 91.58 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए, डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए किराया बढ़ाया, 3-3 रुपए दाम बढ़ाया। इसके अलावा सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साइकिल से किया सफर। स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का दिया संदेश। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में साइकिल से पहुंचे मंत्री, दिया फिटनेस और पर्यावरण का संदेश। हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, पेट्रोल डीजल बचाने से ज्यादा चलाएं साइकिल। गुजरात के बनासकांठा में पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल डीजल की कमी के कारण किसानों और वाहन चालकों को हो रही है दिक्कत। राजस्थान के पाली में पेट्रोल पंप द्वारा ड्रम में डीजल नहीं देने पर ग्राहकों ने की जमकर मारपीट, पेट्रोल की हो रही किल्लत। मनीष सिसोदिया ने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कहा, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, रुपया गिर गया, लेकिन एक भी क्षेत्र में मोदी जी कौशल नहीं दिखा पा रहे। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग लागू। भवानीपुर में गरजे शुभेंदु अधिकारी, बोले घुसपैठियों को जब देश से बाहर भेजने का समय आ गया है, मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूं, 4 लोगों की संपत्तियों की होगी जांच। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी पर सबक सिखाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी, अब समय आ गया है डिपोर्ट करने का। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आरजी कांड के असली दोषियों को मिले कड़ी सजा, सज्जुद दबाया नहीं जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला, बहन अभिया को न्याय मिले। शुभेंदु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उठाई मांग। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी धार्मिक हफ्ते बंद करने का ऐलान किया। अब छात्रों को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस के डीएसपी और टीएमसी करीबी शांतनु सिन्हा विश्वास के कालीशान घर का पता चला है। बीजेपी का आरोप, शांतनु सिन्हा विश्वास के हाल ही के घर में 2.5 करोड़ रुपए की मरम्मत की गई। पश्चिम बंगाल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेगी, सरकारी दफ्तरों को खर्च घटाने के आदेश। यूपी में सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी, सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को सख्त संदेश, का अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। पासपोर्ट केस में रणदीप सिंह सुरजेवाला की बड़ी मुश्किलें, क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। कर्नाटक में कल से होने वाली ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर रोक, हाईकोर्ट की सलाह, पहले सरकार से करें बात। लखनऊ में वकीलों के लाठीचार्ज मामले में वायरल तस्वीर में मौजूदा वकील को भेंट की गई, रामचरित मानस अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर की। पहली बार बस्तर में हो रहे सेंट्रल जोनल काउंसिल की अहम बैठक, अमित शाह कर रहे हैं अध्यक्षता। बस्तर बना राष्ट्रीय नीति का केंद्र, 4 राज्यों के सीएम मौजूद, योगी आदित्यनाथ, सीएम विष्णु देसाई, सीएम मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी रहेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डॉग बाइट मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने साफ कहा, यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज की, सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। यूपीएससी एग्जाम में बड़ा बदलाव, अब प्रीलिम्स में तुरंत बाद आएगी आंसर की। लातूर नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज, आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 पहुंची। पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति सख्त, एनटीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होंगे, विदेशी दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, पिछले 12 वर्षों में भारत का आर्थिक डीएनए पूरी तरह से बदल गया है। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा रही बेहद खास, ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर बनी सहमति। नॉर्वे के दिग्गज सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात, भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर

मजबूत साझेदारी बढ़ाने पर मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ पीएम मोदी का विदेशी दौरा, कल तक जारी रहेगा। अब इटली दौरे पर दुनिया की नजर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू का प्रकोप, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हीट वेव की स्थिति जारी। उत्तराखंड में हीट वेव का हाई अलर्ट, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। हीट वेव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित, अस्पतालों में ORS, IV फ्लूइड, दवाई और विशेष बेड की व्यवस्था करने के निर्देश। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव। जलभराव से यातायात प्रभावित, कई जगहों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। बिहार के 3 जिलों में 45 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, कैमूर, बक्सर, रोहतास के हीट वेव का रेड अलर्ट, बक्सर में स्कूल बंद। वाराणसी में तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार, 25 मई तक स्कूल बंद। वाराणसी में बढ़ते तापमान के चलते गंगा घाटों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है पारा, 44 डिग्री पहुंचा तापमान। तापमान बढ़ने से सड़कों पर सन्नाटा, गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं पेड़ का सहारा। श्रीनगर में उमड़े पर्यटक, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए किया घाटी का रुख। आवड़ा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू किया ध्वस्तीकरण, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। हावड़ा नगर निगम वार्ड 44 में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, प्रशासन ने कहा अवैध इमारतों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के बंदरगाह से मर्चेंट नेवी का अफसर लापता, मिर्जापुर में रहने वाला था शख्स, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। गुजरात में गीर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 आवारा कुत्तों ने किया एक बच्चे पर हमला। यूपी के बिजनौर में रहने वाले नाबालिग लड़के का जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला, 17 साल के लड़के को पढ़ाया कलमा। रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था नाबालिग, परिवार वालों का आरोप, जबरन उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया। परिजनों के मुताबिक अचानक एक ज्ञात नंबर से उनके पास कॉल आया, वीडियो मैसेज आया। वीडियो में किशोर को इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर की एक मस्जिद की ओर से जारी घोषणा पत्र में किशोर की इच्छा से इस्लाम स्वीकार करने का दावा किया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है, स्थानीय हिंदू संगठनों ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सिकंदराबाद में बीजेपी के नगर पालिका में चेयरमैन का बयान वायरल, टीएमसी सांसद पर सर काटने पर 1 करोड़ के नाम की थी घोषणा। विवादित बयान पर बीजेपी नेता ने कहा वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, छवि खराब करने की कोशिश है। द्वारका में कार में आग लगने से पिता और बेटी की मौत, मां घायल। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट गैंग का भंडाफोड़, राहगीरों और टैक्सी ड्राइवर्स को लूटने वाले 5 हाथियों बाद बदमाश गिरफ्तार। बलिया में एक मेडिकल स्टोर की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के शहजाद बाग और इंद्रलोक के पास कूलर मार्केट में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, प्रशासन की डिमोलिशन ड्राइव शुरू। नर्मदा में बस ड्राइवर की लापरवाही, बीआरपी का चला रहा था वाहन, ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया। गाजियाबाद में रेप आरोपी के जेल से बाहर आते ही रोड शो, समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, जमानत पर रिहाई के बाद फूल मालाओं से स्वागत, वीडियो वायरल। पटना में 27 लाख लूट मामले, पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। अहमदाबाद में 1.5 करोड़ रुपए के गहने चुराकर भागी युवती गिरफ्तार, प्रेमी ने दिया धोखा, 1 करोड़ के गहने लेकर फरार। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास की अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा गरीब नगर में ये कार्रवाई की गई। मुंबई में करीब 400 अवैध ढांचों को तोड़ा जा रहा है, ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रानीखेत के जंगल में लगी भीषण आग, संसाधनों के अभाव में फायर कर्मियों को पेड़ की टहनियों से बुझानी पड़ी आग। हरियाणा में एक युवक को सोशल मीडिया पर गौवंश को लेकर आपत्तिजनक वीडियो पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया सबक। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर, शुरुआती ट्रेड में 18 पैसे की गिरावट। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई आम की 14 किस्में। पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर, आम्रपल्ली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबारी, जमादार, काला जमादार, हापुस और तोतापुरी शामिल। ग्राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों के उपयोग करके 14 किस्मों को उगाया गया। आम के पेड़ को देखने के लिए लग रही भीड़। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य में युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। रजौरी में बह रही है विकास की बयार, नए पुल से ब्लॉक सैरी और ब्लॉक लामबेड़ी के बीच बेहतर संपर्क। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स होगी लखनऊ सुपर जायंट्स के आमने सामने, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। राजस्थान रॉयल्स अब भी आईपीएल के प्लेऑफ की रेस में, हालांकि लखनऊ के लिए सम्मान बचाने की लड़ाई क्योंकि वो पहले से ही बाहर हो गई है। राजस्थान रॉयल्स ने पिछले 5 मुकाबले में 4 गंवाए हैं, 3 मैच हार चुकी है। इस सीजन राजस्थान लखनऊ की टीम आमने सामने दूसरी बार होंगी, इससे पहले 22 अप्रैल को इकाना स्टेडियम में हुआ था मुकाबला। दोनों टीमों के बीच राजस्थान का पड़ाव भारी दिख रहा है, अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में 5 मैचों में जीत हासिल की है। सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल फिल्म 7 डॉग्स में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्शन सीन करने के लिए इस्तेमाल हुआ 21,000 लीटर पेट्रोल। भूत बंगला ने दुनिया भर में तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन की वर्ल्ड वाइड कमाई पछाड़कर किया 276 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस में राजा शिवाजी की दहाड़, सैराट की 90 करोड़ की कमाई को 17 दिन में पछाड़कर मराठी नंबर 1 हाई एंड ग्रॉसिंग फिल्म बनी।
इंडियन आर्म कोर की 45 कैवलरी की मानद सदस्य सम्मानित हुए ईशान खट्टर। फिल्म पिपा में कैप्टन बलराम सिंह मेहता का किरदार निभाने के लिए मिला सम्मान। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने श्री रविशंकर की गौशाला का किया दौरा। कपिल ने गौशाला की सफाई की, गायों को चारा खिलाया, वीडियो वायरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर मंगलवार को होने वाले सैन्य हमले को रोक दिया गया है। कतर सऊदी अरब के नेताओं ने हमला रोकने की मांग की थी। ईरान के संयुक्त सैन्य कमांड के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा सेनाएं ट्रिगर पर हाथ रखे हुए, किसी भी नए आक्रमण का तेजी से जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा तेहरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा, संवाद का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। अमेरिका के सैनडियागो में दो किशोर हमलावरों ने मस्जिद में की गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश कांगो में फैले इबोला वायरस अब तक 100 की गई जान, करीब 400 लोग संक्रमित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इबोला वायरस को लेकर चिंता व्यक्त की, कहा मुझे लगता है फिलहाल ये अफ्रीका तक ही सीमित है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को कोर्ट से तगड़ा झटका, ओपनएआई के खिलाफ उनका $150 अरब का हाई प्रोफाइल मुकदमा खारिज। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने गाजा को सहायता पहुंचाने वाले जहाजों के काफिले रोकने में कड़ी निंदा की, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल के अवैध और नियम तोड़ने वाली कार्रवाई के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। बोलीविया में आर्थिक संकट के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, राजधानी लापाज में पुलिस और विपक्षी प्रदर्शनकारियों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा। इराक के नजफ शहर में धूल भरी आंधी चली, आसमान हुआ लाल, दिन में छाया अंधेरा।

0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के तुषार शर्मा मौत मामले में सस्पेंस अब भी बरकरार है। जहां एक तरफ तुषार शर्मा के परिवार ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए, तुषार शर्मा ने जिस रोज कथित तौर पर खुदकुशी की थी उस दिन का एक्सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वीडियो में तुषार शर्मा को छत पर जाता हुआ देखा जा सकता है। कुछ देर बाद तुषार को उसका पति समर सिंह और दो अन्य लोग सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में सीढ़ियों पर तुषार को सीपीआर देते हुए भी देखा जा सकता है। 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में तुषार फांसी पर लटकी पाई गई। मायके वाले इसे दहेज हत्या का मामला बता रहे हैं, जबकि ससुराल वाले इसे सुसाइड कह रहे हैं। इस विवाद मौत में इतने दिन बाद भी अब तक तुषार के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। तुषार शर्मा की बहन नैना शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नैना, जिस तरीके से ये मामला आगे अब तक बढ़ा है, क्या कार्रवाई से आप या आपके परिवार वाले संतुष्ट हैं अब तक?
1: मैं उसकी कजिन हूँ और मेरा नाम नैना है, घर का वैसे गरिमा नाम है। और जो कार्रवाई चल रही है मैम, जिस तरीके से, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप तो अभी ये 5 दिन के बाद वाले फुटेजेस देख रहे हैं और कार्रवाई देख रहे हैं। ये जो डे वन से चला है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड केस था। हमें एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए 4 घंटे महिला थाने में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। FIR दर्ज नहीं हुई थी। लड़का संदीप, जो मेरी बहन की जो ये बॉडी है, ये घसीटते हुए लेके नीचे आ रहा है, कैमरे पे ये CPR दे रहा है। जहां पे मेरी बहन की हत्या हुई है वहां पे कोई भी CCTV कैमरा क्यों नहीं है? मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था, ये हेडफोन लेके गया। CCTV में तुषार जाती हुई दिख रही है, लेकिन CCTV में ये लोग जाते हुए नहीं दिख रहे। ये लोग बॉडी को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बॉडी का वेट भारी है जिसकी वजह से ये बॉडी को उठा नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी बहन में थोड़ी बहुत भी जान होती तो ऐसे घसीट के नहीं लाता। और कौन पति अपनी बीवी को ऐसे घसीटते हुए, जहां पे उसका देखिए आप टॉप भी उसने ढंग से उसका ढका नहीं है। मेरे को खुद देखने में इतना गुस्सा आया था कि थोड़ी बहुत तो तू लाज या शर्म रखता, अपनी बीवी को लेके नीचे तू घसीटता हुआ ला रहा है। तेरे को इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि मेरी बहन को ठकी देता। और उसका पेट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लोटेड लग रहा है, वो दिख रहा है कि उसका पेट ब्लोटेड है। जब वो ऊपर गई है तब वो एकदम सही दिख रही है, लेकिन नीचे आते हुए उसका शरीर एकदम से भारी हो गया है। और कार्रवाई की बात की जाए तो समर सिंह जिस दिन मेरी बहन को लेके उसकी बॉडी को लेके जब वो पहुंचा है हॉस्पिटल, उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है, पंचनामा करके वो चला गया है। और पंचनामा के कुछ समय बाद वो वापस आया है और उसके बाद से वो वहां से फिर गया है। उसके बाद से हमने उसको कभी देखा ही नहीं है कि वो है कहां।
0: नैना, क्या त्विशा ने आपको भी कोई व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे? कोई डिस्ट्रेस उनके मैसेजेस में दिखाई दे रहा था?
1: मैम, उसने अपने किसी भी क्लोजेस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया शादी के बाद। वो सिर्फ अपने कनेक्शन में जो थी, अपने माँ बाप के साथ थी और अपने भाई भाभी के साथ थी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मेरे को लगता है कि शायद वो हम लोगों को पर्सनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड। उसने यही सोचा होगा कि मैं क्यों अपनी बहन को डिस्टर्ब करूं। और जो भी हमें बताया गया था उसकी शादी में कि एवरीथिंग वॉज फाइन। और जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर उसके मन में कुछ चल भी रहा होगा, अगर मैंने उसे फोन भी किया होगा, तो वो कभी मुझे नहीं बोलेगी कि बहन मैं अभी परेशान हूँ। वो चाह रही होगी कि ये चीजें ठीक हो जाए। टाइमलाइन अगर इसकी शादी की देखें, इसकी शादी के कुछ ही महीने बाद इसकी भाई की शादी हुई और उसी बीच में मेरे मामा जी को हार्ट अटैक भी आया। तो आधा समय इसका उसी चीज में निकल गया, शादी में, हार्ट अटैक में, ट्रैवलिंग में, जो भी ट्रैवलिंग के एलिगेशन लगाए हैं कि इसने कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग की है।
0: नैना, क्या आप इस बात पर क्लैरिटी दे सकती हैं, जो ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कि त्विशा ड्रग एडिक्ट थी, लंबे समय से ड्रग्स ले रही थी, ये आरोप दरअसल खुद को सिर्फ बचाने के लिए है? क्या वाकई वो आरोप ये सिद्ध कर सकते हैं? कुछ है ऐसा उनके पास, या फिर बेमतलब अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं?
1: मैम, मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई एविडेंस है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी। वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करें। वो क्यों भागे मैम? इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे। अगर ऐसी कोई चीज होती ये बहुत पहले ही आ गई होती। और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है? इनको तो सब पता होगा, ये तो सब कुछ पता। जब ये प्रीमेडिटेट मर्डर कर सकते हैं, तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है। अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में। ये तो इनके कहने पे आई है, ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव।
0: दो और सवाल आपसे नैना, क्या जो त्विशा का अबॉर्शन था वो फोर्स्ड अबॉर्शन था या उसकी मर्जी से था? और दूसरा मेरा सवाल कि अगर इतने डिस्ट्रेस मैसेजेस अपने पेरेंट्स को उसने किए, माँ को किए, पिता को किए, तो उसे वापस नहीं आ जाना चाहिए था? लाइफ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है।
1: मैम यस ऑन दैट आई वुड लाइक टू क्लियर कि वो 15th मई को आ रही थी। आप समझिए उसके भाई की शादी मार्च में हुई है, अप्रैल तक उसने इस चीज को बाईपास किया है, इस चीज को मतलब कोशिश किया कि ये चीज ठीक हो जाए। उसके मैसेजेस भी है, उसमें भी उसका यही कहना है कि मम्मी मैं इनसे बात करूंगी, आप मत आना, मैं वैसे भी 15 तारीख को आ रही हूँ। अगर बात रही अबॉर्शन की, जो ये बात है, कौन लड़की ऐसे इंसान का बच्चा चाहेगी जो ऑलरेडी उसको मेंटली अब्यूज कर रहा है? दैट कुड बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिस वजह से उसने चाहा होगा कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, अदरवाइज उसको भी ये मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मैं 6 साल की उम्र से उसको जानती हूँ, उसने मेरे साथ पर्सनली बहुत बार, हम बहनों ने शेयर किया है कि हाउ मच शी वॉन्टेड अ चाइल्ड एंड अ नॉर्मल फैमिली एंड शी वॉज सो हैप्पी वेन आई गॉट मैरिड। वो आ नहीं पाई क्योंकि उसके भाई का पासिंग परेड था देहरादून में, और ये लोग कह रहे हैं मेरा भाई फर्जी फौजी है, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन उसका पासिंग परेड था देहरादून में, वो कैसे फर्जी हो सकता है? देहरादून के आए
0: ना, एक बार ट्रिशा की सास क्या कुछ कह रही है, गिरिबाला सिंह ने अपने बचाव में और अपने बेटे के बचाव में क्या कुछ कहा है, वो अपने दर्शकों को सुना देते।
1: हाँ जी,
2: इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिरिबाला सिंह जी, बात करने के लिए। जो आरोप तुषा के परिवार की तरफ से लगाए गए थे, काफी कुछ बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल कही, लेकिन परिवार अभी तक अंतिम संस्कार नहीं करवाने के लिए शव ले रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? क्योंकि अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया।
3: मुझे तो ऐसा लगता है जस्ट माउंटिंग प्रेशर, दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता है हमारे साथ हो, जबकि हमारा तो एक उसूल रहा है कि जो हमारे पास आया, हमारे संसर्ग में आए, लोग कहते थे आपका तो माइडस टच है, जो जो आपके संसर्ग में आता है उसका कुछ बेहतर ही बन के जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को यही गलत फहमी थी कि बच्चे के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है।
2: आपने मैम कल भावुक होते हुए ये भी कहा था कि हर परिवार चाहता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, और कल जब प्रेगनेंसी को लेकर के आपने बात की, उस वक्त आपने भावुक होते हुए ये भी कहा कि बच्चा वो चाहती नहीं थी और इसलिए उसने MTP ट्रीटमेंट लिया।
3: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
2: सिज़ोफ्रेनिया का कब पता चला मैम?
3: एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी ओलिज़ेप्राम, अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दीज पेशेंट्स, मैनिक डिप्रेशन एंड सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं उस दिशा में, तो इसलिए वही कर बता पाएंगे। यस,
2: आप लोगों ने 8 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर किए, जिसकी बैंक डिटेल्स भी आपने कोर्ट में सबमिट कराई हैं। क्या आपके एडवोकेट की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि बैंक डिटेल्स निकलनी चाहिए तुषार?
3: बिल्कुल निकलनी चाहिए, वी नीड टू नो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है।
2: लोगों के ऊपर 2 लाख का आरोप लगाया उन्होंने,
3: और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो UPI ट्रांजेक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? 2 लाख इज माई सैलरी, तो हम क्यों मांगेंगे एक इस तरह से पैसा जब हम ऐसे।
0: तुषा की मदर इन लॉ यानी कि उनकी सास को सुन रहे थे आप। नैना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि उनकी कजिन है। नैना, आप जाहिर तौर पर ये सब कुछ सुन पा रही होंगी जो गिरिबाला सिंह कह रही हैं। जाहिर तौर पर अपना अपने बेटे का बचाव करना स्वाभाविक है, लेकिन जो स्विट्जोफेनिया, डिप्रेशन, मैरिजुआना कंजम्पशन का आरोप उन्होंने लगाया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो मलाइन करना चाहती है, बताना चाहती है कि तुषा दिमागी रूप से ठीक नहीं थी इसलिए उसने सुसाइड किया?

0: नैना आपने मेरा सवाल सुना था
1: यस, मैंने आपका सवाल सुना था एंड
0: जी।
1: आई वुड एक चीज मुझे हाईलाइट करनी है. मुझे ये जिस तरह से तैयार होके आ रही है ना, तरह तरह की साड़ियां पहन के, मुझे बहुत ही, मेरे को हैरानी हो रही है कि इनके पास इतना समय है कि ये पूरा अपने आप प्रेजेंटेशन करके आ रही है. दूसरी बात, स्किज़ोफ्रेनिया मैरिजुआना की बात की है इन्होंने. ये लॉयर, ये रिटायर्ड जज है, हस्बैंड लॉयर है. इनको अगर ये लगा था ये स्किज़ोफ्रेनिक बंदा 6 महीने में नहीं हो जाता. इट्स अ कंडीशन, इट्स अ वेरी वेरी वेरी डीप एलिगेशन दे आर पुटिंग ऑन माई सिस्टर कि इसको मेंटल कंडीशन थी, और इस मेंटल कंडीशन का स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का डिसऑर्डर है. अगर इस तरह का डिसऑर्डर होता है ना आदमी के अंदर, तो वो पूरा, मतलब यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने पूरा कोहराम मचा रखा होगा. और इतने कोहराम में ये रह रहे थे, इतने शांति से. अगर आप सीढ़ियों में भी उसको चलते हुए देख रहे हो, तो वो बड़ी कामली चल रही है. वो अपने व्हाट्सएप चैट्स पे भी बहुत कामली बात कर रही है. अगर इनको लगा था कि 6 महीने में भाई ये लड़की कहाँ से स्किज़ोफ्रेनिक है, तो इन्होंने क्यों नहीं बताया वेयर इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन गिरिबाला एंड माई मामी, वेयर दे आर सेइंग दैट कि शी इज नॉट मेंटली फिट टू बी इन हर फैमिली. एंड ऑल्सो मारुआना, इतना सारा मारुआना एक क्रिमिनल लॉयर के घर में आ रहा है, एक रिटायर्ड जज के घर में आ रहा है, एंड इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया.
0: ये जो
1: दे वर
0: सीसीटीवी
1: फूल्ड.
0: फुटेज आया है ये सिलेक्टिव है क्या? जितना वो दिखाना चाह रहे हैं उतना ही सबमिट किया गया है। और दूसरी बात ये कि अगर इनका बेटा इतना ही पाक साफ है तो इस वक्त फरार क्यों है?
1: यस मैम, ये तो मेरे को मीडिया का भी, मीडिया के लिए तो थैंकफुल हूं मैं कि उन्होंने ये भराया है. एंड सेकेंड बात ये है कि अगर ये, आई वॉज कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो फुटेज है, इस फुटेज में आप देखेंगे कि ये ऊपर गई है, लेकिन इन तीनों का, इनके जो दो हाउस हेल्प है जिनको तो बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए, दोनों हाउस हेल्प है कहाँ, और उसके बाद तीसरा हाउस हेल्प है जिसने फिरोजी रंग का टी शर्ट पहना, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए. फिर गिरबाला जी अपने रूम से आती है, जबकि गिरबाला जी का कमरा जो मुझे बताया गया नीचे है, तो ये ऊपर क्या कर रही थी? तो ये ऊपर कमरे से निकली है और इनके हाथ में एक बैग है और जो एक रोप सा निकल रहा है बाहर. तो ये जो सीपीआर दिया गया है, ये पूरा शो है जिससे कैमरा कैच कर ले कि ओ मैंने अपनी वाइफ को सीपीआर दिया है. ठीक है, ये पूरा शो पुटअप किया. और इस तरह से कौन सीपीआर देता है कि आधा शव उसका धड़ ऊपर है और टांगे नीचे, और ये कहाँ सीपीआर दे रहा था फिर उसको? पूरी टी शर्ट उसके ऊपर है, पेट उसका ब्लोटेड है. ये सारा मैम पुटअप शो है,
0: ठीक
1: ये
0: है,
1: कुछ और नहीं है.
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नैना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम डिटेल्स बताने के लिए। फिर नैना शर्मा जो बता रही थी कि ट्विशा की जो मौत है उस पर सस्पेंस बना हुआ है और यही वजह है कि अभी तक शवदाह नहीं किया गया है परिवार वालों द्वारा। वक्त एक ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Pros, save more on the materials you need to get the job done, inside and out, at Lowe's. Right now, get 10% off in-stock Trex Naturals decking, now available in more styles. Plus, get 15% off select custom entry, interior, and storm doors. Then, we'll deliver it all straight to your job site to help keep your jobs moving. Get the brands pros trust, priced right, and ready when you need them. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 527. While supplies last, selection varies by location.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
6: जेके मैक्स पेंट्स।
10: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
11: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: Like I said before, we better hold the sins.
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
15: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
14: आप कैसे कर लेते हो?
16: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
15: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
16: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी।
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: सभी का स्वागत है, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। त्रिशा शर्मा की भोपाल में हुई संदिग्ध मौत ने सबको झकझोर दिया है। ग्लैमर वर्ल्ड से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी पहचान बनाने वाली त्रिशा की शादी के 5 महीने बाद ही मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लालच में त्रिशा की हत्या हुई, लेकिन वहीं ससुराल त्रिशा की मानसिक रूप से बीमार होने का दावा कर रहा है। इस बीच त्रिशा शर्मा ने जिस रोज कथित तौर पर खुदकुशी की थी, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उधर पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक कड़ियों को जोड़कर तफ्तीश में लगी हुई है।
1: भोपाल की त्रिशा शर्मा की मौत की गुत्थी उलझी हुई है, तफ्तीश जारी है। हर दिन इस केस में एक नई बात, नया दावा सामने आ रहा है, जो इस केस को और ज्यादा पेचीदा बनाता जा रहा है। परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं, ससुराल वालों के दावे केस को अलग एंगल दे रहे हैं। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर केस की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे पहले बात त्रिशा केस से जुड़े उस सीसीटीवी की, जिसे इस केस का सबसे अहम सुराग माना जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज 12 मई का बताया जा रहा है, यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई। इस वीडियो में त्रिशा घर की छत पर जाती दिख रही है और उसके कुछ देर बाद उसके पति और दो अन्य लोग सीढ़ियों से उसके शव को नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि सीढ़ियों पर त्रिशा को सीपीआर दिया गया था, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, आखिर इन दोनों वीडियो के बीच आखिर क्या हुआ? जिस त्रिशा ने कुछ देर पहले ही अपनी मां से बात की थी, कैसे उसकी मौत हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, या फिर इस वीडियो के पीछे कोई गहरा राज छिपा है?
2: एम्स में इसको पहुंचाया जाए बॉडी को, ताकि एक सही साक्ष्य सामने निकल के आए और आगे जो है न्याय मिल पाए लड़की को। हम इस इन्फ्लुएंस में रह करके, इस हाई कोर्ट में, इस एमपी की टेरिटरी में जहां इतने इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, हमें न्याय की उम्मीद कम है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर किया जाए और ये सीजीआई के निर्देशन में इस केस की जांच की जाए।
1: भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत का मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक रिटायर्ड जज, सास है, पति वकील है, प्रताड़ना है, ससुराल वालों पर आरोप लगाती चैट है। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में त्रिशा फांसी पर लटकी पाई गई थी। मायके वाले इसे दहेज हत्या का केस बता रहे हैं, जबकि ससुराल वाले इसे सुसाइड कह रहे हैं। इस केस में कल पहली बार त्रिशा की सास रिटायर्ड जज गिरबाला ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने त्रिशा के परिवार के सभी आरोपों को नकारते हुए त्रिशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि त्रिशा मानसिक बीमारी की दवा लेती थी।
3: उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब ही इसने एमटीपी स्वच्छ, आई मीन अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज दो तीन दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही, पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी, आई मीन विद ऑल दैट होप, हम फिर भी आगे चले उसके साथ।
1: उधर ससुराल वाले इन दावों पर त्रिशा के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं, साथ ही त्रिशा के पति समर्थ पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगा रहे हैं।
2: समर्थ उसको थ्रेट करता था, क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया था, उनकी मदर को, कि ही इज अंडर ड्रग, समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी ड्रग एडिक्ट की, और आज भी बहुत बड़े लेवल पर ड्रग कंज्यूम करते थे। तो उनकी मदर को मैंने बोला कि आप प्लीज चेक करिए अपने बेटे को, बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं वो, और इतनी ड्रग्स कर रहे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। लड़की शिकायत कर रही है कि ये इनको ध्यान नहीं रहता, ये उल्टी उल्टी करके अपने इनके जो पड़े रहते हैं ये, तो प्लीज चेक इट। तो उनको इस बात का बहुत बुरा लग गया, तो उस बात से उसको प्रताड़ित करने लगे बहुत बुरी तरीके से और बोले लगे तेरे बाप के नाक रगड़वाऊंगा मैं। मैंने बोला कि अगर बेटे मेरा किसी बात से बुरा लग गया हो बीइंग ए फादर ऑफ लड़की मैं माफी मांग लेता हूँ। ये बात आई सामने के सामने, तो ये एक पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ये अपने बेटे का ड्रामा मेरी लड़की पे थोपा जा रहा है कि जो काम वो खुद करता है वो लड़की को थोप रहा है।
1: इन आरोपों के बीच केस और ज्यादा पेचीदा हो गया है। उम्मीद है कि पुलिस की जांच पूरी होने पर केस का सच सामने आ सकेगा। रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। उनके साथ त्विशा के पिता भी मौजूद हैं। रवीश, उनसे जानने की कोशिश करिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो क्या दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उनकी मांग है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे ले जाएंगे?
4: जी बिल्कुल, क्योंकि साथ ही में मौजूद है त्विशा के पिताजी और खास तौर से ऐसे समय पे जब उनकी जो स्वास्थ्य है त्विशा की वो भी अब सामने आई है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो त्विशा के पिता जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, अब ये पूरा मामला कैसे आप आगे ले जाएंगे, सेकेंड पोस्टमार्टम हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो या सीबीआई इंक्वायरी की मांग करना हो?
2: सर, ये बहुत चिंता का विषय है कि आज हम सातवां दिन है, हम तड़फ रहे हैं न्याय के लिए। PM2 हमारी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बिफोर बॉडी डिकम्पोज हो, साचों से छेड़छाड़ की पूरा जो है कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बॉडी को शिफ्ट किया जाए और केस को भी शिफ्ट किया जाए इस स्वतंत्र जांच के लिए। SC अपनी निगरानी में इसको ले और चीफ जस्टिस इंडिया की से रिक्वेस्ट है कि वो भी संज्ञान लेकर के इस मामले में दखल दें।
4: तो सर, ये PM2 जो आप मांग कर रहे हैं इसके लिए कोर्ट में आवेदन आप कब दे रहे हैं, क्योंकि आपने बताया था कि कोर्ट से ही होना है? वो
2: यही तो उनकी चालें हैं कि आदमी का एक अधिकार है, PM2 एक अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो PM रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो PM2 के लिए जा सकता है। अगर उसके लिए इतना बड़ा जुडिशरी प्रोसेस है, जो पावर्स दूसरे लोगों को अधिकारियों के पास है कि बगैर जुडिशियल कोर्ट के भी उसको भेजा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं भेजा गया? किस इन्फ्लुएंस के अंडर इसको जुडिशियल उसके लिए एप्लीकेशन के लिए डाला गया? ये सरासर एक बड़े इन्फ्लुएंस को दिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक परमिशन निकालने के लिए कोर्ट के द्वारा इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम। टाइम का मतलब यहाँ पर बॉडी को डिकम्पोज करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं, PM2 को करना देना नहीं चाहते।
4: और सर, जो गिरिबाला सिंह अब सामने आई हैं, कल उन्होंने पत्रकारों से बात की और काफी एलिगेशन उल्टा काउंटर कर दिए उन्होंने।
2: नहीं कर, देखिए सर, एक अक्यूज्ड तो जो अक्यूज्ड है वो कभी बोलता है, एक हत्यारा कभी बोलता है कि उसने हत्या की, एक अक्यूज्ड कभी बोलता है कि उसने जो है ये अपराध किया है, वो तो अपना बचाव करेगा ही और तरह तरह के इल्जाम, वो आपराधिक पृष्ठभूमियों के माहिर हैं, उनका तो ये काम ही है डेली का कि किस तरीके से लॉ से बचा जाना है, किस तरीके से फ्रेम्स करने हैं, सारे ये सब फ्रेमवर्क है जो कि कोर्ट ट्रायल में प्रूव होना है।
4: कब होगा त्विशा का अंतिम संस्कार, ये सवाल बहुत, क्योंकि आप भी 7 दिन से यहां।
2: ये तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं सर, हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि कब होगा त्विशा का संस्कार, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी शरीर में जितनी जान है हम ताकत लगा रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है मीडिया का, पर देखिए केस लास्ट तस्मस नहीं हो रही है, इतने दिन से लाश पड़ी हुई है, कोई भी शासन इसका संज्ञान ले रहा है, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है।
4: अब उनकी सास कह रही है कि बॉडी हमें मिलनी चाहिए, पति का हक होता है अंतिम संस्कार का।
2: हत्यारों को कभी नहीं दिया जाता, ये लॉ पढ़ ले हैं वो, हत्यारों को कभी भी बॉडी नहीं मिलती है, हत्यारा करके बॉडी लेने का किसी को हक नहीं रह जाता है।
4: और सिंसोफ्रेनिया की भी शिकार बता रहे हैं त्विशा को,
2: फिर वही चालू कर दिया, हो गया कोर्ट में। तुम यार मेरे से तुम इतना सॉरी यार, सॉरी भैया,
4: कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। तो
2: कैमरा हटा लेना,
4: फिलहाल हम सर लाइव पे हैं। तो त्विशा के पिता हैं ये, काफी गुस्से में हैं क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं,
0: बहुत सारे सवाल कई बार कचोटते हैं और आत्मग्लानी से भी भर देते हैं कि सभी समय पर सही वक्त पर अगर कदम उठाए होते तो शायद एक त्विशा की जान बच सकती थी। उनकी सास गिरिबाला क्या कुछ कह रही हैं सुनिए।
4: इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिरिबाला सिंह जी, बात करने के लिए जो आरोप त्विशा के परिवार की तरफ से लगाए गए थे, काफी कुछ बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल कही, लेकिन परिवार अभी तक अंतिम संस्कार नहीं करवाने के लिए शव ले रहा है, इस पर आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया?
5: मुझे तो ऐसा लगता है जस्ट माउंटिंग प्रेशर, दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता है हमारे साथ हो, जबकि हमारा तो एक उसूल रहा है कि जो हमारे पास आया, हमारे संसर्ग में आए, लोग कहते थे आपका तो माइडस टच है, जो जो आपके संसर्ग में आता उसका कुछ बेहतर ही बन के जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को यही गलत फहमी थी कि बच्चे के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है।
4: आपने मैम कल भावुक होते हुए ये भी कहा था कि हर परिवार चाहता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, और कल जब प्रेगनेंसी को लेकर के आपने बात की उस वक्त आपने भावुक होते ये भी कहा कि बच्चा वो चाहती नहीं थी और इसलिए उसने MTP ट्रीटमेंट लिया।
5: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
4: सिज़ोफ्रेनिया का कब पता चला मैम?
5: एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी ओलिज़ेप्राम, अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दीज पेशेंट्स, मैनिक डिप्रेशन एंड सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं उस दिशा में, तो इसलिए वही कर बता पाएंगे। यस,
4: आप लोगों ने 8 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर किए, जिसकी बैंक डिटेल्स भी आपने कोर्ट में सबमिट कराई हैं। क्या आपके एडवोकेट की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि बैंक डिटेल्स निकलनी चाहिए तुषार?
5: बिल्कुल निकलनी चाहिए, वी नीड टू नो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है।
4: आप लोगों के ऊपर 2 लाख के आरोप लगाए उन्होंने,
5: और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो UPI ट्रांजेक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? 2 लाख इस माई सैलरी, तो हम क्यों मांगेंगे एक इस तरह से पैसा, जब हम ऐसे परिवार से जो हम अपना राइट्स भी रिलिंक्विशमेंट करके बैठे हैं ससुराल पक्ष से भी, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल।
4: जो एलिगेशन उनकी मां का लगा रही है कि मेरी बात हो रही थी तुषा से, अचानक से फोन कट गया, देन सडनली हाफ एन आवर के बाद पता चलता है कि वो नहीं रही, ये इन एलिगेशन।
5: मदर ने जैसे ही फोन किया हम तुरंत, हम लोग तो सब ऊपर नीचे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, कहां गई, तो अब देखा बिटिया को, तो देन वी ट्राई टू सेव हर।
0: तुषा शर्मा के ससुराल वालों ने दावा किया कि मनोचिकित्सक से तुषा का इलाज चल रहा था। आज तक भोपाल में उस क्लिनिक पर पहुंचा जहां तुषा के डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हुआ था।
4: तुषा मौत मामले में तुषा की सास गिरिबाला सिंह ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तुषा पर मानसिक रूप से बीमार होने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही सास गिरिबाला सिंह ने भोपाल के एक मनोचिकित्सक का नाम भी लिया और बताया कि इस मनोचिकित्सक के पास तुषा का इलाज भी चल रहा था। आज तक इस वक्त उसी क्लिनिक पे पहुंच गया है जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जहां पे बतौर मनोचिकित्सक हैं, इसी क्लिनिक पे बताया जा रहा है कि तुषा का इलाज चल रहा था। तुषा की सास के मुताबिक तुषा जो है वो सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी, और इसीलिए जो मशहूर मनोचिकित्सक हैं सत्यकांत त्रिवेदी, उनके पास उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, और इस वक्त हम उसी क्लिनिक पे मौजूद है। हालांकि इस बारे में जब हमने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरीके से इसमें बात करने से इनकार कर दिया है, और इस वक्त अगर आप देखें तो हम जिस क्लिनिक पे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज होता है, और इसके साथ ही मूड स्विंग एवं बाइपोलर लोग। ये मूड स्विंग जो है ये यहाँ पे हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो तुषा की सास है उन्होंने भी अपने बेल ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि तुषा जो है वो डिप्रेशन में थी, मूड स्विंग उसके होते थे, और जब भी वो दिल्ली से वापस आती थी तो उसका व्यवहार परिवार के लिए, मतलब तुषा के ससुराल के लिए, पूरे तरीके से बदल जाता था, भले ही वो तुषा की सास हो, तुषा का पति समर्थ हो। और इस बीच में हम आपको बता दें कि भले ही डॉक्टर ने इस पर बात नहीं की हो आज तक से, लेकिन हमारे पास आज तक के पास इस समय वो पर्चा मौजूद है।
0: जहां एक तरफ तुषा के ससुराल वालों ने मानसिक रूप से उसके बीमार होने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन नैना ने कहा कि उसकी बहन के खिलाफ गलत खबरें फैलाई जा रही है। नैना, जिस तरीके से ये मामला आगे अब तक बढ़ा है, क्या कार्रवाई से आप या आपके परिवार वाले संतुष्ट हैं अब तक?
6: मैं उसकी कजिन हूँ और मेरा नाम नैना है, घर का वैसे गरिमा नाम है, और जो कार्रवाई चल रही है मैम, जिस तरीके से, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप तो अभी ये 5 दिन के बाद वाले फुटेजेस देख रहे हैं और कार्रवाई देख रहे हैं, ये जो day 1 से चला है ये बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड केस था। हमें एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए 4 घंटे महिला थाने में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, FIR दर्ज नहीं हुई थी, लड़का संदिग्ध, जो मेरी बहन की जो ये बॉडी है ये घसीटते हुए लेके नीचे आ रहा है, कैमरे पे ये सीपीआर दे रहा है, जहां पे मेरी बहन की हत्या हुई है वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था, ये हेडफोन लेके गया है। सीसीटीवी में तुषार जाती हुई दिख रही है, लेकिन सीसीटीवी में ये लोग जाते हुए नहीं दिख रहे, ये लोग बॉडी को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बॉडी का वेट भारी है जिसकी वजह से ये बॉडी को उठा नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी बहन में थोड़ी बहुत भी जान होती तो ऐसे घसीट के नहीं लाता। और कौन पति अपनी बीवी को ऐसे घसीटते हुए, जहां पे उसका देखिए आप टॉप भी उसने ढंग से उसका ढका नहीं है। मेरे को खुद देखने में इतना गुस्सा आया था कि थोड़ी बहुत तो तू लाज या शर्म रखता, अपनी बीवी को लेके नीचे तू घसीटता हुआ ला रहा है। तेरे को इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि मेरी बहन को ठकी देता। और उसका पेट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लोटेड लग रहा है, वो दिख रहा है कि उसका पेट ब्लोटेड है। जब वो ऊपर गई है तब वो एकदम सही दिख रही है, लेकिन नीचे आते हुए उसका शरीर एकदम से भारी हो गया है। और कार्रवाई की बात की जाए तो समर सिंह जिस दिन मेरी बहन को लेके उसकी उसकी बॉडी को लेके जब वो पहुंचा है हॉस्पिटल, उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है, पंचनामा करके वो चला गया है। और पंचनामा के कुछ समय बाद वो वापस आया है, और उसके बाद से वो वहां से फिर गया, उसके बाद से हमने उसको कभी देखा ही नहीं है कि वो है कहाँ।
0: नैना, क्या त्विशा ने आपको भी कोई व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे? कोई डिस्ट्रेस उनके मैसेजेस में दिखाई दे रहा था?
6: मैम, उसने अपने किसी भी क्लोजेस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया शादी के बाद। वो सिर्फ अपने कनेक्शन में जो थी, अपने माँ बाप के साथ थी और अपने भाई भाभी के साथ थी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मेरे को लगता है कि शायद वो हम लोगों को पर्सनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड। उसने यही सोचा होगा कि मैं क्यों अपनी बहन को डिस्टर्ब करूँ। और जो भी हमें बताया गया था उसकी शादी में कि एवरीथिंग वॉज फाइन। और जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर उसके मन में कुछ चल भी रहा होगा, अगर मैंने उसे फोन भी किया होगा, तो वो कभी मुझे ये नहीं बोलेगी कि बहन मैं अभी परेशान हूँ। वो चाह रही होगी कि ये चीजें ठीक हो जाए। टाइमलाइन अगर इसकी शादी की देखें, इसकी शादी के कुछ ही महीने बाद इसकी भाई की शादी हुई, और उसी बीच में मेरे मामा जी को हार्ट अटैक भी आया। तो आधा समय इसका उसी चीज में निकल गया, शादी में, हार्ट अटैक में, ट्रैवलिंग में, जो भी ट्रैवलिंग के एलिगेशन लगाए हैं कि इसने कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग की है।
0: नैना, क्या आप इस बात पर क्लैरिटी दे सकती हैं, जो ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कि त्विशा ड्रग एडिक्ट थी, लंबे समय से ड्रग्स ले रही थी, ये आरोप दरअसल खुद को सिर्फ बचाने के लिए है? क्या वाकई वो आरोप ये सिद्ध कर सकते हैं, कुछ है ऐसा उनके पास, या फिर बेमतलब अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं?
6: मैम, मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई एविडेंस है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी। वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करे। वो क्यों भागे? मैम, इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे। अगर ऐसी कोई चीज होती, ये बहुत पहले ही आ गई होती। और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है? इनको तो सब पता होगा, ये तो सब कुछ पता। जब ये प्रीमेडिटेट मर्डर कर सकते हैं, तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है। अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में। ये तो इनके कहने पे आई है, ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव।
0: दो और सवाल आपसे नैना, क्या जो त्विशा का अबॉर्शन था वो फोर्स्ड अबॉर्शन था या उसकी मर्जी से था? और दूसरा मेरा सवाल कि अगर इतने डिस्ट्रेस मैसेजेस अपने पेरेंट्स को उसने किए, माँ को किए, पिता को किए, तो उसे वापस नहीं आ जाना चाहिए था? लाइफ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है।
6: मैम, यस, ऑन दैट आई वुड लाइक टू क्लियर कि वो 15 मई को आ रही थी। आप समझिए, उसके भाई की शादी मार्च में हुई है, अप्रैल तक उसने इस चीज को बाईपास किया है, इस चीज को मतलब कोशिश किया कि ये चीज ठीक हो जाए। उसके मैसेजेस भी है, उसमें भी उसका यही कहना है कि मम्मी मैं इनसे बात करूंगी, आप मत आना, मैं वैसे भी 15 तारीख को आ रही हूँ। अगर बात रही अबॉर्शन की, जो ये बात है, कौन लड़की ऐसे इंसान का बच्चा चाहेगी जो ऑलरेडी उसको मेंटली अब्यूज कर रहा है? That could be one of the primary reason जिस वजह से उसने चाहा होगा कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, अदरवाइज उसको भी ये मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मैं 6 साल की उम्र से उसको जानती हूँ, उसने मेरे साथ पर्सनली बहुत बार, हम बहनों ने शेयर किया है कि हाउ मच शी वॉन्टेड अ चाइल्ड एंड अ नॉर्मल फैमिली, एंड शी वॉज सो हैप्पी वेन आई गॉट मैरिड। वो आ नहीं पाई क्योंकि उसके भाई का पासिंग परेड था देहरादून में, और ये लोग कह रहे हैं मेरा भाई फर्जी फौजी है, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन उसका पासिंग परेड था देहरादून में, वो कैसे फर्जी हो सकता है?
0: रुकिए, यहाँ शोर से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। in association with
8: Bharat ki apni electric sawari.
9: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
10: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
9: Big 12 Radio.
11: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
9: and
11: down.
9: Talk sports.
12: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
9: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
13: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
14: It's your boy,
13: just
14: Jay-Z.
13: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
7: In association with
8: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
15: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
16: Pepsi Prebiotic Cola, in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
17: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
18: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
19: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
7: In association with
15: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

से आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी। कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। ममता राज के कथित करप्शन पर एक्शन में सीएम शुभ हिंदू अधिकारी। भवानीपुर में कहा दीदी के भतीजा अभिषेक बनर्जी की 24 अवैध संपत्तियों समेत 4 लोगों की फाइल खुलेगी, लूटने वाले नहीं बचेंगे। तुषा शर्मा की मौत पर सस्पेंस बरकरार। परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की, तो तुषा की सास ने मानसिक रूप से बीमार होने का लगाया आरोप। एक हफ्ते के भीतर फिर बड़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। राहुल गांधी का निशाना। कहा लोग परेशान हैं और पीएम विदेश घूम रहे हैं। वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे ट्रंप। मीटिंग से पहले कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला। तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल ही नहीं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सब बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। और ये बड़ी खबर है सीधे पश्चिम बंगाल से, जहां पर खबर आ रही है कि फालता से जहांगीर खान ने फालता सीट, आपको याद होगी, जहां पर काफी विवाद की खबरें भी सामने आई थी। और यहां पर बताया गया था कि 285 जो यहां पर पोलिंग बूथ थे, अब उन पर दोबारा से रिपोलिंग की खबर सामने आई थी। एक बार फिर आपको बता दें, 285 सभी 285 बूथों पर मतदान रद्द इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था। 21 मई 2026 को पूरे क्षेत्र में रिपोलिंग यानी फ्रेश पोलिंग का आदेश दिया था। 24 मई को मतगणना होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है बंगाल की फालता सीट को लेकर, ये बड़ी खबर आ रही है। अब कई तरह की खबरें आई थी, ईवीएम टेम्परिंग के आरोप लगे थे, कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को ब्लैक टेपिंग, और यह बताया था कि परफ्यूम लगाने की कोशिश की गई थी, गौन लगाने की, मास्किंग करने की कोशिश की गई थी। तपस सेन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, क्या खबर है आपके पास?
1: जी देखिए, अभी जहांगीर ने कुछ देर पहले ऐलान कर दिया कि वो फलता के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, और इसके वजह उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो इस समय नहीं लड़ना चाहते। फलता के लोगों का जो डेवलपमेंट है वो हो, ये वो चाहते हैं। क्योंकि और हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा था। जहांगीर खान खुद कोर्ट पहुंचे थे इस आशंका में कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि 26 तारीख तक एक इंटरिम रिलीफ उन्हें जरूर मिली थी, लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स दर्ज हो रहे थे, जिसको लेकर वो खासा परेशान थे। अब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है नहीं, तो कहीं ना कहीं लगता है उन पर एक बड़ा दबाव रहा होगा, एक पॉलिटिकल दबाव रहा होगा, जिस वजह से वो उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन उनके इस फैसले के पीछे क्या एग्जैक्ट कारण है, अभी भी साफ तौर पर उन्होंने ये साफ नहीं किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि फलता के लोगों का डेवलपमेंट हो, इस वजह से वो इस चुनाव में और हिस्सा नहीं लेंगे। यानी अब जो लड़ाई होना है वो कहीं ना कहीं सीधा सीपीएम और भाजपा के बीच में होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक कद्दावर नेता और जिसकी तूती बोलती थी उस इलाके में, वो अचानक इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को विड्रॉ करने का ये फैसला लेकर काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रहा है।
0: लेकिन वापस इसके पीछे की क्या कुछ वजह बताई गई, बयान सामने आया है?
1: जी देखिए, अभी फलता, ये जहांगीर खान के साथ मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि वो फलता के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, फलता के लोग भी चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ ये फैसला लिया है कि वो आगे जाकर और चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे ठीक क्या वजह है, इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि जहांगीर खान ने नहीं किया है। लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो काफी ज्यादा तनाव में थे पिछले कुछ दिनों से,
0: और इसलिए ये फैसला लिया गया है जहांगीर खान की तरफ से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से अभी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था, पहले भी कहते आ रहे थे, कि घुसपैठियों पर वो लगाम लगाएंगे, घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, और साथ ही साथ ममता बनर्जी की तरफ से जो फैसले ले गए थे उनको पलटने की भी अब तैयारी है।
2: नहीं हो, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
3: शुभेंदु अधिकारी तेजी से अपनी इमेज बदल रहे हैं। चुनाव में जो धार दिखाई थी उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। उनके फैसले, उनकी घोषणाएं, उनके शब्द बड़े गौर करने वाले हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा एक्शन पर गौर करें। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
4: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था,

0: हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए।
1: शुभेंदु पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि बंगाल की जनता को ये एहसास हो जाए कि राज्य में नई सरकार का आगाज हो चुका है। वो कानून व्यवस्था के सवाल पर सख्त अंदाज दिखा रहे हैं।
0: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा, इस सरकार देखना है सोचना है मैं नहीं।
1: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का असर सड़क से स्कूल तक दिख रहा है। सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु इस कोशिश में दिख रहे हैं कि जनता के जहन से ममता राज की यादें जल्द से जल्द मिटा दी जाए। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। आज तक ने खबर दिखाई थी कि बिजनौर के, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक लड़की का जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद माता पिता फरियाद लेकर जाते हैं। एक वीडियो वहां से आ जाता है माता पिता के पास जिसमें वो कहते हैं कि अब अपने लड़के को भूल जाओ क्योंकि उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। अब मामले का संज्ञान लेते ही पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है और अब इस मामले की जांच होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक अज्ञात नंबर से अचानक एक कॉल आता है, वीडियो मैसेज आता है जिसमें कह दिया जाता है कि अब आप अपने बेटे को भूल जाइए। तो बेहद ही गंभीर मामला और अब इस मामले में कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मामला क्या है यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। बिजनौर के एक नाबालिग लड़के के धर्मांतरण का आरोप है कि वो जो बालिग भी नहीं है, नाबालिग, वो गया था जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में काम करने जाता है, रोजगार की तलाश में जाता है, लेकिन वहां पर रोजगार मिलता है लेकिन क्या हो जाता है, धर्मांतरण उसका हो जाता है, उसको हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये वीडियो आता है, एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है, एक वीडियो आता है माता पिता के पास। अब उस वीडियो में जो नाबालिग है वो इस्लाम कबूल करते हुए साफ देखा जा सकता है और जैसे ही ये माता पिता ने देखा वो तो सीधे पुलिस के पास गए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तीन टीमें जांच के लिए कुपवाड़ा जाएंगी, वहां पर जांच करेंगी और ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या और भी कई लोग सामने हैं। अब जो वीडियो माता पिता के पास आया जिसमें कहा गया आप अपने लड़के को भूल जाइए क्योंकि उसने तो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, वो वीडियो एक बार हम आपको दिखाते हैं, देखिए।
3: तो ऐसा ना होना चाहिए कि आप अपनी रजा और खुशी से किसी किस्म का आप पर दबाव है जो यहाँ जामे मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं, अगर इसमें किसी ने आप पे दबाव डाला है या कुछ लालच दिए, चलो हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी से रजा से ईमान लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान में भी फरमाया, आप पहले ही पारे में जब यहाँ मदरसे में नज़दीक ही पढ़ोगे, भला मन असलमा वजहु लिल्लाह वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी कायनात को देख के, मेरी कुदरत को देख के ईमान लाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके लिए किसी किस्म का दुनिया में न कोई खौफ होगा और न आखिरत में कोई डर होगा। ये बता देना इनके सामने,
4: बताओ
3: आप पर मत किसी ने जबरदस्ती
5: की। माँ जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
6: माशाल्लाह माशाल्लाह,
3: कलमा पढ़े हैं, याद है कलमा?
5: पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
6: वसल्लम।
3: अभी दूसरा नहीं सीखा। अशहदु अल्ला इलाहा,
2: और देखिए हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष ये बताइए, लखनऊ में किस तरह की हलचल है जब से ये मामला सामने आया है? बिजनौर पुलिस कितना एक्टिव हुई है, क्या करने जा रही है आगे?
4: हिमांशु देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिजनौर पुलिस ने अब अपनी टीम जो है कुपवाड़ा यानी कश्मीर भेज दी है और दोपहर तक यानी शाम तक पहुंचने वाली होगी। इसमें एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो कि वहां पर जाकर इस पूरे मैटर को उस बच्चे से बात कर सके क्योंकि वो नाबालिग है और पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं उसको लालच दिया गया क्योंकि वो नाबालिग वहां पर नौकरी करने गया था, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने गया था और वहां पर उसका धर्म बदल दिया गया। तो पूरे परिवार का दावा है जब स्कूल की मार्कशीट में वो नाबालिग है तो ये कैसे उसको वहां पर जाके धर्म परिवर्तन कर दिया है। पुलिस को ये भी शक है कि ये पूरा षड्यंत्र और एक साजिश के तहत ऐसे युवाओं को जो कश्मीर जाते हैं नौकरी के लिए उनको धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है। इस पर भी पुलिस काम कर रही है और शाम तक ज्वाइंट ऑपरेशन भी इसमें हो सकता है।
2: आपने ज्वाइंट ऑपरेशन की बात की तो हमारे साथ अशरफ वानी भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, यूपी पुलिस के साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर जांच में सहयोग देगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या इसमें एक भूमिका होगी?
7: बड़ी भूमिका होगी हिमांशु। दरअसल ये मामला पूरे जम्मू कश्मीर में ही है, कुपवाड़ा जिले में है जो सीमावर्ती जिला आता है, जहां पर शुक्रवार को ये धर्म परिवर्तन एक मस्जिद में हुआ। और ये भी पुलिस को भी ये बनक नहीं थी जब ये वायरल वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सामने आया और उसके बाद उसका संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में जो है एक FIR दर्ज की है, इस मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन जो कुछ चीजें सामने यहां पर आई हैं कश्मीर में, उसमें से एक तो हलफनामा है जिसमें इस लड़के की तरफ से ये कबूल किया जाता है कि उसने बिना किसी दबाव के, जो कि वीडियो में सामने आ रहा है कि धर्म परिवर्तन किया है बिना किसी दबाव के, लेकिन फिर भी जो है इस मामले को जम्मू कश्मीर पुलिस उन सभी लोगों के साथ जो उसके साथ थे, जिसके यहाँ वो काम कर रहा था कुपवाड़ा के गाँव में पिछले 4 साल से, उन सभी लोगों से जो है पूछताछ कर रही है। उनको जो है फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और साथ ही साथ मस्जिद के इमाम जिसने ये पूरा धर्म परिवर्तन जो है करवाया उससे भी पूछताछ की जा रही है। जाहिर है कि जब बिजनौर पुलिस आएगी उनका सहयोग भी दिया जाएगा, वो भी क्या जानना चाहेंगे ताकि उनको जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सहयोग करेगी।
2: अब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए अशरफ। तो अब आपको सीधे मुंबई से एक बड़ी खबर बताते हैं और मुंबई में बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बहुत बड़ी डिमोलिशन कार्रवाई शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी जुग्गिया बस्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और सीधे बता रहे हैं मुंबई से। यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वेस्टर्न रेलवे स्थानीय पुलिस की मदद से 400 अवैध झोपड़ियों पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर रही है। अब कानूनी रूप से जो 100 निवासी मान्य हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सभी पर कार्रवाई होगी। वैध निवासियों को एक वैकल्पिक आवास उपलब्ध करा दिया गया है। ये कार्रवाई अगले 4 दिनों तक जारी रहेगी। खाली कराई गई जमीन का उपयोग मुंबई से शुरू होने वाली 50 नई ट्रेनों की सुविधा और बांद्रा टर्मिनस के विस्तार के लिए किया जाएगा।
8: बहुत बड़ा इलाका है, आप देखेंगे यहाँ पर ये बांद्रा स्टेशन को लगकर के बड़ा इलाका है, प्राइम लैंड बांद्रा माना जाता है। ईस्ट में ये आप कह सकते हैं हर रोज ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को आने जाने की समस्या होती है। और हाईकोर्ट में ये केस गया, हाईकोर्ट ने कहा कि डेमोलिशन करना चाहिए, उसके बाद 2021 के बाद के जो स्ट्रक्चर है उसको डेमोलिश किया जा रहा है। बड़ा जो पुलिस बंदोबस्त है वो यहाँ पर देखने के मिल रहा है। जेसीबी आप देख सकते हैं कितना डेमोलिशन कर चुके हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये डेमोलिशन आगे भी चलता रहेगा। भीड़ आप देख सकते हैं, क्राउड आप देख सकते हैं यहाँ पर जमा हुआ है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से की जा रही है और इन सभी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को ध्यान रखते हुए ये पूरा डेमोलिशन किया जा रहा है। लोगों की तरफ से एक ह्यूमन चेन बनाया जा रहा है ताकि बाकी के जो लोग हैं वो डेमोलिशन की जो हिस्सा है उसकी तरफ ना जाए, रस्सी बांधकर क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बांद्रा इलाके में इस तरह का एक्शन काफी जरूरी था। आप जहां भी नजर उठाएंगे बांद्रा ईस्ट में स्टेशन के बाहर आते ही तो इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां जो है वो आपको दिखाई देती है और दूसरी तरफ आप रोड के देखेंगे तो ये झुग्गी झोपड़ियां बिल्डिंगों में तब्दील होती हुई दिख रही है, जहां पर चाचर माले के स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त बने हुए यहां पर दिख रहे हैं। तो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, फाइनेंस हब है मुंबई का, उसको कनेक्ट करने वाला स्टेशन है, वहां पर आप कह सकते हैं कि कुछ जो साफ सफाई है या रोड वाइडनिंग की जरूरत है और उसी का काम आज वेस्टर्न रेलवे करती दिख रही है। साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।
2: पीवी कुलकर्णी नाम याद है आपको, नीट पेपर लीक घोटाले मामले में एक बड़ा नाम सामने आता। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, नए नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है पता चल रहा है कि आखिर इस पीवी कुलकर्णी की जड़ें किस गहराई तक जमी हुई हैं। नीट पेपर लीक केस में बहुत बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं और ये जानकारी मिली है कि जांच एजेंसियों के मुताबिक कुलकर्णी 2019 से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया, बाद में उसकी पहचान सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रही और ये भी दावा है कि कई सेट्स उसकी पहुंच बन गई। कई सेट्स तक नीट परीक्षा के लिए अलग अलग 5 सेट बनते हैं और उनमें से 2 को चुना जाता है। जो 2 सेट चुने जाते हैं वहां तक भी इस शख्स जिसको आप देख रहे हैं पीवी कुलकर्णी की पकड़ बन गई थी। आप समझिए कि किस गहराई तक ये घुसा हुआ है। ये प्रोफेसर नटवर लाल क्यों कहा जा रहा है इसे समझ गए होंगे। तो सीबीआई जांच के केंद्र में अब ये शख्स यानी पीवी कुलकर्णी आ गया है। मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, एनटीए के अंदर तक इसकी पकड़ थी। 2019 से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ये पीवी कुलकर्णी जुड़ा हुआ था। 2019 से पहले क्या था, ये पहले एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक विषय का जो एक्सपर्ट होता है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता, उसके तौर पर ये एनटीए के साथ जुड़ा हुआ था। अब आम तौर पर क्या होता है कि यहां पर धीरे धीरे कई विषयों पर इसकी जो पहुंच है प्रश्नों तक, वहां तक पहुंच बन गई। किसी भी पेपर के 5 सेट शुरुआत में बनाए जाते हैं और जब 5 सेट बनाए जाते हैं उनमें से 2 सेट फाइनल किए जाते हैं। उन अंतिम 2 सेट तक पीवी कुलकर्णी की पहुंच बन गई थी, ये पीवी कुलकर्णी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये कड़ी बहुत 2019 से था। 2019 से धीरे धीरे इसने अपनी पकड़ मजबूत करी और उसके बाद पेपर आउट कराने लगा। किस तरह से कराने लगा, किस छात्र तरीके से, ये आपने समझ ली। और इस प्रोफेसर नटवर लाल पीवी कुलकर्णी से जुड़ी ए टू जेड पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे दोपहर 2:30 बजे। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर, वो हम आपको बता दें कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखने को मिली है। जो याचिका एनजीओ की तरफ से लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश देखने को मिला है। एनजीओ की तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी लेकिन उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका खारिज करते हुए पुराने आदेश को बरकरार रखा। सख्त आदेश देते हुए कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में ना राज्य ने काम किया ना केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रयास किए गए। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग हिस्सों से आ रही खबरों से आंख नहीं फेर सकते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वीडियो देखी हैं कि बच्चे और बुजुर्गों पर हमले होते हैं। अदालत ने कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित महसूस करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ भी ऐसा हुआ है तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसीलिए हम आंख नहीं मूंद सकते हैं जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो बुजुर्गों के साथ हो रहा है। 2 टूक लहजे में क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप ऐसे समझिए, बुजुर्गों बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, स्थिति बहुत गंभीर है। विदेशी यात्रियों पर भी कुत्तों के हमले हो रहे हैं और ये वीडियो वायरल हुए थे, देखा था कि कैसे विदेशी यात्री जो बाहर से आते हैं उनको आवारा कुत्ते काट लेते हैं। अब भारत की क्या छवि जा रही होगी, आप समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस गंभीर स्थिति से आंख नहीं मूंद सकते हैं, ये कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ठीक है, हाँ ये मान रहे हैं कि राज्य ने काम नहीं किया, केंद्र शासित राज्यों ने काम नहीं किया, लेकिन हम इससे आंखें भी नहीं मूंद सकते। राज्य ने आदेश का सही से पालन नहीं किया, ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है। राज्यों की निष्क्रियता अवमानना जैसी है, निष्क्रियता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप वहां पर बच्चों बुजुर्गों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा सख्ती के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। टीकाकरण के बाद वापस नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि टीकाकरण कर दिया, टीका लगा दिया और उसके बाद जाओ जहां जाना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आवारा कुत्तों के डर के बिना जीना सबका हक है। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे, 10 से 15 कुत्तों का झुंड आता है आवारा कुत्तों का और बच्चों को लहूलुहान कर देता है, बुजुर्गों को, महिलाओं को खींच के ले जाए, इस तरह की खबरें आई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
9: सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते और उनके हमले के शिकार हो रहे बुजुर्ग बच्चे महिलाएं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारों की के प्रयास के दावे वो लगातार खोखले हुए हैं और कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे। जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो लागू होंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
2: और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं, अब इसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया विदेश मत जाइए, लेकिन खुद विदेश घूम रहे हैं। ये राहुल गांधी पर निशाना, राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर तंज कसा है और आम युवा की भी बात करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए।
10: दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। तो दुख की मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए पहले। आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए ना। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है।
2: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
14: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
17: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
16: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
18: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
19: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
21: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
22: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
23: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: Director, the taste of success.
7: Like I said before, we better own the sins.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
3: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
14: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
15: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
16: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
17: नहीं,
16: और म्यूचुअल फंड से
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye.
1: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
2: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, you're killing me.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
0: स्वाद और सेहत का तड़का
7: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
8: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
9: Like I said before, we better hold the sins.
10: जे के मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जे के मसाले जहां स्वाद वहां जे के
11: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ हमारे देश के असली हीरो के हाथ जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद देश का किसान देश का हीरो
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
13: इसमें माइक्रोफाइबर है
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
12: हमारे सीमेंट में नहीं है
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी. कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच. चर्चित चेहरा देखना ना भूले सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर.
5: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊंगा.
6: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप.
7: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही.
8: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर.
9: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए. ओके,
7: शुभेंदु अधिकारी.
6: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.
10: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
11: अनुपम मिश्र,
12: मोहित भारद्वाज,
13: पीयूष मिश्रा,
14: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

बंगाल में फलता विधानसभा सीट के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने दोबारा चुनाव लड़ने से किया इनकार। बीजेपी बोली, ममता के लोगों को रिजल्ट पता है, 21 मई को है वोटिंग। उलझती जा रही है मॉडल ट्रिशा की मौत की गुत्थी, आज तक से बोला परिवार, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो। सास गिरीबाला का आरोप, ड्रग्स लेती थी और मानसिक रूप से बीमार थी बहू। पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी, कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। एक हफ्ते के भीतर फिर बड़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। राहुल गांधी का निशाना, कहा लोग परेशान हैं और पीएम विदेश घूम रहे हैं। वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे ट्रंप, मीटिंग से पहले कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला। तेहरान का बयान, सरेंडर का सवाल ही नहीं।

नीट पेपर लीक मामले की बात करते हैं और खुलासों का दौर लगातार जारी। आपको याद है 10 गिरफ्तारियां हुई थी। अब जब 10 गिरफ्तारियां हुई थी तो उनसे अब पूछताछ में काफी कुछ खुलासे भी हो रहे हैं और इसके साथ ही अब वो पीडीएफ फाइल भी सामने आ गई है, जिस पीडीएफ फाइल में ये दावा किया गया था कि गेस्ट पेपर के नाम पर 140 से ज्यादा सवाल हूबहू उसमें मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वो सामने वो गेस्ट पेपर आ गया है और एनटीए में अब पीवी कुलकर्णी का मददगार कौन है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी, जिसकी पहुंच बहुत अंदर तक पहुंच गई थी, अब सीबीआई का शिकंजा कसता चला जा रहा है। तो बात चल रही है पेपर लीक गैंग के गुरु की और यही है वो गुरु जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है। नाम है पीवी कुलकर्णी। नीट के फाइनल पेपर तक इसकी पहुंच बन गई थी। ये बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र के कुल 5 सेट शुरुआत में बनते हैं और उन 5 सेटों में से 2 सेट फाइनल किए जाते हैं और ये वो पीवी कुलकर्णी है जिसकी पहुंच उन 2 सेट तक पहुंच गई थी, यानी 5 में से 2 और 2 में से जो फाइनल किए जाते हैं वहां तक इसकी पहुंच थी, सब जानकारी इसके पास होती थी। 2019 से ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में एक्टिव था और उसके बाद इसने अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लिया था और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो पेपर लीक गैंग का जो गुरु है पीवी कुलकर्णी, अब ये कितना जुड़ा हुआ था और इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए थे और कब कब इसने क्या क्या किया है ये पता लगाने के लिए सीबीआई अब पूरी कोशिश कर रही है। क्या किसी एनटीए अधिकारी पर मदद का शक है ये भी पता लगाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 2019 से जुड़ा हुआ है, पहले एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के तौर पर था और उसके बाद इसने अपनी पहुंच को और मजबूत किया। कैसे 2019 से लेकर अभी तक ये एनटीए में जुड़ा हुआ है, कैसे इसने अपने आप को मजबूत किया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पेपर लीक गैंग के गुरु से जुड़ी हुई।

0: ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಿವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಮನೀಷಾ ಮಂಧಾರೆ. ಯೇ ವೋ ದೋ ಚೆಹರೆ ಹೇ ಜಿನ್ಹೇ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾನಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೇ. ಯಹೀ ವೋ ಚೆಹರೆ ಹೇ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಲೀಕ್ ಪೇಪರ್ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋ ಕೋ ಪಹಲೆ ಗೆಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾ ಶಕ್ಲ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ಫಿರ್ ಉಸೆ ಕೈ ರಾಜ್ಯೋ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ಯಹೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟೇನ್ ನೀಟ್ ಕಾ ಲೀಕ್ ಗೆಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇ, ಜಿಸ್ಕಿ PDF ಫೈಲ್ ಬನಾಕರ್ ಲೀಕ್ ಹುಯಿ ಥಿ. ಅಬ್ ಆಪ್ ಇನ್ ಪನ್ನೋ ಪರ್ ನಜರ್ ದೌಡಾಯಿಯೇ. ಯೇ PDF ಫೈಲ್ ಕಿ ಶಕ್ಲ್ ಮೇ ಹೇ ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಪಹಲೆ ಪನ್ನೆ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಹುಯಿ ಹೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆ ಉಲ್ಝಾವು ಸವಾಲೋ ಸೇ. ಹಾಥ್ ಸೇ ಲಿಖೆ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಕಥಿತ್ ಗೆಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಹೇ, ವಹೀ ಗೆಸ್ ಪೇಪರ್ ಜಿಸೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆ ಮಾಫಿಯಾವೋ ನೇ ತಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. 3 मई को देश भर में हुई परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक गिरोह इसी गेस पेपर से लाखों लाख की कमाई कर रहा था. अलग अलग राज्यों में पेपर भेजे जा रहे थे. इस कथित गेस पेपर में करीब 400 सवाल थे. जांच में खुलासा हुआ है कि उन 400 सवालों में से नीट पेपर के हूबहू बॉटनी के 45 सवाल, जूलॉजी के भी 45 सवाल और केमिस्ट्री के भी इतने ही सवाल थे. मतलब 400 में से 135 सवाल नीट के प्रश्नों से बिल्कुल मिलते जुलते थे. इन 135 सवालों को गैस पेपर के अन्य सवालों के बीच बीच में लिखा गया था ताकि किसी को शक ना हो.
1: हाथ से लिखे हुए 400 सवालों के गैस पेपर को बेहद शातिराना ढंग से बनाया गया था. इसमें 135 सवाल जो नीट में पूछे जाने वाले थे उसके क्रम के बारे में जिसे गैस पेपर दिया गया था उसे बता दिया गया था. गैस पेपर बनाकर हाथ से इसे लिखा गया था ताकि पकड़ में ना आए और इसका PDF टेलीग्राम के जरिए आगे भेजा जा रहा था.
0: गैस पेपर बनाने वालों में कई चेहरे हैं. एक तो लातूर वाला कोचिंग मालिक भी है. गिरफ्तार शिवराज मोटेगांवकर ने इसी गैस पेपर का हवाला देते हुए नीट परीक्षा के बाद अपना वीडियो बनाया था और फेसबुक पर अपलोड किया था.
2: कैसा गया पेपर तुम्हारा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, प्रीति, RCC मॉक मधून RCET क्वेश्चन आले.
3: त्याच्या बाहेर क्वेश्चन आलाच ना.
2: तुम्ही खुश आहात RCET?
3: हो,
2: खरंच खुश आहात. बायोलॉजी काय म्हणते?
3: सगळं NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट मध्ये जे विचारलं ते चालू.
2: आपल्या मॉक पेज सोपं होतं का अवघड होतं?
3: सोपं.
2: वा छान. आणि माझं तुझं नाव ताई? ऋतुजा पण आहे. ऋतुजा बेटा कसा गेला पेपर तुला? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो?
4: खूप छान गेला सर. आणि तुम्ही जे 100 क्वेश्चन दिले होते ना, ते 100 क्वेश्चन मधून मोस्ट ऑफ द त्यातूनच आले होते.
2: अरे वा, आपण जे शेवटी मॉकला जे घेतो आपण ते सगळे क्वेश्चन. वा, व्हेरी गुड. मॉक पेपर हे म्हणजे RCET पेपर फॉलो केली मोर दॅन सफिशियंट?
4: मोर दॅन सफिशियंट आहेत सर ते.
2: अच्छा अच्छा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. खूप छान खूप छान.
0: कोचिंग चलाने वाले गुरु शिवराज ने अपना खेल कर दिया था. अब वो गदगद था कि उसका फॉर्मूला फिट बैठा. लेकिन पोल खुलते देर नहीं लगी. अब वो CBI की हिरासत में है. लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसकी कड़ियां मनीषा मंधारे और PV कुलकर्णी तक पहुंच जाती है. जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर PV कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे ने NTA से प्रश्न पत्र चुराए थे. दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे. कुलकर्णी 2019 से नीट पेपर सेट करने वाले पैनल में था. जानकारी मिली है तो उसकी NTA में जबरदस्त पकड़ बन गई थी. अंदर के अधिकारी उसे मदद पहुंचा रहे थे और उसी का फायदा उठाकर वो पेपर लीक को अंजाम दे रहा था. CBI को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं. जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध की पहचान कर ली गई है. वही कुलकर्णी के NTA वाले हेल्पिंग हैंड तक भी जांच का शिकंजा कसा है. जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो.
5: तो नीट पेपर लीक मामले में माहौल बहुत गर्म है और वैसे माहौल तो पूरे देश में गर्म है. हीट वेव की खबर आपको बताने जा रहे हैं. हर जगह सन्नाटा इस वक्त फैला हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा इस वक्त देखी जा रही है. ये तस्वीरें आप देखिए. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, वाराणसी है, प्रयागराज है, चंडीगढ़, अकोला, धौलपुर, राजस्थान का धौलपुर और श्रीनगर. वैसे ठंडा ठंडा कूल कूल इस माहौल के लिए जाना जाता है लेकिन अभी यहाँ पर ठंडा ठंडा कूल कूल जैसी कोई चीज़ है नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी माहौल इस वक्त गर्म ही देखा जा रहा है और गर्मी लगातार वक्त के साथ बढ़ रही है. मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले वक्त में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी तापमान 45 डिग्री के पार, तो हो जाएं सावधान.

0: तप रहा हिंदुस्तान, पस्त पड़ी जिंदगी, 47 डिग्री पर पारे का टॉर्चर, प्रचंड गर्मी का टूटा कहर, किसी एक राज्य में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में यही हालात हैं। सूरज का रौद्र रूप दिख रहा है और देश की ये तस्वीर उस हालत को बयान कर रही है। मौसम का मिजाज बताती ये तस्वीर 18 मई को मौसम विभाग ने जारी की है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहे हैं। यूपी के वाराणसी से आई ये तस्वीरें देखिए। जिस गंगा के किनारे दिन भर पर्यटकों की चहलकदमी होती है, वहां दोपहर के वक्त सन्नाटा पसरा है। वाराणसी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तो न्यूनतम लगभग 1 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यूपी के अन्य शहरों का मिजाज भी वैसा ही है। प्रयागराज में लगातार 2 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने शहर का मिजाज बदल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग पेड़ की छांव में राहत खोज रहे हैं। प्रयागराज का तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास है।
1: गर्मी की वजह से यहाँ पे ऐसे तो नॉर्मली बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, पर इस टाइम भीड़ बहुत कम है।
2: वजह क्या है?
1: वजह गर्मी है, पानी भी हल्का गर्म है, इस वजह से लोग कम आ रहे हैं आजकल।
2: गर्मी तो पहले से कम है और ज्यादा वैसे मेला के हिसाब से तो ज्यादा पड़ रही है, ऐसे मतलब गर्मी ज्यादा होती है ना।
0: महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। विदर्भ समेत अकोला जिले में भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। अकोला में तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, ये सीजन का उच्चतम स्तर है। वहां रात का न्यूनतम तापमान भी 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। नागपुर मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र में 21 मई तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की आशंका है, उसे लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मई जून के महीने में राजस्थान तप उठता है, इस बार भी आसमान से आग बरस रही है। धौलपुर में आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। सोमवार को यहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोगों को पेड़ की छांव और ठंडे पेय पदार्थों का ही सहारा है। दिल्ली में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के करीब है, यहां भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक गर्मी का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा।
3: तो है अभी एक सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम समझे तो अब देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है और रिजल्ट साथ में। मध्य प्रदेश और विदर्भा में हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रही है, लगातार हीट वेव कंडीशंस चल रही है विदर्भा में, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो पूरी भाग है यहाँ पर और पश्चिम भाग दोनों में हमारा अनुमान है एक सप्ताह में आगे चल करके 2-3 दिनों के बाद में सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं।
0: मई महीने में अभी करीब 10 दिन बाकी हैं। मौसम विभाग ने बता दिया है कि आने वाले समय में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। धौलपुर से उमेश मिश्रा, अकोला में धनंजय साबले, प्रयागराज से आनंद राज और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: हर जगह गर्म माहौल है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूर्य देवता एकदम प्रचंड रूप इस वक्त धारण किए हुए हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही है, लोग बाग जब दोपहर में निकलते हैं अपने घरों से बाहर, बहुत सी ऐसी जगह है जो पर्यटक जहां पहुंचते हैं वहां आजकल सन्नाटा है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, चाहे वो इंडिया गेट हो या फिर और भी कई इलाके हो। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सुशांत मेहरा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये अलर्ट तेज और चिलचिलाती धूप के साथ साथ लू को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन यानी आज और कल दिल्ली एनसीआर का तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जा सकता है। सुबह की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी दिल्ली का जो तापमान इस वक्त जो दर्ज किया गया है वो 40 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी तेज लू जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी। लोगों को सख्त हिदायत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि खास तौर पर बुजुर्ग बच्चे जो है वो घरों से बाहर ना निकले और अगर बात की जाए तो प्रिकॉशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लें। इसके अलावा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से भी तमाम जो लोग भीषण गर्मी से जूझते हैं उनके लिए तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से भी किए गए ताकि इस भीषण गर्मी से जो है वो बचा जा सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: तो ये इंडिया गेट का हाल आपने देख लिया, सन्नाटा पसरा हुआ है, खाली सड़कें हैं और जो हाल दिल्ली का है कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कई जगहों का है। लखनऊ में 43 डिग्री पारा पहुंच चुका है तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां पर जो पारा है वो 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। वो आप सोचिए आम लोगों का क्या होगा। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव बता रहे हैं आपको क्या हाल है।
6: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत यह है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी है। आप अगर देखें यहां पर तपन सड़क के आसपास का जो एरिया है बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है। जो बाहर निकल रहे हैं जिनकी मजबूरी है वो निकले, डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि आप लगातार पानी पीजिए, अधिकारियों से ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए कहा है। तो वहीं जानवरों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि उन्हें दिक्कतें ना हो। यहाँ मैं इस वक्त एक दुकान के पास मौजूद हूँ, आप देखें तो यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ठंडे पानी लिए हुए हाथ में ठंडे पानी के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं और पानी पी रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या हालत है, गर्मी बहुत ज्यादा है।
7: बहुत ज्यादा भैया गर्मी यहाँ पर है, कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है।
8: 40 डिग्री है,
7: इतना बेहाल है कि ना कुछ खाया जा रहा है, केवल पानी पी के आदमी जी रहा है।
8: पानी पीने से राहत मिल रही है?
7: बहुत राहत मिल रही है पानी से।
6: गर्मी के प्रचंड के कारण फिलहाल लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है जरूरी काम हो तभी दोपहर में निकले। अगले मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। बांदा 45 पार हो चुका है, लखनऊ और रायबरेली 43 पर कराह रहा है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक।
4: देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने लखनऊ का हाल देख लिया और अब आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते। पटना में राजनीतिक माहौल गर्म रहता है लेकिन अभी वहां का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। क्या हालात है हमारे सहयोगी शशिभूषण आपको बता रहे हैं।
9: पिछले 4 दिनों से बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है और इसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, पटना की मुख्य सड़क है और यहाँ दोपहर के वक्त बिल्कुल गाड़ियों का जो आवागमन है वो कम हो जा रहा है क्योंकि राजधानी पटना जो है वहाँ पर तापमान इस वक्त जो मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कल 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गया जी में सबसे ज़्यादा 44.6 डिग्री तापमान कल दर्ज हुआ। बिहार के लगभग 4 जिले ऐसे रहे हैं जहां 44 डिग्री से ऊपर पारा कल रिकॉर्ड हुआ और आज भी लगभग इसी तरह का तापमान रिकॉर्ड होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिले जो हैं वो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में जो पूर्वी सीमा से लगते हैं वहाँ पर एक दो जगहों पर राहत की खबर है। हालांकि जो राहत है वो स्कूली बच्चों को है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन लगातार पारा बिहार के लगभग 10 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और 4 जिले ऐसे हैं जहाँ 44 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज हो रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण आज तक पटना।
4: देखिए सभी जगह की रिपोर्ट आपने देख ली, आपके लिए जरूरी है अपना अपने परिवार का गर्मी से खास ख्याल रखें। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
8: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
10: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
11: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
16: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

खान ने दोबारा चुनाव लड़ने से किया इनकार। बीजेपी बोली ममता के लोगों को रिजल्ट पता है, 21 मई को है वोटिंग। उलझ दी जा रहे हैं मॉडल त्विशा की मौत की गुत्थी, आज तक से बोला परिवार। सुप्रीम कोर्ट से जांच, चोर सास गिरिबाला का आरोप, ड्रग्स लेती थी और मानसिक रूप से बीमार थी।

दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे तो डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे। पीएम मोदी के आह्वान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साइकिल से किया सफर। स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में साइकिल से पहुंचे मंत्री, दिया फिटनेस और पर्यावरण का संदेश। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं। गुजरात के बनासकांठा में पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते लोग किसान सब परेशान, वाहनों की लंबी कतार। राजस्थान के पाली में पेट्रोल पंप द्वारा ड्रम में डीजल नहीं देने पर ग्राहकों ने मारपीट की। पेट्रोल पंप में किल्लत हो रही है। मनीष सिसोदिया ने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कहा कि तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, दूध महंगा, रुपया गिर रहा है, लेकिन एक भी क्षेत्र मोदी जी का कुशल या कौशल नेतृत्व नहीं दिख रहा। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग लागू। भवानीपुर में गर्जे शुभेंदु अधिकारी बोले, घुसपैठियों को अब देश से बाहर भेजने का समय आ गया, मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूं, 4 लोगों की संपत्तियों की जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी पर सबक सिखाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी और अब समय डिपोर्ट करने का है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर कांड के 80 दोषियों को कड़ी सजा मिले और सच को दबाया नहीं जा सकता। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी सरकार पर हमला, बहन अभिया को न्याय मिले, शुभेंदु ने सोशल मीडिया पोस्ट करके उठाई मांग। बंगाल के सीएम ने बंगाल में सभी धार्मिक भत्ते बंद करने का भी ऐलान किया। कहा कि आप धर्म को, छात्रों को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस को डीएसपी और टीएमसी के करीबी शांतनु सिन्हा विश्वास के कालिशान घर का पता चला है। बीजेपी का आरोप है कि शांतनु सिन्हा विश्वास ने हाल ही में घर के पुनर्निर्माण में 2.5 करोड़ खर्च किया। पश्चिम बंगाल में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस, सरकारी दफ्तरों को खर्च घटाने का भी आदेश। यूपी में सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी, सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को भी एक संदेश, कहा कि अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक, वरना प्रशासन के पास दूसरा तरीका है, वो अपनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। पासपोर्ट केस में रणवीर सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है। कर्नाटक में कल से होने वाले ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर फिलहाल रोक, हाईकोर्ट की सलाह, पहले सरकार से बात करें। लखनऊ में वकीलों के लाठीचार्ज के मामले में वायरल तस्वीर में मौजूद वकील को भेंट की रामचरितमानस अखिलेश यादव ने शेयर की तस्वीर। पहली बार बस्तर में हो रहे सेंट्रल जोनल काउंसिल की एक अहम बैठक, गृहमंत्री अमित शाह अध्यक्षता कर रहे हैं। बस्तर बना राष्ट्रीय नीति का केंद्र, 4 राज्यों के सीएम मौजूद, योगी आदित्यनाथ, सीएम विष्णुदेव साय, सीएम मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी इसमें ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज की, सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। कहा कि बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी हम खतरे में नहीं डाल सकते। यूपीएससी एग्जाम में बड़ा बदलाव, प्रीलिम के तुरंत बाद आएगी आंसर की। लातूर नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज, आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा, पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 10 पहुंच गई है। नीट पेपर लीक पर संसदीय समिति सख्त, एनटीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए होंगे रवाना, विदेशी दौरे के तहत कई अहम बैठक कार्यक्रमों में लेंगे भाग। भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान, पिछले 12 वर्षों में भारत की आर्थिक डीएनए पूरी तरह से बदला है। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा बेहद खास, इसमें ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर सहमति। नॉर्वे के दिग्गज सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात, भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर साझेदारी पर मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ पीएम मोदी का यह विदेशी दौरा कल तक रहेगा जारी। अब इटली के दौरे पर पीएम मोदी और दुनिया भर की निगाह। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हीट वेव की स्थिति। उत्तराखंड में भी हीट वेव का अलर्ट, मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार जाने की

0: हीट वेव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित, अस्पतालों में ओआरएस, आईवी फ्लूड, दवाइयां, विशेष बेड की व्यवस्था। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में भारी बारिश, सड़कों पर दिखा जलभराव। जलभराव से यातायात प्रभावित, कई जगहों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। बिहार के तीन जिलों में 45 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीट वेव का रेड अलर्ट, बक्सर में स्कूल बंद। वाराणसी में तापमान 44 डिग्री के बाद 25 मई तक स्कूल बंद। वाराणसी में बढ़ते तापमान के चलते गंगा घाटों पर पसा सन्नाटा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा पारा, 44 डिग्री पहुंचा तापमान। तापमान बढ़ने से सड़कों पर सन्नाटा, गर्मी से बचने के लिए लोग अब पेड़ का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर में उमड़े पर्यटक, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए अब कश्मीर पहुंच रहे हैं। हावड़ा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, प्रशासन शुरू किया ध्वस्तीकरण का कार्य, पुलिस बल तैनात। हावड़ा नगर निगम ने वार्ड 44 में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की, प्रशासन ने कहा कि अवैध इमारतें बख्शी नहीं जाएंगी। अमेरिका के बंदरगाह से मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर लापता, मिर्जापुर का रहने वाला है शख्स, परिजनों ने मदद की लगाई गुहार। गुजरात के गिर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला किया। यूपी के बिजनौर के रहने वाला नाबालिग लड़के का जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला सामने आया। 17 साल के लड़के को कलमा पढ़ाया गया, रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था नाबालिग। परिवार वालों का आरोप है कि जबरन उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवाया गया। परिजनों के मुताबिक अचानक एक अज्ञात नंबर से उनके पास कॉल आया, वीडियो कॉल भी आया, और वीडियो में किशोर को इस्लाम कबूल करवाने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर की एक मस्जिद की ओर से जारी घोषणा पत्र में किशोर की इच्छा से इस्लाम स्वीकार करने का दावा किया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है और स्थानीय हिंदू संगठनों ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सिकंदराबाद में बीजेपी के नगर पालिका के चेयरमैन का बैन, वायरल टीएमसी सांसद का सिर काटने पर 1 करोड़ के नाम का ऐलान किया था। विवादित बैन पर बीजेपी नेता ने कहा कि वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, छवि खराब करने की कोशिश है। द्वारका में कार में आग लगने से पिता और बेटी की मौत, मां घायल है। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट गैंग का भंडाफोड़, राहगीरों, टैक्सी ड्राइवर्स को लूटने वाले 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बलिया में एक मेडिकल स्टोर की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के शहजादाबाग में और इंद्रलोक के पास में कूलो मार्केट में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, प्रशासन ने डिमोलिशन ड्राइव शुरू की। नर्मदा में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, बियर पीकर चला रहा था बस, लोगों ने ड्राइवर को फिर पुलिस के हवाले किया। गाजियाबाद में रेप आरोपी के जेल से बाहर आने के बाद शक्ति प्रदर्शन, उसके फूल मालाओं से स्वागत किया गया, वीडियो वायरल। पटना में 27 लाख लूट के मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। अहमदाबाद में 1,66,00,000 रुपए के गहने चुराकर भागी युवती, अब गिरफ्तार, प्रेमी ने दिया धोखा, 1 करोड़ के गहने लेकर फरार। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा गरीब नगर में यह एक्शन करवाया गया। मुंबई में लगभग 400 अवैध ढांचों को तोड़ा गया और यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई, मौके पर पुलिस बल तैनात। रानीखेत के जंगल में भीषण आग, संसाधनों के अभाव में फायर कर्मचारियों को पेड़ की टहनियों से आग बुझाने पड़ रही। हरिद्वार में एक युवक को सोशल मीडिया पर गौवंश को लेकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, पुलिस ने सबक सीखा। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से कमजोर, शुरुआती ट्रेड में 18 पैसे की गिरावट। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई आम के 14 किस्में। पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर, आम्रपाली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबारी, जमादार काला, जमादार हापुस और तोतापुरी आदि शामिल है। ग्राफ्टिंग टेक्निक से और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके 14 किस्मों के आम उगाए गए हैं और आम के पेड़ को देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तंगधर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य के युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। राजौरी में बहरी विकास के बयान, नए पुल से ब्लॉक सेरी और ब्लॉक लामबेरी के बीच में अब कनेक्टिविटी बेहतर हुई। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में होगा मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। राजस्थान रॉयल्स अभी भी आईपीएल के प्लेऑफ की रेस में बनी है, हालांकि लखनऊ के लिए अब सिर्फ सामान बचाने की लड़ाई, क्योंकि वो प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। आरा ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 तो गंवाए हैं, लगातार 3 हार चुके हैं। ऐसे में प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए मैच जीतने जरूरी हैं। इस सीजन राजस्थान और लखनऊ की टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले 22 अप्रैल को कान्हा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने लखनऊ पर शानदार जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों के बीच में राजस्थान का पलड़ा भारी रहा है। अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में राजस्थान ने 5 मैचों में जीत हासिल की, लखनऊ की टीम 2 मुकाबलों में जीती। सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल फिल्म 7 डॉग्स ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक्शन सीन करने के लिए इस्तेमाल हुआ 21,000 लीटर पेट्रोल। भूत बंगला ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़े कमाई के। कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन की वर्ल्ड वाइड कमाई को भी अब पीछे छोड़ा, 276 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी की विदाड़ और सैराट की 90 करोड़ की कमाई को 17 दिन के बाद पछाड़कर बनी मराठी की 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। इंडियन आर्म कोर की 45वीं कैवलरी की मानद सदस्यता से सम्मानित हुए ईशान खट्टर। फिल्म पिप्पा में कैप्टन बलराम सिंह मेहता का किरदार निभाने के लिए यह सम्मान मिला। एक्टर ने तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विकी जैन ने श्री रविशंकर की गौशाला का किया दौरा। कपल ने गौशाला की सफाई की, गायों को चारा खिलाया, वीडियो भी शेयर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर मंगलवार को होने वाले सैन्य हमले को रोका गया। कतर सऊदी अरब के नेताओं के द्वारा हमला रोकने की मांग थी। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि सेनाएं ट्रिगर पर हाथ रखे हुए हैं, किसी भी नए आक्रमण का तेजी से जवाब दिया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान का बयान, तेहरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा, संवाद का मतलब आत्मसमर्पण करना नहीं होना चाहिए। अमेरिका के सैन डिएगो में किशोर हमलावर ने मस्जिद में गोलीबारी की, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अफ्रीकी देश कांगो में फैले इबोला वायरस से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग संक्रमित। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इबोला वायरस को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, कहा कि मुझे लगता है कि फिलहाल यह अफ्रीका तक सीमित है लेकिन तेजी से फैलता जा रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क को कोर्ट से बड़ा झटका। ओपन एआई के खिलाफ उनका $150 अरब का हाई प्रोफाइल मुकदमा खारिज हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने गजा को सहायता पहुंचाने वाले जहाजों के काफिले रोकने की निंदा की, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल की अवैध और नियम तोड़ने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। बोलीविया में आर्थिक संकट के बीच में हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर। राजधानी लापास में पुलिस और विपक्षी प्रदर्शनकार के बीच में हिंसा। इराक के नजफ शहर में धूल भरी आंधी चली, आसमान में लाल दिखा, दिन में ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई दिया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की फलता सीट की, जहां से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया, यानी कि चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। जहांगीर खान ने बड़ा ऐलान किया है कि अब वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। ये घोषणा उस दिन हुई है जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, जिसके बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजा सबको मालूम है, इसलिए कोई कैंपेन नहीं चल रही, सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई, उनको पता है कि बुरी तरह टीएमसी की हार होगी।
1: सबको मालूम है तो कैंपेन करके क्या फायदा, तो वहाँ कैंपेन मतलब धमकी चमकी, वो नहीं चल रहा है ना, और कोई कैंपेन नहीं, कैंपेन करने वाले उनका आदमी नहीं है, गुंडा लोग भाग गए हैं, पुलिस चुप हो गया है, नहीं वो सब खत्म हो गया है, चिंता मत करिए, भयंकर हार हारेगा टीएमसी।
0: तो शुभेंदु अधिकारी भी इस नई सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे पर रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को रोकने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और ममता बनर्जी की जो योजनाएं थी उन पर लगातार चोट कर रहे हैं।
2: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
3: शुभेंदु अधिकारी तेजी से अपनी इमेज बदल रहे हैं। चुनाव में जो धार दिखाई थी उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। उनके फैसले, उनकी घोषणाएं, उनके शब्द बड़े गौर करने वाले हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा एक्शन पर गौर करें। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
4: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए।
3: शुभेंदु पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि बंगाल की जनता को ये एहसास हो जाए कि राज्य में नई सरकार का आगाज हो चुका है। वो कानून व्यवस्था के सवाल पर सख्त अंदाज दिखा रहे हैं।
4: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है सोचना है में नहीं।
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का असर सड़क से स्कूल तक दिख रहा है। सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु इस कोशिश में दिख रहे हैं कि जनता के जहन से ममता राज की यादें जल्द से जल्द मिटा दी जाए। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
0: आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज तक ने खुलासा किया था यूपी के बिजनौर के रहने वाले नाबालिग लड़के का जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया। 17 साल का लड़का रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था और परिवार वालों का आरोप है कि जबरन उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया।
5: तो ऐसा ना होना चाहिए कि आप अपनी रजा और खुशी से किसी किस्म का आप पर दबाव है जो यहाँ जामे मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं। अगर इसमें किसी ने आप पे दबाव डाला है
6: लालच
5: का या कुछ लालच दिए चलो हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी से रजा से ईमान लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान में भी फरमाया, आप पहले ही पारे में जब यहाँ मदरसे में नज़दीक ही पढ़ोगे, भला मन असलम वजह लिल्लाह वह मुख्तन वलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी कायनात को देख के मेरी कुदरत को देख के ईमान लाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके लिए किसी किस्म का दुनिया में न कोई खौफ होगा न आखिरत में कोई डर होगा।
7: बता
5: देने इनके सामने किसी ने
8: मर्जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम।
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। In association with भारत।
10: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
11: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
14: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
20: जेके वॉल मैक्स।
19: बेस्ट पेंट
20: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
21: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
22: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
23: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
24: इसमें माइक्रो फाइबर है।
23: माइक्रो फाइबर यानी
24: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
23: हमारे सीमेंट में नहीं है।
24: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
25: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
6: मोबाइल से पेमेंट करना आज हर किसी की आदत में शुमार हो चुका है. चाय की दुकान हो या बड़ा मॉल, हर जगह एक QR कोड और एक बीप की आवाज सुनाई देती है. कैश रखने का झंझट कम हो गया है क्योंकि छोटे से छोटा खर्च भी डिजिटल हो चुका है. यही बदलाव भारत की पेमेंट कहानी को दुनिया में सबसे अलग बनाता है. लेकिन इसी डिजिटल सुविधा पर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है. एक सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि क्या UPI पर चार्ज लगाने पर वो इसे छोड़ देंगे, तो इसके जवाब में 75% यूजर्स बोले कि अगर UPI पर चार्ज लगा तो वो इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे. केवल 25% लोग ऐसे हैं जो चार्ज देने को तैयार हैं. यानी मुफ्त और आसान पेमेंट की आदत इतनी मजबूत हो चुकी है कि मामूली सी फीस भी लोगों को डिजिटल पेमेंट की दुनिया से किनारा करने को मजबूर कर सकती है. ये दुनिया कितनी दमदार है इसका अनुमान कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है. आंकड़े कहते हैं कि 2025-26 में UPI के जरिए 240 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शंस हुए, जिनकी कुल वैल्यू 314 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा रही. साफ है कि हर दिन करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर एक दबाव भी बन रहा है जो कमाई से जुड़ा है. क्योंकि बैंक्स को UPI ट्रांजेक्शन से कोई सीधी कमाई होती नहीं, जबकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का खर्च उन्हीं को उठाना पड़ता है. जाहिर है कि यूज बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है, लेकिन रिटर्न तकरीबन शून्य है. यही वजह है कि सिस्टम की मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं. MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट न होने से पेमेंट कंपनीज की कमाई सीमित रह गई है. इंसेंटिव की कमी से ग्रोथ पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. दूसरी ओर जमीन पर भी बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं. सर्वे कह रहा है कि 57% यूजर्स ने तो बीते एक साल में किसी न किसी दुकान पर UPI लेने से मना करने का दावा किया है, जबकि 19% लोगों के साथ ये हालात बार बार पैदा हुए हैं. इसकी वजह है कि छोटे दुकानदारों के लिए ये मॉडल आसान नहीं रह गया है. कई जगह कैश की मांग फिर से बढ़ती दिख रही है. इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात ये है कि यूजर्स चार्ज देने के लिए तैयार नहीं है और सिस्टम बगैर कमाई के लंबे समय तक चलाना मुश्किल है. बावजूद इसके चार्ज लगाने पर यूजर्स के हटने का खतरा है, जबकि बगैर चार्ज के बैंक्स और कंपनीज पर खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है. यही वजह है कि पॉलिसी मेकर्स के सामने चुनौती काफी बड़ी है, जिसमें एक तरफ डिजिटल इंडिया की रफ्तार बनाए रखना है तो दूसरी ओर सिस्टम को टिकाऊ बनाना है. वैसे तो UPI ने देश भी पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. गांव से शहर तक हर वर्ग को डिजिटल से जोड़ दिया है, लेकिन दूसरे दशक में एंट्री के साथ सवाल भी बड़ा हो गया है, क्योंकि फोकस विस्तार के साथ टिकाऊपन का भी है. अगर चार्ज लगाया जाता है तो यूजर नाराज हो सकता है, और अगर नहीं लगाया जाता तो सिस्टम पर दबाव बढ़ता रहेगा. आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
0: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: खान ने पीछे खींचे कदम, बीजेपी का तंज, दीदी के लोगों को हार का डर। उलझती जा रही है मॉडल ट्विशा की मौत की गुत्थी, आज तक से बोला परिवार, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो। सासगिरी बालक आरोप, ड्रग्स लेती थी और मानसिक रूप से बीमार थी बहू। पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी, कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे, डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा, राहुल गांधी का निशाना, कहा लोग परेशान और पीएम विदेश घूम रहे। कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे ट्रंप, मीटिंग से पहले कहा खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका हमला, तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल ही नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। त्रिशा शर्मा की भोपाल में हुई संदिग्ध मौत ने सबको झकझोर दिया है, ग्लैमर वर्ल्ड से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी पहचान बनाने वाली त्रिशा की शादी के 5 महीने के भीतर ही मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लालच में त्रिशा की हत्या हुई, वहीं ससुराल वालों ने उसे मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया। इस बीच त्रिशा शर्मा ने जिस रोज कथित तौर पर खुदकुशी की थी उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उधर पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश में लग गई है।
2: भोपाल की त्रिशा शर्मा की मौत की गुत्थी उलझी हुई है, तफ्तीश जारी है, हर दिन इस केस में एक नई बात, नया दावा सामने आ रहा है जो इस केस को और ज्यादा पेचीदा बनाता जा रहा है। परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं, ससुराल वालों के दावे केस को अलग एंगल दे रहे हैं, पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर केस की जांच में जुटी है। लेकिन सबसे पहले बात त्रिशा केस से जुड़े उस सीसीटीवी की, जिसे इस केस का सबसे अहम सुराग माना जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज 12 मई का बताया जा रहा है, यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई। इस वीडियो में त्रिशा घर की छत पर जाती दिख रही है और उसके कुछ देर बाद उसके पति और दो अन्य लोग सीढ़ियों से उसके शव को नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि सीढ़ियों पर त्रिशा को सीपीआर दिया गया था, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, आखिर इन दोनों वीडियो के बीच आखिर क्या हुआ? जिस त्रिशा ने कुछ देर पहले ही अपनी मां से बात की थी, कैसे उसकी मौत हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया? या फिर इस वीडियो के पीछे कोई गहरा राज छिपा है?
3: एम्स में इसको पहुंचाया जाए बॉडी को, ताकि एक सही साक्ष्य सामने निकल के आए और आगे जो है न्याय मिल पाए लड़की को। हम इस इन्फ्लुएंस में रह करके, इस हाई कोर्ट में, इस एमपी की टेरिटरी में जहाँ इतने इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, हमें न्याय की उम्मीद कम है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर किया जाए और ये सीजीआई के निर्देशन में इस केस की जाँच की जाए।
2: भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत का मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक रिटायर्ड जज, सास है, पति वकील है, प्रताड़ना है, ससुराल वालों पर आरोप लगाती चैट है। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में त्रिशा फांसी पर लटकी पाई गई थी। मायके वाले इसे दहेज हत्या का केस बता रहे हैं, जबकि ससुराल वाले इसे सुसाइड कह रहे हैं। इस केस में कल पहली बार त्रिशा की सास रिटायर्ड जज गिरबाला ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने त्रिशा के परिवार के सभी आरोपों को नकारते हुए त्रिशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि त्रिशा मानसिक बीमारी की दवा लेती थी।
4: उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब ही इसने एमटीपी स्वच्छ अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑल इज ए प्राइम जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी, एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज दो तीन दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही, पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ।
2: उधर ससुराल वाले इन दावों पर ट्विशा के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं, साथ ही ट्विशा के पति समर्थ पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगा रहे हैं।
3: समर्थ उसको थ्रेट करता था क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया था, उनकी मदर को, कि ही इज अंडर ड्रग। समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी ड्रग एडिक्ट की, और आज भी बहुत बड़े लेवल पर ड्रग कंज्यूम करते थे। तो उनकी मदर को मैंने बोला कि आप प्लीज चेक करिए अपने बेटे को, बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं वो, और इतनी ड्रग्स कर रहे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। लड़की शिकायत कर रही है कि ये इनको ध्यान नहीं रहता, ये उल्टी उल्टी करके अपने इनके जो पड़े रहते हैं ये, तो प्लीज चेक इट। तो उनको इस बात का बहुत बुरा लग गया, तो उस बात से उसको प्रताड़ित करने लगे बहुत बुरी तरीके से, और बोले लगे तेरे बाप के नाक रगड़वाऊंगा मैं। मैंने बोला कि अगर बेटे मेरा किसी बात से बुरा लग गया हो, बीइंग ए फादर ऑफ लड़की, मैं माफी मांग लेता हूँ। ये बात आई सामने के सामने, तो ये एक पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ये अपने बेटे का ड्रामा मेरी लड़की पर थोपा जा रहा है कि जो काम वो खुद करता है वो लड़की को थोप रहा है।
2: इन आरोपों के बीच केस और ज्यादा पेचीदा हो गया है। उम्मीद है कि पुलिस की जांच पूरी होने पर केस का सच सामने आ सकेगा। रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और ट्रिशा मामले की जांच के बीच उसकी कजन बहन नैना ने आज तक से खास बातचीत की। अब से कुछ देर पहले मैंने उससे बातचीत की, सुनिए इस बातचीत के अंश। नैना, जिस तरीके से ये मामला आगे अब तक बढ़ा है, क्या कार्रवाई से आप या आपके परिवार वाले संतुष्ट हैं अब तक?
5: मैं उसकी कजिन हूँ और मेरा नाम नैना है, घर का वैसे गरिमा नाम है। और जो कार्रवाई चल रही है मैम, जिस तरीके से, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप तो अभी ये 5 दिन के बाद वाले फुटेजेस देख रहे हैं और कार्रवाई देख रहे हैं, ये जो डे 1 से चला है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड केस था। हमें एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए 4 घंटे महिला थाने में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, FIR दर्ज नहीं हुई थी। लड़का संदीप, जो मेरी बहन की जो ये बॉडी है, ये घसीटते हुए लेके नीचे आ रहा है, कैमरे पे ये CPR दे रहा है। जहां पे मेरी बहन की हत्या हुई है वहां पे कोई भी CCTV कैमरा क्यों नहीं है? मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था, ये हेडफोन लेके गया। CCTV में तुषार जाती हुई दिख रही है, लेकिन CCTV में ये लोग जाते हुए नहीं दिख रहे, ये लोग बॉडी को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बॉडी का वेट भारी है जिसकी वजह से ये बॉडी को उठा नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी बहन में थोड़ी बहुत भी जान होती तो ऐसे घसीट के नहीं लाता। और कौन पति अपनी बीवी को ऐसे घसीटते हुए, जहां पे उसका देखिए आप टॉप भी उसने ढंग से उसका ढका नहीं है। मेरे को खुद देखने में इतना गुस्सा आया था कि थोड़ी बहुत तो तू लाज या शर्म रखता, अपनी बीवी को लेके नीचे तू घसीटता हुआ ला रहा है। तेरे को इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि मेरी बहन को ठकी देता। और उसका पेट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लोटेड लग रहा है, वो दिख रहा है कि उसका पेट ब्लोटेड है। जब वो ऊपर गई है तब वो एकदम सही दिख रही है, लेकिन नीचे आते हुए उसका शरीर एकदम से भारी हो गया है। और कार्रवाई की बात की जाए तो समर्थ सिंह जिस दिन मेरी बहन को लेके उसकी बॉडी को लेके जब वो पहुंचा है हॉस्पिटल, उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है, पंचनामा करके वो चला गया है। और पंचनामा के कुछ समय बाद वो वापस आया है, और उसके बाद से वो वहां से फिर गया, उसके बाद से हमने उसको कभी देखा ही नहीं है कि वो है कहां।
0: नैना, क्या ट्विशा ने आपको भी कोई व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे? कोई डिस्ट्रेस उनके मैसेजेस में दिखाई दे रहा था?
5: मैम, उसने अपने किसी भी क्लोजेस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया शादी के बाद। वो सिर्फ अपने कनेक्शन में जो थी, अपने माँ बाप के साथ थी और अपने भाई भाभी के साथ थी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मेरे को लगता है कि शायद वो हम लोगों को पर्सनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड। उसने यही सोचा होगा कि मैं क्यों अपनी बहन को डिस्टर्ब करूं। और जो भी हमें बताया गया था उसकी शादी में कि एवरीथिंग वॉज फाइन। और जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर उसके मन में कुछ चल भी रहा होगा, अगर मैंने उसे फोन भी किया होगा, तो वो कभी मुझे ये नहीं बोलेगी कि बहन मैं अभी परेशान हूँ। वो चाह रही होगी कि ये चीजें ठीक हो जाए। टाइमलाइन अगर इसकी शादी की देखें, इसकी शादी के कुछ ही महीने बाद इसकी भाई की शादी हुई, और उसी बीच में मेरे मामा जी को हार्ट अटैक भी आया। तो आधा समय इसका उसी चीज में निकल गया, शादी में, हार्ट अटैक में, ट्रैवलिंग में। जो भी ट्रैवलिंग के एलिगेशन लगाए हैं कि इसने कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग की है,
0: नैना
5: वो
0: क्या आप
5: इसी
0: इस बात पर क्लैरिटी दे सकती हैं जो ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कि त्रिशा ड्रग एडिक्ट थी, लंबे समय से ड्रग्स ले रही थी, ये आरोप दरअसल खुद को सिर्फ बचाने के लिए है? क्या वाकई वो आरोप ये सिद्ध कर सकते हैं, कुछ है ऐसा उनके पास, या फिर बेमतलब अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं?
5: मैम मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई एविडेंस है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी, वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करे, वो क्यों भागे? मैम इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे, अगर ऐसी कोई चीज होती ये बहुत पहले ही आ गई होती, और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है, इनको तो सब पता होगा, ये तो सब कुछ पता, जब ये प्रीमेडिटेट मर्डर कर सकते हैं तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है, अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में, ये तो इनके कहने पे आई है, ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव।
0: दो और सवाल आपसे नैना, क्या जो ट्विशा का अबॉर्शन था वो फोर्स्ड अबॉर्शन था या उसकी मर्जी से था? और दूसरा मेरा सवाल कि अगर इतने डिस्ट्रेस मैसेजेस अपने पेरेंट्स को उसने किए, माँ को किए, पिता को किए, तो उसे वापस नहीं आ जाना चाहिए था? लाइफ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है।
5: मैम यस, ऑन दैट आई वुड लाइक टू क्लियर कि वो 15 मई को आ रही थी, आप समझिए उसके भाई की शादी मार्च में हुई है, अप्रैल तक उसने इस चीज को बाईपास किया है, इस चीज को मतलब कोशिश किया कि ये चीज ठीक हो जाए, उसके मैसेजेस भी है, उसमें भी उसका यही कहना है कि मम्मी मैं इनसे बात करूंगी, आप मत आना, मैं वैसे भी 15 तारीख को आ रही हूँ। अगर बात रही अबॉर्शन की, जो ये बात है, कौन लड़की ऐसे इंसान का बच्चा चाहेगी जो ऑलरेडी उसको मेंटली अब्यूज कर रहा है? दैट कुड बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिस वजह से उसने चाहा होगा कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, अदरवाइज उसको भी ये मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मैं 6 साल की उम्र से उसको जानती हूँ, उसने मेरे साथ पर्सनली बहुत बार हम बहनों ने शेयर किया है कि हाउ मच शी वॉन्टेड अ चाइल्ड एंड अ नॉर्मल फैमिली, एंड शी वॉज सो हैप्पी वेन आई गॉट मैरिड। वो आ नहीं पाई क्योंकि उसके भाई का पासिंग परेड था देहरादून में, और ये लोग कह रहे हैं मेरा भाई फर्जी फौजी है, इनको शर्म आनी चाहिए, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन उसका पासिंग परेड था देहरादून में, वो कैसे फर्जी हो सकता है?
0: लेकिन जो स्विजोफेनिया, डिप्रेशन, मैरिजुआना कंजम्पशन का आरोप उन्होंने लगाया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो मलाइन करना चाहती है, ये बताना चाहती है कि ट्रिशा दिमागी रूप से ठीक नहीं थी इसलिए उसने सुसाइड किया?
5: मुझे ये जिस तरह से तैयार होके आ रही है ना, तरह तरह की साड़ियां पहन के, मुझे बहुत ही, मेरे को हैरानी हो रही है कि इनके पास इतना समय है कि ये पूरा अपने आप प्रेजेंटेशन करके आ रही है। दूसरी बात, स्किज़ोफ्रेनिया और मैरिजुआना की बात की है उन्होंने, ये लॉयर, ये रिटायर्ड जज है, हस्बैंड लॉयर है, इनको अगर ये लगा था ये स्किज़ोफ्रेनिक है, स्किज़ोफ्रेनिक बंदा सिर्फ 6 महीने में नहीं हो जाता, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ वेरी वेरी वेरी डीप एलिगेशन दे आर पुटिंग ऑन माय सिस्टर कि इसको मेंटल कंडीशन थी, और इस मेंटल कंडीशन का स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का डिसऑर्डर है। अगर इस तरह का डिसऑर्डर होता है ना आदमी के अंदर, तो वो पूरा मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने पूरा कोहराम मचा रखा होगा, और इतने कोहराम में ये रह रहे थे इतने शांति से, अगर आप सीढ़ियों में भी उसको चलते हुए देख रहे हो तो वो बड़ी कामली चल रही है, वो अपने व्हाट्सएप चैट्स पे भी बहुत कामली बात कर रही है। अगर इनको लगा था कि 6 महीने में भाई ये लड़की कहाँ से स्किज़ोफ्रेनिक है, तो इन्होंने क्यों नहीं बताया? वेयर इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन गिरिबाला एंड माई मामी वेयर दे आर सेइंग दैट कि शी इज नॉट मेंटली फिट टू बी इन हर फैमिली? एंड ऑल्सो मैरिजुआना, इतना सारा मैरिजुआना एक क्रिमिनल लॉयर के घर में आ रहा है, एक रिटायर्ड जज के घर में आ रहा है, एंड इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया?
0: ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है ये सिलेक्टिव है क्या? जितना वो दिखाना चाह रहे हैं उतना ही सबमिट किया गया है? और दूसरी बात ये कि अगर इनका बेटा इतना ही पाक साफ है तो इस वक्त फरार क्यों है?
5: यस मैम, ये तो मेरे को मीडिया का भी, मीडिया के लिए तो थैंकफुल हूं मैं कि उन्होंने ये भराया है। एंड सेकेंड बात ये है कि अगर ये, आई वॉज कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो फुटेज है, इस फुटेज में आप देखेंगे कि ये ऊपर गई है, लेकिन इन तीनों का, इनके जो दो हाउस हेल्प है जिनको तो बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए, दोनों हाउस हेल्प है कहाँ, और उसके बाद तीसरा हाउस हेल्प है जिसने फिरोजी रंग का टी शर्ट पहना, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। फिर गिरबाला जी अपने रूम से आती है, जबकि गिरबाला जी का कमरा जो मुझे बताया गया नीचे है, तो ये ऊपर क्या कर रही थी? तो ये ऊपर कमरे से निकली है और इनके हाथ में एक बैग है और जो एक रोप सा निकल रहा है बाहर, तो ये जो CPR दिया गया है ये पूरा शो है जिससे कैमरा कैच कर ले कि ओ मैंने अपनी वाइफ को CPR दिया है, ठीक है, ये पूरा शो पुटअप किया। और इस तरह से कौन CPR देता है कि आधा शव उसका धड़ ऊपर है और टांगे नीचे, और कहाँ CPR दे रहा था फिर उसको? पूरी टी शर्ट उसकी ऊपर है, पेट उसका ब्लोटेड है, ये सारा मैम पुटअप शो है, ये कुछ और नहीं है।
0: उधर त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने उसकी सेहत को लेकर कई गंभीर बातें बताई।
6: इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिरिबाला सिंह जी। बात करने के लिए जो आरोप त्रिशा के परिवार की तरफ से लगाए गए थे, काफी कुछ बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल कही, लेकिन परिवार अभी तक अंतिम संस्कार नहीं करवाने के लिए शव ले रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? क्योंकि अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया।
7: मुझे तो ऐसा लगता है जस्ट माउंटिंग प्रेशर, दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता है हमारे साथ हो, जबकि हमारा तो एक उसूल रहा है कि जो हमारे पास आया, हमारे संसर्ग में आए, लोग कहते थे आपका तो माइडस टच है, जो जो आपके संसर्ग में आता उसका कुछ बेहतर ही बन के जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को यही गलत फहमी थी कि बच्चे के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनके सब दखल, इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है।
6: आपने मैम कल भावुक होते हुए ये भी कहा था कि हर परिवार चाहता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, और कल जब प्रेगनेंसी को लेकर के आपने बात की, उस वक्त आपने भावुक होते हुए ये भी कहा कि बच्चा वो चाहती नहीं थी और इसलिए उसने एमटीपी ट्रीटमेंट लिया।
7: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
6: सिज़ोफ्रेनिया का कब पता चला मैम?
7: एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी ओलिज़ेप्राम, अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दीज पेशेंट्स, मैनिक डिप्रेशन एंड सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं उस दिशा में, तो इसलिए वही कर बता पाएंगे। यस,
6: आप लोगों ने 8 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर किए, जिसकी बैंक डिटेल्स भी आपने कोर्ट में सबमिट कराई हैं। क्या आपके एडवोकेट की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि बैंक डिटेल्स निकलनी चाहिए त्रिशा?
7: बिल्कुल निकलनी चाहिए, वी नीड टू नो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है।
6: आप लोगों पर 2 लाख का आरोप लगाया उन्होंने,
7: और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो यूपीआई ट्रांजेक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? 2 लाख इज माई सैलरी, तो हम क्यों मांगेंगे एक इस तरह से पैसा?
0: तो भोपाल के त्रिशा केस की जांच जारी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि कैसे महीनों तक त्रिशा प्रताड़ित होती रही, जिसका खुलासा उसकी मौत के बाद हुआ है।
8: त्रिशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। त्रिशा शर्मा एक मॉडल रह चुकी है, उन्होंने तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग भी की हुई थी। इसके अलावा वो मिस पुणे थी, कई सारी एड फिल्में भी की थी। बाद में उन्होंने करियर की राह बदली, एमबीए किया और जर्मनी की कंपनी में नौकरी भी की। एक मैट्रिमोनियल साइट से उनका रिश्ता भोपाल के समर्थ शर्मा से हुआ और 12 दिसंबर 2025 को त्रिशा और समर्थ की शादी हुई। समर्थ शर्मा पेशे से वकील है, जबकि उनकी माँ गिरिबाला जिला जज थी और रिटायर्ड हो चुकी है। आरोप है कि शादी के बाद त्रिशा का शोषण शुरू हो गया था। पहले तो वो चुप रहती थी, लेकिन फिर त्रिशा ने धीरे धीरे करके ये बातें अपने घर वालों को बतानी शुरू की। घर वाले नहीं चाहते थे कि बेटी का घर टूटे, तो उन्होंने त्रिशा को सब कुछ मैनेज करके चलने की सलाह दी। और फिर अचानक 12 मई को खबर आई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन त्रिशा के घर वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप है। परिवार का दावा है कि शव के हाथ और कान पर चोट के नीले निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है। ये भी आरोप है कि हत्या के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई, और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है। अब त्रिशा के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से ही इनकार कर दिया है। वो मध्य प्रदेश से बाहर त्रिशा का पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहे हैं। मामला सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इस गंभीर केस में त्रिशा की जज सास का रसूख साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप है कि बेटी की मौत के 2 दिन बाद पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी पति समर्थ शर्मा पर अब पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है, लेकिन समर्थ की मां और त्रिशा की सास को पहले ही अंतरिम जमानत दे दी। आरोप है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। दहेज प्रताड़ना और मौत के केसेस में अग्रिम जमानत मिलने पर सवाल उठ रहे हैं।
9: सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस आवेदन पर। ये त्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला का अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र है और इसमें गिरिबाला ने त्रिशा पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं। लेकिन त्रिशा ने मौत से पहले अपनी माँ से व्हाट्सएप पर जो चैट की थी उन्हें पढ़ने से ये साफ हो रहा है कि त्रिशा पर ऐसे आरोप लगाने की पहले से तैयारी थी। उसने लिखा है कि इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। अब त्रिशा के घर वालों का कहना है कि ड्रग्स उनकी बेटी नहीं बल्कि त्रिशा का पति समर्थ करता था और उसी को बचाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
3: समर्थ उसको थ्रेट करता था क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया था उनकी मदर को कि ही इज अंडर ड्रग समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी ड्रग एडिक्ट की और आज भी बहुत बड़े लेवल पर ड्रग कंज्यूम करते थे। तो उनकी मदर को मैंने बोला कि आप प्लीज चेक करिए अपने बेटे को, बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं वो और इतनी ड्रग्स कर रहे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। लड़की शिकायत कर रही है कि ये इनको ध्यान नहीं रहता, ये उल्टी उल्टी करके अपने इनके जो पड़े रहते हैं ये।
9: त्रिशा और उनकी माँ की चैट्स पढ़कर ये साफ हो जाता है कि त्रिशा बहुत ज्यादा परेशान थी, उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे एक चैट में त्रिशा ने लिखा है कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, न रोने देंगे ये लोग न हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। एक और चैट में लिखा है, ये सब बहुत निर्दयी है मम्मी, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है, बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते हैं, मेरा दम घुटता है अब यहाँ। एक और चैट है जिसमें लिखा है, मुझे पूछ रहा है कि वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं, ये अपने घटियापन की हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, कैसे रह लूं उसके साथ, श्राप लगेगा इसे मेरा। इन चैट से ये साफ है कि त्रिशा बहुत ज्यादा तनाव और अवसाद में थी। वो जब गर्भवती थी तो उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए जिसका जिक्र उसने इन चैट्स में भी किया था। इसके बाद उसका मिसकैरेज भी हो गया था और जब उसकी मौत हो गई तो उसकी सास के रसूख का प्रभाव साफ नजर आता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
0: खबरें असरदार है, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
10: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
12: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
13: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
14: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
17: How they looked after game one.
18: I mean, they were frustrated.
16: The Daily.
19: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
16: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
10: In association with
12: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: कोलकाता सीट पर टीएमसी को बड़ा झटका। जहांगीर खान के ने पीछे खींचे अपने कदम, बीजेपी का तंज, दीदी के लोगों को हार का डर। उलझती जा रही है मॉडल त्रिशा की मौत के गुत्थे, आज तक से बोला परिवार, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो सास। गिरीबाला का आरोप, ड्रग्स लेती थी और मानसिक रूप से बीमार थी बहू। पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने पर जारी रहेगी सख्ती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की अर्जी, कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। एक हफ्ते के भीतर फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे और करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल, राहुल गांधी का निशाना, कहा लोग परेशान है और पीएम विदेश घूम रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान पर अगले एक्शन का फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मीटिंग से पहले कहा कि खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल रोका अपने हमले, तेहरान का बयान सरेंडर का सवाल ही नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
3: ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों टाला? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी? हमला टालने के बाद मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान क्यों उड़ा रहा ट्रंप का मजाक? सीज फायर का ईरान ने उठाया फायदा? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को धमकाया। ईरान की मिसाइलें कहां कहां बरसेंगी? ईरान की धमकी से खुली पाकिस्तान की पोल। बिचौलिए पाकिस्तान ने सऊदी में क्यों भेजे सैनिक? 72 घंटे बाद फिर महायुद्ध का कहर। मिडिल ईस्ट में किसका सरेंडर?
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ना तो ये खत्म होती दिख रही है और ना ही इसके फिर से शुरू होने की कोई गारंटी है। इस महायुद्ध के लेटेस्ट अपडेट के लिए 4 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है जो वॉशिंगटन में उन्होंने कल ये ऐलान कर दिया और सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का अपना फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देश यानी यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर अपने फैसले को टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब है, लेकिन ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। उसने मरहम पट्टी लगी डोनाल्ड ट्रंप।

0: निकले। इसी का हल निकालने के लिए वॉशिंगटन में अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा आला सैन्य अधिकारियों के साथ एक रिजोल्यूशन रूम में यानी एक सिचुएशन रूम के अंदर लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं ईरान की नजर इस बैठक पर रहेगी। उसने चेतावनी दी है कि अगर इस बार पर फिर से हमला हुआ तो फिर इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को भी वो निशाना बनाएगा। वहीं इस पर हूती की जंग भी कूदने के लिए तैयार बैठे हुए। बाब अल मदेब में दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अब ये दूसरा रास्ता बंद करने के हूती पूरी तरीके से तैयार। आखिर ट्रंप के सामने मजबूरी क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले उनका बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हमला टालने का ऐलान किया है।
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Donald Trump ko aapne suna. America ke rashtrapati Donald Trump ne Iran par aaj hone wala apna hamla taal diya hai. Lekin wo abhi aar paar ke mood mein hai aur apni taiyariyon ko usi tarike se kabu ya fir us tarike se chalate aaye nazar aa rahe hain. Rashtrapati Trump aaj सिचुएशन रूम के अंदर सुरक्षा टीम के साथ महा बैठक करने वाले हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट और सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन समेत तमाम आला अधिकारी उनके साथ इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा करना और साथ ही सैन्य विकल्पों पर भी चर्चा करते हुए उनकी तैयारियों में जुट जाना। आज के टाले गए इस हमले के बाद आगे की रणनीति क्या होगी वो भी इसी बैठक में तय किया जाएगा। ट्रंप ने जहां पर खाड़ी देशों का हमला हवाला देते हुए युद्ध को टालने की बात कही, वहीं ये दो टूक भी कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। आज की बैठक में ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया हो, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के मोड में आ सकती है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। जहां तक ट्रंप की ओर से हमले को टालने के सवाल की बात करें तो अमेरिका से लेकर ईरान तक इस पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। खबर यह है कि अमेरिकी अखबार का दावा है कि ट्रंप ने पेंटागन के कहने पर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उनके मुताबिक पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी निगरानी की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उसने अपने सर्विलेंस की पावर को और ज्यादा मुस्तैद कर दिया है। इस समय वो अमेरिकी विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि अमेरिका के एयर डिफेंस यूनिट्स पर पुख्ता नजर बनाए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर सटीक निशाने साध सकता है। और जो दावे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से किए जा रहे हैं वैसे ही दावे ईरान और इजरायली मीडिया के हवाले से भी किए जा रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने एयर डिफेंस को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि अमेरिकी जेट आसानी से अब मार गिराए जा सकते हैं और अमेरिका की सुप्रीमेसी ईरान के अंदर दोबारा से एयर सुप्रीमेसी वैसी स्टेब्लिश नहीं होगी। ईरानी न्यूज एजेंसी ने यह भी कहा कि पेंटागन का हवाला दिया, उसके मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को यह बताया कि ईरान ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही उसने ईरान के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। उसकी चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले के को कुछ समय के लिए टाल दिया है। अगर अब हमला होता है तो पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार निशाना बनाए जाएंगे और इसके अलावा अमेरिका और इसराइल को रणनीति बनानी होगी कि वो कैसे लगातार ईरान के इस नए सिक्योरिटी मेजर्स का सामना कर सके। ट्रंप ने हमला कुछ दिनों के लिए टाल तो जरूर दिया है, लेकिन ईरान अपनी तैयारियों में अब भी लगा हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने ही दी गई डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ा दिया गया और अपने ही धमकी को पलटना उनकी एक आदत में शुमार हो चुका है। आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस महायुद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के 6 बड़े यूटर्न जो आप देखकर समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उसका उलट ही करते हैं। एक बार फिर 23 मार्च की सबसे पहली आपको बात बता दें, हॉर्मुज पर पावर प्लांट ब्रिज उड़ाने वाले को 5 दिन के लिए टाला। हम लोग को उन्होंने 5 दिन के टालने की बात कही। पहले उन्होंने कहा था देखिए अभी

0: अगले 24 घंटे में अटैक हो जाएगा, लेकिन 23 मार्च को उन्होंने कहा कि हमने ब्रिज को उड़ाने वाले और लगातार उनके पावर सप्लाई पर टारगेट करने के फैसले को 5 दिन के लिए टाल दिया। 26 मार्च को फिर वो क्या कहते हैं, पिछले हमले की डेडलाइन को 10 दिन और बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए जो 5 दिन दिए गए थे उसमें 10 दिन और अतिरिक्त बढ़ा दिए गए हैं, ये उन्होंने 26 मार्च को कहा। अब इसके बाद 7 अप्रैल को क्या कहा, पावर प्लांट ब्रिज उड़ाने की धमकी थी, सीज फायर 15 दिन बढ़ा दिया गया, यानी 10 दिन के बाद एक बार फिर से 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया। ये 7 अप्रैल को उन्होंने तीसरी बार अपने बयानों को पलटा। अब 21 और 22 अप्रैल की बात कर लीजिए, सीज फायर खत्म होने वाली थी और अनिश्चित समय के लिए इसको बढ़ा दिया गया, यानी अब कोई टाइम फ्रेम दिया ही नहीं गया। 10 दिन 15 दिन के बाद अब अनिश्चित समय के लिए इसको बढ़ा दिया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ वो दावे जरूर कर रहे थे, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे थे। अब 4 और 5 मई को हॉर्मूज खोलने वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम 24 घंटे में ही खत्म किया गया, यानी जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, उसको 24 घंटे के ऐलान के बाद ही एकदम से खत्म भी कर दिया। अब 18 मई को यानी कल उन्होंने क्या कहा कि कतर सऊदी यूएई के कहने पर ईरान के खिलाफ हमने टाल दिए हैं, यानी हम हमले अब इस समय ईरान पर नहीं करने वाले, क्योंकि ये तमाम देश जो हैं वो लगातार ईरान के साथ किसी एक समझौते पर आने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि बातचीत की ये पूरी प्रक्रिया खराब हो। यानी आप मानिए 6 बार लगातार उन्होंने कई बार अपने बयानों को पलटते आए और ईरान पर हमने अपने हमलों की कार्रवाई को भी एक्सटेंड करते आए। अब ईरान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का दावा कर रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध टालने के फैसले को लेकर तंज भी कस दिया जाए, यानी एक तरफ वो अपनी तैयारियां कर रहा और साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। सियारा लियोन में ईरानी दूतावास के साथ ही हैदराबाद में ईरानी काउंसलेट ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का मजाक उड़ाया। सियारा लियोन ने ईरानी दूतावास ने व्हीलचेयर पर बैठे ट्रंप की मरहम पट्टी करने वाली एक एआई तस्वीर साझा की है, साथ ही लिखा कि ट्रंप इस हाल में होते हैं जब वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर फिर से हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वहीं आपको बता दें लेकिन वो हमला नहीं करते हैं। वहीं हैदराबाद में ईरानी काउंसलेट ने भी अपने पोस्ट में ट्रंप पर के उस पोस्ट को टैग किया जिसमें उन्होंने ट्रंप ने युद्ध टालने का ऐलान कर दिया था। ईरानी काउंसलेट ने लिखा कि चिंता मत करो, अगले दौर के लिए कुवैत बहरीन और कई दूसरों के नाम की तैयारी है, यानी ईरान कुवैत बहरीन और खाड़ी के दूसरे देशों को चेतावनी दे रहा है कि देखें ये लोग भी अब लगातार हमारे साथ बातचीत का इनका जिक्र किया जाएगा। और देखिए ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने भी इसको लेकर अमेरिका की धमकियों को लेकर एक पलटवार किया। मोहसिन रजाई ने कहा कि ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रजाई ने कहा कि अमेरिका को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर उसे पीछे हट जाते हैं, ऐसा वो ईरान पर सरेंडर करने के दबाव के चलते करते हैं। उन्हें ये गलतफहमी है कि वो ईरान के लोगों को और अधिकारियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान की लोहे की मिट्टी है दुश्मन को पीछे हटने और सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देती है, यानी वो ये बात का दावा करता है कि देखिए हम पीछे हटने वाले नहीं है और जनता का जो सपोर्ट है वो भी ईरान के रिजिम के साथ है। अब देखिए ईरान खोखली धमकी नहीं दे रहा है, अगर अमेरिका का हमला हुआ तो उसने पलटवार के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ईरान क्या क्या कर सकता है, यानी उसके पॉसिबल टारगेट्स और उसकी तैयारियां कैसी होगी। देखिए सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर अगर आप चले, हमला हुआ तो ईरान का पलटवार प्लान क्या है, इजराइल यूएस ठिकानों पर मिसाइलों से जबरदस्त बौछार की जाएगी। ये दरअसल ईरान ने एक तैयारी की है कि वो बहुत ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागता है वो यूएस में और इजराइल पर, ताकि उनके डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट ना कर सके। अब युद्ध छिड़ा तो रोजाना सैकड़ों मिसाइल दागने की फिराक में है तेहरान। ईरान ने अपने साइलोस के अंदर और ज्यादा जो मिसाइलें थी उनको अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय कर दिया है और ऐसी रिपोर्ट लगातार पेंटागन की तरफ से कई अमेरिकी अखबार और उनके मीडिया समूह भी देते हैं। खाड़ी देशों के तेल के कुएं और बंदरगाह रिफाइनरियों को मुख्य निशाना बनाया जाएगा। देखिए अब ईरान की कोशिश ये होगी कि तमाम देश जो लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनके तेल के कुएं बंदरगाह और उनकी रिफाइनरियों को ज्यादा टारगेट किया जाए ताकि वो दर्द महसूस करे अमेरिका और अमेरिका के साथ उनके मतभेद और ज्यादा बढ़े। अब सऊदी अरब यूएई और कुवैत भी क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकते हैं, यानी सीधे तौर पर अब ईरान ये कह रहा है कि वो यूएई सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों के अंदर जहां पर अमेरिका की मौजूदगी बहुत ज्यादा है वहां पर ज्यादा हमले करेगा। ईरान के विश्लेषण की धमकी यूएई को ऊंट के पुराने युग में पहुंचा देंगे, यानी इतने ज्यादा हमले करेंगे कि उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जाएगा। जो डेवलपमेंट यूएई की तरफ से की गई है वो उसको पीछे खींच देंगे, यानी उसको बहुत पीछे ले जाएंगे। अब अबुधाबी पर आक्रामक चेतावनी दी गई है, जरूरत पड़ने पर कब्जा करेंगे, यानी ग्राउंड फोर्सेस और कब्जा करने की धमकी भी यूएई को दी जा रही है। और देखिए, अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों यानी बाब अल मंडेर, यानी ये वो इलाका है जो आप कह सकते हैं हूतियों के कंट्रोल में रहता है, इसे ठप करने की भी साजिश है। देखिए, अगर ये दोनों को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी और बाब अल मंडेब को भी टारगेट किया जाए, इसको क्लोज कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया में करीबन 35-40% जो रूट है वो आप कह सकते हैं सीधे तौर पर उसको बर्बाद हो जाएंगे। जो छिड़ा तो यमन के हूती लड़ाके खोल कर देंगे ईरान का साथ। हालांकि हूती लगातार इजराइल पर कई बड़े अटैक्स पहले भी करते हैं, और अभी भी ईरान के साथ जब युद्ध चल रहा था तब हूती की तरफ से लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जाता रहा कि वो भी लगातार अमेरिका को और इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए हमले करते जा रहे हैं। यानी हूती का साथ अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ी चेतावनी होगी। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार पर लगेगा ब्रेक, यानी ये बात ईरान बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अब एक ऐसा वेपन उसके हाथ में आ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या फिर जो ऑयल और गैस का रूट है जिसको बाधित करने के बाद वो पूरी दुनिया पर इसका असर डाल सकता है। अब खाड़ी में ऊर्जा के ठिकानों और ढांचों पर अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, यानी ऊर्जा के जो ढांचे हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो तमाम चीजों को टारगेट करना ईरान के लिए बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं असर्ट, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल होगा, क्योंकि इसी को हमला करने के बाद वो इन तमाम देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता। अब सबसे बड़ी बात यह कि मध्य पूर्व में जारी तनातनी के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सऊदी अरब के साथ भारी फौज और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। एक तरफ पाकिस्तान इस पूरे विवाद में मुख्य मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, वहीं दूसरी तरफ उसकी इस गुप्त सैन्य तैनाती से खाड़ी क्षेत्रों में और देशों के अंदर समीकरण बिगड़ सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में अपने 8,000 सैनिक, लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाडन और एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इस बेहद संवेदनशील और बड़े पैमाने पर की गई सैन्य तैनाती की पुष्टि पाकिस्तान के 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से भी आई है सामने, और रिपोर्ट के अनुसार ये कोई सामान्य ट्रेनिंग दस्ता नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार टुकड़ी है। इस फोर्स को भेजने का मुख्य उपदेश सऊदी अरब के सैन्य ढांचे और को मजबूत करना है, ताकि अगर सऊदी अरब पर कोई संभावित हमला होता है तो पाकिस्तानी सेना सीधे मोर्चा संभाल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान और खाड़ी के देशों के बीच में आप कह सकते हैं युद्ध टालने को लेकर मुख्य बातचीत के तौर पर कमान भी संभाले हुए हैं। लेकिन बैक चैनल पर सऊदी अरब को दी गई ये सीधी सैन्य मदद इस बात के संकेत देते हैं कि अगर युद्ध और भड़का तो पाकिस्तान पूरी तरीके से सऊदी अरब के पाले में खड़ा हुआ नजर आएगा, यानी एक तरफ दोस्ती का हाथ ईरान की तरफ भी और दूसरी तरफ सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ भी, यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से अपना फायदा उठाने के लिए अपने काम कर रहा है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते की शर्तों में दोनों देशों ने गुप्त रखा था, लेकिन कहा यह गया था कि अगर हमला किसी भी देश पर होता है तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी के तहत लगभग 8,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब भेजे गए हैं। GF-17 फाइटर जेट की एक स्क्वाडन, पूरी स्क्वाडन को भी तैयार किया गया जो वहां पर तैनात की जाएंगे, जिसमें करीब 16 विमान है, 2 अलग से स्टैंड बाय पे भी रहते हैं। स्क्वाडन के अंदर करीबन 18 जहाज होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये वही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, और कई ऐसी बैटरीज थी इसकी जिसको लेकर पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट भी की थी चीन को कि देखिए इसमें से कई बैटरीज, कई ऐसे स्क्वाडन जो है वो चलते नहीं है, कई जो इसकी यूनिट्स है वो काम नहीं करती। अब वही यूनिट्स अब उन्होंने सऊदी में तैनात करने का ऐलान किया। कुछ ड्रोन आप स्क्वाड्स को भी भेजा जाएगा, यानी कई ऐसी ड्रोन की स्क्वाड्स है जिनको तैनात किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस तैनाती का खर्च सऊदी अरब उठाएगा, यानी हथियार पाकिस्तान के, साजो सामान पाकिस्तान का, लेकिन इनका पूरा खर्चा सऊदी के कंधे पे होगा। सुनिए कैसे कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि अगर पाकिस्तान भारत में युद्ध होता है तो या सऊदी अरब में पर कोई हमला करता है तो क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान उस युद्ध में कूद सकते हैं, तो उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोई किसी जो है वो मुल्क का नाम नहीं लिया कि कौन मुल्क जो है वो अग्रेसर होगा तो हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे। ना सऊदी अरेबिया ने उसका कोई नाम लिया है, ना हमने कोई नाम लिया है। तो इट इज जस्ट एक अम्ब्रेला है जो प्रोवाइड किया गया है दोनों अतराफ से कि किसी के साथ भी अग्रेशन हो, किसी साइड से भी अग्रेशन हो, वो जॉइंटली उस चीज को जो है डिफेंड किया जाएगा, उस अग्रेशन का जवाब दिया जाएगा।
0: देखिए मिडिल ईस्ट में एक युद्ध का मोर्चा, तो हमने आपको उसके बारे में पूरी खबरें बताई, लेकिन एक और ऐसा युद्ध का मोर्चा है जहां पर इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट में जारी महातनाव के बीच दक्षिणी लेबनन में एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आई है। दरअसल इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनन के एक रिहायशी शहर में भीषण बमबारी की है, जिससे पूरा इलाका दहल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली हमले के बाद आसमान में कई सौ फीट ऊंचे धुएं का गुब्बार और आग का गुब्बार नजर आया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार दक्षिणी लेबनन में अभी हाल ही में इजरायल और लेबनन की सरकार के बीच में सीजफायर एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनन के इलाकों के अंदर फिर से अटैक करने शुरू कर दिया। इस बड़े विस्फोट को लेकर इजरायली सेना आईडीएफ की तरफ से आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के एक बेहद खुफिया और बड़े एंटी टैंक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। इजरायल के मुताबिक इस डेपो के अंदर भारी मात्रा में घातक मिसाइलें जमा की गई थी, उन्हें तबाह कर दिया गया। साल 2024 में हुए युद्ध विराम यानी सीजफायर के समझौते को ताक पर रखकर इजरायल ने साल 2026 में लगातार लेबनन में अपनी सेना को भेज दिया, अपनी ग्राउंड मूवमेंट शुरू कर दी, लेकिन फिर से एक बार सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन अब फिर उसी सीजफायर को तोड़ दिया गया। इजरायल का साफ कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हिजबुल्ला के सैन्य क्षमताओं को पूरी तरीके से खत्म करने का दम रखता है। रणभूमि में हम आपको युद्ध क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें बताते रहेंगे, लेकिन आप सीधे चलते हैं गृहमंत्री अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
2: नाम बदल कर आएंगे, किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। बहकावे के लिए जो आते हैं उनके साथ अगर आप बस्तर की जनता बात करने चाहती है तो उनसे हिसाब मांगना कि हमारे 50 साल के नुकसान का पहले आप हमें हिसाब दीजिए, इसको भरपाई करिए, फिर बात करिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं फिर से एक बार, कई बार मैं बोल चुका हूं मगर फिर से कहना चाहता हूं कि ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस लड़ाई में दिया वो सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिजनों को जाता है, वो सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है जिन्होंने नितांत यातनाएं उठाकर इस अभियान को चलाया, लड़ाई लड़ी और यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अपना योगदान दिया। मैं फिर से एक बार नक्सल अभियान के कारण जो जवान अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं वो जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और वो सारे लोग जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिजन गंवाए हैं उनके प्रति भी मैं संवेदना और सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।
3: पीछे पीछे
4: मेरा एक सवाल है, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि बस्तर के लिए दिल्ली से इतना पैसा चला है कि हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार हो सकती थी।
3: क्या
4: हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार खड़ी हो सकती थी, इतना पैसा दिल्ली से चला है, ऐसा बचपन से हम सुनते आए हैं।
3: क्या
4: मैं ये कहना चाहता हूँ,
3: नहीं ऐसा नहीं है,
2: यहां इस तरह की परिस्थिति ही नहीं थी कि विकास हो पाए। अब रोड बन गया, अस्पताल बन गया, मोबाइल टावर आ गए, गांव में पानी पहुंचने लगा है, स्कूल पहुंचने लगा है और स्किलिंग भी हो रहा है, तो समृद्धि अपने आप आएगी। सरकार मारुति गाड़ी नहीं भेज सकती, सरकार व्यक्ति को इसके योग्य बना सकती है जो अपनी मारुति खरीद पाए, वो हम सुनिश्चित करेंगे।
4: बस्तर मुक्त,
2: धन्यवाद हो गया बेटी,
4: बस्तर नक्सल मुक्त तो
2: हम विवाद नहीं कर सकते भैया, सवाल जवाब कर
5: आगे आगे बढ़े। सर, बस्तर नक्सल मुक्त हुआ इसके लिए आपको
6: सरकार को बधाई। आपने बस्तर को सर्वश्रेष्ठ बस्तर बनाने की दिशा में जो 2030 का जो विजन दिया है, उस विजन के तहत कल माननीय मुख्यमंत्री
2: 31 का पांच साल, हम 26 में है, 31 में होगा।
6: ठीक है, नहीं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि बस्तर में औद्योगिकरण नहीं होगा, कृषि आधारित विकास हम करेंगे। ऐसे में बस्तर के विकास का मॉडल आप क्या वो कर रहे हैं और बस्तर का
2: अभी आज मैं आपके सामने शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का परिचय करने के लिए हूं। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों को सक्षम बनाकर, उनका स्किल डेवलपमेंट कर स्वरोजगारी और डेयरी के माध्यम से समृद्ध कराने की हमारी ये योजना है, इसका परिचय कराने के लिए मैं आया हूँ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम आगे की चीजें भी बताते जाएंगे। भाई माइक दे दो वहां।
7: आपको कोटि कोटि साधुवाद।
8: मेरा एक सवाल है, कल आपने जो बादल में एक बहुत बड़ा बात कही थी कि विकसित भारत बिना विकसित बस्तर के संभव नहीं है, तो मेरा सवाल यह है मान्यवर, बिना यात्री रेल सुविधा के बस्तर में कैसा विकास की कल्पना करते हैं? क्योंकि हम बस्तरवासी आज आजाद भारत के पहले या बाद से अभी तक रायपुर ट्रेल में नहीं चल पा रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और भारत सरकार क्या प्रयास करेगी?
2: देखिए, एक ऐसे क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं जो बाकी के देश के हिस्सों से लगभग 30-40 साल विकास की रेस में पिछड़ गया है। यहां अभी हम सभी ग्रामीणों को सशक्तिकरण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने का काम साइमेंटेनियसली हमने शुरू कर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, नक्सल मुक्त भारत को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बड़े ऐलानों की बात भी कर रहे थे। बस्तर को कैसे आधुनिक बनाया जाएगा इसको लेकर भी उन्होंने ऐलान किया। चलिए, वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों की आप देखते रहिए आज तक।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, in association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
12: La Que Buena.
11: ESPN Radio.
13: We know LeBron has to be the best player on the planet to
11: get The Daily.
14: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
11: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
15: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
16: Sokudo.
7: ये मट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: जेके मैक्स पेंट्स।
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत।
1: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
2: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
5: So they were disallowed from speaking their language.
4: In-depth conversations with A-list celebrities.
6: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
4: True crime podcasts you just can't stop listening to.
7: Others escape justice to live and die in infamy. These
4: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
8: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
4: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अप
10: स्वीडन के बाद अब नॉर्वे में सम्मान, अरबों रुपए के निवेश का ऐलान, नॉर्वे में भी गूंजा मोदी मोदी। स्पेस से समंदर तक समझौतों पर मुहर, आतंकवाद से लेकर महायुद्ध का शोर, अब इटली में मेल मुलाकात का दौर, कहीं भारतीयता के दर्शन, कहीं दो देशों के कारोबारी रिश्तों का प्रदर्शन, पर्यावरण से लेकर पराक्रम तक हर क्षेत्र में लहराएगा परचम। पीएम मोदी को मिल रहा सम्मान, देश का बढ़ रहा मान। पांच देशों की पीएम मोदी की यात्रा अब पहुंच रही है अपने आखिरी पड़ाव पर।

0: रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन चौधरी। दुनिया भर के जो ताजा हालात बने हुए हैं उसमें सबकी नजरें बड़ी ताकतों के बड़े लीडर्स पर लगी हुई है। उनके लीडर क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब देखना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर हैं और खासतौर पर आज वो नॉर्वे के कई यूरोपियन देशों के प्रमुखों के साथ उनकी एक मीटिंग है, जबकि दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा भी शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में वो डोनाल्ड ट्रंप से भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर लौटे हैं। ईरान युद्ध के मद्देनजर पुतिन की ये यात्रा खास मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही देश ईरान के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं और उनके रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तेल की आपूर्ति से लेकर हथियारों की सप्लाई तक ईरान चीन रूस की दोस्ती जग जाहिर है और पुतिन की शी जिनपिंग से मुलाकात कारोबार के साथ साथ सैन्य रिश्तों को और मजबूत करने की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और कल नॉर्वे में उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी किया। आज उन्होंने इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा भी लिया, जहां 5 राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनकी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। इसमें रोजगार, तकनीक, पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। नॉर्वे के साथ भारत के कई समझौते पर मोहर भी लगाई गई। इसमें मुख्य रूप से भारत में व्यापार निवेश का एक मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया। नॉर्वे से नरेंद्र मोदी की इटली के लिए वो रवाना होंगे और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये आखिरी पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू कर दी गई। इसकी शुरुआत हुई है फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑनप्रो के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ऑनप्रो भारत और फिनलैंड के संबंधों को नई दिशा देने के और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के राष्ट्र प्रमुख के साथ भी बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री किस्टून के साथ भी एक क्लीन एनर्जी और इसके अलावा फिशरीज और सस्टेनेबिलिटी और कार्बन कवचरे को लेकर अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय नॉर्वे में है और कई महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही है। खासतौर पर कई देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उनके प्रमुखों के साथ ये बैठक की जाएगी और बैठक चल भी रही है। क्या कुछ निकलने वाला है भारत के पर्सपेक्टिव से इन बैठकों के बाद?
1: देखिए, नॉर्डिक क्षेत्र जो है वो यूरोप का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके पास में भविष्य की तकनीक है, जिसके पास क्रिटिकल मिनरल है। स्वीडन जैसा देश जो अपनी R&D के अंदर अपनी GDP का 3% लगाता है। आपको पता है कि फिनलैंड के साथ में भारत के बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं, तकनीक के रिश्ते, जैसे नोकिया जैसा ब्रांड हो, सिस्को जैसा ब्रांड हो, ये सब फिनलैंड से आते हैं। इसके अलावा नॉर्वे जैसे देश जहां का दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड उनके पास में है, $2 trillion का पेंशन फंड है, जहां से करीब $28 अरब का निवेश भारत में आ चुका है। भारत की कोशिश है कि इन देशों से ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन देशों से ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री उत्पादों के निर्यात को भारत किस तरीके से बढ़ा सकता है, उसको किस तरीके से विकसित कर सकता है, और एक ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री उत्पादों पर आधारित एक इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकता है, क्योंकि भारत की 7,500 लंबी किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, बड़े सारे इलाके हैं जो कि तटीय इलाके हैं, और वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ये ब्लू इकोनॉमी का मॉडल जो कि नॉर्डिक देशों से आ सकता है, उनसे हम सीख सकते हैं, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा भारत की कोशिश है कि रक्षा, क्रिटिकल मिनरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इनमें इन देशों के साथ में न केवल साझेदारी बढ़ाई जा सके।
0: आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नॉर्वे यात्रा से जुड़ी ये रिपोर्ट है, जहां पर भारतीयता का माहौल भी था और देश का सम्मान भी था, और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई अहम बातचीत में जिसमें निकल कर क्या आया, जिसमें सुनहरे भविष्य को लेकर क्या कदम उठाए गए, कई ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए जो रोजगार के साथ साथ नई तकनीक के दरवाजे भी खोलेंगे और सुरक्षा को मजबूत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। इस पूरी दौरे को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, भारत में $100 बिलियन निवेश का ऐलान, समंदर में भी दोनों देश मिलकर करेंगे काम। नॉर्वे दुनिया के खुशहाल और बेहद खूबसूरत देशों में से एक, अपनी पांच देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे तो भारत के सम्मान में एक अध्याय और जुड़ गया। स्वीडन के बाद अब नॉर्वे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नॉर्वे के राजा हेरल्ड पांचम ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे तो बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत किया
3: और हम चाहते हैं कि वो ऐसे आते रहें और हमसे मिलते रहें और वो जो भारत के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमारे देश का नाम बहुत ही ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
4: यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उनको बहुत ही सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं।
5: वी फील सो लक्की दैट वी गॉट ऑनर टू मीट अवर प्राइम मिनिस्टर, वी आर सो लक्की।
6: बहुत वैसे में मिला हूं, दर्शन हुए उनके पहले, फिर भी बहुत अधिक एक्साइटमेंट है।
2: फिर शुरू हुआ मेल मुलाकातों का सिलसिला। कारोबार से लेकर पर्यावरण और तकनीक से लेकर ताकत तक के पहलुओं पर बात हुई और कई अहम समझौतों पर मुहर भी लगी। पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर के साथ बिजनेस और रिसर्च समिट में शिरकत की। पिछले साल ही भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। बातें शुरू हुई तो उन दो महायुद्धों तक जा पहुंची जिसमें एशिया और यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। सालों से मिसाइलें गरज रही हैं, बम बरस रहे हैं, लाखों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ किया कि शांति से ही इन समस्याओं का समाधान मुमकिन है।
7: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का के समर्थन करते हैं।
2: युद्ध की बात छिड़ी तो आतंकवाद तक जा पहुंची। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहलगाम हमले का जिक्र किया और संकट के समय साथ देने के लिए नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया।
7: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया।
2: पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। भारत और नॉर्वे के बीच कारोबार करीब 2.73 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड ने भारतीय बाजारों में 28 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत और पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के बीच कुल व्यापार करीब 19 बिलियन डॉलर आंका गया है। दो साल पहले हुए भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात को EFTA देशों में 99% से ज्यादा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। जाहिर है स्पेस से लेकर समंदर तक अब न सिर्फ भारत सैन्य क्षेत्र में मजबूती के साथ उभर रहा है बल्कि कारोबारी रिश्ते मजबूत कर वो बड़ी आर्थिक ताकत भी बन रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: यानी प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आखिरकार भारत के हिसाब से भारत को क्या क्या इस समझौते इस यात्रा से मिला, आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यात्रा से क्या मिला। देखिए, ग्रीन रणनीतिक साझेदारी यानी ग्रीन पार्टनरशिप, ग्रीन इंडस्ट्रीज, तकनीकी सहयोग यानी आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्रीज होंगी वो ग्रीन इंडस्ट्रीज होंगी, इसके लिए भारत को कैसे नॉर्वे की मदद मिल सकती है। इंडो पैसिफिक प्लान में नॉर्वे शामिल है। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्री ओपन समुद्री रास्ते, यानी ये आप कह सकते हैं यूरोप के कई देशों के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड हुआ है उसमें नॉर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके ऊपर काम भारत लगातार कर रहा है। भारत अपने नए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा बात करें हेल्थ रिसर्च की, डिजिटल डेवलपमेंट की, सुरंगों के विकास और उसके डेवलपमेंट की, उनके निर्माण को लेकर नए नए सुरंगों को पहाड़ी इलाकों में कैसे आप तैयार कर सकते हैं उसमें नॉर्वे के साथ। इसके अलावा एजुकेशन रिसर्च में भी नॉर्वे का सहयोग मिलेगा, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी सुरंगों का निर्माण हो, एजुकेशन रिसर्च हो, इसके अंदर मदद मिलेगी आप। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये नॉर्डिक समिट है क्या, आखिरकार कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। अगर आप देखें इसमें है शामिल नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, पांच देश जो हैं ये नॉर्डिक देश माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इसका पहला सम्मेलन 2018 में स्वीडन में हुआ, 2022 में डेनमार्क पे और 2026 में नॉर्वे के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें शिरकत की है और लगातार 2026 अब 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा है। यानी आप मानिए कि जब आप यूरोप की बात करते हैं तो अगर 4 दशक के बाद प्रधानमंत्री अगर भारत के जा रहे हैं तो नॉर्वे कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा किसी देश के लिए, आप समझ सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे, ग्रीन एनर्जी, डिजिटाइजेशन, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और इसके अलावा आर्टिक नीति, यानी ये तमाम ऐसे 5-6 मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा डिजिटाइजेशन, जिसमें भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, रक्षा सहयोग है और ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, इसको लेकर कैसे काम की जा सकते हैं ये लगातार भारत अब कोशिश कर रहा है। यानी विजन के साथ साथ अपनी तकनीक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। अब आगे बढ़ते हैं वैश्विक कूटनीति के मंच पर, इस वक्त एक बहुत बड़ी और रणनीतिक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन आने वाले 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे। मॉस्को में क्रेमलिन के सलाहकार यूरो आशकीव ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुतिन के इस हाई प्रोफाइल भारत के दौरे की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के लिहाज से व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले एक साल के भीतर रूसी राष्ट्रपति का ये दूसरा भारत का दौरा होगा। इसमें पहले पुतिन पिछले साल दिसंबर में 23वें भारत रूस वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आए थे और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर बेहद लंबी और सफल वार्ता भी हुई थी। महज कुछ महीनों के भीतर ही व्लादिमीर पुतिन का यह दूसरा दौरा है और भारत में आने का इससे किस लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, ये समझने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, देखिए कुछ ही महीनों के अंदर दूसरा दौरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके का हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, डिफेंस सेक्टर के अंदर हम बहुत बड़ा निर्भर करते हैं रूस के अंदर, लेकिन क्या कुछ हो सकता है अब इस दौरे के दौरान, अगर आप कुछ बता सके तो।
1: देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आने वाले हैं। उनके जो करीबी सहयोगी हैं यूरी उशाकोव, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है, पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि 12 और 13 सितंबर को संभावित तारीखें हो सकती हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और उसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। लेकिन उससे पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात कहां होगी, वो होगी किर्गिस्तान के बिश्केक में, क्योंकि वहां पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है और उसके संभावित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही जाएंगे, क्योंकि एससीओ की जो शिखर बैठक होती है उसमें दोनों ही नेताओं ने उसे स्किप नहीं किया है, उस वहां पर पहुंचते रहे हैं। और आपको याद होगा सुमित कि कुछ दिनों पहले जब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तो उसमें भारत के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि भारत और रूस के बीच में उच्च स्तरीय जो राजनीतिक संवाद है वो दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और मैं अपनी इस बात के साथ खत्म करता हूं कि आप मुलाकातों और चर्चाओं और यात्राओं का जिक्र कर रहे थे, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है ये देखना कि बीते एक हफ्ते के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति भी बीजिंग पहुंचते हैं और रूस के राष्ट्रपति भी बीजिंग पहुंचते हैं, तो ये दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है उसमें एक नई धुरी के तौर पर चीन के उभरते हुए रुतबे और दबदबे का भी एक संकेत है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय उपाध्याय। देखिए लगातार हम यही बता रहे हैं कि कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और ना सिर्फ महातनावों के बीच में, जहां पर आप कह सकते हैं कि देखिए एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जब संघर्ष चलने वाला है एक और, उसी बीच ये दौरा कितना महत्वपूर्ण। अब इस जारी संघर्ष में और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के चीनी दौरे पर भी है, जहां पर वो बीजिंग पहुंचे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ने उनका स्वागत किया, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के ठीक बाद इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पूरी की पूरे विजिट पर है। पुतिन की यह 25वीं चीनी यात्रा है, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंध और सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा करेंगे। ईरान, रूस और चीन दोनों का करीबी रणनीतिक सहयोगी माना जाता है और दोनों देश ईरान को हथियार सप्लाई भी करते हैं और यहां तक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम भी बड़े पैमाने पर रूस और चीन की तरफ से किया गया है। यानी आप मानिए कि आने वाले दिनों में कई ऐसी हलचल है जो जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। आज रणभूमि में इतना ही, वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
1: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये अलर्ट तेज और चिलचिलाती धूप के साथ साथ लू को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन यानी आज और कल दिल्ली NCR का तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जा सकता है। सुबह की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी दिल्ली का जो तापमान इस वक्त जो दर्ज किया गया है वो 40 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी तेज लू जो है वो पूरे दिल्ली NCR में बनी रहेगी। लोगों को सख्त हिदायत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि खास तौर पर बुजुर्ग बच्चे जो है वो घरों से बाहर ना निकले, और अगर बात की जाए तो प्रिकॉशंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से भी तमाम जो लोग भीषण गर्मी से जूझते हैं उनके लिए तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से भी किए गए हैं ताकि इस भीषण गर्मी से जो है वो बचा जा सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
2: IPL जैसे जैसे अपने प्लेऑफ की तरफ जा रहा है, पॉइंट्स टेबल की टैली या फिर यूं कहें कि जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो काफी साफ होता नजर आ रहा है। अगर अब बाकी बचे मैचेस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ तीन ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त नंबर चार की लड़ाई लड़ रही हैं, बाकी एक दो तीन यानी कि RCB, GT और SRH उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको ऑलमोस्ट पक्की कर ली है। चेन्नई सुपर किंग्स का रास्ता थोड़ा सा इस वक्त फंसा हुआ है क्योंकि उनको एक ही मुकाबला और खेलना है, यानी कि उनके पास सिर्फ एक मैच है और उस एक मैच में उनको यह तय करना होगा कि क्या वो 15 अंकों के साथ नंबर चार पर जा सकते हैं। दूसरी टीम में पंजाब जो इस वक्त नंबर चार पर है उनके पास एक मौका और है और शायद उनके लिए वो एक मौका काफी ना हो क्योंकि 13 अंक है इस वक्त उनके पास और अगर वो जीतते हैं अपना अगला मैच तो उनके 15 अंक होंगे जो कि मुश्किल हो सकता है नंबर चार के सीनियर के हिसाब से। बाकी एक टीम जिसके पास अभी भी बहुत क्लियर कट ऑप्शन है वो है राजस्थान की टीम, क्योंकि उनके पास दो मैच है यानी कि उनके अगर वो दोनों मैचेस जीतते हैं तो 16 अंक होंगे और 16 अंक के साथ वो नंबर चार फिनिश कर सकती है, लेकिन इस रेस में पंजाब अभी भी थोड़ी सी आगे है अगर वो अपना मुकाबला जीत ले, अदरवाइज राजस्थान क्लियर कट हो सकता है कि वो नंबर चार पर 16 अंकों के साथ फिनिश करे।

0: और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है।
1: पीएम मोदी को स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी बोले, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान।
0: स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान।
1: स्वीडन के साथ हुए कई समझौते विदेशी धरती पर बढ़ा भारत का मान। ये दो देशों की दोस्ती की मजबूती का प्रमाण था। ये लम्हा था 140 करोड़ लोगों के मान का, सम्मान का। क्राउन प्रिंस विक्टोरिया के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो ये पल भारत और स्वीडन के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला एक सुनहरा अध्याय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही पीएम मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की तादाद बढ़कर 31 पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को देश की जनता के नाम समर्पित किया। गुटेनबर्ग में पीएम मोदी की यात्रा का एक एक लम्हा यादगार बन गया। रविवार को जैसे ही उनके विमान ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, वहां की वायुसेना के अत्याधुनिक ग्रिपेन वॉर प्लेस ने उनके विमान को अपनी सुरक्षा घेरे में लिया। आसमान में एयर इंडिया वन की सुरक्षा की ये तस्वीर भारत की अहमियत को दर्शाती है। फिर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने खुद मौजूद रहकर पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। गुटेनबर्ग की सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था।
2: We are very grateful that this visit happened through our Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, and these are our friends who have been supporting this visit, and I think we should get this visit more often in the future.
1: इस मौके पर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच कई समझौते भी हुए। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी माना कि पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा एक मील का पत्थर है। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक के क्षेत्र में भी और कूटनीति के तौर पर भी। पीएम मोदी की स्वीडन और यूरोप के बाकी देशों की यात्रा बदलती दुनिया के बदलावों के साथ न सिर्फ कदम ताल करने की एक कोशिश है, बल्कि दुनिया को भारत की अहमियत बताने का भी एक मिशन है।
0: अपना योगदान देते रहे।
1: आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झटका, जहांगीर खान ने पीछे खींचे कदम, बीजेपी का तंज, दीदी को के लोगों को हार का डर। बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म, बीजेपी सरकार बनने के बाद बंदूकों का युग का अंत, हर आदिवासी तक पहुंचा सरकार का लक्ष्य। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को फिर झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कड़कड़ूमा कोर्ट का फैसला। उलझती जा रही है मॉडल ट्विशा की मौत की गुत्थी, आज तक से बोला परिवार, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो, सास गिरिबाला का आरोप, ड्रग्स लेती थी और मानसिक रूप से बीमार थी बहू। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, वनडे में तीन नए चेहरों को मौका, टेस्ट में ऋषभ पंत से छीनी उपकप्तानी, केएल राहुल को मिली जिम्मेदारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं दंगल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं छेड़ी है बल्कि इस पूरे ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है, जहां कठोर कानूनों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्सर सबसे कमजोर दिखाई देती है। सर्वोच्च अदालत ने साफ संकेत दिया है कि आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, लेकिन संविधान की आत्मा उससे भी बड़ी है। यूएपीए जैसे कानूनों में लंबी कैद, धीमी सुनवाई और बेहद कम दोष सिद्धि दर, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जताई और खुलकर यह चिंता सामने भी रखी। कोर्ट ने याद दिलाया है कि न्याय का अर्थ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि समय पर सुनवाई भी है। और इस बीच यूएपीए में बंद इख्तियार अंदाबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। दिल्ली दंगा मामलों से लेकर जम्मू कश्मीर के मामलों तक अब बहस इस बात पर तेज हो गई है कि क्या प्रक्रिया ही दंड में बदलती जा रही है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अदालत ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया है, यानी संदेश सिर्फ जांच एजेंसी के लिए नहीं है, न्याय व्यवस्था के भीतर भी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अब सिर्फ अदालत की टिप्पणी नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच खींची एक नई संवैधानिक रेखा भी मानी जा रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बहस होगी क्योंकि इस बहस को लेकर एक बड़ी बहस अदालत के बाहर भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए।
3: एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ संविधान की आजादी, और इनके बीच खड़ा है भारत का सबसे कठोर कानून यूएपीए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है बड़ा सवाल, अगर मुकदमा सालों साल चले, अगर दोष सिद्धि बेहद कम हो तो क्या

0: और तत्कालीन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे। साफ कहा था कि अगर मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो जमानत दी जा सकती है, लेकिन अदालत ने अब कहा कि बाद के कुछ फैसलों में सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को नहीं अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी चेतावनी देता दिखा, और फिर अदालत ने वो आंकड़ा रखा जो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, यानी NIA की दोष सिद्धि दर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये दर 1% से भी कम बताई गई है। सोचिए, अगर सजा इतनी कम तो फिर वर्षों की कैद किस लिए? अदालत ने साफ कहा कि ऐसी हिरासत मुकदमे से पहले दंडात्मक कैद बन जाती है। दिल्ली दंगा मामलों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बहस फिर तेज कर दी है। क्या कठोर कानूनों में प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है? इसी सुनवाई में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से गिरफ्तार नार्को टेरर मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल इफ्तिकार अंद्राबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। लोकतंत्र सिर्फ कठोर कानूनों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है न्याय के संतुलन से, जहां राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक की स्वतंत्रता भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी संतुलन की याद दिलाई है और शायद यही कहा है कि अगर मुकदमे अंतहीन हो जाएं तो जेल न्याय नहीं व्यवस्था की विफलता बन जाती है।
1: जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, CBI हो, ED हो, NIA हो, ये जब मुकदमा दर्ज करती हैं, गिरफ्तारी करती हैं, चार्जशीट तक, तो बहुत सारी चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं और बहुत उत्साह में वीर तुम बढ़े चलो होता है, लेकिन जब सज़ा दिलाने की बारी आती है तब तक पता नहीं कैसे यू टर्न हो जाता है, जांच में खामियां निकल जाती हैं, कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तर्क और दलीलें नहीं दे पाते हैं, साक्ष्य के साथ दलीलें मेल नहीं खाती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आरोपी बरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में, अपने निर्णय में यही कहा कि ये वजह यही है कि लोगों को, आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। ऐसे में मुकदमे में अगर देरी हो रही है, मुकदमा बहुत कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको जमानत से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब ये सवाल है कि जांच एजेंसियों पर, कि जांच एजेंसियां, उन्हें आखिर अपने में क्या तब्दीली करनी है, कैसे अदालत का भरोसा जीतना है, कैसे अपनी जांच को पारदर्शी बनाना है और सटीक बनाना है, यह अब उनके ऊपर है। कोर्ट ने गेंद उनके पाले में डाल दी है। कैमरामैन जगन्नाथ महंती के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
2: इस पर दरअसल चर्चा शुरू हुई थी जब उमर खालिद, जो दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार है, पिछले 6 साल से सलाखों के पीछे है और उनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में असाधारण अपवाद का जिक्र किया था UAPA के भीतर और उनको बेल देने से इनकार कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आखिरकार संवैधानिक अधिकार उस असाधारण अपवाद से भी बड़ा होता है, और इसीलिए अब पूरी बहस इस बात पर छिड़ी है कि जो सख्त कानून है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, फिर वो भले PABLA के कानून हो या नार्कोटिक सब्सटेंस के NDPS के एक्ट हो, इन सभी मामलों को लेकर क्या बेल अपवाद नहीं जरूरी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम मेहमान इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि मामला गंभीर है तो उसकी ट्रायल भी जल्द होनी चाहिए, अगर ट्रायल नहीं शुरू होती है तो बेल मिलना अधिकार बन सकता है। डॉक्टर अजय कुमार प्रवक्ता है कांग्रेस के, पूर्व IPS अधिकारी है, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और अमिताभ सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ एडवोकेट्स उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील है और उसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्य है, वो भी उनसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा। उज्जवल निकम जी, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा था, तीन सवाल दरअसल मैं सबसे पहले इस पैनल के सामने रखूंगा और उज्जवल निकम जी आपके सामने भी रखने की यही कोशिश रहेगी। तीन सवालों के अर्थ दरअसल मेरे सवाल रहेंगे। पहला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी या संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है लेकिन संवैधानिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, क्या छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले को बदल सकती है? जिस तरीके से बड़ी बेंच ने कह दिया था कि ऐसे मामलों में संवैधानिक स्वतंत्रता को अहमियत देनी चाहिए और बेल एक तरीके से रूल होना चाहिए, उस फैसले को क्या बदला गया था? और तीसरा सवाल, UAPA के मुकदमे क्यों लंबित रहते हैं? जिम्मेदार आखिरकार इसके लिए कौन है? जिस तरीके से कन्विक्शन रेट है उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उज्जवल निकम जी, शुरू होने से पहले कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के मामले पर टिप्पणी की थी, लेकिन उसी बीच आज कड़कड़ूंगा कोर्ट का फैसला आया है। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को एक बार फिर झटका मिला है और उमर खालिद को बेल देने से इनकार कर दिया गया है, उनकी जमानत

0: अर्जी खारिज कर दी गई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया था। इस फैसले के तहत इख्तियार अंद्राबी को उन्होंने 6 साल जेल में बिताने के बाद नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत वो दरअसल उनको बेल दिया गया था, लेकिन अब उमर खालिद को दिल्ली दंगा केस में जो यूएपीए के तहत 6 साल से गिरफ्तार है उनकी जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी। इससे पहले 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण अपवाद बताकर यूएपीए के तहत बेल देने से मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जमानत पर प्रतिबंध है एक तरीके से और प्राथम दृष्टि से प्राइमा फेसी उन्हें लगता है कि उमर खालिद और शार्जिल इमाम इसमें शामिल होंगे, वो किंगपिन है और इसीलिए उन्हें हम बेल नहीं दे रहे हैं, ये बात का जिक्र उसमें किया गया था। और अब कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। उज्जवल निकम जी, एक बार फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी है, एक बार फिर वो इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।
1: साहिल जी, मैं पहले यह साफ करना चाहता हूं कि हम किसी केस के फैक्ट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। आमतौर आज हमारी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्वतंत्रता का एक लागू किया है, जो हमारा घटना के मुताबिक आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 जिसको स्वतंत्रता का जिन्होंने फैसले में सुनाया है वो बात, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दो बातें। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जब सरकार कोई विशेष संविधान लेके आती है, विशेष कानून के रूप में लेके आती है, तो उस कानून का मकसद क्या है, उस कानून का ऑब्जेक्ट क्या है, यह देखना भी जरूरी है। जहां तक यूएपीए का सवाल है, यह एक विशेष ऑब्जेक्ट के लिए कानून लाया है, और जहां तक हमारी पर्सनल लिबर्टी जियोपर्डाइज होती है क्या, यह अगर इससे सवाल जुड़ा जाएगा तो मैं कहूंगा कि पर्सनल लिबर्टी का इसमें कोई सवाल नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो कानून विशेषता यूएपीए लाया है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा में अगर कोई बंदी बनता है तो यह देखना होगा कि किस कारण वो बंदी बना गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है एतराज, जो डिले द ट्रायल नहीं जल्दी शुरू हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि ये कभी सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा किया गया? क्या सिर्फ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार रहती है? मैंने कई ऐसे मामले चलाए हैं जिसके मैं बहुत मुझे दुख हो रहा है ये बात उन चैनल पे कहने पर कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसी ट्रायल 12 साल तक चली लेकिन कोई आरोपी ने बेल का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर फैसिलिटीज भोगना मांगता। ऐसे कई मामले मैं महाराष्ट्र में चला रहा हूं और जिसमें आपको भी मालूम है कि बीड की मर्डर केस 1.5 साल हो गया, होने के बाद भी चार्ज फ्रेम होना को टाइम लगता है, ट्रायल शुरुआत नहीं होती है, जज साहब 15-15 दिन की तारीख दे जाती है, अभियोजक पक्ष कहता है कि तारीख जल्दी दो, नहीं माना जाता है। क्या इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी के? इसलिए हम गलत यह कर रहे कि जेल एंड बेल, नो जेल, बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन, ये बहुत पुराना प्रिंसिपल हो गया है। ये हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जहां तक जुड़ा हुआ रहता है तब तक ये ऐसे सवाल नहीं किए जाते।
0: उज्जवल निकम जी,
1: और इसलिए मैं कहता हूं कि
0: ठीक है, आपकी बात आपने मुंबई ब्लास्ट के ट्रायल का जिक्र किया जो 13 साल तक ट्रायल चली थी और आखिरकार 13 साल के बाद उसमें कई लोगों को आखिरकार बेल देना भी पड़ा था। टाड़ा के तहत उसमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है कि उनको बेल पर रिहा कर दिया गया था और उसकी वजह से हमने देखा कि कई लोगों को टाड़ा के तहत भी बेल दिया गया था। लेकिन मेरा सवाल किसी स्पेसिफिक केस को लेकर नहीं है, कुल मिलाकर ऐसे कई कड़े कानून जो है, यूएपीए जिसमें शामिल है, एनडीपीएस जिसमें शामिल है, सेक्शन 37 जैसे कानून शामिल है, एनडीपीएस का सेक्शन 37 जिसमें है कि जिसके तहत बेल नहीं मिल पाती, या पीएमएलए जैसे कानून है कि जिसके तहत बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि कन्विक्शन रेट को भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, उसका जिक्र किया गया है। जो मामले सामने आए हुए हैं, जरा अगर वो नंबर्स हम चला दे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी इसमें, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर खास करके यूएपीए की अगर हम बात करें तो 2023 में 2914 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और कन्विक्शन हुआ था सिर्फ 113 लोगों का। 2023-22 में 2636 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कन्विक्शन हुआ था सिर्फ 41 लोगों का। 2021 में 1621 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कन्विक्शन हुआ था सिर्फ 62 लोगों का। 2020 में 1321 लोगों की गिरफ्तारी, कन्विक्शन होता है 80। और 2019 में 1948 लोगों की गिरफ्तारी, 34 लोगों का कन्विक्शन। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि यूएपीए के तहत मामले तो लंबे चलते ही हैं, कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, 5% तक भी कन्विक्शन रेट पहुंच नहीं पाता है। जम्मू कश्मीर के भीतर तो 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, यानी 99% केसेस में लोग छोड़ दिए जाते हैं। और इसीलिए हम अंद्राबी को, जो मामला उनके सामने था, उनको हम बेल पर रिहा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे, और यही बात पीएमएलए के भी है, पीएमएलए के आंकड़े भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। कुल मिलाकर यहां भी सवाल है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की नहीं है क्या?
1: साहिल जी, ये आपने सिर्फ आंकड़े बताए हैं, मैं तो खुद प्रोसिक्यूशन अभियोजक पक्ष का हिस्सेदार रहा हूं, और जहां तक मैं जानता हूं, कई बार आरोपी तरफ से, अभियुक्त तरफ से यह हथकंडिया अपनाई जाती है कि डिले द ट्रायल एंड डिरेल द ट्रायल। शायद आपको पता होगा कि बमलास हो या अलग मामले हो, जितना लंबी ट्रायल खींची जाए, और यह अभियोजक पक्ष हमेशा करता है, इसीलिए कि वी आर लैंग्विशिंग इन द जेल, ये एक बात। दूसरी बात है कि हमारे जो विटनेसेस रहते हैं प्रोसिक्यूशन के, और उनका एक हौसला जो रहता है वो टूट जाता है कई सालों के बाद, वो नहीं आते कोर्ट में। इसलिए ट्रायल एक्सपीडाइट करना ये बहुत बहुत जरूरी है, जैसे स्पेशल एनैक्टमेंट से। मैं हमेशा यही कहता हूं कि स्पेशल एनैक्टमेंट जिसमें सिक्योरिटी के मामले जुड़े हुए हैं, वहां ट्रायल एक्सपीडाइट करना चाहिए। अगर कोई डिले करता है तो उनको भी पेनलाइज करना चाहिए, यह मेरा कहना है। इसलिए हमें कानून में सुधार लाना चाहिए। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, ये भी इसमें होना चाहिए। क्या सिर्फ वकील लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्या? इसका जवाब मैं नहीं देता, लेकिन ये आपके आंकड़े जो है ना, इसमें जजमेंट देखेंगे तो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
0: लेकिन उसके साथ साथ अगर हम शार्जिल इमाम और दिल्ली दंगों के केस की बात करें, उमर खलीद वाले मामले की बात करें, तो 2020 में उनकी गिरफ्तारी होती है, नवंबर 2020 में पहली चार्जशीट फाइल होती है, फरवरी 2024 में सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है, सितंबर में पहली चार्जशीट, नवंबर में दूसरी, फरवरी में तीसरी चार्जशीट, यानी मार्च 2 में चौथी चार्जशीट फाइल होती है, यानी तीन तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने के बाद 7 जून 2023 को लास्ट चार्जशीट फाइल की जाती है, यानी तीन साल चार्जशीट फाइल की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल नहीं शुरू हो पाती। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाना चाहिए? उसके बाद अगर कोई जेल के भीतर है, जेल की आपने कहा कि जेल में सुविधाएं दी गई थी, जेल की सुविधाएं कितनी भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मेरे खिलाफ आप मुकदमा चला ही नहीं रहे हो, आप मुझे बस अंडर ट्रायल के तौर पर बिना मुकदमा चलाए जेल के भीतर रख रहे हो, ये तो नेशनल जस्टिस के खिलाफ भी जा सकते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तीन जजेस के बेंच ने के नजीब वाले मामले में ये साफ शब्दों में कहा था कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो यूएपीए के भीतर भी असाधारण मामला नहीं माना जाना चाहिए और बेल दे देना चाहिए। क्या ये सही नहीं होगा फिर?
1: साहिल, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन मेरा पहला एक बुनियादी सवाल यह है कि ट्रायल शुरुआत क्यों नहीं होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका आंसर ढूंढना चाहिए। क्या कभी किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह ढूंढा है कि यह चार्जशीट फाइल होने के बाद अभियोजक ने पक्ष ट्रायल लेट डिले से शुरू की है, क्या आरोपी के वकीलों की तरफ से शुरू ही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार, यह भी ढूंढना होगा ना। इसलिए आज हम ये नहीं देखते, हम ये देखते चार्जशीट फलाना फलाना तारीख को दर्ज हुआ, ट्रायल शुरुआत लेट हो गई, सेकेंड चार्जशीट, थर्ड चार्जशीट, देयर शुड बी अ लिमिटेड कंपास और टाइम शेड्यूल चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि पहले ही प्रोसिक्यूशन ने फर्स्ट दिन उनका प्रोग्राम देना चाहिए, अनावश्यक अननेसेसरी विटनेस एग्जाम करने में पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए देखिए, आज कल के क्या होता है, यह हमारी सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट यह है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यह समझती है चार्जशीट फाइल होने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, वो देखते भी नहीं. देयर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. दिस इज अ सीरियस लैक्यूना इन अवर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज. और इसलिए हमारे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और डिफेंस लोग ये देखना होगा. इसके लिए जजमेंट, एक जजमेंट देख के कोई पता नहीं चलेगा. हमें इसलिए ये देखना होगा कि क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन ने स्टार्ट केस नहीं शुरू किए. अगर हाँ साहिल ये मैं सहमत इसलिए हो, अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ट्रायल चार्जशीट के बाद देरी से करती है बिना वजह, तो आरोपी को बेल मिलना जरूर है. मैं नहीं कह रहा हूं कि आरोपी की जेल में डुबा दो. और दूसरा उसको एक्सेप्शन ये है, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. यह मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूं. और मैंने भी बस अभी कह रहे, मैं ट्रायल चला रहा हूं, मैं इसके चैनल पे भी स्क्रीन पे नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सिक्योरिटी से बहुत जुड़े हुए हैं हमारे स्टेट सिक्योरिटी की.
0: तो नेशनल सिक्योरिटी या संवैधानिक अधिकार, दरअसल ये बहस है. बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम जी, आपने हमसे बात की इसके लिए. लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, आप सुन रहे थे, उज्ज्वल निकम राज्यसभा के सांसद भी है और कई बड़ी केसेस उन्होंने संगीन कानूनों के तहत चलाई है. टाडा का मामला हो, कोटा के मामले हो, कई सारे चलाए. उनका यह कहना है कि यह एक्सेप्शन नहीं हो सकता इस तरीके से. और बेल खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा वालों मामलों में, और उनका कहना है कि भाई ट्रायल डिले होता है उसके कई कारण होते हैं, जानबूझकर भी डिले किया जाता है. क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक बार उन्होंने एक बार फिर अंडरलाइन किया है अपना ही फैसला, और इससे पहले जनवरी में जो उन्होंने शारजील इमाम और उमर खलीद के बारे में कहा था उसके खिलाफ जाकर वो बात कहने की कोशिश, आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि नहीं है? उज्ज्वल निकम को भी आपने सुना.
2: देखिए पहली बात साहब भाई और हमारे पैनल सबको नमस्कार. ये नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसमें कौन थे? जस्टिस रमना चीफ जस्टिस, वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ये दो लोग थे और तीसरा एक और जज थे, अनुराधा बासु अगर मुझे याद है तो. तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और पुराने चीफ जस्टिस ने ये जजमेंट उन्होंने नजीब वाले केस में दिया. कोई और आप हर एक आदमी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के तरफ ये डिबेट डायरेक्ट करना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये उमर खालिद और शर्जिल इमाम के डिबेट ही नहीं है. इसी आधार पर यूएपीए में तो रोना विल्सन भी है, सुरेंद्र गार्डलिंग भी है, हनी बाबू भी है, ये भी है, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है. तो ये हिंदू मुस्लिम डिबेट से थोड़ा हटना जरूरी है. फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट ये है कि उज्जवल निगम साहब के पॉइंट्स वैलिड है, पर जो केसेस जो यूएपीए में है, जो ट्रायल हुआ है, उसमें कन्विक्शन 1.5% है. आप ही के आंकड़े हैं. डिले छोड़ दो साहिल भाई, जो केसेस जिसमें जो है ट्रायल हुआ है उसमें 1.5% है. ये जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं तो आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, क्षमता जो भी होगा, डिले होगा, जो भी बोल दीजिए. दूसरी बात है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल निकम साहब बोल रहे थे ट्रायल की देरी है. सुप्रीम कोर्ट
0: के डिले क्यों होता है, आपको क्या लगता है डॉक्टर अजय कुमार?
2: साहिल साहब
0: वही तो मैं बोल रहा हूं. अरे सर मैं इतने आपको क्या लगता है डिले के लिए जिम्मेदार कौन है?
2: गुरुजी मैं तो इतने बाद दिन बाद आपके चैनल में आया, तो थोड़ा सा संयम रखिए, मैं बता देता हूँ. उसी पर मैं आ रहा था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जुडिशरी वैकेंसीज जो है भारत में 22 जजेस है 10,00,000 लोग के लिए, दुनिया भर में 7 है 3 है 2 है, ये भारत की स्थिति है. 25% वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट और बिलो जज जुडिशरी में, 25%. ये जुडिशरी की जो जजेस की कमी है, उसके अलावा रूम्स की कमी है. 12 साल से सर कौन राज कर रहा है आप बता दीजिए. 12 साल से जो भी सरकार होगी उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि जुडिशरी जिम्मेदार है. हम तो पुलिस में रह चुके इसलिए मैं बताना चाहता हूं. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम तो तैयार है लेकिन हमारे पास मैन पावर, एक मिनट लेट मी कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूज मैन पावर शॉर्टेज है, रिपीटेड लॉ कमीशन के रिपोर्ट. साहिल भाई 30 सेकंड लेकर खत्म कर लूंगा. सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड लॉ कमीशन के रिपोर्ट है कि जुडिशरी में कमी है. यूपी के डिस्ट्रिक्ट जज में 4,300 केस है पर जज. भारत का औसतम जज पर केसेस है 2,200, और आप बोलिएगा जुडिशरी जो है ट्रायल नहीं कर रही है. 4,300 केसेस पर जज यूपी के, आंकड़े में दे रहा हूं आपको, यूपी के डिस्ट्रिक्ट जज के लोड है 4,300. तो आप बताइए कि डिले नहीं होगा भाई साहब? डिले तो होगा ही ना. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं
0: यही कारण है डिले का, या और भी कोई कारण है? और शारजील इमाम का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस बात का जिक्र किया है।
2: नहीं,
0: बात का जिक्र हमने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद ही इस बात का जिक्र किया हुआ है। और ना ही ये मामला हिंदू मुस्लिम या किसी और तरीके का मामला है, ये सख्त और संगीन जुर्म में या कानूनों में जिस तरीके से बेल मिलने में देरी होती है, उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजय कुमार जी, मेरा सवाल अभी भी यही है कि जो डीले हो रहा है, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी इस पर बात करेंगे कि क्या ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से डीले होता है या उज्ज्वल निकम जिस तरीके से कह रहे हैं कि जानबूझकर डीले करवाया जाता है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
2: फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोई भी यूएपीए केस में, और प्रेम शुक्ला जी भी हो सकता है इसको मानेंगे, 90% यूएपीए केस में विटनेस जो है सरकारी होते हैं या एविडेंशियल एविडेंस होता है, कागज के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर। अगर आप देख लीजिएगा वो जो बीमा कोरेगांव या जो भी केसेस हुए हाल में, आपने चार्जशीट जो है ये बीमा कोरेगांव में 5 साल पहले आपने दाखिल किया था, और ये दिल्ली राइट्स में, दिल्ली राइट्स में हमारा विचार दूसरा है कि कपिल मिश्रा जी को भी उतने उसी कारण से दोनों के तरफ से होनी चाहिए थी, बट छोड़ दीजिए। अगर आपका कहना है कि सरकार ने 3 साल पहले चार्जशीट दिया, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना कि विटनेसेस को प्रोड्यूस करने का। विटनेस को कौन प्रोड्यूस करेगा?
0: बात यहां पर आके रुक रही है कि क्यों नहीं सरकार ट्रायल जल्द से जल्द करती है, जिसके वजह से आगे इन लोगों को सजा दिलवाई जा सके, क्योंकि आपने चार चार चार्जशीट फाइल की हुई है सिर्फ दिल्ली राइट्स की बात करें तो। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसमें सुनवाई में देरी, जो ट्रायल है उसमें देरी, और जिसके वजह से लोग कहते हैं कि उसमें बेल मिलना चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि यह संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है।
3: जी देखिए, अभी आप ही के समक्ष एक प्रख्यात अभियोजक आदरणीय एडवोकेट उज्ज्वल निकम थे, और एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने रेखांकित किया कि हर मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिले नहीं है, बचाव पक्ष भी ज्यादातर मामलों में गवाहों को पूरी तरह से कुंठित करने के लिए बचाव पक्ष मामलों को डिले करता है। बचाव पक्ष मामले को डिले करे और उसी के आधार पर कल वो बेल ले ले और इसको जो है अगर नियम मान लिया जाए तब तो गजब हो जाएगा। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में एक जजमेंट देता है और वही जो है मई 2026 में दूसरा जजमेंट देता है, दोनों डबल बेंच है। अब ऐसे में इस मामले में लार्जर बेंच को रेफर किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए, जहां तक बात रही कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, अगर उमर खालिद और शर्जिल इमाम मुसलमान नहीं होते तो इस मामले को विपक्ष जो है बिल्कुल महत्व ही नहीं देता। आप ध्यान रखिए साहिल भाई, 1980 के दशक में टाटा कानून आया और पहले सिखों पर ज्यादा लगा पंजाब में, तब तक कोई भी टाटा के विरोध में अभियान इस देश में नहीं चला। 1990 के दशक में मुस्लिम इस्लामी आतंकवाद ने सिर उठाया बड़े पैमाने पर और मुसलमानों पर लगा, तमाम लोग जो हैं वो टाटा कानून के खिलाफ उतर गए। अब श्रीमान अजय कुमार जी यूएपीए कानून में डिले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे। टाटा के तहत 76,000 गिरफ्तारियां हुई थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी टाटा लागू करने से लेकर टाटा खत्म करने तक, और 76,000 गिरफ्तारियों में 1% से भी नीचे जो है कन्विक्शन रेट था। जहां तक बात है एनआईए ने यूएपीए के मामले में 2022 के संसद में बाकायदा यह बयान दिया गया है कि 2022 में 94% कन्विक्शन रेट एनआईए के मामलों का रहा, 94%। 38 मामले 2022 में एनआईए ने दर्ज किए और 38 के 38 में कन्विक्शन लाया, 38 का ट्रायल चला, 38 कन्विक्शन हुए। एक ये भी पक्ष है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो यूएपीए के मामले आए हैं उसमें कन्विक्शन रेट कम है, तब भी 5-6% है, जो टाटा की तुलना में 6 गुना है। एक यह भी पक्ष है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में टाटा आया और टाटा में तब तक टाटा अच्छा था जब तक सिखों पर लग रहा था, टाटा तब खराब हो गया जब मुसलमानों पर लगने लगा। तो ये हिंदू मुस्लिम करने की हमारे देश में राजनीतिक संस्कृति है। अगर जो है एक 10 सेकंड और, नहीं नहीं साहिल जी 10 सेकंड,
0: मामला है ये संवैधानिक मामला है, ये अधिकार का मामला है या हिंदू और मुस्लिम मामला है जो प्रेम शुक्ला उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अजय कुमार
3: साहिल जी 10 हाँ नहीं बहुत अच्छा। देखिए इसी मामले में जो है कृपा करके मुझे बताइए ना कि अगर जो है 6 साल तक जेल में रहने के कारण उमर खालिद की संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, तो उन 53 लोग जो मारे गए उस दंगे में, दंगाइयों के षड्यंत्र कारण, उन 53 लोगों के संवैधानिक अधिकारों का क्या? वो तो पूरी तरह से मार दिए गए, उनके तो परिवार उजड़ गए, उनके तो प्राण चले गए, उनके संवैधानिक अधिकार के प्रति भी क्या राष्ट्र को और समाज को सचेत होना पड़ेगा कि नहीं, यह भी एक चिंता का विषय है।
2: देखिए दिक्कत क्या होती है कि जब मैं प्रेम शुक्ला जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देखिए आंकड़े को तोड़ मरोड़ करके बोलना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। यूएपीए किसने लाया, किस सरकार ने लाया? एक मिनट सर, पहले सुन लीजिए ना
3: थोड़ा
0: मरोड़ा जरा अजय कुमार जी बता दीजिएगा। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात रखी है, जब एनआईए की केस होती है तब उसमें कन्विक्शन ठीक होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की केसेस पे कन्विक्शन ठीक नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर लोकसभा के आंकड़े ही मैंने यहाँ पर कोट किए थे प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा।
2: डॉक्टर नहीं, नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो गलत आंकड़े गलत है, क्योंकि वो लोकसभा में एनआईए का आंकड़े निकाल के इनको दिखा दीजिए। दूसरी बात क्या है, यूएपीओ या टाडा कांग्रेस सरकार लगती है, प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी को हर चीज मुस्लिम हिंदू दिखाई देता है। सबसे ज्यादा यूएपी का लागू हुआ था कश्मीर में, वहां पर एक ही मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर ही हुआ ना, मुसलमान के ऊपर ही हुआ, कांग्रेस की सरकार भी थी, कहीं और जो सिखों पर होती है। हमारे समय यूएपी हम नहीं लाया, टाटा हम नहीं लाया, और आपको जो हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम से अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अभी जो है भीमा कोरेगांव केस में अधिकांश हिंदू थे, इश्यू वो नहीं है, इश्यू ये। और तीसरी बात, जो आपके जो तथ्य गलत थे, वो 2 बेंच की जजमेंट नहीं थी सर, 3 जज की जजमेंट थी, नजीब वाला, नजीब वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया।
3: मैंने जनवरी 2024 का जजमेंट कोट।
2: अरे सर,
3: मैंने जनवरी
0: 2026 का जजमेंट कोट बेल डिनाय कर दिया गया था, जनवरी 2026 में उसका जिक्र कर रहे
2: हैं। सर उतना रेस्पेक्ट दीजिए एक दूसरे को, बस मैं क्या आपको मैंने टोका नहीं था, मुझे बोलने दीजिए।
3: मैं पूरा रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको
2: सर मैं बोलना चाहता हूँ, आप ही बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि
0: बोलने दीजिए उनको, अजय कुमार जी समय निकल जाएगा। चलिए अजय जी, आपकी
2: तीन जज के, जस्टिस रमणा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनुराधा बोस, 3 जज के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, उसी को ये 2 बेंच के जज कोर्ट कर रहे थे कि जब 3 जज के 3 बेंच के जज ने ये निर्णय दिया।
3: बिल्कुल नहीं,
2: हो सकता है। ओके, हमको साहिल भाई, इसको जो आप ही रेफरी है तो, या बाकी 2 वकील साहब, अमिताभ जी तो पढ़े लिखे इंसान है, वो ज्यादा जानते हैं, और आशुतोष भी बहुत ही पढ़े लिखे।
0: आप ही बता दीजिएगा, मामला यहाँ पर कहीं और जा रहा है।
2: ठीक है,
0: नहीं, मामला कहीं और जा रहा है। देखिए यहाँ पर मामला इस बात को लेकर उठाया जा रहा है अमिताभ सिन्हा जी, कि अदालत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यूएपीए में भी 43D5 के तहत जब बेल डिनाई कर दिया जाता है उसमें भी सीमित न्यायिक समीक्षा की जाती है, और उसके आधार पर अगर जज को लगता है कि प्राइमे फसी उन्हें लगता है, प्राथमिक दृष्टि से उन्हें लगता है कि भाई ये दोषी हो सकता है, तो उनका बेल रोक लिया जाता है। लेकिन कब तक, ये सवाल आप सुप्रीम कोर्ट उठा रहे हैं।
1: साहिल जी धन्यवाद, अंत में मुझे आपको समय देने के लिए मिला समय। देखिए जब अभी उज्जवल निकम में हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जो एक बात कही कि डिले द ट्रायल एंड डिरेल द ट्रायल, तो मैं इस अभी कार्यक्रम में देख रहा था, हमारे मित्र हैं अजय जी, और पूरे कार्यक्रम को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करना, ये बड़ा संवेदनशील विषय आपने उठाया है, और इसमें तब उठाया है जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही विरोधाभास में अपने ही कंट्राडिक्शन को हाईलाइट कर रही है। मैं इस विषय पे ही सिर्फ बोलूंगा, राजनीतिक दृष्टि से यदि इस पे चर्चा शुरू कर देंगे तो इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। मैं साहिल जी आपको निवेदन कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक छोटा सा इसमें निवेदन है। देखिए जो अभी जजमेंट आया है अभी कल का, वो जस्टिस नागरत्ना जी और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां जी ने दिया है। उसके पहले जो जनवरी में जजमेंट आया था, उस जजमेंट में जिसमें शरील इमाम वाला केस था, उसको जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस उन्होंने क्या नाम है उनका जो अपने हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैं सॉरी एक मिनट। तो मेरा मानना ये है कि जस्टिस अंजारिया, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, तो जस्टिस अंजारिया, अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया, अब देखिए दोनों लगभग समकक्ष हैं। अब एक ने यदि कोई जजमेंट दिया, तो आज सरजीत इमाम के केस के बारे में यदि रेफर किया गया था आज के मैटर में, अंद्राबी के केस में, जम्मू कश्मीर वाले मामले में, तो मेरा हमेशा मानना, और मैंने आपके भी चैनल पे और अलग अलग जगहों पे बोला है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को
4: मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आप लोगों के इसमें कहीं संज्ञेय नहीं होगा ये मामला, मैं अपनी जिम्मेदारी पर कहूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिना वजह के अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन से बचना चाहिए, इससे अदालत की ही जो मान प्रतिष्ठा गिरती है। ये दो जजेस के बेंच ने जनवरी में कहा, इन दो जज के बेंच ने आज मई में कह दिया। मेरा मानना है कि यदि आप सिर्फ अंदराबी के केस को डील करिए और बोल दीजिए कि उसको बेल देना है, यहाँ पर यदि एप्लीकेबिलिटी की बात प्रोसिक्यूशन उठा रहा है 26 के जनवरी का, तो उसको बोल दीजिए कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, हम लार्जर बेंच का जो नजीब वाला मैटर है उसको हम कंप्लाई करेंगे। सिंपल बात है, इतना लंबा चौड़ा कहना मुझे लगता है न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, सबसे पहली बात। और मैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों से जजेस को बचना चाहिए। मैं दूसरी चीज जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन सबसे पहली चीज क्या है कि हैंगिंग यानी फांसी की सजा भी एक्सेप्शन में होती है, क्योंकि वो रेयर अमंग रेयरेस्ट क्राइम कहते हैं। तो लेकिन और वो संविधान में उसका प्रावधान नहीं है कहीं, लेकिन वो दंडात्मक प्रक्रिया के प्रावधानों में है, तो इसलिए उसमें उसको हैंगिंग होती है, उसको मौत की सजा होती है। तो एक्सेप्शंस को हमेशा जो यूएपीए का 43D5 का जो क्लॉज है वो बहुत स्पेसिफिक कहता है, और वो कहता है ये बात कि उसमें कि जो जज हैं उसके भरोसे के हिसाब से एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजेज और द बेंच, यदि वो लगता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है तो ये लागू होगा और उसको बेल नहीं मिलेगा। और इस केस में जब जस्टिस अरविंद कुमार वाले बेंच ने ये माना कि उनको ये बात लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, तो इसीलिए दोनों इस के अंदराबी के केस में इन जजेस को लगा नहीं प्राइमा फेसी नहीं है, तो ये तो बेंच की बात है। इसमें दूसरे अपने
0: जी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें उठाया।
4: मैं एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक और कह रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि और जैसे कि ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट देती है बहुत सारे विषयों में, नाली साफ होना चाहिए, पर्यावरण सुधरना चाहिए, मेरा मानना है सबसे पहली ऑब्जेक्टिव है होनी चाहिए जुडिशरी, हाईएस्ट जुडिशरी की, अपेक्स कोर्ट की, कि वो जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए, अपना जजमेंट दे कि यूएपीए के मामले में या एमपीएमएलए कोर्ट के मामले में या
0: अमिताभ सिन्हा जी कहना चाह रहे हैं कि टिप्पणियां करते समय सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए, यह कहने की उनकी कोशिश है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही है जिसका जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन आशुतोष यहां पर ही सवाल उठता है, और मैंने तीन कानूनों का जिक्र इससे पहले किया था। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी हमने देखा था कि एनडीपीएस की धारा सेक्शन 37 के तहत उनको लंबे समय तक बेल नहीं मिल पाया था, लेकिन जब मामला चलने की बात आई, बेल मिला, तब उसी अदालत ने यह कहा कि कोई ज्यादा एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है, और यही मामला कहीं ना कहीं उठता है। क्राइम ऑफ फेसी का मतलब ही यह है कि सीमित न्यायिक समीक्षा, क्या उसके आधार पर इतने लंबे समय तक जेल में रखना, क्या यह कानूनी मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या आपको लगता है कि संवैधानिक अधिकार का मामला है?
5: साहिल, मुझे लगता है कि यह जो बेल का मामला है इस पे सुप्रीम कोर्ट की लगातार गाइडलाइंस के बाद भी उसको लगातार फ्लाउट किया जाता रहा है, वो चाहे नॉर्मल केसेस हो या फिर यूएपीए के तहत केसेस हो। जो नॉर्मल केसेस हैं उसमें बिहार स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस आरनेस कुमार का जो मामला था 2014 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की अगर 7 साल से कम की सजा अगर किसी का कोई मामला है और उसमें अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता कि भाई इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए तो उनको लिखित में देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और अगर जज महोदय अगर उसको बेल नहीं देते तो उनको भी लिखित में देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और अगर वो गलत साबित हुआ तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर कहीं कोई किसी तरीके की जूं रेंगती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अब हम यूएपीए के बारे में बात करें, यूएपीए के बारे में जो जहूर अहमद शाह वताली का केस था 2019 में, जिसमें आर्टिकल 21 को बहुत सीमित तरीके से करने की कोशिश की गई थी, और जबकि यूएपीए के 43D/5 उसको एक तरीके से प्रोमिनेंट माना गया था। लेकिन जब 2021 में नजीब का केस आया, जो 3 जजेस की बेंच का मामला था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप आर्टिकल 21 एक मतलब किसी इंडिविजुअल के लिबर्टी को लंबे समय तक आप फ्लाउट नहीं कर सकते। कोई आदमी 5 साल तक जेल के अंदर बंद है और उसकी लिबर्टी अब जो है वो नहीं उसको मिल रही है, तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो
0: प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, पिक एंड चूज लगता है।
5: लेट मी कंप्लीट। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे करता है। तो जो नजीब जंग का ये नजीब का जो मामला था वही दरअसल तीन बेंच की जज थी और जो 5 जनवरी को जो फैसला हुआ था उसको उसके आईने में रोशनी में देखना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब यूएपीए के मामले में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। 2024 में जस्टिस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी यही कहा था कि बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन यूएपीए के मामले में। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो आप किसी को जेल में डाल देते हैं 5 साल 6 साल 7 साल तक आदमी जेल में रहता है और उसके बाद जो हमारे संविधान का मूल है लिबर्टी उसको आप कर्टेल करते हो, पता चला 97% 98% में मामले में आदमी इनोसेंट साबित हो जाता है। इस मामले को स्टेट की नजर से नहीं, प्रोसिक्यूशन की नजर से नहीं, बल्कि नागरिक की नजर से देखा जाना चाहिए और उसकी लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए।
0: नागरिक के नजर से अमिताभ सिन्हा जी,
4: मैं बस छोटा इंटरवेंशन है। देखिए आशुतोष मेरे मित्र हैं, इनको मैं निवेदन करूंगा कि अपने को पैनलिस्ट की बात को थोड़ा ध्यान से सुने, नहीं तो इनको ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने इनको अभी कहा कि इसके ऊपर में क्लियर ऑब्जर्वेशन ही नहीं देना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि ऐसे मामलों में जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसमें ट्रायल इतने टाइम फ्रेम में खत्म होना चाहिए। सिंगापुर में होता है, जैसे बहुत से डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है।
0: 10 सेकंड
5: देखिए साहिल,
4: और दूसरी बात मैं खत्म
5: कर रहा हूं।
0: साहिल 10 सेकंड, आशुतोष 10 सेकंड, मेरा समय खत्म हुआ है। 10 सेकंड,
5: जो अमिताभ जी कह रहे हैं 24 मार्च 2026 को जो चीफ जस्टिस
0: चलिए मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है और आज की स्थिति में एक बार फिर इस बात को लेकर डिबेट छिड़ चुकी है कि क्या बेल मिलना अधिकार है, क्या संवैधानिक अधिकार है, या इसे किसी और तरीके से भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजर से भी इसे देखना चाहिए। तो इस पर बहस होती रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
6: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
6: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: नॉर्वे दुनिया के खुशहाल और बेहद खूबसूरत देशों में से एक। अपनी पांच देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे, तो भारत के सम्मान में एक अध्याय और जुड़ गया। स्वीडन के बाद अब नॉर्वे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नॉर्वे के राजा हेरल्ड पांचम ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे, तो बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर शुरू हुआ मेल मुलाकातों का सिलसिला। कारोबार से लेकर पर्यावरण और तकनीक से लेकर ताकत तक के पहलुओं पर बात हुई और कई अहम समझौतों पर मुहर भी लगी। पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर के साथ बिजनेस और रिसर्च समिट में शिरकत की। पिछले साल ही भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। बातें शुरू हुई तो उन दो महायुद्धों तक जा पहुंची, जिसमें एशिया और यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। सालों से मिसाइलें गरज रही हैं, बम बरस रहे हैं, लाखों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ किया कि शांति से ही इन समस्याओं का समाधान मुमकिन है। पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। भारत और नॉर्वे के बीच कारोबार करीब 2.73 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। वहीं नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड ने भारतीय बाजारों में 28 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत और पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के बीच कुल व्यापार करीब 19 बिलियन डॉलर आंका गया है। दो साल पहले हुए भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात को EFTA देशों में 99% से ज्यादा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। जाहिर है स्पेस से लेकर समंदर तक अब न सिर्फ भारत सैन्य क्षेत्र में मजबूती के साथ उभर रहा है, बल्कि कारोबारी रिश्ते मजबूत कर वो बड़ी आर्थिक ताकत भी बन रहा है। आज तक ब्यूरो।
7: इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिरिबाला सिंह जी। बात करने के लिए जो आरोप तुषा के परिवार की तरफ से लगाए गए थे, काफी कुछ बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल कही, लेकिन परिवार अभी तक अंतिम संस्कार नहीं करवाने के लिए शव ले रहा है। इस पर आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया?
8: मुझे तो ऐसा लगता है जस्ट माउंटिंग प्रेशर। दे चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, दे चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए, चाह रहे हैं कि सब जितना गलत हो सकता हमारे साथ हो, जबकि हमारा तो एक उसूल रहा है कि जो हमारे पास आया, हमारे संसर्ग में आए। लोग कहते थे आपका तो माइडस टच है, जो आपके संसर्ग में आता है उसका कुछ बेहतर ही बन के जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को यही गलत फहमी थी कि बच्चे के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनके सब दखल इनके कारनामों के कारण आज बच्चे की इवन सुकून नहीं मिल पा रहा, उस बच्चे को मिट्टी नहीं मिल पा रही है।
7: आपने मैम कल भावुक होते हुए ये भी कहा था कि हर परिवार चाहता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, और कल जब प्रेगनेंसी को लेकर के आपने बात की उस वक्त आपने भावुक होते हुए ये भी कहा कि बच्चा वो चाहती नहीं थी और इसलिए उसने एमटीपी ट्रीटमेंट लिया।
8: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो उसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
7: सिज़ोफ्रेनिया का कब पता चला मैम?
8: एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी ओलिज़ेप्राम, अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दीज पेशेंट्स, मैनिक डिप्रेशन एंड शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं उस दिशा में, तो इसलिए वही बता पाएंगे। यस,
7: आप लोगों ने 8 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर किए, जिसकी बैंक डिटेल्स भी आपने कोर्ट में सबमिट कराई हैं। क्या आपके एडवोकेट की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि बैंक डिटेल्स निकलनी चाहिए तुषा की?
8: बिल्कुल निकलनी चाहिए, वी नीड टू नो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है।
7: लोगों के ऊपर 2 लाख का आरोप लगाया उन्होंने,
8: और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो यूपीआई ट्रांजेक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? 2 लाख इस माई सैलरी, तो हम क्यों मांगेंगे एक इस तरह से पैसा, जब हम ऐसे परिवार से जो हम अपना राइट्स भी रिलिंक्विशमेंट करके बैठे हैं ससुराल पक्ष से भी, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल।
7: जो एलिगेशन की मांग कर लगा रही है कि मेरी बात हो रही थी तुषा से, अचानक से फोन कट गया, देन सडनली हाफ एन आवर के बाद पता चलता है कि वो नहीं रही, ये इन एलिगेशन
8: मदर ने जैसे ही फोन किया, हम लोग तो सब ऊपर नीचे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, कहां गई, तो अब देखा बिटिया को, तो देन वी ट्राई टू सेव हर।
7: तुषा मौत मामले में तुषा की सास गिरिबाला सिंह ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तुषा पर मानसिक रूप से बीमार होने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही सास गिरिबाला सिंह ने भोपाल के एक मनोचिकित्सक का नाम भी लिया और बताया कि इस मनोचिकित्सक के पास तुषा का इलाज भी चल रहा था। आज तक इस वक्त उसी क्लिनिक पे पहुंच गया है जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जहां पे बतौर मनोचिकित्सक हैं, इसी क्लिनिक पे बताया जा रहा है कि तुषा का इलाज चल रहा था। तुषा की सास के मुताबिक तुषा जो है वो सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी, और इसीलिए जो मशहूर मनोचिकित्सक हैं सत्यकांत त्रिवेदी, उनके पास उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, और इस वक्त हम उसी क्लिनिक पे मौजूद है। हालांकि इस बारे में जब हमने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरीके से इसमें बात करने से इनकार कर दिया है, और इस वक्त अगर आप देखें तो हम जिस क्लिनिक पे हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज होता है, और इसके साथ ही मूड स्विंग एवं बाइपोलर लोग। ये मूड स्विंग जो है ये यहाँ पे हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो तुषा की सास है उन्होंने भी अपने बेल ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि तुषा जो है वो डिप्रेशन में थी, मूड स्विंग उसके होते थे, और जब भी वो दिल्ली से वापस आती थी तो उसका व्यवहार परिवार के लिए, मतलब तुषा के ससुराल के लिए, पूरे तरीके से बदल जाता था, भले ही वो तुषा की सास हो, तुषा का पति समर्थ हो। और इस बीच में हम आपको बता दें कि भले ही डॉक्टर ने इस पर बात नहीं की हो आज तक से, लेकिन हमारे पास आज तक के पास इस समय वो पर्चा मौजूद है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सीट पर टीएमसी को लगा झटका। जहांगीर खान ने पीछे खींचे कदम, बीजेपी का तंज, दीदी के लोगों को हार का डर। बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म। बीजेपी सरकार बनने के बाद बंदूकों के युग का हुआ अंत, हर आदिवासी तक पहुंचना सरकार का है लक्ष्य।

0: बाड़मेर में बवाल, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, पुलिस ने सूझबूझ से रोका, 40 दिन से जारी है प्रदर्शन। और अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, वनडे में 3 नए चेहरों को मौका, टेस्ट में ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी, केएल राहुल को मिली जिम्मेदारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप छोटा मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं।

हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगातार अगर आप देखिए तो एक हफ्ते के अंदर कैसे फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसे आर्थिक तूफान कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने इसी को आधार बनाकर सीधा हमला बोला है और घमासान इस बात पर चढ़ गया है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह का इजाफा हो रहा है उससे आने वाले वक्त में कैसे परेशानियों का सबब महंगाई का एक पूरा

0: सके, पर अभी समय इस समय कंपनियों का 1,000 करोड़ का एक दिन में ओएमसी जो है वो लॉस हो रहा है।
1: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अरुण कुमार अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ रहे हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आर्थिक तूफान से राहुल गांधी करार दे रहे हैं और क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि जिस तरह से सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुए हैं, जिस तरह से अब कीमतें बढ़ रही हैं एक एक करके, एक सप्ताह में देखिए 2 बार कीमतें अब बढ़ा दी गई हैं, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट तो होना ही है, महंगाई तो आने वाले दिनों में बढ़ेगी क्योंकि माल ढुलाई और उससे पूरा असर हर सामान पर पहुंचेगा।
2: अंजना जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वैश्विक संकट है और ये जो युद्ध हुआ है ये कोई मोदी जी ने नहीं करवाया है। और राहुल गांधी, दुर्भाग्य है भारत का कि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि वो कभी कोई विकल्प, कोई सुझाव, कोई सकारात्मक बात नहीं करते हैं। उनके पास केवल एक ही बात होती है, नकारात्मक बात करना, बार बार कहना आंधी तूफान आ रहा है, भारत संकट में है। मैं ये मानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र के संबोधित करते हुए अपील करी, क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए था कि वो भी अपील का समर्थन करे? और अगर उन्हें कुछ लगता है कि इस अपील में जोड़ने की आवश्यकता है तो वो भी जोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं सुन रहा था राहुल गांधी कह रहे थे, देखिए भारतीयों से कहा प्रधानमंत्री जी ने कि विदेशी यात्रा पे मत जाओ, खुद चले गए। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी जी बाहर मसाज कराने गए हैं, मेडिटेशन करने गए हैं, ध्यान लगाने जैसे राहुल गांधी जाते हैं, पिज्जा खाने गए हैं इटली? नहीं। क्या पाया है पिछले 5 दिन में, ये मैं बताना चाहूंगा। यूएई में 2 समझौते हुए, जो कच्चा तेल है भारत के लिए 3 करोड़ बैरल, इसका स्टोरेज यूएई करेगा भारत के लिए। फुजेरा पोर्ट पर हम लोग अपना जो तेल रिजर्व है वो रणनीतिक तौर पे रख पाएंगे, ये पहला। नीदरलैंड्स गए, वहां पे रोडमैप तैयार हुआ ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट का। और नॉर्वे गए तो वहां पे ऑफशोर विंड एनर्जी और ओशन एनर्जी की बात हुई। स्वीडन में स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन स्टील, ये कैसे होगा निर्यात और आयात, इसकी बात हुई। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये क्या दर्शाती है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। अगर विश्व में संकट आ भी जाए तो भारत अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा रहे जैसे खड़ा रहा है। और हमने देखा 75 दिन युद्ध जब चलता रहा तो तेल की कीमतें भारत में नहीं बढ़ी, ये पहला ऐसा देश पूरे विश्व में था। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में जो भंडार था, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, सब अवेलेबल था, उपस्थित था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अभी भी 3.5 और 4% है, कांग्रेस के समय में 12 से 14% रहती थी।
1: नहीं, ये रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन बता रहे हैं ना आप गौरव जी? गौरव जी, ये आप रिटेल इन्फ्लेशन बता रहे हैं ना, क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन रेट तो 8.3 के पार जा चुका है।
2: हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, रिटेल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मैंने देखा था अंजना जी, तो ये 4.5 से 5%, अभी मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, CPI, तो इसलिए 8% मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अब जो मैं आंकड़ा देने जा रहा हूँ दर्शकों के लिए, ये सुनिएगा जरूर अंजना जी। मलेशिया में जब से युद्ध शुरू हुआ है 56% इन्फ्लेशन, यूएई में 52%, अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, कनाडा में 32%, चीन में 22%, और यही आंकड़ा कहता है 4% भारत में। दूसरा, तेल की कीमतें हमने बढ़ाई है 3 से 4%, मलेशिया में 58% पेट्रोल बढ़ा है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ये आज तक की ही खबर है। मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया, ये दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष साथ नहीं खड़े हो पा रहा, जहां 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए। मुझे दुख इसलिए लगता है, नेता प्रतिपक्ष क्या क्या कर सकता है मैं बताता हूं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अंजना जी कह सकता है, ये अपील का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जैसे कोविड की महामारी में बता रहे थे कि वैक्सीन खराब है मत लगाना।

0: छुप के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लगा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप पे भारत बायोटेक का वैक्सीन लगाया, क्यों? क्योंकि भारत की जनता को गुमराह नकली गांधी परिवार कर रहा था और मोदी जी ने दिखाया कि अपने देश की निर्मित वैक्सीन पे विश्वास करो। यही फर्क है। और अभी भी कहूंगा, अगर आंधी कहीं आई है तो वो आंधी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है और उस आंधी का नाम है राहुल गांधी। यही एक आंधी है।
1: चलिए आलोक जी को जवाब देने दीजिए। आलोक जी, ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए आप, क्योंकि देखिए ये जो पॉलिटिकल इधर से उधर बातें हैं ये सब बॉल घूमता रहेगा, लेकिन दो तीन बातें हैं जो मुझे लगता है अरुण जी भी सहमत होंगे कि एक तो ये युद्ध भारत ने शुरू नहीं किया है, ये युद्ध पूरे विश्व पर थोपा गया है। अमेरिका जिस तरह से अटैक कर रहा है ईरान पर, और जो जिस तरह अभी भी सीज फायर खुद ही कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की आईसीयू में है। लेकिन ये जो कीमतों की बात हो रही है, तो औसतन अगर हम हिमाचल और तमिलनाडु को छोड़ दें तो दूसरे नंबर का ग्राफिक्स दिखाइएगा, हिमाचल प्रदेश जहां पर वैट का हिस्सा 17.5% है, तेलंगाना जहां पर 35% तेलंगाना में 35.20% जिसकी वजह से कीमत 111.84 रुपए हो जाती है तेलंगाना में। फिर कर्नाटक देखिए जहां पर 30% के आसपास 107.16 हो जाती है कीमत। ऐसे ही अगर आप देखिए तो इसके बाद से पंजाब में भी कम है, पंजाब में 17% के आसपास है कंपैरेटिवली अगर हम देखें, वहां पर 102 रुपए प्रति लीटर है। फिर केरला में आइए 30.08% सेल्स टैक्स का हिस्सा 111 रुपए हो जाता है। तमिलनाडु, झारखंड ऐसे ही हम दिखा रहे हैं, सब जगह पे। आज सवाल ये है आलोक जी, मुझे बताया जा रहा है कि किसी वजह से उनका फोन कट गया है, तो फिर से उनको जल्दी से जोड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसका जवाब उन्हीं से लेंगे कि बात जनता को राहत देने की है, ऐसे में कांग्रेस क्या सुझाव दे सकती है? आर्थिक तूफान तो सबको पता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। जैसे ही अटैक किया और हॉर्मूज को जैसे बैन किया, बल्कि और हॉर्मूज को जब बंद नहीं भी किया था तो हम लोग लगातार दिखा रहे थे कि कैसे। आलोक जी आवाज आ रही है?
2: अब आ रही है मुझे आवाज,
1: ठीक है। हाँ, बीच में फोन कट गया था इसीलिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आलोक जी, ठीक है। मैं सवाल पूछ रही हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि आर्थिक तूफान आना है, सबको पता था। जैसे हमला हुआ था उसके बाद से ही हम लोग दिखा रहे थे कि हॉर्मूज को एक हथियार की तरह युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है ईरान, और उसने ऐसा ही किया जिसकी वजह से तेल बाधित हुआ है। अब ऐसे में आप सहयोग कैसे कर सकते हैं देश को सही रास्ता दिखाने के लिए? वो बार बार शिकायत करते हैं कि एक सुझाव तो दें, तो दोनों पर आपका जवाब।
2: देखिए, सुझाव से ही शुरू करते हैं अंजना जी। सुझाव अगर सही प्लेटफॉर्म पे मांगा जाएगा तो जरूर दिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग हो, पार्लियामेंट का सेशन हो, कोई भी गतिविधि होगी, विपक्ष उसका सुझाव देगा, अपने तमाम चीजें रखेगा। लेकिन विश्वगुरु साहब का तो इतना अहंकार है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, और पूरे देश का पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उनको आज भी राहुल गांधी। युद्ध हो रहा था उस समय पर, मोदी जी केरल से चेन्नई, चेन्नई से केरल, केरल से फिर वेस्ट बंगाल से असम, सब चल रहा था। क्या उस समय पर कोई एनालिसिस था इनका? क्या सरकार की कोई मीटिंग हुई? क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास कितने भंडार हैं, कितने नहीं है? दुर्भाग्य यह है कि राहुल जी ने आज जो कहा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है इन्होंने, उसके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। और अगर सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये रोज रुपया डॉलर की तुलना में क्यों गिरता चला जा रहा है? आज सुना 97 के पार चला गया है। और युद्ध, इसको युद्ध के पीछे अर्थव्यवस्था के फेलियर को हम नहीं छुपा सकते हैं। क्या युद्ध से पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या वो पहले पॉजिटिव था? क्या चीन से हमारा 2014 के बाद कितने गुना इंपोर्ट बढ़ा है, कोई बताएगा? युद्ध में हमारी भागीदारी नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ईरान से नेगेटिव किया, कहीं ना कहीं हम इसराइल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। यह विदेश नीति की पूरी तरह से फेलियर था। बार बार कहने से विदेश विपक्ष जो है सुझाव दे, विपक्ष तो पहले से कहता आ रहा है। क्या 2 साल में गोल्ड कितना हिंदुस्तान में आया? जो 2 लाख के पार चला गया तब सरकार सो रही थी। क्या जिस समय पर चांदी के रेट 4 लाख से ऊपर चले गए, क्या सरकार ने कोई कदम लिया था? मैं समझता हूं टोकनिज्म करना, हेडलाइंस मैनेजमेंट करना, इससे देश नहीं चलता है। आज जो हालत है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी एलओपी हैं। मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ऐसी बोगस सरकार है और देश के प्रधानमंत्री देश को सच नहीं बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी विश्व गुरु की छवि को लेकर जी रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपया 21 बार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने, 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। क्या ये विपक्ष ने कहा था कि आप बढ़ा दीजिए? राज्यों के जो विपक्षी राज्य हैं उनके आप पैसे देते नहीं है। 6 बजे मोदी जी ने भाषण दिया कि साहब वो कार पूल कर लीजिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, और 9 बजे अपना पूरा काफिला लेकर और पूरी तरह से रोड शो करने शुरू कर दीजिए, जिसमें 200, 250, 300 गाड़ियां थी। दुर्भाग्य यह है कि टोकनिज्म पर आप चल रहे हैं, अमेरिका डंडा लेकर आपको हांक रहा है। क्या जो रशिया से तेल की बात है, 1 महीने की कभी अमेरिका वो छूट दे देता है, फिर 1 महीने की दे देता है, हम कुछ बोलते हैं? हम केवल एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए, और उसी के तहत हमने अमेरिका से जो डील की उसमें तो अभी बाकी आप दिक्कतें आएंगी। किसानों के सारे हित अमेरिका को मोदी साहब ने गिरवी कर दिए, डाटा पूरा डाटा दे दिया है। आज जिस तरह की हालत है, मैं एक बात
1: जल्दी से पूरा कीजिए,
2: बात कहना चाहूंगा। 30 से 40 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, मोदी जी ने तो 2024 में दुनिया को शेयर खरीदवा दिए थे, क्या ये काम भी देश के प्रधानमंत्री का था? डिस इन्वेस्टमेंट की बात कि कितना करेंसी फ्लाई हुआ है, अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ हुआ है मोदी जी के अपील से पहले। क्या सरकार ने कोई करेक्टिव मेजर लिया था? आईपीएल बंद करवा दो ना भाई, आईपीएल चल रहा है उसमें तो डॉलर्स में पेमेंट हो रही है, बंद करवा दो उसको। अंबानी की
1: एक बार ये तरह से ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अभी दो मेहमान और हैं, उसके बाद गौरव जी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी नहीं हो पाएगा। ये रशिया ने किसे कितना तेल बेचा, तो अप्रैल 2026 का ये डेटा हम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले हम भारत ने कब कब कितना खरीदा है, ये जो आप लोग रोज डेटा करते हैं, तो इसीलिए रशिया से तेल खरीदने में कमी की जो बात की जा रही है। अब देखिए 23-24 के ही आसपास ये पूरा एप्स्टीन का मैटर सामने आया था, ये पुराना वाला बाद में दिखाएंगे, अभी पहले अभी का दिखा दीजिए। ये तो आलोक जी 23-24 में 33% और 24-25 में 35% हो गया है, और अभी तो और भी जो हम तेल ले रहे हैं रशिया से उसमें और इजाफा हुआ है, तो फिर ये कैसे आपकी बात छिपती ये होती है कि एप्स्टीन दबाने के लिए कम कर दिया है रशिया से तेल? एप्स्टीन फाइल्स का पूरा मामला जब इंडिया में इरप्ट किया, उसके बाद से तेल परसेंटेज में रशिया से खरीदारी में इजाफा है,
3: घबरा गए।
1: छोटा सा जवाब सर।
2: देखिए मैं समझता हूं कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो अमेरिका ने हमें 1 महीने की छूट क्यों दी, और सुना है 2 दिन पहले 1 महीने की छूट बढ़ा दिए। ये छूट पहले बंद किया गया, फिर छूट क्यों दी गई, इसका कोई जवाब देगा इस देश के अंदर?
1: ये नंबर्स तो बता रहे हैं कि डिप नहीं है, लेकिन गौरव भाटिया जी इस बात का जवाब दीजिए, ये दिख रहा है कि इंक्रीज है रशिया से ऑयल में, लेकिन ये जो अमेरिका बार बार कहता है कि हम ये बढ़ा रहे हैं अवधि, हम ढील और ज्यादा दे रहे हैं खरीदने के लिए रशिया से, इसका क्या अर्थ है? इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, और वो कौन होता है हमें ढील देने वाला?
3: अंजना जी एक बात मुझे बताइए, मैं पहले तो साधुवाद आपका व्यक्त करता हूं कि आपने दिखाया किस तरह से जो कच्चे तेल का आयात है रूस से, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 30% से 34% तक है। अगर किसी की ढील देने पे भारत कार्य कर रहा होता तो ये फिर बढ़ता कैसे? दूसरी बात, आपको पता है ये 30 से 34% हमारे समय में है, हमने करीब 20 से 25 बिलियन US डॉलर जो है बचाए हैं। कांग्रेस की सरकार में 1% तेल आता था रूस से, 1%, वो बात ये यहां बोलेंगे नहीं। तीसरी बात, मान लीजिए आज तक पे कोई आके कहे कि मैं दूसरे चैनल से हूं लेकिन मैं आज तक को इजाजत देता हूं कि 9 बजे अपना कार्यक्रम करे, अंजना जी 6 बजे हल्ला बोल करे, अरे भैया इजाजत देने वाले तुम होते कौन हो? भारत ने पूछा है तुमसे? भारत वो करेगा जो भारत के हित में होगा, और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व आज मानता है एक नेतृत्व के तौर पे, इसलिए कांग्रेस को जलन होती है।
1: अरुण जी को दिखाई,
3: लेकिन अब मैं एक दो बातें आपको बताता हूं।
1: तो जल्दी बोलिए
3: आपने लाइन में बोला, मैं भी एक बात रखना चाहता हूं।
2: अंजना जी छोटा
3: सा जल्दी बोलूंगा, बहुत तेजी से बोल देता हूं। सबसे ज्यादा वैग कहां पे है? तेलंगाना में 35%, आपने केरला 30 बताया, ये नहीं बताया उस पर 1 रुपया एडिशनल सेल्स टैक्स। 1% सेस और 2 रुपए सोशल सिक्योरिटी सेस है। कर्नाटका में 29%, गुजरात में 13.7%, यूपी में 19.36%, दिल्ली में 19.4% और महाराष्ट्र में 25%। तो मैं तो कहूंगा राहुल गांधी सबसे पहले अपील करिए, जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे कम से कम व्याज कम हो। दूसरी बात, शपथ ग्रहण हुआ अभी केरलम में, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं नीरा जी, केरलम में शपथ ग्रहण हुआ। बताते हैं कि भाड़े की गाड़ियां राहुल गांधी के साथ चल रही थी, लेकिन क्यों चल रही थी, क्यों चार्टर से गए थे? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों चार्टर से आई? इसलिए टीवी पे आके फालतू बात करना एक बात है, अपने चरित्र को पहले सुधारना दूसरी बात है। और अगर आप मौका दे तो एक बात और कहूंगा, एलओपी क्या कर सकता है? अगर एलओपी को चिंता है तो जीएसटी में, जीएसटी की जो रेजीम है उसमें ले आइए, सारे जितने प्रदेश है कांग्रेस शासित राज्य, कह दीजिए कि ठीक है जीएसटी में रहेगा पेट्रोल डीजल, जनता को राहत, हमने 10 रुपए कटौती करके दी है एक्साइज ड्यूटी में। कुछ तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए,
1: छोटा सा जवाब ऐसे ही तेजी से बोलिए,
3: नकारात्मक राजनीति करने से काम नहीं चलेगा।
1: उसके बाद में सीधा अरुण जी और हर्षवर्धन जी के पास।
2: हमारी सरकार होती थी अंजना जी, हमारी सरकार थी $140 बैरल पे पहुंच गया था और रेट थे 63 और 57 रुपए, आज 102 पर है और रेट पिछले 5 दिन में 3 बार बढ़े हैं। इसके जवाब भी कांग्रेस देगी। आंध्र प्रदेश में आज सबसे ज्यादा रेट है। मैं राज्यों की तुलना नहीं करना चाहता हूं, कारण क्या है कि ये केवल पेट्रोल डीजल के प्राइस तक नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम ने जो कहा है, आर्थिक सलाहकार
1: मैं फिर कर लूंगा,
2: अरे भाई मैं कर लूंगा, फैक्ट चेक भी कर लूंगा, मैं फिर फैक्ट चेक कर लूंगा, रुक जाइए। ये रोजी रोटी का सवाल होने वाला है, ये जीवन यापन का सवाल होने वाला है। राहुल गांधी की भाड़े की गाड़ियां दिख गई, लेकिन सोमनाथ में जो 3 रैलियां हुई उसमें गुजरात रोडवेज की बसें लगा दी आप लोगों ने, वो तो उसका तो भाड़ा दिया नहीं गया आप लोगों से, वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले पैसे मांग रहे हैं कि मोदी जी के रैली के लिए जो हमारी सरकारी बसें गई उनका पैसा दे दीजिए। आरोप लगाना आसान है। मैं फिर कहूंगा जीएसटी में सिंपल मेजोरिटी के साथ फैसला होता है, 33% वोटिंग केंद्र सरकार की है, 21 राज्यों में आपकी सरकार है, आपको एलओपी की कहां जरूरत है? आप ले आइए ना, जिस समय पर दूध छाछ और लस्सी पर और पेंसिल और इस कागज के ऊपर और हर चीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया था जीएसटी, उस समय विपक्ष से पूछकर लगाया था क्या? क्या विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप टैक्स लगा दीजिए? आपके पास हमेशा से जितना
1: कंसेंसस बनाने की जरूरत है अरुण कुमार जी, ताकि तेल पेट्रोल की कीमतें भी जीएसटी के दायरे में आ सके। इसके बाद में हर्षवर्धन जी आपके पास। अरुण कुमार जी, दो बातें जो आलोक जी कह रहे हैं उस पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहती हूं। वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर इकोनॉमिक फेलियर है और इसको युद्ध के पीछे छिपाइए मत। क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है कि जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी उसमें युद्ध की वजह से एक बड़ा सेटबैक और झटका लगा है या नहीं लगा है? और दूसरी तरफ जीएसटी में काउंसिल में ये अप्रूव हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी जीएसटी में आए, इसमें आपको ईमानदार एफर्ट दोनों की तरफ से दिख रहा है?
4: देखिए, मेरा मानना है कि ये एक सप्लाई शॉक है और ये सप्लाई शॉक आया है एक पहले के शॉक से। पहले जो था वो टैरिफ का शॉक था, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई थी। उसके पहले यूक्रेन का शॉक था, उसके पहले पैंडेमिक का शॉक था, उसके पहले जीएसटी का था, उसके पहले नोटबंदी का। तो अर्थव्यवस्था 2016 के बाद कई सारे शॉक से डील कर रही थी, इसलिए काफी जो एक परेशानी के दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही थी। तो अभी ये इतना बड़ा झटका है क्योंकि सप्लाई शॉक सिर्फ एनर्जी का ही नहीं है, 20% जो दुनिया की एनर्जी है वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, वो रुक गई तो हमारे ऊपर तो असर पड़ेगा क्योंकि हम तो 90% क्रूड वहां से मंगवाते हैं और हमारी गैस 60% वहां से आती है, तो हमारे ऊपर असर पड़ा। हमारे पास क्रूड कम आया तो जो मार्च के महीने में 60% कम आया और अप्रैल के महीने में 10% कम आया, तो इसका मतलब है कि कमी तो होगी। और दूसरी बात यह कि जब क्रूड है उसमें से आपका जो सल्फर निकलता है, उसमें से हीलियम निकलता है, उसमें से फर्टिलाइजर बनता है, उसमें से आपके जो प्लास्टिक बनता है, उसमें से और बहुत सारी चीजें फार्मास्यूटिकल वगैरह बनते हैं, उसमें सब में शॉर्टेज आई है। तो इसलिए उत्पादन पे असर है, इसलिए आपके रोजगार पे असर है और दामों पे असर है। और जो दाम है वो जैसे गैस के सिलेंडर, अब लोग जो गरीब आदमी जो 11-12 हजार कमाता है वो जो 950 का सिलेंडर 4,000-5,000 में लेता है तो उसका तो बजट बिगड़ गया, तो उसे काम पे भी असर हो गया, ये भी असर हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि जो हमारा 35% हम जो रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको तुरंत रोक देना चाहिए था। ये मैंने मार्च में आपके चैनल पे बोला था कि ये हमें रोकना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्रूड की शॉर्टेज रहेगी। रिफाइनरीज के पास 7 दिन का स्टॉक होता है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 9.5 दिन का है, तो 16.5 दिन के हमारे पास एक तरह से रिजर्व है। वो उसको हमें बचाना चाहिए था, पर हम 35% तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी शॉर्टेज है वो और बढ़ जाती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में $26 बिलियन साल का जाता है, उसमें से $15-16 बिलियन हम बचा सकते थे। फिर तीसरी बात ये कि हम डिसाइड कर सकते थे कि क्या चीज जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। जो जरूरी चीजें हैं उन पर पूरा ऑयल दिया जाए, पूरी एनर्जी दी जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर कम असर पड़े। जो गैर जरूरी चीज है उसको रोका जाए, जैसे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हमें गोल्ड पे जो करना पड़ेगा, क्योंकि हम $72 बिलियन का गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड के जो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं और काले धन की अर्थव्यवस्था का उसमें इस्तेमाल होता है, हम काले धन की अर्थव्यवस्था पे रोक लगाएंगे तो गोल्ड की जो होल्डिंग भी कम होगी और जो बाहर से गोल्ड आता है वो भी जैसे हमारे लिए कम हो जाएगा। तो सरकार के पास ऐसे कई सारे कदम थे जो 75 दिन पहले लिए जा सकते थे, जो अभी लिए जा रहे हैं, और इसीलिए हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार को बताना चाहिए, हमें जो सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि कितना हमारे पास अभी क्रूड का स्टॉक है, कितना हमारे पास अभी रिफाइंड प्रोडक्ट का स्टॉक है, वो हमें बताया नहीं जा रहा। वो एक एक मीटिंग करके सबको बताएं और एक कॉन्फिडेंस में लेके एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। जो नेशनल कंसेंसस अगर बिल्ड होगा तो उससे फिर जो हमारी जो पॉलिसी है वो सही चलेगी।
1: गौरव जी इस पर जवाब भी, जो वो पूछ रहे हैं कि कितना हमारे पास रिजर्व है, और आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, बोलिए।
3: तो मैं इतना ही कहूंगा, पहले उत्तर भी दे दूं और एक सवाल भी पूछ लूं। जब हम लोग अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन 30% बढ़ाते हैं, जब एक संवेदनशील सरकार कहती है कि भाई 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में हम कटौती करेंगे, जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $690 बिलियन के हैं, महंगाई सबसे ज्यादा जो बड़ी है वो हमारा देश नहीं है, सबसे कम बड़ी है, साथ में मैंने तेल की कीमतें जो सबसे कम बढ़ी है हमारे देश में बढ़ी है, मैं अरुण कुमार जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई अच्छी बात लगती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी ने ठोस कदम लिए? क्योंकि आपने बुराइयां काफी बताई, आप एक अर्थशास्त्री हैं, जरा भारत के लोगों को 3 अच्छे काम भी बताइए, भारत कहां अच्छा खड़ा है। हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी उत्तर दे दूं, 45 दिन गैस की और 60 दिन कच्चे तेल की आज भी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज हमारे अभी कुछ समय पहले ही आए, इससे पहले भी आए जब बाकी देशों के रोक दिए गए थे। क्या ये अच्छाइयां आपको दिखाई देती है अरुण जी?
4: देखिए, आप जैसे कह रहे हैं तो पहले 10 जहाज रोज आते थे, यानी कि 75 दिन में 750 जहाज आने चाहिए थे, और अभी मुश्किल से 15-20
3: जहाज। अच्छाइयां 3 पूछी थी अरुण जी।
4: देखिये, आपने जो फैक्ट दिए हैं उसको ही पहले देख लें। आप कह रहे हैं कि जब आ रहे हैं वहां से जहाज, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ रहे, पर 750 जहाज जो निकल के आने चाहिए थे तो 10 ही जहाज 15 जहाज निकल के आए हैं। हम रोज गिनते हैं कि कितना एक आज आ गया, पहले तो नहीं गिनते थे। और उसकी वजह यह है कि आपके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा है वो दिखा रहा है कि अप्रैल में 10% कम आया क्रूड, और जो मार्च में वो करीब 60% कम आया क्रूड। तो जब इतना 70% कम आया तो आपके स्टॉक्स तो कम हो ही गए होंगे,
3: क्योंकि 30% प्रोडक्शन बढ़ा दिया डोमेस्टिक, उसके बारे में कुछ कहेंगे?
4: रिफाइनरी का जो आपका होता है 7 दिन का क्रूड होता है, 7 दिन का क्रूड रिफाइनरी रखता है, और आपका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 9.5 दिन का है, तो 16.5 दिन का आपका जो क्रूड का रिजर्व है जिससे कि आप बनाते हैं, तो ये जो 16.5 दिन का है, अगर आप उत्पादन बनाते रहेंगे और 35% एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो आपकी शॉर्टेज है कि आप 48 दिन में सारा का सारा क्रूड का रिजर्व खत्म कर देंगे, तो वो अगर खत्म हो जाएगा तो फिर उत्पादन में परेशानी आएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें 75 दिन पहले कदम उठाने चाहिए थे।
3: अच्छा, क्या लगी आपको पिछले 75 दिन में भारत ने जो इतनी मजबूती से सामना किया है संकट का, आपको अच्छाइयां क्या दिखाई दी? मैंने ये सवाल पूछा था।
4: देखिए, अगर 75 दिन आपने उत्पादन करते रहे तो 75 दिन बाद एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप जब क्रूड को बचा के नहीं रखेंगे तो आप रिफाइन क्या करेंगे? तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप कदम उठाएं। जैसे कि मार्च में
3: अरुण कुमार जी बता रहे हैं कि भारत कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि 75 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अब भारत कोलैप्स हो गया इनकी नजरों में। ठीक है, धन्यवाद अरुण जी, अच्छा लगा।
4: तो समस्या बढ़ रही है ना,
3: देशभक्ति की भावना बनाए रखिएगा, अच्छा लगा
4: गौरव जी। इसीलिए समस्या बढ़ रही है, इसीलिए सरकार,
3: मेरे को जो कहना था मैंने कहा, साधुवाद आपका। आपने बताया 75 दिन बाद भारत कोलैप्स हो गया है, अभी हमारी चर्चा चल रही है।
1: अरुण जी, अरुण जी,
3: भारत कोलैप्स हो गया है क्योंकि 79 दिन हो गए।
1: उनका कहना है जब हम पूरी दुनिया का निकाल कर दिखाते हैं, हर्ष जी आपके पास आते हैं, जब हम पूरी दुनिया में कंपैरिजन करते हैं तो ये बात एक सच्चाई है कि भारत लंबे वक्त तक कोई भी हाइक को रिजिस्ट करता रहा, जबकि तमाम देशों में आप सोचिए कि हॉर्मुज से कितना तेल जाता है यूएस का, उसने भी कीमतों में इसी बहाने इजाफा कर लिया, तमाम देशों में इजाफा पहले हुआ था। पर जो बात कह रहे हैं अरुण जी, उसका जवाब।
5: ठीक है अंजना जी, मैं तो अर्थशास्त्र का सामान्य विद्यार्थी हूं, अरुण जी तो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत यहाँ क्यों नहीं बताया। मूल सिद्धांत तो अर्थशास्त्र का पूरी की पूरी किताबें जितने हैं, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका बेसिक क्या है, डिमांड और सप्लाई। भारत सरकार ने 28 फरवरी से आज तक डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना के रखा, तो फिर संकट कहां है? प्रधानमंत्री को अपील क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जहां पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे पास जो आता था, हमें दूसरी जगहों से मंगाना पड़ा, जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई। सरकार ने जब तक कुशनिंग थी तब तक उस कीमत को एक तरह से रोक के रखा। उसमें चुनाव भी एक भूमिका अदा करता है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पार्टी चुनाव के समय में अपनी निर्णय क्यों लेगी। दूसरा, एक सरकार का या जो एनर्जी सेक्टर से जुड़े लोग हैं दुनिया भर के, वो एक उम्मीद कर रहे थे कि अब ट्रंप थक गए, ईरान भी थक गया, अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध नहीं समाप्त हो पाया, नहीं समाप्त हुआ तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं जना जी, और ये देश को जानना चाहिए, याद भी करना चाहिए, 260.45 गीगावाट, ये 3:40 की पीक पावर डिमांड है, जिसको सक्सेसफुली भारत में कहीं कोई पावर कट नहीं हुआ, कहीं 2013 की तरह नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर नहीं हुआ, और भारत में हर व्यक्ति इस गर्मी में आसानी से है। ये दूसरा वाला पक्ष था, यानी डिमांड सप्लाई का एक पक्ष जो बाहर से आता है, और दूसरा जो हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन बढ़ाया है वो अकल्पनीय है, क्योंकि हमने ईवी, हमारी सेल 6% बढ़ गई है, हमारे घरों में इंडक्शन आ गए, हमने पीएनडी 1,70,00,000 घरों तक पहुंचा दिया, और जो हमारी गैस की सप्लाई थी वो मनमोहन सिंह जी के समय में 12 करोड़ के आसपास थी, आज 34 करोड़ के आसपास है। तो फिर ये है कि क्या राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए, नेता विपक्ष जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए, और विपक्ष का काम दबाव बनाना है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का काम सही तस्वीर रखना है। सही तस्वीर ये है कि भारत सरकार ने बेहतर मैनेजमेंट किया, हमें आने वाले समय के लिए और बेहतर प्रिपरेशन करनी होगी, जहां जरूरी नहीं उसको खत्म करना होगा, और गोल्ड पे तो निश्चित तौर पर लगाम लगानी चाहिए, वो डेड प्रोडक्ट है, ब्लैक मनी के काम आता है।
1: बिल्कुल ठीक है अरुण जी, चूंकि आप पर है, मुझे लगता है कि एक बार रिस्पॉन्ड आपको इस पर करना चाहिए, उसके बाद मैं फौरन आलोक जी आऊंगी। अरुण जी देखिए, हम पूरा विश्व का चार्ट, हमने जितने देशों का हमें डेटा मिला उसमें हमने निकाला है, जिसमें आप एक एक करके तमाम देशों का जब देखेंगे नाम, फुल स्क्रीन कर दीजिए एक बार ताकि मुझे भी दिख सके। ये मतलब औसतन अगर आप देखिए तो 30% तो ज्यादातर देश शुरू के दिख रहे हैं, जिसमें मलेशिया में 58%, पाकिस्तान का मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता, वैसे ही कंगाल देश हो चुका है, 58% के आसपास मलेशिया ने बढ़ाया, यूएई ने 52% बढ़ाया, 40% अमेरिका ने बढ़ा दी कीमतें। ये पेट्रोल की है, उसके बाद डीजल का भी बगल में आपके पास लिस्ट है, डीजल का तो मलेशिया ने 72.9% 73% के आसपास कीमतें बढ़ा दी। ऐसे ही आप अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, कनाडा, साउथ अफ्रीका और भारत को जब आप देखते हैं लिस्ट में, तो हमने 3.2% वृद्धि की है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, इसमें थोड़ा सा इजाफा और होगा क्योंकि 90 पैसे का और हुआ है। क्या ये चार्ट फिलहाल बताता नहीं है कि हमने भारत के तौर पर मुकाबला ठीक से किया है स्थिति का?
4: कि ये जो हम लोगों ने पहले जब जो दाम गिरे थे क्रूड वगैरह के, तो हमने अपने देश में नहीं गिराए थे, हमने उससे वैट लिया, हमने उससे एक्साइज ड्यूटी ली, हमने उससे जो प्रॉफिट कमाया, तो इसलिए हमारे यहाँ तो कम हुए नहीं। इसके बाद हमने जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की, जिससे कि जो कंपनियों को और जो घाटा हो रहा था वो कम हो जाए, है ना, इसलिए हमारे दाम कम बढ़े। दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं जो दाम बढ़ाएंगे तो आपका जो कंजम्पशन नहीं गिरेगा, कंजम्पशन नहीं गिरेगा तो उतना आपको उत्पादन करना पड़ेगा, और क्योंकि क्रूड आपके पास 30% मतलब 10% अप्रैल में कमाया, 50% 60% आपका मार्च में कमाया, तो आपके जब क्रूड कमाएगा तो आप अगर उतना ही उत्पादन करते रहेंगे तो आपके क्रूड रिजर्व खत्म हो जाएंगे और फिर एकदम जो परेशानी आ जाएगी। तो इसी में कह रहा हूं कि 50 दिन के बाद तो परेशानी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो आपके क्रूड के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं, उतना आपको मिल नहीं रहा है जितना कि बाहर से, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है कि 10% अप्रैल में कमाया और 60% आपका जब मार्च में कमाया, अगर क्रूड कम आ रहा है तो आप कैसे रिफाइंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब यही कि आप जल्दी से खत्म कर देंगे वो सारे अपने स्टॉक्स और फिर परेशानी में आ जाएंगे। तो हमें तो मार्च में ही कदम उठाने चाहिए थे, जो मार्च में हम अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाते उसी समय, जिससे कि हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाता, फिर उसी में
1: गौरव जी वो कह रहे हैं कि आपको आपको ये कीमतें मार्च में ही बढ़ानी चाहिए थी, आपने मार्च में क्यों नहीं बढ़ाई, उससे कंजम्पशन भी कम होता और उससे ये बचता भी। जल्दी से जल्दी से, इसके बाद हर्षवर्धन जी आ
3: रहे हैं। देखिए अरुण जी की एक सोच हो सकती है, उनका झुकाव भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो सकता है, लेकिन मैं तब भी उनका सम्मान करता हूं। अरुण जी, ये मोदी जी की सरकार है, सुनिश्चित करेगी कि आपके पास भी पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल गैस हमेशा रहे। और जैसे अभी 80 दिन करीब निकले हैं, आगे भी आप देखेंगे अगर युद्ध चलेगा भी तो भी भारत सबसे मजबूती से इस संकट का सामना ही नहीं करेगा बल्कि और मजबूत होकर निकलेगा। लेकिन अंजना जी मैं ये बता दूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे राहुल गांधी जी सुझाव दे कहा पार्लियामेंट में देते या ऑल पार्टी मीटिंग में। पार्लियामेंट में जब इस पे चर्चा हुई राहुल गांधी थे नहीं, एबसेंट थे, और जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो भी एबसेंट थे। दूसरी बात, जीएसटी जो है संशोधन सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता अंजना जी, इनको आर्टिकल 279A है संविधान का पढ़ना चाहिए, 75% कंसेंट चाहिए होती है, जिसमें 33.33% सेंटर के पास और 67% करीब स्टेट्स के पास पावर है वोट की। तीसरी बात, पेट्रोल के प्राइसेस यूपीए के समय में कैसे बढ़ते थे मैं आपको बता दूं, 2008 में 15 रुपए बढ़ गए थे, करीब 40% बढ़ा दिए थे, 2011 में 13 रुपए बढ़ा दिए थे। पेट्रोल जो इनको मिला है और 10 साल इनकी सरकार रही है, 120% पेट्रोल के दाम बढ़े थे 10 साल में। यहां पे आके ज्ञान वर्धन करते हैं हम सबका, अरे कम से कम आंकड़ों के साथ तो सही हुई है, और गलत बात मत बोलिए, जीएसटी काउंसिल सिंपल मेजोरिटी से होती है। ये बयान अगर कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं तो सोच लीजिए उनकी समझ और तैयारी क्या है।
1: दोनों पर जवाब दीजिएगा, स्पेसिफिक जवाब।
2: मैं उत्तर
1: स्पेसिफिक जवाब जीएसटी काउंसिल वाला भी आलोक,
2: पहला ही सेंटेंस पढ़ देता हूं, every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes, not total votes, weighted votes hai, weighted mein 33.5% ek tihai central government ka weighted votes aane ke baad total ka 75% nahi chahiye। अब मैं बताता हूं, अब प्रभु बता रहा हूं ना यार, मैं मैक्सिमम मेजर स्टेट्स में आपकी सर, अरे प्रभु सुन तो लो भाई, मैक्सिमम मेजर स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर आपकी सरकारें हैं, आपकी सरकारें हैं, और आज से नहीं है, 2014 15 16 17 से। मैंने पढ़ के सेंटेंस सुना दिया, कहोगे तो रिसर्च करके दे दूंगा। अब वापस आता हूं, अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है अंजना जी, तो अप्रैल में 1,25,000 करोड़ रुपया हमारे शेयर मार्केट से क्यों निकल गया, पहला सवाल। यार एक मिनट रुको, देखिए अंजना जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, अंजना जी प्लीज बंद कीजिए,
1: गौरव जी
3: जितने फैसले
2: अंजना जी गलत बात है,
1: गौरव जी आपको इसके बाद चांस मिलेगा, अब आवाज नीचे कर दीजिए, गौरव
2: अंजना जी गलत बात है। मैं कंसेंसस से शुरू कर देता हूं, जिस दिन आपने बच्चों की कागज और पेंसिल पर और दूध और दही पर लगाया था, किससे कंसेंसस बनाया था, मत बोलिए। अब वापस आता हूं, वापस में अगर बहुत कुछ अच्छा है, भारत ने सब कुछ अच्छा मैनेज किया है, हमारी जो चौथी अर्थव्यवस्था होनी थी 2018 में वो 2024 में हुई, और हम चौथी से खिसक कर छठी पे वापस चले गए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्या ये सच नहीं है। दूसरी चीज, लगातार हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो हमारी करेंसी का शेयर हो, वो लगातार 2014 के बाद गिर क्यों रहा है। सीधी सीधी बात, अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो हमारा शेयर बाजार धड़ाम क्यों है, ये बता दीजिए मुझे जरा। पड़ोसी देशों की करेंसी, श्रीलंका बांग्लादेश, वो हमसे कम गिर रही है, हम ज्यादा क्यों गिर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। इसके बाद सीधा जवाब मेरा दे दीजिए कि अडानी सुना $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यूएस में, क्या वो रुपए में करेंगे डॉलर में करेंगे, और उनको किसने परमिशन दिए। भाई एक सवाल का जवाब नहीं है, 2017 के बाद एक मीट्रिक टन का भी स्टोरेज आपने क्रूड ऑयल का नहीं बढ़ाया, एक रिफाइनरी बन के तैयार हुई थी, मोदी जी के होर्डिंग लगे, मोदी जी का प्रचार प्रसार होना था, उसमें आग लग गई। अब ये किसका दुर्भाग्य है ये भी जरा सोच लीजिए, दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बोगस है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, अडानी के पीछे छुप रहे हैं, अडानी के केसेस की वजह से गलत डील की अमेरिका से और यहां पर डंका पीट रहे 9.5 करोड़।
1: आलोक जी चूंकि आप सीधा इसको जोड़ रहे हैं एक ग्राफिक्स की बात, क्योंकि आप जिस तरह का शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ये भी डेटा है, ये ग्राफिक्स का ही डेटा है, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए ताकि अपने दर्शकों को बता पाऊं। उत्तर यूपीए के कार्यकाल में जो भी इजाफा हुआ, 155% वृद्धि हुई डीजल की कीमत में, 114.4% वृद्धि हुई किसकी कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, कब से कब, अप्रैल 2004 से लेकर अप्रैल 2014 तक। और अब जब आप अप्रैल 2014 से 26 तक देखते हैं, 12 साल जिसमें कोविड से लेकर दो युद्ध सामने आए हैं, तब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि 35%, डीजल की कीमत में वृद्धि 63%। तो ये 15 मई 2026 तक का डेटा है जो आपके सामने है। अब आप ही बताइए कि क्या उस समय जो कीमतें बढ़ रही थी तो कोई कॉम्प्रोमाइज था?
2: एक मिनट। उस समय पर विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, विश्व के प्राइसेस 140 और 45 डॉलर रहे, हमारा पूरा 10 साल का जो एवरेज रहा वो 100 से ऊपर रहा। क्या ये सच बात नहीं है? हमने उसके बावजूद कंट्रोल किया, हमने जब गैस के प्राइसेस टॉप में थे हमने 412 रुपए में सिलेंडर दिया, आज कितने में है, लगभग
3: 1100। समय है
2: कि आंकड़ों के ऊपर जो IMF कहता है कि हिंदुस्तान के जो IMF कहता है कि हमारे आंकड़े सी कैटेगरी के हैं, हम इसीलिए क्योंकि हम बार बार झूठ बोलते हैं। मैंने 10 सवाल पूछे, अगर इतना अच्छा सब कुछ था है तो फिर ये करेंसी फ्लाई क्यों है, फिर ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, फिर ये शेयर मार्केट धड़ाम क्यों है, तमाम चीजें सामने हैं, उसका एक जवाब नहीं। अंतिम बात कहना चाहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम की बात की गई, ये देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। 3-4% बल्कि 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्या ड्राइवर वर्क फ्रॉम होम कर सकता है? क्या इंडस्ट्री वाला कर सकता है? क्या एग्रीकल्चर वाला कर सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का लेबर कर सकता है? मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कितने लोग कर सकते हैं और उसमें से कितने करेंगे। ये बहुत बड़ा आंख में धूल झोंको, अपनी नाकामी को देश की जनता के ऊपर डाल दो।
1: ठीक है, हालांकि आलोक जी, अरुण जी तो ये कह रहे हैं कि मार्च से ही ये तमाम बंदिशें लगनी चाहिए थी और मार्च से ही पैसा, मतलब पेट्रोल बचाने के लिए कोशिश होनी चाहिए थी। गौरव जी, अब उनकी बातों का आप जवाब दीजिए।
3: देखिए अंजना जी, मेरे हाथ में संविधान है, राहुल गांधी संविधान नहीं पढ़ते, उनके प्रवक्ता भी नहीं पढ़ते हैं। आज तक पे झूठ कैसे बोला? आर्टिकल 279A(9) कहता है हर जो डिसीजन लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, 3/4, यहां ये सिंपल मेजॉरिटी बता रहे थे। लेकिन मैं समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात देखिए, मोदी जी की सरकार में हमने क्या ठोस कदम लिए, मैंने ये बताया
2: ऑलरेडी है।
3: ये शांत हो जाइए, आपने सिंपल मेजॉरिटी बोला था, वापस जाके देख लीजिएगा क्या बोला था। छोड़िए ना, संविधान आपके बस की बात नहीं है, इटली का नहीं है, भारत का है। बहुत बुद्धि चाहिए
2: होगी। मैंने पढ़ के सुना दिया।
3: दूसरी बात, संविधान आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार में क्या कहा जाता था? मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसे है पेड़ों पे नहीं लगते हैं। जब 1000 रुपए का सिलेंडर हुआ गैस का, तो रेणुका चौधरी ने कहा ओ गरीब क्या मतलब 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकता।
2: ये पुरानी सरकारों
3: को मत बोलिए अंजना जी, अब आप चुप कराइए।
2: बताओ चौथे
3: चुप कराइए ना,
2: छठे पर
3: प्लीज चुप कराइए इनको, उत्तर दो ना। ये क्या बदहजमी है,
2: बताइए जरा,
3: क्यों बीच में बोल रहे हैं?
2: 30 लाख पासपोर्ट बीच में बोल रहे हैं, 30 लाख
3: सुनिए
2: क्यों हो गए, बताइए जरा।
3: ये अंजना जी गलत बात है, सारे दर्शक देख रहे हैं भारत के।
1: अभी आप मुझे कह रहे हैं कि लास्ट में जवाब नहीं सुनना है। आलोक जी गलत बात है। मैंने उनको चुप किया था, अब उनकी आवाज कम कीजिए। चलिए बोलिए गौरव जी।
3: धन्यवाद। आपने 3 ग्राफ दिखाए अपने चैनल पे और मैंने आंकड़े बताए। पहला, पूरे विश्व में क्या महंगाई है और यहां महंगाई दर क्या है, इस पे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ नहीं बोले। दूसरा, पूरे विश्व में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी है पिछले 75 दिनों में और भारत में कितनी बढ़ी है। तीसरा, आपने दिखाया एनडीए में तेल के दाम कितने बढ़ाए गए और यूपीए में कितने बढ़ाए गए। तीनों आंकड़े दिखाते हैं मोदी जी का मजबूत नेतृत्व और कैसे भारत ने मजबूती से इस संकट का सामना किया है। दूसरी बात, ये जो अफवाहों का बाजार है, रूस से तेल नहीं आ रहा, यह भी झूठ। दूसरा पवन खेड़ा ने कहा दो जहाज चले तो हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत नहीं आएंगे, जब आ गए भारत तो ट्वीट डिलीट कर दिया। तीसरा 2011
1: वक्त इतने की इजाजत देता है गौरव जी, आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये बहस देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रूप लेती है, क्योंकि 90-90 दोनों ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीती रात इजाफा हुआ है। बहरहाल हम बता दें आपको आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि चिकन नेक दिल्ली के हवाले, बांग्लादेश अब ढाका संभाले। वो जो चिकन नेक है पश्चिम बंगाल का, जो सबसे बड़ी फांस बना हुआ था बांग्लादेश, उसको अब शुभेंदु अधिकारी सीधा केंद्र को सौंप रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? और नॉर्वे में मोदी से सवाल की नियत पर गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर में बताएंगे खुद को पुष्पा कहने वाला ममता बनर्जी की पार्टी का जहांगीर खान फायर नहीं फ्लावर भी नहीं निकला, फुस ही निकला, क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखते रहिए आज तक।

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
4: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
9: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: विक्रम, एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
10: हिंट।
9: बड़े आराम से।
12: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा
16: नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
19: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
2: हमारे सीमेंट में नहीं है।
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है, और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
7: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
6: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
7: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
6: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं, प्यार से मानोगे तो ठीक वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है, और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है। अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
8: अल्लाह बोल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर आप देख रहे थे बहस, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अब देखिए 7 बजे की खबरें मारिया के साथ।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब शाम 7 बजे खबर दिखाने का अंदाज बदल रहा है। आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में अभी तक की सभी बड़ी खबरें होंगी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज की खास खबरें। नॉर्वे में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किया चोट, कहा ना डबल स्टैंडर्ड ना कोई समझौता। अमित शाह ने कहा बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ, छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी टीएमसी, 21 मई को विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। शिक्षा मंत्री ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नीट परीक्षा कराने के लिए दिए निर्देश, खामियों को दूर करने पर जोर। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, वनडे में 3 नए चेहरों को मौका। शो की शुरुआत रामचरितमानस पर छिड़ी महाभारत और अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने वाली खबर से करते हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी एक नेता को उस वकील से मिलने भेजा गया जो पुलिस की लाठी का शिकार हुआ था और जिसके हाथ में रामचरितमानस थी। समाजवादी पार्टी ने वकील को रामचरितमानस भेंट किया और अखिलेश ने बीजेपी को सनातन विरोधी बताया।
1: इस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सनातन को लेकर संग्राम शुरू करा दिया है। 27 के चुनाव से पहले इस तस्वीर के सहारे अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। वकीलों के साथ पुलिस की झड़प के दौरान ये तस्वीर दिखी थी, जब पुलिस वाले वकीलों पर लाठी चला रहे थे। उसी समय एक वकील के हाथ में रामचरितमानस थी। इसी तस्वीर को अखिलेश ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि बीजेपी प्रभु राम का नाम अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध के लिए करती रही है। कल जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने हाथ में श्री रामचरितमानस लिए हुए अधिवक्ता पर अति निंदनीय हिंसक लाठीचार्ज किया, वो बीजेपी की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। इसके बाद तो गजब हो गया। अखिलेश यादव ने अपनी एक नेता पूजा शुक्ला को घायल वकील से मिलने भेज दिया, वो भी मानस की प्रति साथ लेकर। अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आईं तो एहसास हो गया कि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ चले हैं।
2: मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और रामचरितमानस के प्रति हम सब सैकड़ों सनातनियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा रामचरितमानस का सम्मान किया है, तो मैं स्वतः गई और मैंने उनको जाकर के भेंट किया और मुझे खुशी इस बात की कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस चीज को शेयर किया और कहीं ना कहीं इन अधर्मी भाजपाइयों का पर्दाफाश करने का काम किया।
1: अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से लगातार अपनी हिंदू की छवि सार्वजनिक कर रहे हैं। सैफई में खुद बनवा रहे केदारेश्वर मंदिर के फोटो तस्वीर शेयर करते रहते हैं। भगवान शिव की पूजा करते परिवार के साथ उनकी तस्वीर कई बार सामने आती है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने खुद को ज्योतिषियों का शरणागत बताया था। जाहिर सी बात है कि अखिलेश नहीं चाहते कि उनकी छवि हिंदू विरोधी बने और 27 को उन्हें नुकसान हो।
3: होगा क्या, किस नैरेटिव में ये चुनाव जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं

0: गुहार लगाता रहा, मेरा बच्चा तो नहीं गिर गया इसमें, ढूंढो मेरा बच्चा चला गया। लेकिन वो सब मुझे इग्नोर मार रहे थे, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था वहाँ पे। मैं ढूंढता रहा 15 मिनट तक मेरे बच्चे को।
1: ये तड़प है उस बाप की जिसका बच्चा उसके सामने ही बेमौत मर गया। 8 साल के इस मासूम की लापरवाही ने जान ले ली। रॉबिन का पूरा परिवार आगरा में तेवतिया वाटर पार्क गया था गर्मियों में वाटर पार्क का आनंद लेने, मगर यही इन्हें मिल गया जीवन भर का दुख। रॉबिन अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे मनीत के साथ वाटर पार्क में थे, अचानक मनीत लापता हो गया। रॉबिन ने तलाश शुरू की मगर रॉबिन की किसी ने मदद नहीं की।
0: मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर परिवार वाले अपना घंटे दो घंटे के लिए तुम बुला रहे हो किसी को, तो तुम्हारी सिक्योरिटी किस मतलब की है जब मेरा बच्चा चला गया? तो
1: सवाल तो है कि आखिर ऐसे हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या वाटर पार्क में इतनी खराब सुरक्षा व्यवस्था है कि बच्चा डूब जाए और किसी को खबर ना लगे? क्या निगरानी के नाम पर वाटर पार्क में सिर्फ लापरवाही है और इसी लापरवाही ने क्या 8 साल के मासूम की जान ले ली? नितिन उपाध्याय, आगरा आज तक।
2: अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसका सरोकार आप सभी से है, आपकी जेब से है, आपकी कमाई से है। एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है।
1: आम आदमी पर फिर से पड़ी है महंगाई की मार, एक बार फिर कटी है आम आदमी की जेब। आज पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 90 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे 4 दिन पहले यानी 15 मई को तेल की कीमतें 3 रुपए बढ़ी थी।
3: अगर एक परिवार एक सिलेंडर को 3 महीने में इस्तेमाल करता है तो 60 रुपए बढ़ने से तो एक दिन में कितना, 2 रुपए, 1 रुपया, 1 रुपया उसका बढ़ाए तो ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए अगर हो सके। पर अभी समय इस समय कंपनियों का 1000 करोड़ का एक दिन में OMC जो है वो लॉस हो रहा है।
1: आज के इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 98.64 रुपए हो गया है। वहीं दिल्ली में जो डीजल अब तक 90.67 रुपए में मिल रहा था वो अभी 91.58 रुपए हो गया है। मुंबई में अब तक पेट्रोल 106.68 रुपए लीटर बिक रहा था, अब बढ़ने के बाद ये रेट 107.59 रुपए हो गया है। मुंबई में अब डीजल 94.08 रुपए लीटर मिलने लगा है जो अब तक 93.14 रुपए प्रति लीटर था। अब बात कोलकाता की करें तो वहां पेट्रोल अब 109.70 रुपए लीटर बिक रहा है। अब तक ये भाव वहां 108.74 रुपए लीटर था। वहीं डीजल का भाव पहले 95.13 रुपए प्रति लीटर था जो बढ़कर अब 96.07 रुपए हो चुका है।
4: बीते 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई। अगर आप दिल्ली में हैं और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे तो पेट्रोल आप डीजल आपको 91.62 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, यानी कि लगभग 91 पैसे का इजाफा। तो पेट्रोल आपको 98.68 रुपए में मिलेगा, यानी कि पर लीटर मिलेगा, यानी कि 87 पैसे का इजाफा।
2: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि मुश्किल समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया से कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ और खुद दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, वो जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अदानी अंबानी को नहीं लगेगा।
5: दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे,

0: और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शौक उनको लगेगा। तो दुख की मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए पहले। आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए ना। तो जो आर्थिक शौक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है।
1: अब वो खबर जिसने डॉग लवर्स को करारा झटका दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका खारिज कर दिया है, और साथ ही ये भी कह दिया है कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए सरकारों ने लगातार प्रयास नहीं किए।
2: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक बच्चा रास्ते से आ रहा है, अचानक इस पर ये आवारा कुत्ता हमला बोल देता है। इसके बाद दो और कुत्ते भी इस पर टूट पड़ते हैं। बच्चा किसी तरह हिम्मत दिखाता है और बचकर भागता है। ये तस्वीरें गुजरात में गिर सोमनाथ के ऊना शहर की हैं। जिस वक्त देश के सुप्रीम अदालत आवारा कुत्तों को लेकर अपना फैसला सुना रही थी, ठीक उसी वक्त ऊना शहर में ये आवारा कुत्ते एक बच्चे पर हमला कर रहे थे। शहरों से ऐसी भयानक तस्वीरें सामने न आए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों की नसबंदी न की जाए और उन्हें दूसरी जगह न शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की अर्जी खारिज करते हुए साफ कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। बच्चों और बुजुर्गों पर हुए हमलों से आंख नहीं फेरी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी आवारा कुत्तों के शिकार हुए हैं। हर जिले में कम से कम एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए।
3: कोर्ट ने उन सारे लोगों को निराश किया है और उन सारे लोगों से कहा है कि वो जो लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, उसमें कुत्ते काटने और कुत्ते के भय के बिना जीने का अधिकार शामिल है।
2: अदालत के आदेश से साफ है कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। डॉग लवर्स की अपनी भावनाएं हैं, मगर किसी जानवर का जानलेवा हमला कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
1: इस वक्त की बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई है। नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समीक्षा बैठक की और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा की खामियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है।

0: धर्मेंद्र प्रधान ने ये बैठक बुलाई जिसमें एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और जो जो खामियां हैं उस पर चर्चा हुई और समीक्षा की है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने। और खास जोर यह है कि एक सुरक्षा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया जाए जब 21 तारीख को नीट की परीक्षा हो। अब खबर पश्चिम बंगाल की। बंगाल में फालता विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले खुद चुनाव से किनारा कर लिया है। 21 मई को फालता में वोटिंग होनी है। वहां टीएमसी उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी के दिग्वांशु पांडे और सीपीएम के शुंभ कुर्मी से है। उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का कारण ये बताया कि वो कोई निजी वजह है।
1: আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপল আছে সেই রিপল থেকে রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম।
2: আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতে তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। 10 বছর পরে ভোট দেওয়ার সাথ পেয়েছেন, 100% ভোট চাই, 3 নম্বর বোতাম টেপা চাই।
0: अमेरिका की ओर से ईरान पर दोबारा हमले का पूरा खाका तैयार हो गया है। टारगेट भी सेट है, जमीनी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध वाली स्थिति बनती जा रही है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक युद्ध टालने की बात कही। कुछ जानकार इसे दोनों देशों के बीच समझौता का जो आखिरी प्रयास चल रहा है उसको उन्होंने बताया। ट्रंप के रुख से साफ हो गया है कि समझौता अगर पूरा नहीं हुआ तो वो ईरान पर भीषण हमला करेंगे।
3: जब ईरान से दोबारा युद्ध का प्लान तैयार हो रहा है, जब ईरान पर बड़े हमले से पहले बैठकों और रणनीति का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले से पहले ट्रंप की प्लानिंग के 2 सबसे अहम बिंदु हैं। पहला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बहाली और दूसरा ईरान में तय ठिकानों पर बमबारी। पहले ऑपरेशन का मकसद ईरान पर हमला कर फिर से तबाही मचाना है, वहीं दूसरा अभियान ईरान में जमीन के अंदर छिपे परमाणु भंडार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत अटकने के यही सबसे अहम मुद्दा बने हुए हैं।
4: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We had the other day there was a man that tried to get into the chute. You know, we saw that there was a door that was blown to smithereens.
3: एक चर्चा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की दोबारा बहाली की भी है, ताकि होर्मुज रूट के जरिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसे लेकर ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। अगर फिर से कूटनीति फेल हुई तो जल्द ही मध्य पूर्व में फिर युद्ध की घड़ी आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका से गौतम अडानी के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका न्याय विभाग ने अडानी से जुड़े क्रिमिनल फ्रॉड केस को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली।
3: अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर 2024 में लगे क्रिमिनल फ्रॉड और साजिश के आरोपों को हटाने की पहल की है। इसमें आरोप लगाए गए थे कि भारत में सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कथित रिश्वत और निवेशकों को गुमराह करने जैसी गतिविधियां हुई थी। हालांकि अदानी ग्रुप इन आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब अदानी ग्रुप की तरफ से अमेरिका में करीब 10 अरब डॉलर के निवेश और लगभग 15,000 नौकरियां पैदा करने की योजना की चर्चा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। मंगलवार को अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.31% बढ़ा, अदानी ग्रीन एनर्जी 0.64%, अदानी टोटल गैस 2.16%, अदानी एग्री बिजनेस 1.40% का इजाफा देखा गया। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में राहत मिलने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर रेगुलेटरी जांच और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे आगे भी बड़े सवाल बने रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबरें शेयर बाजार की।
3: मामूली बढ़त के साथ खुलने के बाद शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 114.19 पॉइंट्स की गिरावट के बाद करीब 75,201 और निफ्टी 31.95 पॉइंट्स टूटकर 23,618 पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों, मुनाफा वसूली और कुछ हॉट सेक्टर्स में बिकवाली के चलते आज बाजार पर दबाव बना रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 32 पैसे की गिरावट के साथ 96.52 के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी, डॉलर की मजबूती और आयात बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव देखने को मिला। गोल्ड और सिल्वर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1,086 रुपए की बढ़ोतरी के साथ करीब 1.59 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 3,443 रुपए महंगी होकर 2.70 लाख रुपए पर बंद हुई। वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते सोने और चांदी में तेजी दर्ज की गई है। आज तक ब्यूरो।
0: एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस बीच दिल्ली की गर्मी झुलसा रही है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिल्ली का रिज इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहा। रिज इलाके में पारा 45 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। इस बीच प्रदूषण भी दिल्ली वालों के लिए सिरदर्द बन गया है। ये थी खबरें 7 तक। आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one.
7: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
11: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
10: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
12: Korean skincare brand now in India.
13: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
14: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
13: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
18: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
19: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
20: इसमें माइक्रोफाइबर है।
19: माइक्रोफाइबर यानी
20: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
19: हमारे सीमेंट में नहीं है,
20: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
21: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
22: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
23: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
24: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
25: एक हिंट तो देते।
24: हिंट? बड़े आराम से,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: जेके मैक्स पेंट्स।
14: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।
4: Like I said before, we better hold the sin.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
6: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंट बड़े आराम से
2: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था एनटीए को पता नहीं
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ एनटीए जागी पेपर रद्द हुआ हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा
4: जहां खबर वहां खबरदार
0: इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो इट्स द वे यू मेक मी फील
2: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा
9: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं
10: नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप
11: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही
12: श्वेतपुर मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर
13: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए ओके
11: शुभेंदु अधिकारी
10: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे
14: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता
15: अनुपम मिश्र
16: मेहमत भारद्वाज
17: पीयूष मिश्रा
18: मौसमी सिंह कोलकाता आज तक

0: दिल्ली में NSUI के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। CBI की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट UG का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। CBI का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं। अब सवाल यह है कि क्या देश के दो शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो दो शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है? 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर PV कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ माद्रे ने NTA से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। CBI को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। विशेष में आज बात करेंगे भोपाल की ट्विशा की, जिसे मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ट्विशा के परिवार ने भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की अर्जी लगाई है, जिस पर फैसला आना बाकी है। परिवार चाहता है कि ट्विशा का भोपाल से बाहर पोस्टमार्टम हो और यही वजह है कि पिछले 7 दिनों से ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: भरोसा है अपनी सच्चाई।
1: ये बहुत चिंता का विषय है कि आज हम सातवां दिन है, हम तड़प रहे हैं न्याय के लिए।
2: भोपाल की ट्रिशा की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की? ट्रिशा की मौत का पूरा सच कब तक सामने आएगा? ट्रिशा का पति समर्थ सिंह अभी तक फरार क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रिशा का अंतिम संस्कार कब होगा? और उसका पार्थिव शरीर भोपाल की एक मॉर्चरी में अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि ट्रिशा के माता पिता को लगता है कि उनकी बेटी की हत्या हुई, इसीलिए वो दोबारा पोस्टमार्टम करवाने पर अड़े हैं। पूरा केस उलझा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस को आशंका है कि ट्रिशा का पति समर्थ विदेश भाग सकता है, इसीलिए भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह का पासपोर्ट रद्द करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। सोमवार को ही पुलिस ने समर्थ सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। दूसरी तरफ ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि ट्रिशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के रसूख की वजह से पूरा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। इस बीच ट्रिशा की मौत के 6 दिन बाद सोमवार को पहली बार ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आई। उन्हें लगा कि वो इस पूरे केस में एक विलेन बन गई हैं, इसीलिए उनका पक्ष आना भी जरूरी है। बाकायदा अपने वकील के साथ गिरिबाला सिंह ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गिरिबाला सिंह ने ट्रिशा पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह का आरोप है कि ट्रिशा को बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए ट्रिशा ने बिना उनको बताए बच्चे का अबॉर्शन करवाया। ये भी आरोप लगाया कि ट्रिशा मानसिक रूप से बीमार थी, उसका भोपाल के एक मनोचिकित्सक से इलाज चल रहा था। आरोप लगाया कि ट्रिशा को शिज़ोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी थी। ये भी आरोप लगाया कि ट्रिशा मारिजुआना यानी कि गांजा पीती थी।
0: उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, I've taken that empty pill. She told me also, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड I said, look, you've done this, लेकिन आपका एक you know, एक नया डायमेंशन होता है once you catch motherhood, तो एक सिंपल वुमन से आप you know, your, and फिर एक बहू and एक daughter, definitely we always think that you should treat them as daughters, but एक बहू is something so much more. वो पूरे अपने generations का निचोड़ होती है, वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। बट शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। उसका जाना इज अ बिग वैक्यूम फॉर अस, बट मोर देन दैट इज द पेन, जो दर्द हमें होता है, बिकॉज टुडे देयर पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स। द प्रेस, द मीडिया, एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस।
2: अब सवाल है कि ट्रिशा शर्मा बच्चा क्यों नहीं चाहती थी, उसने खुद ही अपना अबॉर्शन क्यों करवाया? इन सवालों का जवाब ट्रिशा की कजिन सिस्टर नैना शर्मा ने दिया है, जिनका ये मानना है कि जो परिवार उसे प्रताड़ित कर रहा था वो उसका बच्चा क्यों चाहती थी?
3: अगर बात रही अबॉर्शन की, जो ये बात है, कौन लड़की ऐसे इंसान का बच्चा चाहेगी जो ऑलरेडी उसको मेंटली अब्यूज कर रहा है? दैट कुड बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिस वजह से उसने चाहा होगा कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, अदरवाइज उसको भी ये मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मैं 6 साल की उम्र से उसको जानती हूँ, उसने मेरे साथ पर्सनली बहुत बार, हम बहनों ने शेयर किया है कि हाउ मच शी वांटेड अ चाइल्ड एंड अ नॉर्मल फैमिली।
2: ट्रिशा की सास का दावा है कि जब उसने अबॉर्शन किया तो फिर उसकी दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उसका भोपाल के एक मनोचिकित्सक के पास इलाज भी चला, उसकी दवाइयां भी उन्होंने ली थी।
4: कल जब प्रेगनेंसी को लेकर के आपने बात की, उस वक्त आपने भावुक होते ये भी कहा कि बच्चा वो चाहती नहीं थी और इसलिए उसने एमटीपी ट्रीटमेंट लिया।
5: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता है मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो इसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
2: जिस क्लिनिक पर ट्विशा के इलाज का दावा है वहां आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह पहुंचे, लेकिन यहां ट्विशा का इलाज करने वाले डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कैमरे के सामने नहीं आए।
4: ट्विशा मौत मामले में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ट्विशा पर मानसिक रूप से बीमार होने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही सास गिरिबाला सिंह ने भोपाल के एक मनोचिकित्सक का नाम भी लिया और बताया कि इस मनोचिकित्सक के पास ट्विशा का इलाज भी चल रहा था। आज तक इस वक्त उसी क्लिनिक पे पहुंच गया है जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जहां पे बतौर मनोचिकित्सक हैं, इसी क्लिनिक पे बताया जा रहा है कि ट्विशा का इलाज चल रहा था। ट्विशा की सास के मुताबिक ट्विशा जो है वो सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी और इसीलिए जो मशहूर मनोचिकित्सक हैं सत्यकांत त्रिवेदी, उनके पास उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और इस वक्त हम उसी क्लिनिक पे मौजूद है। हालांकि इस बारे में जब हमने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरीके से इसमें बात करने से इनकार कर दिया है और इस वक्त अगर आप देखें तो हम जिस क्लिनिक पे हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज होता है और...
2: लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ट्विशा शर्मा ड्रग्स लेती थी, क्योंकि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन में भी यही आरोप लगाए थे और उसके बाद कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरिबाला सिंह इस बात को तथ्य की तरह रखती नजर आई। ट्विशा मैरिजुआना का सेवन करती थी, उन्हें जवाब दिया है ट्विशा की बहन नैना शर्मा ने।
6: जो ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, लंबे समय से ड्रग्स ले रही थी, ये आरोप दरअसल खुद को सिर्फ बचाने के लिए है। क्या वाकई वो आरोप ये सिद्ध कर सकते हैं, कुछ है ऐसा उनके पास, या फिर बेमतलब अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं?
3: मैम मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई एविडेंस है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी, वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करे, वो क्यों भागे? मैम इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे, अगर ऐसी कोई चीज होती ये बहुत पहले ही आ गई होती। और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है, इनको तो सब पता होगा, ये तो सब कुछ पता, जब ये प्रीमेडिटेट मर्डर कर सकते हैं तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है, अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में, ये तो इनके कहने पे आई है, ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव।
2: अब किसके आरोपों में कितना दम है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन फिलहाल एक बेटी, एक बहू, एक लड़की के शव को उसका आखिरी अधिकार भी नहीं मिल पा रहा जो सबसे ज्यादा संवेदनहीन है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: इस बीच खबर यह है कि ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताया गया है। ट्विशा का परिवार इसी वजह से दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहा है, उन्हें लगता है कि सबूतों से अनदेखी की गई है क्योंकि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के रसूख की वजह से सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए अब दोनों तरफ से नैरेटिव की लड़ाई भी चल रही है।
2: ट्विशा की मौत के तुरंत बाद क्या हुआ इसका सीसीटीवी भी अब सामने आ गया है। ये 12 मई का सीसीटीवी है जिसमें पहले वीडियो में ट्विशा छत पर जाती दिख रही है और उसके बाद का एक और सीसीटीवी वीडियो है जिसमें ट्विशा जमीन पर है और उसे पहले सीढ़ियों के ऊपर सीपीआर दिया जाता है, फिर इसके बाद तीन लोग घसीटकर उसे नीचे ला रहे हैं, इनमें से एक उसका पति समर्थ सिंह बताया जा रहा है। अब ट्विशा के परिवार वालों का आरोप है कि जानबूझकर ट्विशा को ऐसी जगह पर सीपीआर दिया गया जहां से वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो, जबकि ये एक प्री प्लांड मर्डर।
3: हमें एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए 4 घंटे महिला थाने में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लड़का संदीप जो मेरी बहन की जो ये बॉडी है ये घसीटते हुए लेके नीचे आ रहा है, कैमरे पे ये सीपीआर दे रहा है, जहां पे मेरी बहन की हत्या हुई है वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है। मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था, ये हेडफोन लेके गया। सीसीटीवी में तुषार जाती हुई दिख रही है, लेकिन सीसीटीवी में ये लोग जाते हुए नहीं दिख रहे, ये लोग बॉडी को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बॉडी का वेट भारी है जिसकी वजह से ये बॉडी को उठा नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी बहन में थोड़ी बहुत भी जान होती तो ऐसे घसीट के नहीं लाता। और कौन पति अपनी बीवी को ऐसे घसीटते हुए, जहां पे उसका देखिए आप टॉप भी उसने ढंग से उसका ढका नहीं है। मेरे को खुद देखने में इतना गुस्सा आया था कि थोड़ी बहुत तो तू लाज या शर्म रखता, अपनी बीवी को लेके नीचे तू घसीटता हुआ ला रहा है। देखो इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि मेरी बहन को ठकी देता। और उसका पेट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लोटेड लग रहा है, वो दिख रहा है कि उसका पेट ब्लोटेड है। जब वो ऊपर गई है तब वो एकदम सही दिख रही है, लेकिन नीचे आते हुए उसका शरीर एकदम से भारी हो गया है।
2: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक त्रिशा का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ है। त्रिशा के परिवार को लगता है कि उसकी हत्या हुई है और पोस्टमार्टम में भी बहुत से सबूतों की अनदेखी की गई, इसीलिए त्रिशा का परिवार उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाना चाहता है, लेकिन भोपाल से बाहर दिल्ली में।
1: ये बहुत चिंता का विषय है कि आज हम सातवां दिन है, हम तड़फ रहे हैं न्याय के लिए। PM2 हमारी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट बिफोर बॉडी डिकम्पोज हो, साँचों से छेड़छाड़ की पूरा जो है कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बॉडी को शिफ्ट किया जाए और केस को भी शिफ्ट किया जाए स्वतंत्र जांच के लिए। SC अपनी निगरानी में इसको ले और चीफ जस्टिस इंडिया की से रिक्वेस्ट है कि वो भी संज्ञान लेकर के इस मामले में दखल दे।
4: तो सर, ये PM2 जो आप मांग कर रहे हैं इसके लिए कोर्ट में आवेदन आप कब दे रहे हैं, क्योंकि आपने बताया था कि कोर्ट से ही होना है। वो
1: यही तो उनकी चालें हैं कि आदमी का एक अधिकार है, PM2 एक अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो PM रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो PM2 के लिए जा सकता है। अगर उसके लिए इतना बड़ा जुडिशरी प्रोसेस है, जो पावर्स दूसरे लोगों को अधिकारियों के पास है कि बगैर जुडिशियल कोर्ट के भी उसको भेजा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं भेजा गया? किस इन्फ्लुएंस के अंडर इसको जुडिशियल उसके लिए एप्लीकेशन के लिए डाला गया? ये सरासर एक बड़े इन्फ्लुएंस को दिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक परमिशन निकालने के लिए कोर्ट के द्वारा इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम। टाइम का मतलब यहाँ पर बॉडी को डिकम्पोज करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं, PM2 को करना देना नहीं चाहते।
2: उधर त्रिशा की सास उसके माता पिता पर ये आरोप लगा रही हैं कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे। दोनों परिवारों के बीच केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और त्रिशा को मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा।
0: रेखा जी प्लीज आ जाइए, यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे क्या रहे, शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग। वो अर्निंग का साधन कब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। कुछ नहीं तो यही तरह से करें। जो भी हुआ है, इट इज रियली पेनफुल, लेकिन द मैटर सब जूडिस। और मुझे लगता है मीडिया प्रेशर इतना रहा है, पॉसिबली डिसीशन समटाइम्स, यू नो, दे आर ऑल्सो, बिकॉज हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत कुछ हमारे डिसीशंस को भी गवर्न करता है।
7: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
5: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, वेफरलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रो फाइबर है।
7: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
7: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
6: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: Like I said before, we better hold the sins.
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: इन एसोसिएशन विद
20: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
21: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर किया चोट, कहा न डबल स्टैंडर्ड नहीं कोई समझौता। भारत नॉर्डिक संबंध में स्वर्णिम युग का आगाज। अमित शाह ने कहा बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ, छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। नीट री एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल बैठक, अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा करवाने के निर्देश दिए। मॉडल त्विशा की मौत की गुत्थी उलझी, सास का दावा मानसिक बीमार थी बहू, माता पिता ने भोपाल कोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग के लिए आवेदन दिया। और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे में प्रिंस यादव गुरनूर और हर्ष दुबे को पहली बार मौका, शुभमन गिल दोनों टीमों के कप्तान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। कहीं बुलडोजर, कहीं धर्मांतरण, कहीं सुंदरकांड का पाठ, कहीं पर सियासत ऐसी जहां पर राजनीति का भंडारा प्रसाद बांटा जा रहा हो, कहीं पर हिंदू लड़के को हमजा बना दिया जा रहा है, कहीं हिंदू वोटों की आंधी के आगे बड़े नेता भी सरेंडर कर दे रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही कहा जा सकता है कि हिंदू वोटों की राजनीति की आंधी सी चल रही है।
1: सियासत हिंदुत्व वाली, तेरा वचन न जाए खाली, अध्याय 1 हिंदू वोट जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केदारनाथ का धाम, भव्य आरती, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यही वो हिंदू हैं जिनके वोट को साधने का सारा मंत्र पढ़ा और फूंका जाने लगा। ये वो हिंदू वोट है जो केदारनाथ धाम में इस वक्त रिकॉर्ड बना रहा है। महीने भर से कम वक्त में 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पैदल रास्ते पर जगह तिल रखने तक नहीं बची, दर्शन के लिए आधी रात से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। दावा है सुबह 4 बजे लाइन में लगे तो 8 से 10 घंटे बाद मंदिर तक पहुंच पाते हैं। रोज हजारों लोग केदारनाथ में इस कदर दर्शन के लिए पहुंचे हैं कि भीड़ के बीच से जोखिम उठाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश तक की जाने लगती है। महीने भर से कम वक्त में रोज 20 से 25 हजार हिंदू श्रद्धालु जो केदारनाथ में लंबी लंबी लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं, यही वो हिंदू वोट है जो मंदिर की लाइन हो या फिर वोट की लाइन, हाल के चुनाव में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे रहे हैं, जिनको साधने के लिए इस वक्त देश में हिंदुत्व की सबसे बड़ी राजनीति चल पड़ी है।
0: सबसे पहले उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कल ही सड़क पर नमाज को लेकर कहा था कि संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके भी देख लो। अब अखिलेश यादव से इस पर टिप्पणी मांगी गई, इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई। उस समय वो बड़ा मंगल का हलवा पूरी का प्रसाद बांट रहे थे, भंडारा कर रहे थे। उन्होंने हर एक बात कर दी, गंगा जमुनी तहजीब की भी बात कर दी, लेकिन इस पर टिप्पणी नहीं दी। जाहिर है, मुमकिन है कि अखिलेश यादव इस बात को लेकर अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि अगर कोई साफ बयान दिया तो उसको लेकर तुष्टीकरण के आरोप उन पर लग सकते हैं।
1: सियासत हिंदुत्व वाली, तेरा वचन न जाए खाली, अध्याय 2 सबका एक ही सपना, हिंदू वोट हो अपना। तस्वीर नंबर 1, सुंदरकांड के पाठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, जो उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आयोजित कराते हैं। वो बृजेश पाठक जिन्होंने प्रयागराज में बटुकों की चोटी खींचकर पिटाई के मामले में बटुकों का घर पर सम्मान किया, उन्हीं के घर पर सुंदरकांड पाठ के आयोजन में मुख्यमंत्री आए। तस्वीर नंबर 2, जेठ के महीने में लखनऊ और आसपास जहां मंगलवार को बड़े मंगल के तौर पर माना जाता है, वहां भंडारे का पूरी हलवा अखिलेश यादव बांटते दिखते हैं, और फिर हलवा चना पूरी भंडारे का अखिलेश यादव खाते भी हैं। यहां पहुंचने से पहले एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव से सवाल हुआ, खाने में आपको क्या पसंद है? अखिलेश यादव ने जवाब दिया, मंगलवार है तो भंडारे का प्रसाद खाना पसंद करूंगा। तीसरी तस्वीर, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचते हैं, रास्ते में चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए रुकते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बड़े मंगल का भंडारा और हनुमान मंदिर का दर्शन करते 3 बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ जिनकी हिंदुत्व की राजनीति मुखर रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिनका हिंदू वोट पहले के चुनावों के मुकाबले 2024 में बढ़ा है। तो क्या ये हिंदू वोट साधने की सियासत है? जहां अगले हफ्ते बकरीद पर नमाज मस्जिद से बाहर सड़क पर पढ़ने की इजाजत मांगने पर योगी आदित्यनाथ तेवर दिखाते हुए कानून का पाठ पढ़ा चुके हैं।
2: लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
1: ये वो बाउंसर थी जिसको मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की तरफ फेंका। सियासी मकसद ये कि अगर अखिलेश इस बाउंसर को खेलते हैं तो उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण वाला खेल खेलने का दांव चलकर अगली यॉर्कर मारी जा सके। अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ के प्यार से समझ लो वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे वाले बयान पर न डक किया न पुल किया बल्कि संभल कर खेलना चाहा।
3: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक,

0: वक्त बीजेपी ने पोस्ट करके निशाना साधा, लिख दिया कि सड़क पर नमाज के समर्थन में उठाई अखिलेश यादव ने आवाज, जनता के काम रुके तो रुक जाए पर ना रुके तुष्टिकरण का जहाज।
1: जगह कम है तो क्या दिक्कत है?
2: आज जो है जाम की समस्या होती है, कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल जाता है और यदि सड़क पर आप उस समय नमाज पढ़ते रहेंगे तो उसकी गाड़ी तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो उसकी उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सड़क को बाधित करना ये कोई उचित थोड़ी है। हर जगह सबको अपने अपने धर्म को पालन करने के लिए स्थान बने हुए हैं, सड़क उसके लिए थोड़ी है इबादत करने के लिए।
0: असल में मुस्लिम वोट का राजनीतिक गणित और मूला भाग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा अलग रहा है। 30 साल का उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का सियासी पैटर्न चुनाव के आधार पर देखें तो 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, यानी तब मुस्लिमों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया। कट्टर हिंदुत्व छवि वाले कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह के आने से मुस्लिम वोट छिटकने लगा। 2009 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 30% मुस्लिम वोट मिला और कांग्रेस 25% मुस्लिम वोट पाई थी, जिसकी वजह से तब 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 9 से बढ़कर 21 हो गईं और समाजवादी पार्टी की 35 से घटकर 23। 2014 आते आते समाजवादी पार्टी को वापस 58% मुस्लिम वोट मिलता है और कांग्रेस को 11% मुस्लिम वोट मिला। जब मुस्लिम वोट लौटता दिखने लगा तो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं बाबरी ढांचे के विध्वंस के लिए जिम्मेदार नेता से हाथ मिलाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। 2017 में तब 46% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी पाती है। 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन को 74% मुस्लिम वोट मिलता है, कांग्रेस सिर्फ 15% मुस्लिम वोट पाती है। 2024 आते आते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ चुनाव लड़े और दोनों पार्टियों को मिलाकर 92% मुस्लिम वोट मिला है, लेकिन साथ ही तब इंडिया गठबंधन का पिछड़ा और दलित वोट भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि बीजेपी की तरफ से जब कहीं मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर सवाल या बयान आता है तो वो कैसे रिएक्ट करें। यही वजह है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने के योगी आदित्यनाथ के ऐलान पर हनुमान जयंती से बात शुरू करके संविधान और गंगा जमुनी तहजीब सब कुछ ले आते हैं।
3: हनुमान जयंती हनुमान जी को याद करते हैं मंगल के दिन, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं जहाँ जहाँ होकर के आया हूँ कई जगह भंडारे हमें और बड़ी संख्या में लोगों को जुड़ते हुए देखा है। अभी डॉक्टर लोगों का भंडारा था, उसमें शामिल हुआ मैं। यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी उसमें शामिल हो रहा हूँ। यही हमारे समाज की मिली जुली संस्कृति, यही गंगा जमुनी संस्कृति, यही भाईचारा, यही पहचान और अनेकता में एकता, यही हमारा लोकतंत्र और यही हमें संविधान बताता है कि हमें हर एक के प्रति प्रेम, हर एक के प्रति दया और हर एक के प्रति अपनापन रखना है। इसी से हमारा समाज देश मजबूत होगा।
4: हनुमान जयंती पर न केवल हलवा पूड़ी चना बांटते हुए अखिलेश यादव दिखे बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रामचरितमानस को देश का सांस्कृतिक संविधान तक कह दिया। दरअसल 2024 में दलितों पिछड़ों का जो वोट मिला अखिलेश यादव को, उस बात को वो समझते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल के चुनावों में हिंदू वोटों की लहर को देखते हुए वो यूपी चुनावों की रणनीति बना रहे हैं।
5: अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लात के लेके आती है। देखो ना बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया वहां टीएमसी को, एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है।
0: सियासत हिंदुत्व वाली, तेरा वचन न जाए खाली, अध्याय 3, सनातन वोट जिसके साथ, सत्ता उसके हाथ। हिंदू वोट यानी करीब 80% वोट का बड़ा हिस्सा हासिल करके ही योगी आदित्यनाथ 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड रच चुके हैं। क्या 3री बार हिंदू वोट के दम पर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर पाएंगे?

0: जहां इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करा चुके अखिलेश यादव भी अब हिंदू वोट साधने की राह पर अग्रेसर बनकर चलना चाहते हैं। हाल की कुछ घटनाओं पर गौर करिएगा। केदारेश्वर मंदिर बनवाना हो, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में उतरना हो, विधानसभा में अपनी जगह माता प्रसाद पांडे को देना हो, ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक बयान देने वाले अपनी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी को बुलाकर फटकार लगाना हो, रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताना हो और बड़े मंगल के भंडारे में पहुंच जाना हो। अखिलेश यादव 2024 से इस बात को समझ चुके हैं कि उनका MY यानी मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण वोट तो दिला देगा सत्ता के लिए, लेकिन हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा चाहिए। तभी तो जब सड़क पर नमाज वाला मुद्दा आता है तो मंगलवार को वो पहले भंडारे में दिखते हैं और फिर BJP का सियासी वार भांप कर अगली चाल चल देते हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर, उन्हें अभी देखना भाजपा ही क्या कहेंगे। भाजपा के डर से हनुमान जी के जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं, जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफ ही अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे।
0: सिर्फ दर्शन कराने की बात अखिलेश यादव नहीं करते बल्कि आजकल हिंदू वोट के लिए बारीक पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे इस पर ध्यान दीजिएगा, अखिलेश की हिंदू पथ वाली ये राजनीति का सबूत है। लखनऊ में रविवार को वकीलों के साथ पुलिस की झड़प हुई, पुलिस वाले वकीलों पर लाठी चलाते हैं। उसी समय एक वकील के हाथ में रामचरितमानस थी। इसी तस्वीर को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि BJP प्रभु राम का नाम अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लेती। कल जिस तरह BJP सरकार ने हाथ में श्री रामचरितमानस लिए हुए वकील पर निंदनीय हिंसक लाठी चार्ज किया, वो BJP की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। अब अखिलेश यादव की पोस्ट पर ध्यान देने वाली इस लाइन पर चलिए, जहां पर उन्होंने लिखा कि इससे सांस्कृतिक संविधान रूपी हमारे इस महाकाव्य और महामर्यादा ग्रंथ का महा अपमान हुआ। मतलब अखिलेश यादव रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कह रहे हैं।
2: अखिलेश यादव ने आज रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान की संज्ञा दी। याद करिए, कभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर और दफ्तर के बाहर बड़े बड़े इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन आज अखिलेश यादव लखनऊ की सड़कों पर बड़े मंगल के भंडारे का प्रसाद बांट रहे हैं। अखिलेश यादव 2027 के लिए कोई ध्रुवीकरण नहीं चाहते, ना ही वो चाहते हैं कि अगला चुनाव ध्रुवीकरण बनाम तुष्टिकरण में फंस जाए।
0: और फिर अखिलेश यादव ने अपनी महिला नेता पूजा शुक्ला को घायल वकील से मिलने भेजा, वो भी रामचरितमानस की प्रति साथ लेकर। साफ साफ ये हिंदू वोट को एक मुश्त BJP के पास जाने से रोकने की राजनीति है, ताकि मुस्लिम वोट के लिए तुष्टिकरण के कटघरे में खड़ा करके बहुसंख्यक वोट BJP न जुटा सके।
3: मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और रामचरितमानस के प्रति हम सब सैकड़ों सनातनियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा रामचरितमानस का सम्मान किया है, तो मैं स्वतः गई और मैंने उनको जाकर के भेंट किया और मुझे खुशी इस बात की कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस चीज को शेयर किया और कहीं ना कहीं इन अधर्मी भाजपाइयों का पर्दाफाश करने का काम किया।
4: तो रामायण वाला भी गलती करेगा तो उस पर भी जोगी जी का वही डंडा है, और नमाज वाला जो गलत करेगा उसके लिए वही डंडा है। तो इससे बड़ा राम राज्य और क्या हो सकता है। पहले राम की शरण में जाएं और उसके बाद फिर राम की महिमा को गाएं, इसको कौन रोका है। लेकिन अभी तो राम के यहाँ ही जाकर के माथा नहीं टेक रहे।
0: उत्तर प्रदेश में जातियों और धर्म के आधार पर वोट का हिसाब देखें तो मुस्लिम 19% हैं, यानी वो वोट जो BJP के विरोध में मजबूत गठबंधन को अब तक 90% तक जाने लगा है। बाकी हिंदू वोट में सवर्ण 19% है, ज्यादातर हिस्सा BJP के पास जाता है। OBC 41% है, इनका बड़ा हिस्सा BJP के पास आता है। लेकिन इस बार OBC वोट में 8-10% हिस्सा इंडिया गठबंधन का बढ़ा है। दलित कुल 21% उत्तर प्रदेश है, जिनमें से गैर जाटो वोट इंडिया गठबंधन ने इस बार 2024 के चुनाव में NDA से 2 गुना करीब पाया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि BJP के विरोध में मुस्लिम वोट कहीं और नहीं जाने वाला, उसी को मिलेगा जो BJP के सामने मजबूती से खड़ा होगा। लेकिन तब OYC जैसे नेता चुनौती बन जाते हैं, जिनकी पार्टी के प्रतिनिधि मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश यादव से ज्यादा जोर से BJP को ललकारने लगते हैं।
5: क्या करेंगे आप, सबको मार डालेंगे, क्या करेंगे, सबको गोली मार देंगे, क्या करेंगे आप नहीं करते क्या, ये कावड़ यात्रा निकालते हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पर ट्रैफिक जाम कर लिए। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर, मगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है ये।
0: लेकिन यही टोन अखिलेश यादव का सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को हर भाषा में सही करने वाले योगी आदित्यनाथ के बयान पर सामने नहीं आता। उनकी पार्टी के नेता भी सवाल पूछने पर मुस्लिम के साथ हर लाइन में पिछड़ा शब्द जोड़ देते हैं।
6: इतनी नफरत भरी है, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी पिछड़ों के खिलाफ।
0: अखिलेश यादव असल में पश्चिम बंगाल का हाल देख चुके हैं, जहां ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोट तो रहा लेकिन सत्ता नहीं रही। इसीलिए पश्चिम बंगाल का हाल देख क्या समाजवादी पार्टी ने चाल बदल दी। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
7: तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ ढहा, उसके बाद क्या अब अभिषेक बनर्जी के गढ़ के ढहने की बारी है? ये सवाल पूछने की वजह है टीएमसी के जो कैंडिडेट फलता से चुनाव लड़ने वाले थे जहांगीर खान, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब ये जो फलता की सीट है वो उसी डायमंड हार्बर के तहत आती है जो अभिषेक बनर्जी की सीट है, और उसको लेकर वो चुनौती भी बीजेपी को दे चुके हैं। लेकिन फलता का जो चुनाव है वो रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर चुनाव से पहले बीजेपी के बटन के आगे जो टेप है वो लगा हुआ देखा था, चुनाव आयोग ने उसे रद्द कर दिया गया था। और अब वहां पर चुनाव होना है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, और ये बड़ी खबर ये है कि कोलकाता में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई टीएमसी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। फलता में टीएमसी को झटके के बाद अभिषेक बनर्जी पहली बार दिखे, हालांकि उन्होंने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।
8: बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार।
0: पुष्पा झुकेगा नहीं का फिल्मी डायलॉग मारने वाले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान न सिर्फ झुक गए बल्कि फलता विधानसभा सीट पर वोटिंग से 48 घंटे पहले खुद को चुनावी दौड़ से बाहर कर लिया। इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान ने ऐसा क्यों किया इसे लेकर ठीक ठाक जवाब तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं है।
9: लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत खराब हुआ, बैड, ये नहीं होना चाहिए। और ये वहाँ पे कोई डर का महल, ये भाजपा इसी ये डर का महल पैदा किया या नहीं किया? और अगर किया तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो झुक गया क्यों ये भी देखना होगा। तो वो तो डायमंड हार्बर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में है, हमारा ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये फलता से उनका लीड बहुत बहुत ज्यादा था। तो ऐसा क्यों हुआ अभिषेक बनर्जी जी वो एनालाइज कर रहे होंगे।
0: फलता और जहांगीर खान का रिश्ता सीधा अभिषेक बनर्जी से, इसलिए जहांगीर खान का चुनाव से यूं भाग खड़ा होना ममता के भतीजे के सियासी किले के दरकने का बड़ा संकेत, क्योंकि डायमंड हार्बर लोकसभा सीट को खुद अभिषेक बनर्जी ने एक आदर्श सीट बताते हुए न जाने कितने दावे कर डाले और उसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया। सवाल है कि जहांगीर खान के चुनाव से हटने को अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल के ध्वस्त होने की क्यों न शुरुआत माना जाए।
8: तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करो।
0: अभिषेक बनर्जी को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना घमंड था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती देते हुए ये तक कह दिया था कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल में सेंध लगाने के लिए 10 जन भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त को कम पड़ जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए तब कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब लेकर पलताओ, अपना सबसे मजबूत आदमी भेजो। अभिषेक बनर्जी ये तक कह डाल रहे थे कि दिल्ली से किसी भी गॉडफादर को भेजो और हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़ के दिखाओ।
10: ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है।
0: तो 15 दिन पहले अभिषेक बनर्जी सीधे मोदी शाह को डायमंड हार्बर से अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी को लड़वाने की चुनौती देते थे और अब उनका ही प्रत्याशी इस फलता सीट से भाग खड़ा हुआ, जिस पर अब खुद उनकी पार्टी में सवाल उठने लगा।
11: डायमंड हार्बर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और जहांगीर खान टीएमसी स्ट्रांग मैन माना जाता है, वहां से अभिषेक बनर्जी का इतना बड़ा लीड मिला, लेकिन अभिषेक बनर्जी भी नहीं दिखे वहां पे कैंपेनिंग के लिए।
9: ये तो पार्टी वर्कर्स का भी ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं ऑनरेबल एमपी वहां पर गया, लेकिन ये उनका खुद का डिसीजन है, ये उनका स्ट्रेटेजी है, उनका जो इलाका है। ये डायमंड हार्बर तो ये तो वो उनका खुद का इलाका है,
11: भी जाता था डायमंड हार्बर मॉडल,
9: ये डायमंड हार्बर मॉडल भी तो काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ क्या हुआ वो पार्टी एनालाइज करेगा।
11: तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बनर्जी, जिनका गढ़ माना जाता है डायमंड हार्बर इलाका, वहां से फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे रिपोल होना था वहां पे तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन भी नहीं दिखा। अभिषेक बनर्जी भी पिछले दो हफ्ते में जब से चुनाव का रिजल्ट पश्चिम बंगाल में नहीं आया, सरकार का बदल यहां पे हुआ है, तब से वो भी नहीं दिखे वहां पे। इन सब पर सवाल या निशाना खुद तृणमूल के अंदर उठाना शुरू कर चुके हैं।
0: अगर अभिषेक बनर्जी को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना ही भरोसा था तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहां प्रचार के लिए क्यों नहीं आए? क्यों ममता बनर्जी ने अपने भतीजे की नाक की लड़ाई वाली सीट पर प्रचार नहीं किया? बीजेपी का दावा है कि टीएमसी ने यहां अब तक डर और अपने सिंडिकेट के जरिए चुनाव जीता, लेकिन सरकार जाने के बाद उनका डायमंड हार्बर मॉडल दरक चुका है।
12: আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে, সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপল আছে সেই রিপল থেকে রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম।
0: তো কবি অভিষেক বনার্জি কে সায় কি তরহ পিছে রহনে ওয়ালে জাহাঙ্গীর খান কে সুর পার্টি কি হার কে বাদ বদলে হুয়ে হ্যায়, ও শুভেন্দু অধিকারী কি তারিফ করতে হুয়ে চুনাও সে হট চুকে হ্যায়। সওয়াল হ্যায় কি ক্যা ইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মে টুট কি শুরুয়াত হ্যায়?
7: कोलकाता नगर निगम ने आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जो है वो उनके कोलकाता के अंदर दो घरों को लेकर है। दरअसल उनके 17 संपत्तियों की जांच इस समय चल रही है। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है वो ये कि अभी भी जो कोलकाता नगर निगम है वो टीएमसी के ही अधीन है और जो विधायक है टीएमसी के फिरहाद हाकिम वो महापौर हैं कोलकाता के। तो सवाल उठने लगा है कि क्या अभिषेक बनर्जी के चौकी पर बुलडोजर चलने वाला है? बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। अभिषेक बनर्जी ने पहली बार बयान दिया है इसको लेकर, उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है इस मामले में। अभिषेक ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की है, उसमें कहा कि शुभेंदु सरकार जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। शुभेंदु सरकार पर भी अभिषेक ने हमला बोलते हुए कहा कि हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री हुए हैं लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं, कैमरे पर पैसे लेते हुए दिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये बड़ा बयान और पहला बयान उनका, पहली प्रतिक्रिया आई है।

0: पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। सबसे बड़ी जो कार्रवाई उसकी चल रही है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर चल रही है। हावड़ा और सियालदा स्टेशन के बाहर जो निर्माण है, अतिक्रमण है, उसको लेकर कार्रवाई जो हो रही है उसके खिलाफ टीएमसी मोर्चा खोल रही है और गुरुवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार होगा कि टीएमसी सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल की जनता को खबरदार करेगी।
1: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हो रही ये मुनादी सरकारी नुकसान की भरपाई की वो चेतावनी है जिसकी नाफरमानी बहुत भारी पड़ेगी।
2: हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
1: शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरेंडर करने को कह रही है।
3: यदि किसी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी देना हो।
1: आसनसोल में 15 मई की रात हिंसा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब पुलिस आरोपियों से ही वसूली करने की तैयारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ शहर शहर बुलडोजर चल रहा है। शुभेंदु सरकार ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान तेज कर दिया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन, तो कहीं अवैध रूप से लोग अगर सड़कों पे दुकान बनाते हैं तो उन दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। हम इस समय सियालदा स्टेशन में मौजूद है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ हर रोज आवाजाही करते हैं, लेकिन ये जो स्टेशन का इलाका रहा है यहाँ अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा तादाद में गैरकानूनी तौर पर जो वेंडर हुआ करते थे वो बैठते थे और जो दुकानें थी वो दुकानें भारी तादाद में यहाँ पर थी। यहाँ पर गाड़ियों का आवाजाही भी लगभग नामुमकिन हो चुका था।
1: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत, जो पूरे राज्य में आगे बढ़ाया जाए। हावड़ा सियालदा में रात भर चले अभियान के बाद जब सुबह लोग स्टेशन पहुंचे तो वो अतिक्रमण मुक्त हो चुका था।
5: अच्छा किया। लेकिन थोड़ा सा क्या हो, गरीब का पेट में थोड़ा लात मारा गया, यही बात प्रॉब्लम।
6: पहले तो होना नहीं चाहिए था, मगर अभी सफा कर दिया।
7: और ये सरकार को पहले करना चाहिए था।
6: हाँ, पहले करना चाहिए था। बहुत देर हो गया।
7: जाम मिल रहा है?
6: जाम नहीं है, क्लियर है।
8: बहुत अच्छा मौसम है, एकदम नीट एंड क्लीन है। आदमी यातायात करने के लिए बहुत सुविधा हो रहा है। पहले तो जाम था, इस तरफ से जाने से उस तरफ जाम है, इस तरफ से जाने से इस तरफ, अभी चारों तरफ खुला ही खुला है।
9: एक्चुअली आवाज आई तो देखिए चलता ही था, आगे से चलता था, लेकिन बुलडोजर चलने वाला देखिए कितना गरीब है जो पेट में लात मार गया, वो 250 हॉकर है, उसका लेके भी तो कुछ सोचना चाहिए कम से कम। अचानक तो बोलने से नहीं होता, इतना दिन से चल रहा था, सब तो एक बैग नहीं होता है, कुछ तो टाइम आराम से देना चाहिए उसको। कोई
1: अतिक्रमण को बीजेपी घुसपैठियों से जोड़ती रही है, ऐसे में उसकी ये कार्रवाई उसकी राजनीति के हिसाब से सटीक बैठती है, जिसके खिलाफ टीएमसी ने मैदान में उतरने का फैसला लिया है।
10: पोस्टल वायलेंस चल रहा है, बुरी तरह से चल रहा है, और हॉकर लोगों के ऊपर जो एक्शन हुआ है गरीबों का, वो बहुत डैमेज हो रहा है। इसीलिए 21 मई सियालदा, हावड़ा और बालीगंज एरिया में तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ ये प्लेटफॉर्म से तृणमूल कांग्रेस टीम प्रोटेस्ट प्रोग्राम होगा।
1: तो बंगाल में बुलडोजर पर राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह रही है जहां भी अतिक्रमण होगा उसे हटाया जाएगा। ऐसी ही कार्रवाई हावड़ा में की गई, जहां 5 मंजिला इमारत पर एक्शन होता दिखा। कोलकाता, हावड़ा और सियालदा की तरह उत्तरी बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। दार्जिलिंग के सांसद यूपी की तरह बुलडोजर से हर अवैध निर्माण को जमींदोज करने की बात कह चुके हैं।
11: यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूं, और मैं फिर कहना चाहता हूं जिन्होंने भी इल्लीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है, इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तुड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो, मुझे लगता है वो ज्यादा उचित।
1: शुभेंदु सरकार का कहना है कि रेलवे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर एक्शन होगा, उनसे न सिर्फ सख्ती से निपटा जाएगा बल्कि विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी भारी पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आसनसोल से की जा चुकी है।
0: शुभेंदु, अधिकारी की जो सरकार है उसकी तरफ से अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के कथित गुंडे हैं, जो घुसपैठी हैं, उनके विरुद्ध ये पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम कार्रवाई जो कि देश के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक के तौर पर भी जाना जाता है, वहां जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देश को सौंप दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, दो तीन दिन पहले की ही बात है जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ तीस्ता कार्ड खेला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन से तीस्ता नदी के जीर्णोद्वार परियोजना के लिए आर्थिक मदद मांगी। इससे भारत का खबरदार होना स्वाभाविक है क्योंकि तीस्ता नदी परियोजना का लक्ष्य बांग्लादेश में बहने वाली नदी के अहम हिस्से की खुदाई करना है जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। वो अहम राजमार्ग जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 किलोमीटर चौड़ी, 60 किलोमीटर लंबी इस पतली पट्टी को चिकन स्नैक के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से घिरे पश्चिम बंगाल का ये संकरा मार्ग भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ने का एकमात्र जमीनी रास्ता है। अगर इस रास्ते पर खतरा हुआ तो भारत पूर्वोत्तर से कट सकता है। दावा है ममता सरकार इससे जुड़े राजमार्गों को केंद्र को सौंपने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन शुभेंदु सरकार के आज के फैसले से केंद्र के सीधे नियंत्रण से सामरिक तैयारी मजबूत होगी। आपातकालीन स्थितियों में सेना बिना किसी रुकावट के तेजी से कदम उठा सकेगी। आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नाबालिग हिंदू लड़के के परिवार ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया गया कि उनके बेटे का जबरन धर्मांतरण करा दिया गया है। दरअसल 17 साल का ये लड़का है जो कामकाज के सिलसिले में जम्मू कश्मीर गया था। वहां पर आरोप है कि जबरन धर्मांतरण हुआ है क्योंकि 4 दिन पहले परिवार को एक कॉल आया और कहा कि तुम्हारा बेटा अब हमजा बन गया है, उसको भूल जाओ। अब परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई।
12: हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा।
13: 28 सितंबर 2025 जगह उत्तर प्रदेश का बलरामपुर, जहां छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट पर हंटर चलाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता को खबरदार करते हुए छांगुर बाबा जैसे लोगों को धर्मांतरण करने के नाम पर चेतावनी दे दी।
12: अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे।
13: अब सवाल ये कि बिजनौर के 17 साल के इस नौजवान का धर्म परिवर्तन करवाने वालों को योगी क्या सजा देंगे?
14: कलमा पढ़े है, याद है कलमा?
15: पहला कलमा तैयब तय पाक मोहम्मद
14: मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं अशहदु।
13: जम्मू कश्मीर में कलमा पढ़ने वाला ये नौजवान नाबालिग उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है, जिसके परिवार ने जब ये वीडियो पहली बार देखा पैरों तले जमीन खिसक गई। यकीन नहीं हुआ कि काम की तलाश में जम्मू कश्मीर गए उनके बेटे को मुसलमान बना दिया गया है।
15: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मैं मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
13: कश्मीर में ये नाबालिग हेयर कटिंग सलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका दावा है कि धर्म बदलवा दिया गया।
16: देख एक बार देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है, इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया अभिषेक, देख एक बार इसके चेहरे को तो देख।
13: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उसके पास कॉल और वीडियो कॉल आया जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। क- कश्मीर से जिस शख्स ने कॉल किया उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस तरह उत्तर प्रदेश का विक्की हमजा बना दिया गया।
17: हमको 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
18: क्या पता चला?
17: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या करे ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
18: कहाँ है बेटा भी आपका?
17: अब जब बेटा मेरा कुपवाड़ा में है,
18: कुपवाड़ा
17: बिलाल के पास।
13: 17 साल के इस नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांधरबल जिले के मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखते हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रखते हैं।
14: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर कोई भी इबादत के लायक।
13: दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई देता है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आते हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और बीजेपी के विधायक से मदद की गुहार लगाई, एसपी से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की, पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
19: वो सब बहला पुरवा कर लेके गए हैं काजी वाले के लड़का।
20: क्या नाम है उसका?
19: वसीम।
20: 4
19: साल
20: कहाँ ले गए?
19: कश्मीर।
20: अच्छा फिर?
19: हाँ तो वो बोल रहा है कि हम मुस्लिम बना रहे हैं उसे, कि वो बोल रहा है कि मम्मी मुझे लेके जाओ यहाँ से।
13: 3 साल पहले धर्म परिवर्तन करने वाला नौजवान जम्मू कश्मीर में सैलून का काम करने गया जिसे बिजनौर के वसीम का भाई कश्मीर लेकर गया। कुछ वक्त तक सब ठीक रहा, वो परिवार को पैसे भेजता रहा, मैसेज करता रहा। दावा है कुछ महीनों से उसका व्यवहार बदला, अक्सर वो फोन पर घर वालों से झगड़ा करता, रुपए भेजने बंद कर दिए।
17: हाँ जी, जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, मेरा लड़का नाबालिग है, मेज को मेरा लड़का चाहिए।
18: क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसी हरकत?
17: उनके खिलाफ अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
13: यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है जहां अवैध धर्मांतरण करने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिजनौर के इस परिवार का आरोप है कि उनके बेटे पर दबाव बनाने के लिए वीडियो इंस्टाग्राम पर जानबूझकर अपलोड करवाया गया। अब सारी नजरें उत्तर प्रदेश पुलिस पर है जिस पर बिजनौर के इस माता पिता को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है।
0: आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और दूसरी बार ये इजाफा देखा गया है। दरअसल तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा है वो पिछली जो बढ़ोतरी हुई उससे पूरा नहीं पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी इजाफा होने की आशंका है। दरअसल प्रधानमंत्री ने इन्हीं चीजों को लेकर 10 मई को सावधान किया था, खबरदार किया था, उन्होंने खुद अपना काफिला घटाकर 2 गाड़ियों का कर लिया। उसके बाद हमने अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, सबको देखा कि किस तरीके से वो कोई मेट्रो में चल रहा है, कोई ट्रेन में चल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है। लेकिन क्या ये लंबे समय तक चलेगा या केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी होकर रह जाएगा? सवाल पूछने की वजह बिहार है जहां पर गाड़ियों का काफिला एक बार फिर नजर आने लगा है।
13: गिनते जाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हूटर की हूं और मंत्री जी का भौकाल। इसी हूटर की आवाज में प्रधानमंत्री की नसीहत कहीं दब गई है, किनारे हो गई प्रधानमंत्री की सलाह बचत वाली। करने वाले भी कौन जिनके जिम्मे बिहार में सरकार ने शिक्षा विभाग सौंपा? मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं। सहरसा के प्रभारी मंत्री भी सहयोग शिविर में पहुंचे लेकिन 10 गाड़ी का काफिला लेकर चलना नहीं भूले। ये बिहार के कैसे शिक्षा मंत्री है जनता भी देखी। ये तो होना ही था वाला डायलॉग याद आ जाएगा, काहे कि प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की अपील की तो मंत्री बिहार के वो भी शिक्षा वाले एकदम क्लास के गुड बॉय की तरह ई रिक्शा पर बैठकर पटना में चले थे। फोटो तो खिंच गई तो इनको भी लगा संदेश जनता तक पहुंच गया होगा,
1: लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह को दो तीन दिन मानकर मंत्री जी को लगा भक्त रोज रोज थोड़े ना वही करेंगे, जितना तेल बचाना था बचा लिया, लिहाजा छोड़ छाड़ के पीएम की नसीहत वाली गली मंत्री जी पतली गली से किनारे निकले और 10 गाड़ी लेकर सहरसा पहुंच गए। लगा कि अब तो गुरु फंस गए तो कहने लगे हम तो 2 गाड़ी लेकर ही आए थे, बाकी का हमें पता नहीं।
2: पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी पैदल गए सचिवालय और हम भी ई रिक्शा से दिन भर हमने अपना काम किया और साथ ही साथ अब हम मंत्री के रूप में पटना से आए हैं तो मात्र 2 गाड़ी लेके आए। तो हम सभी लोग अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और ईंधन बचाएंगे, डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेंगे तो वैश्विक संकट से बच पाएंगे।
1: बिहार में यही हाल समस्तीपुर में भी नजर आता है, ले काफिले पर काफिला, इतनी गाड़ियां की गिनना क्या, कैमरे पर सब कुछ कैद है, साफ साफ नजर आता है। नेताओं ने बाकी अब जनता के हवाले बचत साथियों वाला मोड ऑन कर लिया। ये काफिला वाला दौरा करने दामोदर रावत बिहार के परिवहन मंत्री पहुंचे, इनकी भी दलील गाड़ियों के लाव लश्कर पर सेम टू सेम शिक्षा मंत्री वाली निकली।
21: हम तो स्वयं अकेले आए हैं लेकिन अब माननीय विधायक हैं तो इनकी गाड़ी है, उनका भी गाड़ी है, हम तो स्वयं कटौती किए हैं और सब लोग कटौती कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उसको बिहार सरकार अक्षरशः पालन कर रही है, कोशिश कर की जा रही है कि कैसे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और इसके लिए हम लोगों ने अपने काफिले में भी भारी कमी की है। मैं तो स्वयं अकेले आया हूँ, सिर्फ एक हमारा एक गाड़ी था, एक पुलिस का था, तो वो तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया जाता है।
1: हाँ सब कटौती कर लिए लेकिन बाहर जो गाड़ियां है वो तो गरीब जनता की है जो मान ही नहीं रही। आज तक संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर में कहने को डीएमएसपी एक गाड़ी में आए थे, फिर भी एसपी की गाड़ी पीछे खाली चलती रही। वीडियो के साथ सीओ एक गाड़ी में थी लेकिन सीओ की गाड़ी खाली पीछे पीछे चलती रही। बस ऐसे ही गाड़ियां जुड़ती गईं और काफिला तेल फूंक कर बनता गया। यही हाल बेगूसराय में भी नजर आने लगा है जहां सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे। कितनी गाड़ी इनके काफिले में आप भी देखिएगा।
22: जो आपको नजारा दिखाएंगे, देखिए जो काफिला में गाड़ी है उसकी संख्या कितनी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, देखिए मंत्री की गाड़ी है, मंत्री जा रहे हैं और उसके पीछे जो गाड़ियों की कतार है वह कितनी लंबी है यह आप देख सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस काफिले में है, विधायक हैं, स्थानीय जो भाजपा की टीम है, एनडीए की टीम है वह है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो नारे प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया कि काफिला में कम गाड़ी हो लेकिन उसका कोई असर बिहार के मंत्रियों पर नहीं है।
1: लेकिन मंत्री जी भी दलील वही देते हैं, हमारी 2 गाड़ी है बाकी का बाकी जाने।
23: प्रधानमंत्री ने अपील किया कि काफिला कम हो, पेट्रोल बचाया जाए, आपके काफिले में 15-20 गाड़ियां देखी गई।
24: मेरे काफिले में मात्र 2 गाड़ी है,
25: सब लोग अलग अलग विधायक हैं।
24: यहाँ पर हमारे जिला के माननीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, अन्य दूसरे हैं, मैं 2 ही गाड़ी लेके चलता हूँ। अब मैं जब जाऊंगा तो आप उसको बारीकी से वॉच कर लीजिएगा, 2 गाड़ी है, मैं कहिएगा मैं दिखा देता हूँ। दूसरा से तीसरा गाड़ी होगा तो जो आप सजा दीजिएगा मैं मान लूंगा। जो मैं कहता हूँ हमारी जो सरकार कहती है उसको करती है। तेल बचाना है देश के लिए, हम लोग सब लोग तेल बचा रहे हैं।
1: सवाल है कि ऐसे कार्यक्रम में क्यों नहीं एक साथ मंत्री अफसर विधायक साथ पहुंचते हैं, सब अलग अलग गाड़ी लेकर ही जाएंगे तो काहे की किफायत, काहे की बचत। मुजफ्फरपुर में यही हाल दिखता है जहां दिलीप जायसवाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री 8 गाड़ी लेकर दावा है कि पहुंचे,

0: मंत्री मुजफ्फरपुर आए हुए और इनके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं वो आपको हम दिखाएंगे कि पहली गाड़ी है जो सबसे आगे लगी हुई है, दूसरी गाड़ी है ठीक इसके पीछे, तीसरी गाड़ी है, अब चौथी गाड़ी जिस तरह मंत्री हैं वो गाड़ी है उसके पीछे दो गाड़ियां और है, तो कुल मिला करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 गाड़ियों का कार्केट है।
1: इन 8 गाड़ी को लेकर जब सवाल हुआ तो मंत्री जी कन्नी काट कर चल दिए।
0: नमस्ते जी, एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है लोगों से।
2: खबरदार में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: कूल फैंस से घर को सजाएं।
2: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
1: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट
6: बड़े आराम से।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
7: हमारे सीमेंट में नहीं है?
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
13: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
14: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
13: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
16: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
17: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
16: आप कैसे कर लेते हो?
17: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
18: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
19: नहीं,
18: और म्यूचुअल फंड्स है
19: सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
21: Character, the taste of success.
22: Like I said before, we better hold this in.
23: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
24: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
25: और वही कहां गए थे घूमने?
26: JK मैक्स।
27: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
26: JK मैक्स बेस्ट पुट्टी,
27: JK वॉल मैक्स
26: बेस्ट पेंट,
25: JK मैक्स।
26: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK मैक्स पेंट्स। JK मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
28: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
29: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
28: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
29: Acoj, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है,
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
8: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
9: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
8: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
10: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
12: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
16: क्या बंगाल में अभूतपूर्व विजय ने BJP को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि सार्वजनिक नमाज पर चेतावनी देते देते CM योगी संख्या नियंत्रित करने की सलाह देने और सामर्थ्य बताने तक आ गए। पहले योगी ने क्या कहा ये जानिए। सड़क चलने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में की जाए। संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो। प्यार से मानोगे बात तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
17: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
16: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है, और दूसरी बड़ी वजह 2027 का चुनाव है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बकरीद इसलिए क्योंकि ईद और बकरीद में ही मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज की इजाजत मांगता रहा है। लेकिन बात सिर्फ बकरीद की नहीं है, बात 2027 की ज्यादा है, क्योंकि BJP जानती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जीत का सबसे आसान फॉर्मूला है, और बंगाल में BJP की आसमानी जीत की मिसाल उसके सामने है। याद करिए, बंगाल चुनाव में BJP ने खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम कहा मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं। तो UP में CM योगी भी बंगाल में जीत के सुपरहिट फॉर्मूले के आसरे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजनाम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल की नियत पर उठ रहे गंभीर सवालों के बारे में बताएंगे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक विदेशी महिला पत्रकार ने सवाल न लेने पर हंगामा किया। देखते ही देखते भारत में तमाम नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया पर हीरो बना दिया और उनके फॉलोअर्स रातों रात 800 फॉलोअर थे उनके इस पोस्ट के पहले, और 800 से वो अभी जो हमने लास्ट बार चेक किया तो 32,000 हो गए। लेकिन जब हमने इस पत्रकार की क्रोनोलॉजी समझी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आज आपको बताएंगे कि ये महज इत्तेफाक था या कोई योजना थी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कोई राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने वाले सकरे रास्ते यानी चिकन नेक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम ने इसी इलाके को ब्लॉक करके भारत के टुकड़े करने की धमकी दी थी। खतरा इतना बड़ा था कि केंद्र सरकार इस जमीन को सुरक्षा एजेंसियों को सौंपना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इसमें रोड़ा बनी रही। लेकिन अब बंगाल में सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 120 एकड़ जमीन सीधा केंद्र को सौंप दी है ताकि वहां घुसपैठ रुक सके, रास्ते सुरक्षा के लिहाज से अच्छे हो सके और सीमा पर फेंसिंग हो सके। सवाल यह है कि क्या ममता सरकार में बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा से भी एक वक्त पर बड़ी हो गई थी। और इसके बाद आपको बताएंगे कि बंगाल में कल तक ममता बनर्जी की पार्टी के जहांगीर खान खुद को पुष्पा बता रहे थे, कहते थे वो झुकेगा नहीं। आज उसी पुष्पा की सारी अकड़ हवा हो गई। फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मैदान छोड़कर भाग निकले। सवाल यह है कि सत्ता में रहकर पुष्पा बनने वाला ये उम्मीदवार सत्ता जाते ही फायर से कायर कैसे बन गया। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 20% तक कम हो सकती हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है और कैसे पूरे देश में आज ये बात उठनी चाहिए कि हमें पेट्रोल और डीजल को जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन आज सबसे पहले हम उस इंपोर्टेड चश्मे की बात करेंगे जो भारत को भारत की नजर से देखना ही नहीं चाहता। हम आपसे पूछते हैं कि आप भारत को किस नजर से देखते हैं? आप भारत को अपने देश की नजर से देखते हैं या आप भारत को इस निगाह से देखते हैं कि यहां सरकार किसकी है? फिर तय करेंगे कि भारत पर क्या राय बनानी है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की समीक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए देश को भूल जाना सही हो सकता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग थी तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। वो भी मोबाइल उनके पास था, शायद वहीं से वो सवाल पूछती हैं। ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि वो मोबाइल या वो माइक उनके मुंह पे, उस महिला पत्रकार के मुंह के तो करीब था, वो आवाज उनके मोबाइल में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन वहां तक गई या नहीं। अब उन्होंने क्या कहा? इस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं दे रहे। यह बात भी तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से जा रहे थे और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह सब हुआ है। इस मीडिया ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री अपनी बातचीत का सिर्फ ब्यौरा देने आए थे और यह तय किया गया था कि दोनों प्रधानमंत्री अपनी तरफ से आपसी सहयोग पर जो फैसले लिए गए हैं उस पर जानकारी देंगे। लेकिन फिर ये घटना हुई जब अंत हो चुका था, प्रधानमंत्री निकल रहे थे और तब हुई जब वहां ब्रीफिंग रूम में कई पत्रकार बैठे थे लेकिन उनमें से सिर्फ एक महिला पत्रकार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं ले रहे और उन्होंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी बात यह है कि इस घटना का पूरा वीडियो इस महिला पत्रकार ने उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। इस घटना से पहले हम आपको बता दें इस महिला पत्रकार के थे 840 फॉलोअर टोटल, लेकिन आज शाम तक इनकी संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है। हजारों फॉलोअर्स जानते हैं कैसे बढ़े इस पूरे मामले में, तो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने नॉर्वे की इस महिला को एक्स पर फॉलो करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जो भदोही शहर है वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस महिला पत्रकार को फॉलो किया और अच्छा ही किया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप जिसे चाहे उसे फॉलो कीजिए,
लेकिन यहाँ इस महिला पत्रकार को कांग्रेस सिर्फ इसलिए हीरो बना रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो संदेह पैदा करती है। इस महिला पत्रकार का नाम है हेलेलिंग, जिन्होंने भारतीय समय अनुसार 5:32 पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहला एक्स पोस्ट किया था। शुरुआत में इस पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला। 17 मिनट बीत गए और सिर्फ 800

सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत उनके सवाल पर विश्वास क्यों करे। अब ये बात इसलिए अहम थी क्योंकि इस पत्रकार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो लोगों के मन में शक पैदा करती हैं। जैसे इस पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से पहले अपना आखिरी एक्स पोस्ट जानते हैं कब डाला था, 10 अप्रैल 2024 को लिखा था। सवाल ये उठ रहा है कि जिस अकाउंट पर पिछले 2 सालों से एक पोस्ट नहीं लिखा गया उस पर आज अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का निशाना बनाने के लिए ये पोस्ट आखिर कैसे आया। दूसरा सवाल उस अखबार को लेकर है जिसमें ये पत्रकार काम करती हैं। इस अखबार का नाम है डैग सेविसन और पहले ये नॉर्वे की नॉर्वेजियन लेबर पार्टी का मुखपत्र यानी माउथपीस हुआ करता था। अब नॉर्वेजियन लेबर पार्टी नॉर्वे की वही राजनीतिक पार्टी है जो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के साथ एक प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। इस प्रोग्रेसिव अलायंस में हमारे देश की कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि जो अखबार नॉर्वे में लेबर पार्टी का माउथपीस रहा और जिसका संबंध कांग्रेस से है उसी से जुड़ी हुई पत्रकार 2 साल बाद अपने एक्स अकाउंट से अचानक प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला करती है और जिसके सांसद स्वेर मिरली से साल 2013 में राहुल गांधी भी मिल चुके हैं, उसी की पत्रकार ने उसी मैगजीन जिसका माउथपीस जो इस पार्टी के माउथपीस है उस मैगजीन से जुड़ी हुई ये पत्रकार अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया ब्रीफिंग में ये सवाल उठाती हैं, उसको रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसको पोस्ट करती हैं। उसके बाद भी उनकी आक्रामकता घटती नहीं, जब उनको बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बुलाया जाता है तो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आक्रामक अंदाज में सवाल पूछती हैं और डिमांड करती हैं कि उनको तुरंत जवाब दे, फिर वो बाहर भी चली जाती हैं, फिर आती हैं और पोजीशन ऑफ पावर और एंटाइटलमेंट से पूछती हैं कि हम आप पर क्यों विश्वास करें, व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्रेसिव अलायंस में जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं, जिसके संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को हमारी भारत सरकार ने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है और जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया, लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। हमने इस पत्रकार द्वारा लिखे गए कुछ लेखों को भी पढ़ा जिनसे ये पता चलता है कि इस पत्रकार ने इससे पहले कई मामलों में शी जिनपिंग की खूब तारीफ की है और चाइना को सुपर पावर बताया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की खूब आलोचना की, लेकिन हमारे देश में इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इस पत्रकार को असली हीरो अब बताया है जब उन्होंने ये पोस्ट वीडियो बनाकर डाला। आज ये पत्रकार अपने एक पोस्ट में लिख रही है कि वो राहुल गांधी का इंटरव्यू करना चाहती है और इसने इंस्टाग्राम पर कांग्रेस को फॉलो भी कर लिया जो इकलौती राजनीतिक पार्टी है और आप इस लिस्ट को देखिए कि कैसे कांग्रेस के जिला स्तर से लेकर बड़े नेता इस महिला को एक्स पर फॉलो कर रहे हैं और इसकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी क्या वो सवाल जायज है। इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी उन्होंने एक्स में, वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है। और नॉर्वे की पत्रकार कौन होती है ये पूछने वाली कि हम भारत पर क्यों विश्वास करें। यहां भी ये सोचने की बात है कि मतलब हर तरीके से आप देखिए तो इस पत्रकार ने हर बार अपने देश को तो भारत से ऊपर रखा, ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे, जबकि भारत को इसने ऐसे पेश किया जैसे हमारे यहां कोई नैतिकता, कोई विश्वास, कोई मानवाधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने फिर भी इनको सबसे बड़ा हीरो बनाया और सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी हार है। जो पत्रकार अपने देश को ऊपर रखती है, भारत को कुछ नहीं समझती, वो भारत में आदर्श बन जाती है और इस देश के कई लोग, नेता,
एक बार नहीं कहते कि जिस पत्रकार ने भारत की

0: रिमा को कम समझा, वो उसे कैसे महान मान ले? सुनिए.
1: Miss Hella, I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away.
2: Okay.
1: Right now. Like now.
2: Please. We have a question there.
1: But I might also have follow-up questions, so it would be better if you answer right away and then I can follow up.
2: I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us?
3: India had epics and books. Let me answer the question.
1: You don't answer the question.
3: Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question. Please. When to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives.
1: Yes,
3: you ask the question, don't ask me to answer in a particular way. Let me answer.
1: Okay.
3: I will answer. Your first question was on trust on India.
0: आज इस बात पर भी पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर इनका व्यवहार कैसा था. कई सारे ऐसे लोग जो इस सरकार की आलोचना भी करते हैं, वो आज इस महिला पत्रकार की आलोचना इस बात पर कर रहे हैं कि सवाल तो आप पूछ सकते हैं लेकिन आपको जवाब कैसे मिले और जवाब क्या मिले ये आप तय नहीं कर सकते हैं. और जिस तरह से उन्होंने बार बार एमईए की इस प्रेस ब्रीफिंग को इंटरप्ट करने की कोशिश की, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मैल इंटेंशन के साथ वहां पर बैठी हुई थी और इसी वजह से वो बार बार उनके हर लाइन पर टोक रही थी और एक आक्रामकता दिखाने की कोशिश थी. और एमईए की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा था उसको सुनने में उनकी रुचि कम और अपनी बात कहने में उनका जोर ज्यादा था. खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर अभी ऊर्जा संकट का हल नहीं निकला तो बीते कई दशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात नीदरलैंड्स के एक कार्यक्रम में कही और ऐसे वक्त में कही जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में मंदी की आशंका जताई जा रही है. सुनिए.
4: भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं. आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है. हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा. दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी.
0: नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने. पिछले 12 सालों में इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया था. साल 2020 में जब कोविड आया, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तब भी पीएम ने ऐसी बात नहीं की थी. कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा उन्होंने पहली बार कहा है. आज वो ऐसा कह रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़े संकट की आहट मानी जा रही है. क्यों, अब उसे कुछ आंकड़ों से समझिए. युद्ध शुरू होने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी. हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे. 4.18 trillion dollars की हो गई थी. इस मामले में जापान भी हमसे पीछे चला गया था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना और रुपया कमजोर हुआ, उससे भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान से सीधे छठे स्थान पर खिसक गया। ये वही स्थान है जिस पर भारत साल 2018 में था, यानी मौजूदा ऊर्जा संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था को 8 साल पीछे धकेल दिया और ब्रिटेन और जापान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से हमसे आगे निकल गई। इन आंकड़ों से आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि इस ऊर्जा संकट के कारण बीते दशकों की मेहनत बेकार हो जाएगी। असल में सारी कहानी करेंसी की होती है। करेंसी वो स्तंभ है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था का भार होता है। अगर किसी देश की करेंसी मजबूत हो तो उसके लिए विदेशी मुद्रा में आयात यानी दूसरे देशों से अपनी जरूरत का सामान खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसके पैसे में दम होता है। ऐसी स्थिति में करेंसी की वैल्यू ज्यादा होने से आयात बिल स्थिर रहता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव नहीं बढ़ता। लेकिन इसी जगह जब करेंसी कमजोर हो जाए तो एक चक्र की तरह अर्थव्यवस्था को लेकर आम आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ने लगता है। जैसे इस ग्राफिक से समझिए कि रुपया कमजोर होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, डॉलर महंगा होता है तो आयात यानी इंपोर्ट महंगा हो जाता है। एक एक करके मेरे सामने से देखिए जो लिखा हुआ है। इंपोर्ट महंगा होता है तो तेल महंगा हो जाता है, तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जो माल ढुलाई हम कहते हैं ट्रक से जो भी आवाजाही होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, इससे महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, इसी के साथ महंगाई का बड़ा असर आपकी नौकरी सैलरी सब पर पड़ता है। जो लोग गरीबी रेखा के पास हैं उनके फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने लगती है ना, और अब अर्थव्यवस्था की गति धीमी होती है तो निवेशक डरकर भारत जो बाजार है हमारा भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालने लगते हैं, और जब यह होता है तो रुपया और कमजोर होता है, यह चक्र बन जाता है और अभी यही हो रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि कैसे भारतीय रुपया इस वक्त बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है और कैसा ये जो रुपया का डिवैल्यूएशन है वो लगातार दिख रहा है और एक बड़े संकट के तौर पर अब पूरे देश के सामने आ गया है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप 27 फरवरी 2026 को देखेंगे तो ये है मामला जिसमें ये 90.95, मतलब ये अभी फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तब 27 फरवरी का आप वैल्यू देखिए क्या है। कलर्स इसमें लाइट हो गया, ठीक है। और जब आप यहां पे देखेंगे तो ये 96 रुपया हो गया, तो 96 रुपये इसकी स्थिति हो गई, 96.34। और ये साफ साफ बता रहा है कि जो पैसा टूटा है, आप लोग सोचिए 5.39 यानी मतलब 5.39 रुपये, मतलब लगभग 5.92%। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। रुपया का कमजोर होना किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब संकेत लाता है। और खराब संकेत क्यों लाता है, क्योंकि आप जितना भी बाहर से सामान खरीदते हैं उसके लिए आपका ज्यादा रुपया खर्च होता है, क्योंकि उसका वैल्यू घट चुका है। अब देखिए, जब आप अगला नंबर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये वाला, ये करते हैं, अब आप देखिए 27 फरवरी को जो भारत यूरो सबका हम आपको वैल्यू बता रहे हैं, फिर 18 मई का देखिए और अंतर देखिए, तो सिर्फ 2 किस किस को फायदा हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको, ये समझ गए कौन, चीनी युआन, क्योंकि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने अपने तेल, रशिया की तो जबरदस्त फायदे में रहा है, रशिया सबसे ज्यादा। और अगर कोई इस पूरी वैश्विक परिस्थिति में सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले करता हुआ दिख रहा है तो वो व्लादिमीर पुतिन और रूस है, क्योंकि जैसे ही हॉर्मुज से पूरा तेल बाधित हुआ, सबसे ज्यादा रशिया ने कच्चा तेल पूरे विश्व में बेचा, भारत ने भी अपनी जो खरीद है वहां से बढ़ा दी है, और इसी वजह से डॉलर के मुकाबले अगर कोई एक करेंसी है जो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है तो वो रूसी रूबल है। और देखिए लगभग 4.201 का फायदा, बाकी सारे लॉस में चल रहे हैं सबसे ज्यादा। लेकिन इस लिस्ट में अगर आप देखिए तो पहले नंबर पर -5.34 यानी 5.87 की जो गिरावट है वो भारत के रुपए में दिख रही है, उसके बाद से जापानी येन है जो आप देख रहे हैं लगभग 2.5% के आसपास गिरी है और ऐसे ही उसके बाद से यूरो भी गिरा है डॉलर के मुकाबले लेकिन कम है, ब्रिटिश पाउंड भी गिरा है डॉलर के मुकाबले लेकिन ये उससे भी कम है और इधर आप देखिए तो बांग्लादेशी टका भी गिरा है जो उससे कम ही दिखेगा, सबसे कम दिख रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि क्या हालत है इस वक्त और रुपया का ये गिरना क्यों भारत के लिए एक बहुत जबरदस्त खतरनाक संकेत लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जब आप देख रहे हैं तो कैसे ये 26 मई और 18 मई के बीच का जो ये डिफरेंस दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि किस तरह की परेशानी रुपये के सामने आ गई है। और अब तो सबसे बड़ी आशंका ये जाहिर की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेंचुरी तक पहुंच जाए क्योंकि तब और भी परेशानियां बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर जब आप देख रहे हैं तो रुपए का कमजोर होना सबसे बड़ी चिंता का सबब है और रुपए का कमजोर होना इस बात का साफ साफ संकेत है कि हम जो भी सामान अब विदेश से खरीदेंगे, जो हमको खरीदना ही है मजबूरन, तेल लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, दवाई लेनी है, उन सब में हमारा ज्यादा रुपया खर्च होगा क्योंकि डॉलर के मुकाबले वो रुपया कमजोर हुआ है। अब ये समझिए कि रुपया कमजोर क्यों हो रहा है और इसका आपके बजट पर क्या असर होगा। पहला कारण यह है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो भारत को ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है जिससे वो तेल और दूसरा सामान बाहर से खरीद सके। डॉलर की मांग बढ़ने और देश में डॉलर कम आने से रुपया कमजोर हो रहा है, अभी ज्यादा रुपये देकर डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं और अभी की स्थिति खराब हो रही है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, यानी जो विदेशी निवेशक है वो भारत के बाजार में कम पैसा निवेश कर रहे हैं और जो पैसा उन्होंने निवेश किया भी है उसे वो निकाल कर दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। तो डॉलर की कमी, आप इन आंकड़ों को देखिए, 2001 से 2005 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 तक थी और यूपीए की एक साल की सरकार में जितना विदेशी निवेश भारत में आया वो हमारी जीडीपी के 2.7% के बराबर था। 2006 से 2010 के बीच यूपीए सरकार में जितना आया वो जीडीपी के 4.5% के बराबर था। 2011 से 2015 के बीच लगभग 3.9% के बराबर विदेशी निवेश आया, लेकिन अब के दौरान में 2016 और उसके बाद से आप देखिए तो ये विदेशी निवेश 2.4 और 1.9 पर पहुंच गया है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि डॉलर का भारत में नहीं आना, विदेशी निवेश नहीं आना, या जो विदेशी निवेश है उसको जो फॉरेन बायर्स हैं वो अपना पैसा ले जाए यहां से देश से, ये सब रुपया को कमजोर करता है। अब बड़ी बात यह है कि अगर रुपया कमजोर हुआ तो इससे ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि सरकार को अपनी कई योजनाओं के खर्च में भी कटौती करनी ही पड़ेगी। सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर जो पैसा खर्च करती है, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन देती है, योजनाओं पर इस संकट का असर पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे लोगों पर आर्थिक दबाव आएगा, रुपया कमजोर होगा तो भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनने में जो तय साल था, जिस तेजी से हम बढ़ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा। पहले अनुमान था कि भारत 2028 तक इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है लेकिन अब SBI की रिपोर्ट कहती है कि गिरता रुपया 2030 तक भी भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था शायद ना बनने दे। अब सवाल यही है कि हॉर्मूज की लड़ाई है, ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध है, लेकिन हॉर्मूज और उसकी जंग हमारी प्लेट, हमारी कार, हमारे जीवन तक अब भारी भरकम रूप में पहुंच रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स में कहा कि ये ऊर्जा संकट कई देश दशकों की मेहनत को बेकार कर रहा है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि इस संकट की घड़ी में समझदारी से खर्च कीजिए, ये ध्यान रखिए कि आप बचत ही जो करेंगे वही आपको इस संकट से आने वाले वक्त में बाहर निकालेगा। यहां हम इस दावे का भी एक फैक्ट चेक करना चाहते हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। ये जानकारी बिल्कुल गलत है। दुनिया के 5 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में आज भी भारत का नंबर 5वें स्थान पर है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया के बाद $697 billion का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास ही है। 5वें नंबर पर हम हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भारत में संकट की स्थिति नहीं है, ये तय है। हमने आपको एक एक नंबर के साथ बताया कि कैसे हमें तैयारी रखनी चाहिए और कैसे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये संकट की स्थिति है, लेकिन अगर समझ बूझ के साथ हम चले तो इससे उबर पाएंगे। भारत में आज भी दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 87 पैसे, कोलकाता में 96 पैसे, मुंबई में 91 पैसे, चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 82 पैसे महंगा हुआ। इसी तरह 1 लीटर डीजल में 90 पैसे महंगा हुआ और पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ गई हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल आने वाले दिनों में प्रति लीटर 10 रुपए तक महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। पिछले हफ्ते तक तेल कंपनियों को हर दिन कुल 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन जब प्रति लीटर 3 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ये घाटा 250 करोड़ रुपए कम हो गया। अब अगर इस घाटे को पूरी तरह शून्य करना है तो सरकार को प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 रुपए बढ़ानी होंगी और इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 77 पैसे हो जाएगा, सेंचुरी पार। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका कोई समाधान है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहें या मौजूदा कीमतों से कम हो जाए। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो कीमतें कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है जैसे पेट्रोल डीजल जीएसटी के 5% के स्लैब में आता है तो इसकी कीमतें 81 रुपए हो जाएंगी, 12% स्लैब में आता है तो 87 रुपए हो जाएंगी, 18% में आता है तो 91 रुपए हो जाएंगी, 28% के स्लैब में भी आता है तब भी 100 से कम 99 रुपए का होगा, और अगर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई तो ये 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए का भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है तो फिर ऐसा किया क्यों नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे हमारी सरकारें हैं और इन्हें तेल पर मिलने वाला भारी भरकम टैक्स है। असम में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी से नहीं लिया जा सकता। तो असल में अगर आप देखिए तो सिंपल मेजोरिटी से इसको नहीं लाया जा सकता जीएसटी के दायरे में। जीएसटी का काउंसिल होता है जिसमें केंद्र भी है, जिसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी आते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में फैसले वेटेड वोटिंग सिस्टम से होते हैं, जिसमें वोट करने वाले सदस्यों के कुल वेटेड वोट का 75% समर्थन जरूरी होता है। अभी केंद्र सरकार के वोट का वेटेज 1/3 है, 33.33%, जबकि सभी राज्यों के वोट मिलाकर 2/3 यानी 66.67% वेटेज रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो केंद्र सरकार अकेले कोई फैसला ले सकती है और ना ही राज्य सरकारें अकेले कोई निर्णय पास करा सकती है। 75% समर्थन की शर्त का मतलब है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र और बड़ी संख्या में राज्य दोनों की सहमति जरूरी है और यही कारण है कि सालों से इस पर चर्चा होने के बावजूद अब तक सहमति नहीं बनी। अगर पेट्रोल जीएसटी के तहत आता है तो कई आर्थिक गणनाओं के मुताबिक इसकी कीमतों में लगभग 20% तक कमी आ सकती है और इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आने वाले वक्त में महंगाई को भी हम नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि माल ढुलाई से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ही सब पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। और अगर साथ ही पूरे देश में ईंधन की कीमतें लगभग एक जैसी होंगी, है ना, ये जो अभी हम आपको बताते हैं दिल्ली में कुछ कीमत, मुंबई में कुछ कीमत, दूसरे राज्य में कुछ और कीमत, चेन्नई में अलग कीमत, कोलकाता में अलग, वो खत्म हो जाए, एक दाम पूरे देश में चलेगा। अलग अलग राज्यों के वैट अलग अलग है, सेस की वजह से हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग होती है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा विवाद राज्यों की कमाई का है। जैसे पूरे देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 31% वैट आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार वसूलती है, 31%। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार प्रति लीटर 4 रुपए वैट, 1 रुपए रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूलती है। इसके बाद है तेलंगाना, जहां पर सबसे ज्यादा वैट रेवंत रेड्डी की सरकार वसूलती है, कांग्रेस की सरकार है जो इन कीमतों को सबसे ज्यादा मुद्दा बना रही है। तेलंगाना की सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 35.2% वैट वसूलती है और 1 लीटर डीजल पर 27% वैट वसूल लेती है। तीसरे स्थान पर है केरल, जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता है, इससे पहले एलडीएफ की सरकार थी, तब से 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 30% सेल्स टैक्स, 1 रुपए अतिरिक्त सेल्स टैक्स, 2 रुपए सोशल सिक्योरिटी सेस, 1% अलग से सेस लिया जाता है। और केरल में डीजल पर भी राज्य सरकार के टैक्स की यही कहानी है। इसके बाद चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश, बीजेपी की सरकार है। 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र, यहां भी बीजेपी की सरकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही पार्टियां अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलती हैं, क्योंकि आपको इतनी अंदर की बात पता नहीं होती, इसलिए आप सोच लेते हैं कि ये सारा टैक्स अकेले केंद्र सरकार को जा रहा है, जबकि ये बात सच नहीं है। राज्यों को जो वैट मिलता है वो उसमें भी सोचती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक है उनसे नोच लिया जाए। यहां आपको ये भी देखना चाहिए कि जब तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन जब इन्हीं तेल कंपनियों को फायदा हो रहा था तब इनके द्वारा ये कीमतें कम नहीं की गई। तो जो प्रॉफिट इन्होंने उस वक्त कमाया है वो कहां गया? जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2022 से 2025 के बीच 97,625 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इन्हीं चार सालों में 65,122 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 48,114 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ओएनजीसी ने भी इन चार सालों में पेट्रोल डीजल की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और सोचिए, इतना मुनाफा जब इन तेल कंपनियों ने कमाया तो उस वक्त तो तेल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन आज जब कच्चा तेल महंगा होने से इन्हें घाटा हो रहा है तो इन तेल कंपनीज ने प्रति लीटर 4 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया और यही है तेल की पूरी कहानी। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको अब जो राजनीतिक खबरें हैं देश के अंदर की उनमें बताएंगे पश्चिम बंगाल की हालत। टीएमसी की सरकार थी अब तक, तब चिकन नेक कॉरिडोर का इलाका केंद्रीय एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपा गया, ये सवाल आज जरूरी क्यों है, इसे आप अगले 5 मिनट में अच्छी तरह समझ पाएंगे। और उसके बाद आपको हमारे देश की मुस्लिम वोट बैंक वाली जो राजनीति है ना उस पर बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि सोचिए देश से भी बड़ा कुछ हो जाए वोट। साल 2020 में जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तब इन दंगों के मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम ने कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी इकट्ठा हो जाएं तो चिकन नेक को बंद करके भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से पूरी तरह काट दिया जाएगा। ये चिकन नेक आप देख रहे हैं, ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो भारत का ये हिस्सा बिल्कुल कट जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। शर्जिल इमाम ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि चिकन नेक के इलाके को मुस्लिम अक्सरियत माना जाता है। मुस्लिम अक्सरियत का मतलब यह है कि यहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अब यह बात इतनी खतरनाक थी कि इसके कारण शर्जिल इमाम को आज तक अदालत से जमानत नहीं मिली। ये भारत के खिलाफ था कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को काट दो बाकी भारत से, जबकि केंद्र सरकार ने भी ऐसी कई कोशिशें की जिससे चिकन नेक का इलाका उसकी एजेंसियों को बीएसएफ को मिल जाए ताकि पूरी तरह हम इसे सुरक्षित कर सकें। ये भारत के नजरिए से स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो अगर कट गया तो हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्य हमसे कट जाएंगे। ये कोशिश इसलिए हुई क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों का नहीं था, खतरा यह था कि हमारे यहां जो मुसलमान इस इलाके में रहते हैं उनसे चिकन नेक कॉरिडोर का गला घोटने के लिए कहा जा रहा था और यह कोई मामूली बात नहीं थी। तभी कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया। आप सोचकर देखिए कि जो इलाका पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है उस इलाके पर सिर्फ इसलिए संकट खड़ा होने लगा क्योंकि यहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये कोई दिल्ली में किसी एक जगह पर शाहीन बाग पर रोड जाम करके ट्रैफिक जाम करने की बात नहीं थी, ये पूरे देश के दो हिस्से करने की बात थी, उसके लिए लोगों को उकसाने की बात थी। और हमें ये सोचना पड़ा कि अगर वाकई में इन मुसलमानों ने किसी के बहकावे में आकर चिकन नेक को बंद कर दिया तो आगे क्या होगा। इसी डर और चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिकन नेक के इलाके को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग की। ममता बनर्जी को इसके लिए कई प्रस्ताव भेजे लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस महीने सरकार बदली। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन सीधा केंद्र सरकार को सौंप दी। अब यह जमीन बॉर्डर फेंसिंग, नेशनल हाईवे, सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए इस्तेमाल होगी। और भी सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ सीमा पर एक बाड़ लगाएगी। चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अब यहां मुद्दा यह नहीं है कि टीएमसी ने यह जमीन केंद्र को क्यों नहीं दी और बीजेपी ने क्यों दे दी, असली मुद्दा तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में टीएमसी और बीजेपी की बात कहां से आ गई। क्या जो कॉरिडोर भारत के लिए इतना संवेदनशील है उसे सुरक्षित करने के लिए कोई भी पार्टी टीएमसी को यह जमीन केंद्रीय एजेंसियों को नहीं सौंप देनी चाहिए थी? कल्पना कीजिए अगर बीजेपी इस बार भी चुनाव में नहीं जीतती तो ऐसे ही चलता और अगर केंद्र को ये जमीन नहीं मिलती तो ये चिकन नेक कॉरिडोर हमेशा के लिए भारत की एक सेंसिटिव पॉइंट बनकर रहता। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसा मुस्लिम वोट बैंक के कारण हुआ, और आखिर चिकन नेक के आसपास इतनी मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाती हूँ जिसकी वजह से ये पूरी बात सामने आती है कि क्या यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर दरअसल इन्फिल्ट्रेशन के साथ अवैध घुसपैठिए आ गए हैं और इसी वजह से उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं जो मैं आपको इसके जरिए दिखाना चाहती हूं। अब ये देखिए, ये जिस चिकन नेक कॉरिडोर की बात हो रही है, ये देखिए ये वाला हिस्सा है। अब ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ये राउंड आप देख रहे हैं, इतनी सी जगह है ये। अब यहां से आप इसको लेकर आइए, चौड़ाई कितनी है 22 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 60 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि यही बस इसका पूरा रेंज है। अब अगला दिखा दीजिए। अब यहीं पर अगर कटता तो हमारे पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो हमसे अलग हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी संवेदनशील ये जगह है। अब जब आप देखेंगे जिस मुस्लिम पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये यहां पर फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि असल पॉइंट क्या है। ये देखिए, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो डार्क ग्रीन आप एरिया देख रहे हैं, चिकन नेक कॉरिडोर यहां पर है। उत्तर दिनाजपुर, ये वो तमाम जगह है जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। यहां पर आबादी कितनी है उत्तर दिनाजपुर में 50%। दक्षिण दिनाजपुर जो नीचे का हिस्सा है, पतले वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, नीचे में 25% है। फिर आइए मालदा, ये जो पूरा इलाका है यहां से होते हुए आ रहे हैं, ये 51% है। और मुर्शिदाबाद में देखिए जो बांग्लादेश से लगी हुई जगह है, 66% मुस्लिम आबादी है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये पूरा इलाका जहां पर भारी मुस्लिम आबादी है, ये बड़ी वजह, क्योंकि बाकी इलाकों में ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए माना जा रहा है कि क्या यहां पर जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके आने की वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, वो ज्यादा हो गए। यही नहीं, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की क्यों बात करते हैं, आप ये चिकन कॉरिडोर से सटा हुआ ये तमाम इलाका देखिए। किशनगंज बिहार का 68% मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया देखिए 38% मुस्लिम आबादी है, जो राज्य का एवरेज मुस्लिम आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहां पर आबादी है। और इसीलिए इस पर आज सवाल पूछे जा रहे हैं। कटिहार में देखिए 44% है, ये भी सरहद के इलाके। तो ऐसा क्या है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए जो सरहदी इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों चाहे वो बिहार के हों, वहां पर जो एवरेज है स्टेट का उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि क्या वहां पर अवैध घुसपैठिए हैं, और अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो कैसे ये बड़े संकट का सबब बन सकते हैं, और कैसे ये हमेशा एक गले की फांस बना रहेगा कि कहीं यहां पर कोई बड़ा खतरा ना पैदा हो जाए। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अब भारत सरकार इस इलाके में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बना रही है ताकि भविष्य में अगर ये रास्ता बंद भी हो तो आवाजाही जारी रहे। अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत का संपर्क कभी नहीं टूटेगा। अब गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बंगाल में सरकार बनने से पहले कहा था कि चिकन नेक कॉरिडोर को भारत से कोई नहीं छीन सकता।
5: ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या?
0: और गृह मंत्री अमित शाह की ये ललकार आज सच में तब्दील होती हुई दिख रही है, जब ये भारत का अति संवेदनशील इलाका अब केंद्र के हाथों में आ गया है और अब इसकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की एक और खबर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ घट रहा है जब से बीजेपी की सरकार वहां बनी है। आज से सबसे बड़ी खबर फलता विधानसभा क्षेत्र से आई है। जी हां, वही सीट जहां 21 मई को दोबारा मतदान होना है, इस सीट से टीएमसी ने जहांगीर खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। वही जहांगीर खान जो अपनी रैलियों में खुद को पुष्पा बताते थे, ये कहते थे कि वो फ्लावर नहीं फायर है, वो पुष्पा की तरह झुकते नहीं है, लेकिन आज जहांगीर खान की कहानी में नया ट्विस्ट आया, फायर नहीं कायर निकले, क्योंकि उन्होंने फलता के विधानसभा चुनाव से अपना नाम ही वापस ले लिया है। ये कहा कि जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है, तब वो इस क्षेत्र की शांति और विकास के लिए अपना नाम वापस ले रहे हैं। वैसे ये सोचने वाली बात है कि केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की सप्लाई बाधित होने पर कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। इस रेट पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ही नहीं, कई देशों को बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। एक सच तो ये भी है कि इस वक्त अधिक कीमत देने के बावजूद तेल की सप्लाई टाइम पर नहीं मिल रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी ने पूरा जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, जहां से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आता था, वहां पर व्यापार को लगभग ठप कर दिया है पूरी तरह। गनीमत यह है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई रशिया से भी मिल रही है। सोचिए, अगर रशिया यूक्रेन युद्ध और भड़क जाए और रशिया कच्चे तेल की सप्लाई करने की असमर्थता दिखाने लगे, तब क्या होगा? तैयारी सारी रखनी है। आज हम इस डरावनी परिस्थिति के बारे में आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है और अब वो मॉस्को पर भी बड़ी संख्या में ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे रशिया यूक्रेन युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होने लगा है। और ऐसा अगर होता है, जिसका पूरा अंदेशा है, देखिए, रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने एक दिन में रशिया पर करीब 1000 आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें से 150 से ज्यादा ड्रोन्स का टारगेट मॉस्को रीजन था। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को तो मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में इन्होंने अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में रशिया को काफी नुकसान हुआ है। हम आपको इस हमले में हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।

0: भयानक हमले को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव का बदला कहा। उनके मुताबिक ये अटैक 13 और 14 मई को रशिया द्वारा कीव पर किए गए हमले का जवाब है। कीव पर 13 और 14 मई को रशिया ने 1500 से ज्यादा ड्रोन हमले और 50 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए थे। इस हमले में कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और यूक्रेन ने 24 नागरिकों के मारे जाने का उस वक्त दावा भी किया था। रशिया के इस हमले के बाद यूक्रेन ने करारा जवाब देने का दम भरा था। रशिया पर एक ही दिन में 1000 ड्रोन से हुआ हमला वही करारा जवाब था।
1: आज यूक्रेन की रक्षा सेनाओं, हमारी सुरक्षा सेवा और हमारी खुफिया एजेंसियों ने मॉस्को क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की। ये हमारी तरफ से एक सफल हमला रहा। इस बार निशाने 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर थे, जो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मॉस्को क्षेत्र रूस की सबसे मजबूत हवाई सुरक्षा वाला इलाका है। वो अपने क्षेत्र में आने वाले इलाकों की सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं। लेकिन अब यूक्रेन के लंबी दूरी तक वार करने वाले हमले इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी पार कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि रूस को अपनी रिफाइनरी, तेल सुविधाओं और उद्योगों के बारे में सोचना चाहिए, न कि यूक्रेन, मोल्दोवा या किसी दूसरे पड़ोसी देश के लोगों की जिंदगी खराब करने के बारे में।
0: यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध भड़का तो इसका असर रशियन ऑयल की सप्लाई पर पड़ना तय है। और जिस तरह से यूक्रेन ने अपने हमलों की रणनीति बदली है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं उसने एक्सपर्ट्स का डर और बढ़ा दिया है। यूक्रेन अभी तक रशिया के सैन्य ठिकानों, रशियन सेना द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने रणनीति बदल दी है। इस साल यूक्रेन के निशाने पर रशिया के ऑयल डिपोज हैं। ऐसा लगता है जैसे वो ईरान अमेरिका युद्ध से सीख रहा हो। यूक्रेन ने सैन्य रणनीति को बदलते हुए रशिया की कमाई पर चोट करनी शुरू कर दी है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Country roads.
1: Thank God I get to wake
0: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
3: with artists like James Bay,
4: come on, let it go.
2: Nora Jones,
5: my heart is drained.
2: Daniel Caesar.
6: More
2: as you sink into a good book or get lost in your work, just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
8: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
9: Vikram, ek hint to dete.
8: बड़े आराम से
10: कूल फैंस से घर को सजाएं।
11: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
10: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
12: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
13: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
14: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
12: मतलब
14: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
12: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
14: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
15: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
16: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
15: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
17: समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
18: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
19: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
18: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
20: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, वेफरलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
21: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपने भड़काऊ भाषण दिए थे,
2: एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ संविधान की आजादी, और इनके बीच खड़ा है भारत का सबसे कठोर कानून UAPA। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है बड़ा सवाल, अगर मुकदमा सालों साल चले, अगर दोष सिद्ध बेहद कम हो, क्या आरोपी को बिना सजा के ही बरसों जेल में रखा जा सकता है। इसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी को दोहराया, कहा है कि UAPA में भी बेल नियम है, जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट की ये सिर्फ एक लाइन नहीं, भारतीय संविधान की आत्मा है। अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 और 22 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी पर UAPA लगा है उसका संवैधानिक संरक्षण खत्म नहीं हो जाता। यानी अदालत ने साफ कर दिया, संविधान किसी भी कठोर कानून से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले की ऐसी व्याख्या पर सवाल उठाए, जिसके बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे मामलों में राहत नहीं मिल पाई थी, जहां मुकदमे सालों से चल रहे हैं, चार्जशीट मोटी होती जा रही है, लेकिन फैसले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी व्यवस्था पर सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातों का निचोड़ यह है कि UAPA में भी बेल सामान्य सिद्धांत है, मुकदमे में देरी यानी जमानत का आधार, लंबी कैद सजा जैसी नहीं हो सकती, बड़ी पीठ के निर्णय को छोटी पीठ कमजोर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब फैसले का हवाला दिया है, जहां तीन जजों की पीठ जिनमें जस्टिस NV रमना, आज की CJI और तत्कालीन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे, साफ कहा था कि अगर मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो जमानत दी जा सकती है। लेकिन अदालत ने अब कहा कि बाद के कुछ फैसलों में सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को नहीं अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी चेतावनी देता दिखा। और फिर अदालत ने वो आंकड़ा रखा जो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, यानी NIA की दोष सिद्धि दर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये दर 1% से भी कम बताई गई है। सोचिए, अगर सजा इतनी कम तो फिर वर्षों की कैद किस लिए। अदालत ने साफ कहा कि ऐसी हिरासत मुकदमे से पहले दंडात्मक कैद बन जाती है। दिल्ली दंगा मामलों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बहस फिर तेज कर दी है, क्या कठोर कानूनों में प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है। इसी सुनवाई में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से गिरफ्तार नार्को टेरर मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल इफ्तिकार अंद्राबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। लोकतंत्र सिर्फ कठोर कानूनों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है न्याय के संतुलन से, जहां राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक की स्वतंत्रता भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी संतुलन की याद दिलाई है और शायद यही कहा है कि अगर मुकदमे अंतहीन हो जाएं तो जेल न्याय नहीं व्यवस्था की विफलता बन जाती है।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे. नमस्कार.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नरेंद्र मोदी ने दिया आतंक पर मंत्र, कहा आतंक पर जीरो टॉलरेंस। अपने विदेश दौरे पर लगातार कर रहे हैं समझौते, पीएम ने मोदी ने आतंकवाद पर गहरी चोट की, कहा न डबल स्टैंडर्ड नहीं कोई समझौता। भारत नॉर्डिक संबंधों में स्वर्णिम युग का आगाज, थोड़ी देर में पहुंचेंगे इटली। गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ, छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका, एक्शन लेने की जगह पीएम गए विदेश। नीट री एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल बैठक, अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा करवाने के निर्देश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बंगाल से लेकर यूपी तक हिंदुत्व और धर्म की पॉलिटिक्स इस वक्त टॉप गियर में है, और आज हम आपको वो धर्म कांटा दिखाने जा रहे हैं जिस पर की पूरी राजनीति तौली जा रही है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक के बाद एक हिंदुत्व के कड़े निर्णय ले रहे हैं, और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले सरकारी भत्तों को बंद कर दिया, तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का ऑर्डर दे दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं धर्म कांटा।
3: हमियो बोले छे राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनारा बोले छे सबका साथ सबका विकास, तो हमारे साथ हम उनका साथ।
4: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
3: सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संकलगु मोर्चा।
4: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
5: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
4: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
6: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग, एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया, मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं, एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है, यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
6: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई, सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है। सरकार का काम इमाम मुआज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुआज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
4: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
6: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
4: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
7: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार

0: नीति में शोले भड़का दिए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
1: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
2: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
3: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
2: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
4: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
2: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर का विशाल कैसे जम्मू कश्मीर में बन गया हमजा। जी हां, यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर आई। बिजनौर के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले गया और फिर वहां जबरन उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया। आइए देखिए ये धर्म कांटा।
2: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा।
5: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ,
6: मैं गवाही देता हूँ।
2: नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
5: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
2: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
6: पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
2: सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
6: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
7: माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक है आपको हमारी तरफ से।
2: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस

0: आतंकियों ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
1: कलमा पढ़े
2: हैं, याद है कलमा? पहला कलमा तैयार माने पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
3: अभी दूसरा नहीं
1: सीखा है। अशहदु अल्ला
4: इलाहा
1: सुन बड़ो बड़ो आप मुझे
3: अशहदु अल्ला इलाहा तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमे में पढ़ा तो तर्जुमा ही बता दो।
1: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है।
0: 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
5: देख एक बार देख अपनी माँ की तरफ देख कितनी रो रही है, इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल, देखो एक बार इसके चेहरे को तो देख।
6: मैंने सब तो देखा, मैं 4 साल से देखता रहा इनका चेहरा, मैंने जान सके तो बेटे ऐसे ये नहीं करेंगे, हाईकोर्ट जा पागे अभी हर चीज होगा ना, यहाँ बेटे के सामने अगर ये कुछ नहीं करेंगे अभी देखना क्या होगा यार।
5: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए
0: कि परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
7: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
8: क्या पता चला?
7: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
0: 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, एसपी से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
9: वो सब बहला पुरसरा कर लेकर गए हैं काजी वाले के लड़का।
3: क्या नाम है उसका?
9: वसीम।
0: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत में परिवार को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वसीम उनके घर आता जाता रहता था और आर्थिक मदद भी करता था, लेकिन हाल ही में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई कि लड़के ने इस्लाम अपना लिया है और हैंडलर्स ने मैसेज भेजा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ।
7: अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
0: दूसरी तरफ बिजनौर में आरोपी वसीम की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत और झूठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है जहां अवैध धर्मांतरण करवाने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या अब सीएम योगी इस धर्मांतरण का भी हिसाब देंगे? बिजनौर से ऋतिक राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
10: और अब खबर अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में एक मस्जिद में अंधाधुंध गोलीबारी की जहां पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यही है कि मस्जिद में गोलियां चलाने वाले हमलावर कौन हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं सैन डिएगो की मस्जिद में आखिर हमला क्यों हुआ।

0: अमेरिका में मस्जिद के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, 2 हमलावर को किया ढेर। मस्जिद में हमला क्यों किया, किसने किया? अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में अचानक मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। किसी को समझ में आता, इससे पहले ही हमलावर तांडव मचा देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वारदात के बाद एक दर्जन से ज्यादा बच्चों को हाथ पकड़कर मस्जिद परिसर से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखिए कैसे पुलिसकर्मी बच्ची को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। मस्जिद में गोलीबारी के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच जाते हैं। ये सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसमें अल रशीद स्कूल भी शामिल है, जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों के लिए अरबी भाषा, इस्लामी अध्ययन और कुरान के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद में हुए इस खूनी हमले को पुलिस हेट क्राइम मानकर जांच कर रही है। ये भीषण हमला उस समय हुआ जब मस्जिद के भीतर बच्चों का स्कूल चल रहा था और गैर मुस्लिमों का एक समूह इस्लाम के बारे में जानने के लिए वहां आया हुआ था। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पत्रकारों ने सवाल किया।
1: They're giving a briefing and it's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly.
0: San Diego police ka kehna hai ki masjid mein hui golibari mein 5 logon ki maut ho gayi. Inme ek security guard aur 2 sandigdh shamil hain. Marne wale aaropiyon ki pehchan 17 saal ke Ken Clark aur 18 saal ke Caleb ke taur par hui hai. Reports ki mane to Clark ek wrestler tha. पुलिस इसे हेट क्राइम ही मानकर चल रही है और उसी एंगल से जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि नफरत अमेरिका में भी फैल रही है। घटना के समय मस्जिद परिसर में मौजूद स्कूल के सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए। ये हमला बकरीद और हज से ठीक पहले हुआ है, जिससे मुस्लिम समुदाय में गहरी चिंता और भय का माहौल है। मस्जिद की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक गतिविधियाँ नहीं होती, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी दूसरे समुदायों के साथ मिलकर काम किया जाता है। यहाँ रोज 5 वक्त की नमाज होती है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि कैलिफोर्निया आपके साथ खड़ा है। जहाँ परिवार और बच्चे जुटते हैं, जहाँ लोग शांति से इबादत करते हैं, वहाँ ऐसा हमला बेहद भयावह है। कैलिफोर्निया में नफरत की कोई जगह नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद सवाल अमेरिका में गन कल्चर को लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका में बंदूक खरीदना फल और सब्जी खरीदने जैसा है। अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास करीब 230 साल पुराना है। 1791 में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिका नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार देता है। आज तक ब्यूरो।
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में आपको बताएंगे ईरान से क्यों डरे ट्रंप, जो युद्ध से महायुद्ध से पीछे हटे। देखते रहिए दस्तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुख।
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to...
4: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
9: हमारे सीमेंट में नहीं है।
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: The taste of success.
13: विक्रम चाहे जितना भी फड़ फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
14: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
15: विक्रम, एक हिंट तो देते।
16: विक्रम!
15: हिंट?
16: बड़े आराम से।
17: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
18: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
19: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
20: नहीं,
19: और म्यूचुअल फंड से
20: सही।
21: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
22: Like I said before, we better hold this in.
23: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
24: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
26: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
27: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
28: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
26: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
29: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
27: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए, वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
26: जहां खबर वहां खबरदार।
30: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
31: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।
32: ए
0: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं गया।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
2: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
3: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
4: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
2: शुभेंदु अधिकारी,
1: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
5: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
6: अनुपम मिश्र,
5: महमित भारद्वाज,
9: पीयूष मिश्रा,
10: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।
11: जब ईरान से दोबारा युद्ध का प्लान तैयार हो रहा है, जब ईरान पर बड़े हमले से पहले बैठकों और रणनीति का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले से पहले ट्रंप की प्लानिंग के दो सबसे अहम बिंदु हैं, पहला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बहाली और दूसरा ईरान में तय ठिकानों पर बमबारी। पहले ऑपरेशन का मकसद ईरान पर हमला कर फिर से तबाही मचाना है, वहीं दूसरा अभियान ईरान में जमीन के अंदर छिपे परमाणु भंडार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत अटकने का ये सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। एक चर्चा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की दोबारा बहाली की भी है, ताकि होर्मुज रूट के जरिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, जिससे ट्रंप अपने देश में ये दिखा सकेंगे कि उन्होंने कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही बाधित है, हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान से सीजफायर हुए 40 दिन बीत गए हैं, डील का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। अब ट्रंप को ये फैसला लेना है कि क्या ईरान पर फिर से बम बरसेंगे या बातचीत का रास्ता निकलने की एक आखिरी कोशिश होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसे लेकर ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। अगर हर कूटनीति फिर फेल हुई तो जल्द ही मध्य पूर्व में फिर युद्ध की घड़ी आ सकती है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब बात अमेरिका और ईरान की। क्या ईरान से डर गया है अमेरिका और डर गए हैं ट्रंप? हमले की धमकी देकर पीछे हट गए हैं ट्रंप? क्योंकि ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला एक और भीषण युद्ध अंतिम पलों में टल गया। ट्रंप की बात माने तो अमेरिकी सेना ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रही थी, लेकिन इसे ठीक वक्त पर टालना पड़ा। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से इतना कैसे डर गया कि युद्ध को टाल दिया? आखिर युद्ध टलने के पीछे की पूरी कहानी है क्या? ये इनसाइड स्टोरी आइए हम आपको दिखाते हैं।
4: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला? क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे, या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और ना ही इसके फिर से शुरू ना होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है, क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है। यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है। अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी?
5: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
4: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उप राष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।
6: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
7: Yes.
6: We were going to be striking very, it would have been happening right now.
4: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। चौथी शर्त, ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी।
1: You know how it is to negotiate with a country where you're pleading them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
4: लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने पेंटागन के कहने पर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी निगरानी की ताकत बढ़ा ली है। इस समय वो अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी ज्यादा पुख्ता तौर पर नजर रख सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसके एयर डिफेंस को सटीक निशाना बना सकता है। जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज का दावा है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिकी जेट आसानी से मार गिराए जा सकते थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने भी पेंटागन का हवाला दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को ये बताया कि ईरान ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही उसे ईरान के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। दावा है कि ईरान की चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया। अगर अब हमला होता भी है तो पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया जाएगा और इसके लिए अमेरिका और इसराइल को रणनीति बनानी होगी और इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इस वजह से ही ट्रंप ने हमला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। ऐसा करके वो ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये गलत फहमी है कि वो ईरानी लोगों और अधिकारियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान की लोहे की मुट्ठी दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरान का दावा ये भी है कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा। अगर अमेरिका का हमला हुआ तो उसने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले फिर से शुरू हुए तो कम समय तक चलने वाला लेकिन बहुत तेज युद्ध हो सकता है। दावा ये भी है कि ईरान इसराइल और आसपास के इलाकों में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलों की जबरदस्त बौछार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है। खाड़ी के तेल के कुएं, बंदरगाह और रिफाइनरियां इनके मुख्य निशाने बन सकते हैं। यूएई, सऊदी अरब और कुवैत भी इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों ने सेना और सरकार के समर्थन में कार रैली निकाली। रैली आजाद स्क्वायर पर आयोजित की गई, जहां जोड़ों ने शादी समारोह के साथ समर्थन प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो।
3: आइए वॉशिंगटन आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, राष्ट्रपति ट्रंप सिचुएशन रूम में एक सीक्रेट बैठक करने वाले हैं। बैठक क्यों हो रही है और इस बैठक का रोहित उद्देश्य क्या है?
7: देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस से चर्चा की, जब वो बॉल रूम दिखा रहे थे प्रेस को, जो वो बॉल रूम बना रहे हैं व्हाइट हाउस में वो, और उस चर्चा में जब उनसे पूछा गया कि ईरान से संबंधित अब आगे क्या स्टेप है, तो उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन, हो सकता है इस वीकेंड तक देना चाहे ईरान को, ताकि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्त है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके वो माने, और ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, अमेरिका की शर्त रही है दशकों से रही है, तो आई थिंक गारंटी
3: जी
7: चाहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और जहां तक इस बैठक का सवाल है, देखिए यू नो दीज आर वेरी क्लासिफाइड मीटिंग्स, अटकलें तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन ऑब्वियसली ईरान को डिस्कस किया जाएगा क्या क्या मिलिट्री ऑप्शन हैं।
3: जी
7: इनफैक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर एक दिन पहले कहा था कि हम अटैक करने वाले थे ईरान पे, फिर मुझे बाकी देशों ने मिडल ईस्ट के कहा कि आप रुक जाइए थोड़ा और समय देते हैं ईरान को। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे अगर ईरान केव इन नहीं करता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
3: जी
7: की डिमांड्स को। लेकिन एक चीज पे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार स्ट्रेस किया है वो ये है कि ईरान के पास आने वाले समय में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, और शायद यही एक स्टिकिंग पॉइंट बचा हुआ है कि किस तरह की गारंटी ईरान देने वाला है। तो इस मीटिंग में आई थिंक ईरान को लेकर फ्यूचर ऑप्शंस डिस्कस होंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन में और देना चाहते हो ईरान को, ताकि वो सीरियसली कंसिडर करे ईरान
3: जी
7: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को। और अगर नहीं होता है तो फिर एक जो मिलिट्री एक्शन है और किस तरह का मिलिट्री एक्शन होगा, शायद उस पर चर्चा की जा
3: बिल्कुल।
7: सकती है।
3: हमारे पीछे ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सिचुएशन रूम है, जहां पर वो ईरान पर हमले की रणनीति अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बना रहे हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी कर रहा है। खबर यह आई है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा। तो आइए हम आपको दिखाएं कि क्या वाकई ईरान ऐसा कुछ करने वाला है।
4: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुश्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
8: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
5: It's my music and it's my station.
4: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on Tune In.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है?
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
16: Like I said before, we better hold the sins.
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
20: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहां खबर वहां खबरदार।
2: In association with Monte Carlo, it's the way you make me feel.
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल
5: पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
6: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
7: So they were disallowed from speaking their language.
6: In-depth conversations with A-list celebrities.
8: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
6: True crime podcasts you just can't stop listening to.
9: Others escape justice to live and die in infamy. These
6: Plus the news and sports content you crave in podcast form.
10: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
6: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: और धूप में सीधा काम करने को टाली।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: तो क्या बंगाल में अभूतपूर्व विजय ने बीजेपी को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि सार्वजनिक नमाज पर चेतावनी देते देते सीएम योगी संख्या नियंत्रित करने की सलाह देने और सामर्थ्य बताने तक आ गए? पहले योगी ने क्या कहा ये जाने। सड़क चलने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में की जाए। संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो। प्यार से मानोगे बात तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
15: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
14: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है। और दूसरी बड़ी वजह 2027 का चुनाव है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बकरीद इसलिए क्योंकि ईद और बकरीद में ही मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज की इजाजत मांगता रहा है। लेकिन बात सिर्फ बकरीद की नहीं है, बात 2027 की ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जीत का सबसे आसान फॉर्मूला है। और बंगाल में बीजेपी की आसमानी जीत की मिसाल उसके सामने है। याद करिए, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम कहा, मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं। तो यूपी में सीएम योगी भी बंगाल में जीत के सुपरहिट फॉर्मूले के आसरे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर की गहरी चोट, कहा न डबल स्टैंडर्ड नहीं कोई समझौता। भारत नॉर्डिक संबंधों में स्वर्णिम युग का आगाज, थोड़ी देर में पहुंचेंगे इटली। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ, छत्तीसगढ़ में बंदूकों की युकान, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका, एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए हैं विदेश। नीट री एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा करवाने के निर्देश। और कल देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक खबर सुर्खियों में है, खबर डॉक्टरी की चोरी की, यानी नीट एग्जाम पेपर लीक की। हालांकि सीबीआई चोरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, कुछ मोहरे हाथ भी लग चुके हैं, पर सवाल ये है कि क्या मास्टरमाइंड तक सीबीआई के हाथ पहुंच पाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इतने लंबे चौड़े तामझाम और जबरदस्त गोपनीयता बरते जाने के बावजूद बार बार सवालों की चोरी कैसे हो जाती है। तो पेश है डॉक्टरी के डकैतों की इनसाइड स्टोरी।
1: बस इसे एक प्रेस रिलीज को देख लीजिए। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या यूं कहें कि एनटीए की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज है। ये वो एनटीए है जिस पर छात्रों की तादाद के हिसाब से देश का सबसे बड़ा एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी है, और वो एग्जाम है नीट। नीट बोले तो डॉक्टर बनाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए की बस इस एक प्रेस रिलीज के आंकड़े पर नजर डालते ही आप समझ जाएंगे कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम सचमुच कितना बड़ा है। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जो भारत के अंदर 551 शहरों में और भारत के बाहर 14 अलग अलग शहरों में हो, और जिस एग्जाम में 22,79,000 स्टूडेंट्स कुल 5,432 एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देते हो, उस एग्जाम की अहमियत क्या होगी। देश को डॉक्टर देने वाले इस एग्जाम में छात्र बैठे, उससे पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए खुद ऐसे ऐसे इम्तिहान और तैयारियों से गुजरती है कि उसके आगे कई बार तो बड़ी बड़ी जासूसी कहानियां या बड़े बड़े खुफिया ऑपरेशन तक बौने नजर आते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने की तैयारी इतनी खुफिया होती है कि खुद पेपर तैयार करने वाले दिग्गज को भी पता नहीं चलता कि उनके सवाल सवालों की लिस्ट में शामिल होंगे भी कि नहीं। जहां पेपर की सेटिंग होती है उस बिल्डिंग को उस दौरान पूरी तरह से बाबा आदम के जमाने की बिल्डिंग बना दी जाती है। इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, गरज ये कि हर उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे तैयार होने जा रहे क्वेश्चन पेपर की नकल की जा सके।

0: बड़ी तादाद उनकी है जिनकी किसी न किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। जिन बीमारियों से भारत में सबसे ज्यादा मौत होती है उनमें दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, टीबी और कैंसर खास है। हालांकि हमारे देश में इन बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 1,00,000 के करीब अस्पताल हैं। इनमें 36,626 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल जबकि 44,000 प्राइवेट यानी निजी अस्पताल हैं। देश भर में इन अस्पतालों और क्लिनिक में काम करने वाले 13,86,150 एलोपैथी डॉक्टर हैं, यानी औसतन हर 811 लोगों के लिए एक डॉक्टर। हालांकि शहरों के मुकाबले गांव और दूर दराज के इलाकों में जरूरत के हिसाब से डॉक्टर कम है। डॉक्टरों की इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए नीट के जरिए हर साल नए डॉक्टरों को तैयार किया जाता है। हालांकि नीट के एग्जाम में डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए करीब 23,00,000 स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनमें से चुने सिर्फ 1,30,000 छात्र ही जाते हैं। दुनिया के किसी भी पेशे को उठा लीजिए, अगर सबसे ज्यादा वक्त किसी को पेशेवर बनाने में लगता है तो वो डॉक्टर ही है। एक डॉक्टर बनने में कुल 8.5 साल लग जाते हैं, MBBS बनने में 4.5 साल और 1 साल की जरूरी इंटर्नशिप, जबकि PG, MD या MS के लिए 3 साल और। इस हिसाब से अगर देखें तो 12वीं की पढ़ाई के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई में एक स्टूडेंट को 8.5 साल तक और पढ़ना होता है।
1: जो जिसने मेहनत किया, एक बार एग्जाम दिया जिसके 700+ आ रहे थे और फिर वो फिर से देंगे एग्जाम, तो उसका थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है। एक बार एग्जाम देना, दूसरी बार देना, फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। जो आप पहले मेहनत कर चुके हैं, दोबारा फिर से मेहनत करेंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। तो बार बार हो रहा है, 2024 में भी हुआ और अभी भी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। IIT का पेपर तो कभी भी लीक नहीं होता है, बिल्कुल उसी के हिसाब से इनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बच्चे के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। पर डॉक्टर्स का बात है तो डॉक्टर तो हमारे जो देशवासियों के लिए वो भी बहुत मायने रखता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल इसमें सुरक्षा देना चाहिए।
2: बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये, हर साल लगभग होता ही रहता है। 24 में भी ये हुआ था, लेकिन 24 में देर से पता लगा था तो रिजल्ट आउट तो हो भी गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्योटी हो गया था। इस साल तो फिर भी सही है, थोड़ा बहुत पहले पता लग गया, नहीं तो मतलब बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा रैंक आ जाए जो सारे से डिजर्व भी नहीं करते इतना कुछ। जो लोग पहले से मेहनत किए होंगे वो लोग तो इतना मतलब पहले से अच्छा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं मेहनत किए होंगे वो लोग अच्छे से कर लिए होंगे। तो सही है एक दिख से कि पहले से पता लग गया, लेकिन हर साल तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए ऐसा।
0: नए डॉक्टर बनाने के लिए 3 मई को नीट का सबसे ताजा और नया एग्जाम होना था। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो चुकी थी। एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी NTN डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए जरूरी 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए इन तीनों ही सब्जेक्ट के माहिर उस्तादों की एक टीम सिलेक्ट की। ये एक्सपर्ट्स खास तौर पर अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के वो फैकल्टी मेंबर होते हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए चुने गए इन एक्सपर्ट्स के नामों को गोपनीय रखा जाता है और उन्हें भी ये हिदायत दी जाती है कि वो इसे गोपनीय ही रखें। इसके बाद यही एक्सपर्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आसान, कम मुश्किल और मुश्किल सवालों की लिस्ट तैयार करते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते वक्त NTA की जिस बिल्डिंग में ये काम हो रहा होता है वहाँ न तो इंटरनेट होता है, न ही मोबाइल, कैमरा या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लाने की इजाजत होती है। बाकायदा इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कब वहाँ अंदर आया और कब बाहर गया, किसने कब कौन सी फाइल खोली। CCTV कैमरों से भी इसकी निगरानी की जाती है। नीट के एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर के 2 अलग अलग सेट तैयार किए जाते हैं, पर इन 2 अलग अलग सेट में से किस सेट से एग्जाम होगा इसकी खबर किसी को नहीं होती, ये सिर्फ NTA चीफ ही जानते हैं। क्वेश्चन पेपर फाइनल हो जाने के बाद NTA दफ्तर से इसे प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाया जाता है। कई बार एक ही प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता है तो कई बार एक से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस। NTA के लोग जिस प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर छपता है वहाँ की भी पूरी निगरानी करते हैं। क्वेश्चन पेपर की छपाई के दौरान सिर्फ चंद लोग ही उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। जिस वक्त क्वेश्चन पेपर छप रहा होता है तब प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी मोबाइल

0: टेलीफोन या कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होती। क्वेश्चन पेपर की छपाई के दौरान लगातार सीसीटीवी कैमरों से प्रिंटिंग प्रेस के चप्पे चप्पे की निगरानी की जाती है।
1: एनटीए की माने तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो फुल प्रूफ होती है, यानी कि पेपर के लीक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। मसलन अगर नीट के पेपर को तैयार करना है तो इसके लिए अलग अलग पैनल बनाए जाते हैं। हर पैनल में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यानी कि देश के नामी प्रोफेसर होते हैं। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो प्रश्नों को एक साथ लेकर आए ताकि एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाए। एक पैनल कौन से क्वेश्चन दे रहा है वो दूसरे पैनल को पता नहीं होता है, और एक एल्गोरिदम के तहत सारे पैनलों के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके जरिए एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। यानी कि सुनने में ये लगेगा कि यहाँ पर तो लीक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन शायद एनटीए को भी ये पता नहीं था कि जिनको क्वेश्चन पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वही पेपर लीक में शामिल हो जाएंगे। और सीबीआई की जो जांच है उसमें यही समझ में आया कि जिन प्रोफेसर्स ने पेपर को लीक किया हुआ है उनके पास वो सारे सवाल थे जो कि असली नीट के एग्जाम में आए हुए थे।
0: प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपते ही उसी वक्त एनटीए के लोग उसे अपने कस्टडी में ले लेते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट कर पहले बैंक के लॉकर में रखा जाता है और फिर बैंक लॉकर से उसे निकाल कर ठीक एग्जाम वाले दिन एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाया जाता है। जिन गाड़ियों में ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से बैंक या बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाया जाता है उन गाड़ियों में भी एनटीए के लोग होते हैं, और वो गाड़ियाँ जीपीएस से लैस होती है ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इन तमाम कवायद के बाद 3 मई की दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान देश के अंदर 551 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में नीट का एग्जाम होता है। 22,79,000 स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेते हैं। 5,432 सेंटर पर एग्जाम ठीक ठाक अपने अंजाम को पहुंचता है, लेकिन फिर तभी एक खबर आती है। खबर ये कि 3 मई की दोपहर 2 से 5 बजे से कई दिन पहले ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। सिर्फ चंद सवाल नहीं बल्कि पूरा का पूरा पेपर ही लीक था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी मुस्तैदी के बावजूद ये पेपर लीक कैसे हुआ।
2: जितने भी पूरे देश के मेडिकल एजुकेशन से लेके जो एजुकेशन सिस्टम के जो मेजर एग्जाम्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स जिस पे डिपेंडेंट हैं उनकी करवाने की बॉडी एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर उसको डीपली स्टडी करेंगे आप तो उसमें पाएंगे कि एनटीए एक एनजीओ रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। आप सोचिए कि कैसे, पहली बात ही आ जाती है कि जब इतना इस तरीके से ऑलरेडी 2024 में 25 में उससे पहले भी इतनी बार जब पेपर लीक की इस तरीके की न्यूज आई है सामने, हमारे पास पिछली बार चार्जशीट भी फाइल हुई थी, सब कुछ सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी थी, उसके बाद बेल ग्रांट हो गई जो संजीव मुखिया नाम से मेजर एक्यूज थे इसके अंदर, तो इस तरीके से जब चीजें आ रही हैं तो आप कैसे देश, इतना बड़ा देश और इतने बड़ा एग्जामिनेशन जो है, ये पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो कैसे एक एनटीए एक एनजीओ बॉडी पे आप कैसे निर्भर रह सकते हैं।
3: इसमें एक दिन में, जैसे कहते हैं ना, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इस पे एक कमेटी बननी चाहिए, एक पैनल बनना चाहिए, एजुकेशनिस्ट जो ट्रू एजुकेशनिस्ट है प्लस जो इस शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं, सबकी सहमति, सबकी एक, जैसे कहते हैं ना कि एक राय लेनी चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि ऐसी चीजें आने वाले भविष्य में दोबारा फिर से ना हो, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। हम चाहे उसको ऑफलाइन मोड में करवा लें चाहे ऑनलाइन मोड में करवा लें, जब तक ऊपर से सिस्टम क्लीन नहीं होगा, जब तक एक ऐसा कहते हैं ना जिसे कि यू नो हमें इसकी तह पे जाना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऑनलाइन में भी कई त्रुटियां हैं, बट जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि पिछले 97 के बाद से अब तक आईआईटी का एग्जाम नॉर्मली फुल प्रूफ होता है नॉर्मली। अब इसमें भी यू नो ये तो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि सब पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे एजुकेशनिस्ट बैठे हैं इस पे, और इस पे एक विचार मंथन होना चाहिए, कोई एक सुझाव नहीं दे सकते। बट एनटीए की ये पहल भी कि नेक्स्ट ईयर से अब नीट ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड पे, ये एक अच्छा, मैं बोलूंगा, कदम एनटीए ने उठाया।
0: बात 8 मई की रात 8 बजे की है। राजस्थान पुलिस को एक शिकायत मिलती है कि नीट के एग्जाम में जो सवालात आए थे वो एग्जाम से पहले ही कई बच्चों और कोचिंग सेंटर के पास मौजूद थे। पेपर लीक की पहली खबर राजस्थान के सीकर से आई। राजस्थान पुलिस ने सीकर के एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में पहुंचकर जब कुछ बच्चों के मोबाइल की जांच की तो उन्हें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ऐप मिले। इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ऐप पर ठीक वही सवाल थे जो नीट के एग्जाम में पूछे गए थे। कमाल ये कि पुलिस को ये खबर या शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि सीकर के एक निजी हॉस्टल के संचालक ने ही दी थी। दरअसल इस हॉस्टल संचालक का बेटा केरल के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा, उसके बेटे ने ही उसे ये गेस्ट पेपर भेजा था। यही गेस्ट पेपर धीरे धीरे 100 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच गया।
4: हाथ से लिखे हुए 400 सवालों के गेस्ट पेपर को बेहद शातिराना ढंग से बनाया गया था। इसमें 135 सवाल जो नीट में पूछे जाने वाले थे उसके क्रम के बारे में जिसे गेस्ट पेपर दिया गया था उसे बता दिया गया था। गेस्ट पेपर बनाकर हाथ से इसलिए लिखा गया था ताकि पकड़ में ना आए और इसका PDF टेलीग्राम के जरिए आगे भेजा जा रहा था।
0: राजस्थान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन NTA से संपर्क किया। 2 साल पहले इसी नीट के एग्जाम को बिहार में चोरी होते हुए NTA देख चुका था, लिहाजा NTA ने फौरन मामले की जांच CBI को सौंप दी, क्योंकि दायरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था।
1: जब CBI को नीट पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई तो CBI ने 3 चीजों पर ध्यान दिया। पहला, वो लोग जिनके ऊपर पेपर को बनाने की जिम्मेदारी थी। दूसरा, वो लोग जिनके ऊपर पेपर को प्रिंट करने की जिम्मेदारी थी। और तीसरा, वो लोग जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और इन सभी लोगों के बारे में पता लगाने के लिए CBI ने बकायदा NTA के अधिकारियों से भी गहन पूछताछ की और CBI ने एक लंबी लिस्ट बनाई उन लोगों की जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। जब CBI ने अपनी जांच तेज की तो CBI के सामने 2 ऐसे प्रोफेसर का नाम सामने आया जो कि इस पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं। और CBI के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये दोनों के दोनों प्रोफेसर जिन्हें पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी ये पेपर लीक में शामिल थे।
0: जयपुर से शरद कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। इतने बड़े एग्जाम की चोरी सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं हो सकता, इसके लिए बाकायदा एक पूरा नेटवर्क होता है। NTA में सेंध मारने से लेकर छात्रों तक पेपर पहुंचाने के लिए पेपर खरीदने वाले छात्र भी चाहिए और कोचिंग सेंटर के मालिकान भी, क्योंकि चोरी का दायरा जितना बड़ा होगा चोरी के माल की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन ये नेटवर्क कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2024 में बिहार में हुए नीट पेपर लीक के मामले के असली मास्टरमाइंड को आज भी पकड़ा नहीं जा सका है। अब CBI मामले की जांच शुरू करती है। हालांकि जांच को अभी अपने अंजाम तक पहुंचना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती इशारा मिल रहा है उसके हिसाब से नीट की लंका घर के भेदिया ने ही ढा दी। हमेशा की तरह NTA ने क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए जिन माहिर उस्तादों को चुना था उनमें से 2 ये थे, प्रोफेसर PV कुलकर्णी और बॉटनी की लेक्चरर मनीषा मांधे। इन दोनों की जिम्मेदारी केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर तैयार करने की थी। इन्होंने पेपर तैयार तो किया पर फिर उसी पेपर को पैसों की खातिर कुछ बिचौलियों की मदद से कई कोचिंग सेंटर के मालिकों और प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों को ऊंचे दामों पर बेच दिया। डॉक्टरी की इस चोरी में इनकी अहम साथी बनी पुणे की एक ब्यूटिशियन मनीषा वाघबरे। अब इन तीनों के साथ आगे और भी कई लोगों की कड़ियां जुड़ती जाती है। अब तक CBI 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी यह पता नहीं चला है इस पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है। पर इतना तय है कि वो जो भी है बहुत बड़ा और ताकतवर है, और ये भी तय है कि उसके तार NTA से जुड़े हैं। पर क्या CBI उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी या बिचौलियों को ही पकड़ कर केस निपटा देगी जैसा कि उसने 2 साल पहले इसी नीट एग्जाम के बिहार में हुए पेपर लीक के मामले में किया था। 2024 में बिहार में नीट का पेपर लीक हो गया था। इस सिलसिले में CBI ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, 5,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन था, यह आज भी एक पहेली। दरअसल एनटीए खुद नया है, क्योंकि 2013 से पहले खुद नीट ही नहीं था। नीट से पहले भारत में मेडिकल में दाखिले के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। हर राज्य अपने हिसाब से पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट या स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या फिर सीबीएसई के जरिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, एम्स एंट्रेंस टेस्ट और यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज अपने लेवल पर एग्जाम लेते थे। इसमें मुश्किल ये होती थी कि एक स्टूडेंट को डॉक्टरी का इम्तिहान देने के लिए एक ही साल में 10-20 अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे। अलग अलग फीस, फॉर्म, कोचिंग, सिलेबस और पेपर पैटर्न होते थे। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए आगे चलकर ये तय हुआ कि डॉक्टरी के लिए भारत में एक देश और एक परीक्षा का नियम लागू हो। हालांकि राज्य सरकारों और प्राइवेट कॉलेजों ने इसका विरोध भी किया। इसी के बाद 2013 में पहली बार नीट लागू हुआ और नीट की परीक्षा हुई, पर कई राज्यों के विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी। बाद में कुछ सुझावों और सुधारों के साथ 2016 में नीट फिर से लौट आया। फिर 2017 से देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट इकलौता एग्जाम बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, चंद हजार या चंद लाख रुपए में सवालों को खरीद कर बिकाऊ कागजों पर जवाब लिखकर जो छात्र इस तरह डॉक्टरी को चुरा कर डॉक्टर बनेंगे, तो बीमार मरेंगे या फिर बचेंगे। जयपुर से शरद कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
6: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
5: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
6: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

नॉर्वे से इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव में कई अहम मुद्दों पर करार के आसार। आतंकवाद के खिलाफ 2-2 जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ, छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है बड़ा झटका, एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी किया ओबीसी आरक्षण की नई सूची को, कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया गया, ममता सरकार के फैसले को पलटा, अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और कल देश भर में बंद रहेगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल के ऐलान, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स की भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप करने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, इटली की राजधानी रोम से बड़ी और अहम खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे से रोम पहुंच चुके हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए इटली की विदेश मंत्री मौजूद है। 5 देशों के दौरे का ये आखिरी पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये पड़ाव। इटली के साथ कई अहम करार भारत की तरफ से किए जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर इटली के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। 5 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री निकले हुए थे, नॉर्वे से सीधे इटली पहुंचे हैं और ये जो आखिरी पड़ाव है इटली वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कई करारों के हिसाब से। तो इटली पहुंचने के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इटली के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां मौजूद थे। 5 देशों के दौरे का यह आखिरी पड़ाव है प्रधानमंत्री का इटली का, और इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहां कई करार भारत और इटली के बीच होने हैं। और अब रुक करेंगे मुंबई मेट्रो का।

0: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन की समझदारी भरे उपयोग की अपील का समर्थन किया है। ईंधन बचत की अपील का असर, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक कार की सवारी से पहुंची। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने महाराष्ट्र सीईटी परिणामों में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 12वीं में बोर्ड अंकों और 100% के बीच अंतर को संदिग्ध बताते हुए इसकी तुलना नीट घोटाले से की है। मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में अशोक खरात पर ईडी की कार्रवाई, नासिक जेल से हिरासत में लेकर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। बेनामी संपत्तियों और बैंक लॉकर्स की जांच की जाएगी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर रेलवे, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 400 से 500 अवैध झुग्गियों पर चला गया प्रशासन का बुलडोजर। गुजरात के पाटन में तालाब क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर हंगामा, प्रभावित परिवारों ने वैकल्पिक आवास की मांग की है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अडिग। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं है, मौसम विभाग ने 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान जताया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले से एक महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत है, वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के सन में पेंट फैक्ट्री में जबरदस्त भीषण आग लगी, केमिकल और थिनर होने की वजह से तेज हो गई थी लपटें, मौके पर 15 दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर काबू पाया। जामनगर डेंटल कॉलेज में 25 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, कर्मचारियों पर धन के गबन की शिकायत। पालघर सड़क हादसे में 13 बारातियों की मौत हुई और उसके बाद एक ही गांव के 12 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, पूरे गांव में पसरा है मातम। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में पानी फेंकने पर दो पड़ोसी आपस में ही भिड़ गए, जमकर हंगामा हुआ, मारपीट में 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के वसई में एटीएम मशीन का वीडियो वायरल हो गया, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 100 रुपए की जगह यहां पर निकलने लगे थे 500-500 के नोट और कैश के लिए उमड़ पड़ी थी भीड़। गुजरात के गिर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला बोला, बुरी तरह से लहूलुहान किया बच्चा। सूरत में जमीन दलाल की गलती से दूसरे वाहन की डिग्गी में रखे गए थे 1,16,000 रुपए, सीसीटीवी की मदद से बरामद किए गए, पुलिस ने थाने में बुलाकर लौटाई पूरी रकम। महज 5 दिनों के अंतर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया, ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया। बीते हफ्ते दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद ब्रेड का पैकेट 5 रुपए तक महंगा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने, पैकिंग सामान के महंगे होने से घरेलू बजट पर नया बोझ पड़ा। खाड़ी देशों के नेताओं की अपील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला टालने का फैसला किया है और इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। टीसीएस ने भारत में अपने कर्मचारियों की औसत सैलरी 6 से 8% बढ़ाने का ऐलान किया। सुस्ती के बीच देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का यह फैसला पूरे आईटी सेक्टर के लिए नया ट्रेंड सेट कर सकता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 10% कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान बनाया, 7,000 कर्मचारियों को एआई विभाग में शिफ्ट करने की योजना भी बनाई है, कर्मचारियों को मेमो भेजकर डिटेल्स शेयर की। सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल फिल्म 7 डॉग्स ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्शन सीन के लिए इस्तेमाल किया गया 21,000 लीटर पेट्रोल। 7 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देशों में फिल्म 7 डॉग्स रिलीज की जाएगी, जबकि भारत में यह फिल्म 28 मई को रिलीज की जाएगी। भूत बंगला ने दुनिया भर में तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है, कंतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन की वर्ल्ड वाइड कमाई को पछाड़कर किया 276 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन तुम्बा 2, द ग्रेट एस्केप, फरार में करेंगे अहम रोल। ईशा अंबानी के कपड़ों में दिखी मुगल काल की सदियों पुरानी कला, विदेश में स्कर्ट को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश किया गया। तो मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बजट मंत्र को आत्मसात करते हुए, आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियोस के जरिए, उन लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए शुरू की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री हैं वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह निर्णय लिया और ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, सर विपक्ष को समझना चाहिए क्या?
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मैंने तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलए हैं, और ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।

0: नेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
1: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
2: तो एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत दोबारा से बढ़ा दी गई है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया है और इससे चार दिन पहले ही यानी कि 15 मई को तेल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई थी। मुंबई में अब तक पेट्रोल देखा जाए तो 106.68 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और अब कीमत बढ़ने के बाद ये रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 107.59 रुपए।
3: 5 दिन के अंदर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा है उससे लोगों का बजट जरूर हिल जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। इस वक्त हम हैं मुंबई, साउथ मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर कई सारे लोग हैं। हालांकि काफी देर पहले हमने देखा था कि खाली थी ये जगह, बहुत ज्यादा लोग भरा नहीं रहे थे, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ पर पेट्रोल पंप पे कुछ लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। ये बात करते हैं क्योंकि इस वक्त मुंबई में जो प्राइस है वो 107.55 रुपए हो गया है। और आइए मैम, आप पेट्रोल भरवाई, ये महंगा हो गया, इस पे आपको कुछ लग
4: गया ना? क्या ही बोल सकते हैं, जो भी वॉर चल रहे है अभी उसका इन्फेक्ट तो हो ही रहा है ना।
3: अवेलेबल है वही बड़ी बात है। हाँ, तो लेकिन जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है आपको लग रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बजट पे?
4: यस बिल्कुल, क्यों नहीं
3: इम्पैक्ट पड़,
4: यस इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना।
3: कैसे मैनेज करेंगे?
4: कर रहे हैं एडजस्टमेंट, तो इंडिया हर टाइम कर रहा है, वैसे ही करना पड़ेगा।
3: बिल्कुल, तो आपको जी काम पे जाना है, तो जैसे आपने सुना यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं इनसे भी बात करते हैं। दादा, आप गाड़ी में पेट्रोल भराने आए
5: हैं?
3: हाँ। भाव बढ़ गया, कुछ असर पड़ रहा है आपको?
5: वो तो पड़ेगा ही ना।
3: तो जैसे आपने सुना यहाँ पे लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जो बजट है वो काफी हिल जाएगा। कोशिश इनकी यही है कि अभी जब तक अवेलेबल है पेट्रोल डीजल तब तक वो अपना मैनेज कर लें, लेकिन जैसा कि कई बार सुनने को मिल रहा है कि रूरल एरियाज में अवेलेबिलिटी बहुत दिक्कत कर रही है, इससे काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। लेकिन क्योंकि शहर में इस वक्त पेट्रोल डीजल मिल रहा है जिसकी वजह से वो अभी अपना काम चला पा रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 107.55 रुपए हो गया है, वहीं डीजल जो है वो 94.07 रुपए हो गया है। तो काफ़ी बढ़त है और ये तकरीबन कह लीजिए जो कुछ दिनों पहले जो 3 रुपए बढ़ गया था उसके बाद ये जो बढ़त है, हालांकि इस कम बढ़ा है लेकिन फिर भी जो बढ़त है उससे लोगों का जो घर का जो बजट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
2: नीट पेपर लीक केस में आज फिर से महाराष्ट्र में सीबीआई की टीम अलग अलग शहरों में एक्शन लेती हुई नजर आई। लातूर से गिरफ्तार कोचिंग माफिया शिवराज के बेटे से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। उसके अलावा आरसीसी क्लासेस में पढ़ने वाले 3 छात्रों से और उनके माता पिताओं से भी सीबीआई ने घंटों सवाल जवाब किए।

0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में है। 18 मई को लातूर से गिरफ्तार किए गए आरसीसी कोचिंग के संचालक शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से भी पुणे में सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक कराने का सूत्रधार मोटेगांवकर के बेटे ने 12वीं की परीक्षा दी थी। जांचकर्ताओं को शक है कि उसे लीक हुए प्रश्न पत्र से फायदा मिला हो सकता है। उसके साथ साथ मोटेगांवकर की आरसीसी क्लासेस में पढ़ने वाले 3 छात्रों और उनके माता पिता से भी सीबीआई ने पूछताछ की। नीट लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच में आंच नागपुर तक पहुंच गई है। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर कथित परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने नागपुर में 2 संदिग्ध उम्मीदवारों के घरों पर पहुंचकर घंटों पूछताछ की। इधर नीट लीक केस पर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया के जरिए 22 लाख छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि छात्र हिम्मत ना हारें और 22 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा की तैयारी करें।
1: एक बार जब आप इरादा कर लेते हो, स्ट्रांग इरादा कर लेते हो, तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। भगवान आपकी मदद करता है। आप सब डॉक्टर बनोगे। हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी हालत में नहीं आने। 21 जून की अच्छे से तैयारी करो। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि सर पेपर लीक होना बंद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार थे। तो अगर सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग ईमानदार हों तो पेपर लीक नहीं होंगे, और सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग अगर बेईमान हों, करप्ट हों, तो रोज पेपर लीक होंगे।
0: इससे पहले सोमवार को दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को 9 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। लातूर से गिरफ्तार हुआ आरसीसी क्लासेस का संचालक शिवराज मोटेगांवकर खुद केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। उसकी कोचिंग में 25,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, जिसमें छात्रों से सालाना 50,000 तक फीस ली जाती है। लातूर के साथ ही नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में भी आरसीसी क्लासेस की शाखाएं हैं। आज तक को सीबीआई के रिमांड पेपर मिले हैं, जिससे खुलासा हुआ है कि मोटेगांवकर एनटीए से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल था।
2: नीट पेपर लीक स्कैम में अब लातूर का बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि लातूर के शिवराज मोटेगांवकर, जिनका एक आरसीसी यानी कि कोचिंग क्लासेस था, उन्हें लगभग 8 से 10 घंटे उनकी इंक्वायरी हुई, क्वेश्चनिंग हुई, और उसी के बाद पुणे के इस सीबीआई दफ्तर में लाया गया। यहीं पूरी क्वेश्चनिंग की गई और बाद में उन्हें अब हिरासत में लिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांढरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है।
0: इसी महीने हुई 3 तारीख को नीट एग्जाम के बाद भी शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
3: नीट 2026 आत्ताच पेपर झाला, माझ्यासोबत प्रणिती आहे, तिने आत्ताच पेपर देऊन आला। प्रणिती, आरसीसी मॉक मधून आरसीसी टेस्टिंग क्वेश्चन आले,
4: त्याच्या बाहेर क्वेश्चन आलाच ना।
3: तुम्ही खुश आहात आरसीसी?
4: हो,
3: खरंच खुश आहात। बायोलॉजी काय म्हणते?
4: सगळं एनसीआरटी बेस मॉक टेस्ट मध्ये जे विचारलं ते चालू।
3: आपल्या मॉक पेज सोपं होतं का अवघड होतं?
4: सोपं।
3: वा, छान। आणि माझं तुझं नाव ताई? ऋतुजा पण आहे। ऋतुजा बेटा, कसा गेला पेपर तुला? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो?
5: खूप छान गेला सर। आणि तुम्ही जे 101 क्वेश्चन दिले होते ना, ते 101 क्वेश्चन मधून मोस्ट ऑफ द आंसर्स आले होते।
0: इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक छात्र के पिता ने लातूर के एसपी ऑफिस में मोटेगांवकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीबीआई अब शिवराज से उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।
6: और फिर से उनके दफ्तर की छापेमारी करके फिर कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो संदिग्ध थे। उनका पीवी कुलकर्णी, पूर्व में जो प्रोफेसर, केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी अरेस्ट हुए, उन्हें भी वो करीब से जानते थे। पीवी कुलकर्णी कुछ वक्त के लिए मोटेगांवकर के साथ काम भी कर चुके थे, इसीलिए मोटेगांवकर को अरेस्ट किया गया और उन्हें अब सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। और अब ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि मोटेगांवकर ने किन किन लोगों को ये पेपर दिया था। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे ने आज अतिक्रमण अभियान की शुरुआत की है। रेलवे की टीम ने स्टेशन के पास से मौजूद 400 से ज्यादा झुग्गियों को गिराने की शुरुआत की है और यह कार्रवाई अभी 3 दिन और चलने वाली है। इससे पहले रेलवे ने साल 2017 में अवैध झुग्गियों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे। लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया है।

0: मुंबई के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे अतिक्रमण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चला रही है। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास 400 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे की इस कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, जिससे किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न हो। अतिक्रमण हटने के बाद खाली हुई जमीन का इस्तेमाल मुंबई से शुरू होने वाली 50 नई ट्रेनों के संचालन और बांद्रा टर्मिनस के विस्तार के लिए किया जाएगा।
1: मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गरीब नगर बस्ती पर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। 400 से 500 घरों की तोड़क कार्रवाई जो है ट्यूजडे सुबह से ही शुरू हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेशन के बाहर निकलते ही ईस्ट में जैसे आते हैं लोग, काफी गर्दी, भीड़ और आप कह सकते हैं ट्रैफिक देखने के लिए मिलती है। और उसका एक कारण यहाँ पर इसके आसपास प्रॉपर्टी पे हुए अतिक्रमण भी है और उस अतिक्रमण को अब वेस्टर्न रेलवे निकाल रही है। आपको बता दें कि ये पूरा कार्रवाई 2017 में वेस्टर्न रेलवे शुरू की, जिसके बाद क्योंकि मामला कोर्ट में गया इसलिए इतना समय लग गया। 100 लोग जो है उनके टेनमेंट्स लीगल माने गए हैं, उनको भी कहीं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जगह दी जाएगी और उनकी झोपड़ियां हटाई जाएगी। फिलहाल ये डेमोलिशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इस बस्ती के ठीक पीछे आप कह सकते हैं कि जो बांद्रा स्टेशन है वो लगता है। बांद्रा स्टेशन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाने के लिए इसी तरफ आना पड़ता है और वहां पर इस तरह का आप कह सकते हैं कि जो अतिक्रमण है वो कहीं ना कहीं छवि जो है मुंबई की वो खूब काफी खराब कर रहा था। दूसरी ओर आपको बता दें कि इस तरफ अगर आप जाते हैं तो बांद्रा टर्मिनस की जो रोड है वो है, तो ये यहाँ से स्ट्रेट आप जाते हैं, ये बांद्रा टर्मिनस जाने वाला रोड है। अब रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि बांद्रा टर्मिनस पे दो प्लेटफॉर्म बढ़ाकर तकरीबन 50 पैसेंजर ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं और उसके लिए कई बांद्रा टर्मिनस की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रेलवे पे लाना पड़ेगा और इसी के लिए ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाकर जगह बनाकर उस आने वाले फ्यूचर डेवलपमेंट की तैयारी है वो की जानी है।
0: अवैध झुग्गियों की वजह से जैसे ही कोई यात्री बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता था उसे झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका ही दिखाई देता था। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम रेलवे ने स्थानीय पुलिस की मदद से 400 अवैध झुग्गियों को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
2: अच्छा अच्छा, रास्ता खुला होना चाहिए। बहुत ही ऑटो रिक्शा नहीं मिलती, कोई जाना जाना रुक जाती, सब ब्रिज पे सब बैठ जाते सब, तो अच्छा हुआ है।
3: खराब इम्प्रेशन दिखेगा ना इसके वजह से। और ये तीन तीन माला चार चार माला बनाते, वो भी पतरा बाहर से और अंदर से पूरा कंस्ट्रक्शन, और इनको बेनिफिट देने के बाद वापस बनाते, तो इन्होंने एक कानून के हिसाब से उनको कुछ स्ट्रिक करना चाहिए। उसको एक टाइम बेनिफिट दिया, दूसरे टाइम अगर बनाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। पूरा पूरा गंदा दिखता है, मुश्किल हो जाता है, चलने को नहीं होता है लोगों को, फिर उसमें पॉकेट मार, चोर, दादागिरी बहुत चलता है। कुछ
0: रेलवे का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 4 दिन तक जारी रहेगा। कानूनी तौर पर रहने वाले 100 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले रेलवे ने साल 2017 में अवैध झुग्गियों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे।
4: जो आज की एक्टिविटी है हमारी, इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं हम, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात करते हैं हम, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की एक्टिविटी हम इमीडिएटली एग्जीक्यूट करें और जो हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इमीडिएटली हम इसको जो है एग्जीक्यूट करें। आज की जो ये एक्टिविटी है, इसकी तैयारी और इसकी जो नींव है वो ऑलमोस्ट 9 साल से ज्यादा पुरानी है। 2017 के पहले हमने एक्टिविटी और ये एविक्शन करने की कोशिश की थी अंडर पीपीई एक्ट। फाइनली ये 2017 के एंड में ये हाईकोर्ट में पहुंची और आफ्टर मल्टीपल हियरिंग्स, सारे पक्षों को सुनते हुए, लीगल स्क्रूटनी के बाद फाइनली 29 अप्रैल 2026 यानी कि पिछले महीने के लास्ट में माननीय हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया।
0: ये तोड़फोड़ रोजाना रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की बात है, जिन्हें स्टेशन के पास अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप।

नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन, फिनलैंड और डेनमार्क नेताओं के साथ भी अहम बैठक। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर की चोट, कहा न डबल स्टैंडर्ड न ही कोई समझौता, भारत नॉर्डिक संबंधों में स्वर्णिम युग का आगाज। वियतनाम के हनोई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत, जवानों को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हनोई में राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान जियांग से मिले, द्विपक्षीय बैठक में भारत वियतनाम रक्षा सहयोग की मजबूती पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री का बड़ा बयान, बोले देश के विकास में बाधा नक्सलवाद अब पूरी तरह से खत्म हुआ। बस्तर में गृहमंत्री अमित शाह बोले छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म हुआ, बीजेपी सरकार बनने के बाद खत्म हुआ खौफ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। आसनसोल नगर निगम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, ममता बनर्जी की तस्वीर हटाकर शुभेंदु अधिकारी की फोटो लगाने के बाद तनाव हुआ, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई कार्यकर्ता हिरासत में ले गए। आसनसोल के बनपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर बने तृणमूल कार्यालय पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे के आरोपों के बाद नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। आसनसोल हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन, रेलपार इलाके में माइकिंग कर रही सरकारी, नुकसान की भरपाई की चेतावनी, अब तक 31 की गिरफ्तारी। फलताम पुनर्मतदान से पहले टीएमसी को लगाया बड़ा झटका, जहांगीर खान ने वापस लिया नामांकन, 21 मई को होना है दोबारा मतदान। फलता सीट से जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर बीजेपी नेता का तंज, कहा दीदी के लोगों को हार का डर है, टीएमसी को पहले से ही रिजल्ट पता है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का फालता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन भव्य रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए लोग। फलता सीट पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के नाम वापसी पर सीएम शुभेंदु का तंज, बोले पुष्पा कहता था झुकेगा नहीं, लेकिन वही पुष्पा कहीं नजर नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी ने ममता सरकार पर फैसला पलटा, 2010 वाला फॉर्मूला लागू, अब सिर्फ 66 जातियों को मिलेगा फायदा। टीएमसी ने 21 मई को पश्चिम बंगाल में हॉकर्स की जबरदस्ती बेदखली और बुलडोजर कल्चर के खिलाफ आबड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन और बालीगंज के पास विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। नीट री एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल बैठक, अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा करवाने के निर्देश। रामचरितमानस विवाद और वकील से जुड़े मामले में सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी ने पीड़ित वकील को रामचरितमानस भेंट की और अखिलेश सिंह ने बीजेपी को बताया सनातन विरोधी। सीएम योगी के सड़क पर नमाज न होने के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, का यदि मस्जिदों में जगह कम है तो या तो सरकार सड़कें चौड़ी करवा दे या फिर मुस्लिमों को सड़कों पर नमाज पढ़ने दे। रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भगवान हनुमान की पूजा करके आशीर्वाद लिया। रायबरेली में जनसभा संबोधन के दौरान राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की ओर बढ़ रहा है आर्थिक तूफान और प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का निधन, 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उत्तराखंड में पूर्व सीएम खंडूरी के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक, आज हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। मॉडल त्रिशा की मौत की गुत्थी उलझी, सास का दावा मानसिक बीमार थी, बहू माता पिता ने भोपाल कोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग के लिए आवेदन दिया है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन की समझदारी के उपयोग की अपील पर समर्थन किया है। ईंधन बचत की अपील का असर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक कार की सवारी से पहुंची। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने महाराष्ट्र परिणामों के अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 12वीं में बोर्ड अंकों की और 100 परसेंटाइल के बीच अंतर को संदिग्ध बताते हुए इसकी तुलना नीट घोटाले से की है। मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में बाबा अशोक खरात पर ईडी का कार्रवाई, नासिक जेल में हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया था, बेनामी संपत्तियों और बैंक लॉकर्स को लेकर जांच होगी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम रेलवे, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 400 से 500 अवैध झुग्गियों पर चलाया प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली में इधर उधर नहीं फेंकी जाएंगी खंडित मूर्तियां, राजधानी में बनेंगे कलेक्शन सेंटर, वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा रिसाइकिल। दिल्ली में दंगों के आरोपी उमर खालिद को कटकडूमा कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत देने से किया गया इनकार। गुजरात के पाटन में तालाब क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर हंगामा, प्रभावित परिवारों ने वैकल्पिक आवास की मांग की है। कानपुर की फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल, ओवरटाइम के वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी, बोले कम ज्यादा और भुगतान काम बहुत ज्यादा भुगतान का। राजस्थान में विधायक रविन्द्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, काफिला रोके जाने पर बवाल हुआ था।
नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार। नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट।

अलर्ट मोड पर। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम की यात्रा। अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। मौसम को देखते हुए केदारनाथ में रोकी गई हेली सेवा। चमोली में आदि बद्री धाम में नौठा कौथीग लठमार मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर लोगों से फ्री ओपन डे का आयोजन। 4,500 से ज्यादा पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी। जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में शहर के कई कलाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचे। सिंधु सभ्यता से बॉलीवुड तक दिखाई दी भारत श्रृंगार कला की झलक। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, सफदरजंग और पाले में तापमान 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के इंडिया गेट पर घटी पर्यटकों की भीड़। बचाव के लिए मफलर गमछे का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हुई है। 208 के पार पहुंचा AQI। बढ़ते हुए प्रदूषण पर ग्रैप 1 लागू। कानपुर में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद, 31 मई से खुलेंगे। प्रशासन ने लू से बचाव की एडवाइजरी जारी की है। अयोध्या में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर है प्रशासन। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ORS की व्यवस्था की गई है। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली घरों के ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए चलाए गए कूलर। बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है पारा। वहीं भोपाल में तेज धूप के चलते सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी कर दिया हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। बच्चों और बुजुर्गों में दोपहर को बाहर निकलने के लिए मनाही। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंचा है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिनों के लिए हीट वेव का जारी कर दिया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पौंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा, जबकि बिलासपुर में 39 डिग्री दर्ज किया गया है पारा। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई। 21 और 22 मई को कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश का अनुमान। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने में मालखाने और उसके बाहर बने पार्किंग एरिया में भीषण आग लगी थी। थाना परिसर में धुएं का गुबार देखा गया। न्यू अशोकनगर थाने में मालखाने में जब्त गाड़ियों में 20 कारें जलकर खाक हुई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। रेवाड़ी में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी थी। विकराल रूप धारण किया। इलाके में अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। तेलंगाना के संगारेड्डी में ट्रांसफार्मर कंपनी में भीषण आग लगी। कचरा जलाते समय भड़की आग की लपटें, दमकल की टीम ने काबू पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण गर्मी के बीच खड़ी गाड़ी में लगी थी आग। वाहन बुरी तरह से जलकर खाक हुए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के जनरल कोच में बाथरूम से धुआं निकलने पर अफरा तफरी मची। RPF के जवानों ने कोच अलग करके स्थिति को संभाला। नूह के दो गांवों में अज्ञात कारणों से लगी आग में कई मवेशी झुलसे। घरों में गृहस्थी का सामान जलकर पूरी तरह खाक, लाखों का नुकसान। अहमदाबाद के सामने में पेंट कंपनी में भीषण आग लगी थी। केमिकल और थिनर के कारण तेज हो गई थी लपटें। 15 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। कर्नाटक के शिमोगा में विशाल मार्ट में लिफ्ट फंसने से 9 लोग फंस गए थे। दमकल विभाग ने रेस्क्यू करके सभी को बाहर निकाला। मेरठ में शमशान घाट से चिता की राख और अस्थियां निकालने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पालघर में सड़क हादसे में 13 बारातियों की मौत के बाद एक गांव के 12 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव में पसरा है मातम। महाराष्ट्र के अठाड़े में नाले में पानी फेंकने पर 2 पड़ोसी आपस में ही भिड़ गए थे। जमकर हुई मारपीट। मामले में 4 पर मामला दर्ज। महाराष्ट्र के वसई में ATM मशीन का वीडियो वायरल हो गया। तकनीकी गड़बड़ी के कारण 100 रुपए निकालने पर मिले 500 के नोट कैश के लिए उम्मीद थी भीड़। गुजरात के गिर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक। एक बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला बोला। सूरत की जमीन पर दलाल की गलती से दूसरे वाहन की डिग्गी में रखे 1,16,000 रुपए CCTV कैमरे की मदद से बरामद। पुलिस ने थाने में बुलाकर लौटाई रकम। जामनगर डेंटल कॉलेज में 1.25 करोड़ के घोटाले का आरोप। कर्मचारियों पर धन के गबन की शिकायत दर्ज करवाई गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले से महिला की मौत से इलाके में दहशत। वन विभाग ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। राजकोट में देसी शराब के जहर मिलाकर 2 लोगों की हत्या का खुलासा। पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी साजिश रची गई थी। मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकरा गई थी कार, बाद में लगी आग। 2 की मौत और 1 महिला की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यूपी के नाबालिग के धन परिवर्तन का मामला सामने आया। नौकरी के बहाने ले जाकर विशाल को बनाया हमजा। यूपी से JNK तक पुलिस जांच शुरू। सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल फिल्म 7 डॉग्स ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक्शन सीन करने के लिए इस्तेमाल हुआ 21,000 लीटर पेट्रोल। 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देशों में फिल्म 7 डॉग्स होगी रिलीज, जबकि भारत में यह फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

बंगला ने दुनिया भर में तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ा। कंतारा चैप्टर वन से हिंदी वर्जन की वर्ल्ड वाइड कमाई को पछाड़कर 276 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन, तुम्बा 2, द ग्रेट एस्केप, फरार में करेंगे अहम रोल। ईशा अंबानी के कपड़ों में दिखी मुगल काल की सदियों पुरानी कला। विदेश में स्कर्ट को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश किया गया। महज 5 दिनों के अंतर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बार किया गया है इजाफा। ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बीते हफ्ते दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब ब्रेड का पैकेट 5 रुपए तक महंगा हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से पैकिंग के सामान महंगे होने से बोझ बढ़ा। खाड़ी देशों के नेताओं की अपील के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला टालने का फैसला किया। इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। टीसीएस ने भारत में अपने कर्मचारियों की औसत सैलरी 6-8% बढ़ाने का ऐलान किया। सुस्ती के बीच देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का यह फैसला पूरे आईटी सेक्टर के लिए नया ट्रेंड साबित कर सकता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 10% कर्मचारियों की छंटनी करने का बनाया है प्लान। 7,000 कर्मचारियों को एआई विभाग में शिफ्ट करने की योजना भी बनाई गई। कर्मचारियों को मेमो भेजकर डिटेल्स शेयर की। ट्रंप के बाद चीन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। ट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले को 5,000 करोड़ रुपए देगा ईरान। इस मामले में संसद में बिल लाने की तैयारी में ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 वित्त मंत्रियों के दूसरे दिन की बैठक। वैश्विक संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। स्वीडन और फ्रांस में बड़ा रक्षा समझौता। स्वीडन फ्रांस के नेवल ग्रुप से खरीदेगा 4 नए युद्धपोत। दक्षिण कोरिया जापान में ऐतिहासिक समझौता। ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। ताइवान सीमा के पास दिखे चीनी लड़ाकू विमान। युद्धाभ्यास और गश्त करते हुए नजर आए चीनी विमान। लातविया के हवाई क्षेत्र में फिर से संदिग्ध ड्रोन घुसने से मच गया हड़कंप। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रूसी सीमा के पास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का भीषण हमला। 1 महिला की मौत हुई है। बच्चा समेत 3 लोग घायल हुए। कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में भीषण हमला। टायर शहर में उठा आग का धुआं। 12 गांव को तुरंत खाली करने का आदेश दिए गए। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस का कहर। अब तक 131 लोगों की मौत हुई है। 500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल की नियत पर उठ रहे गंभीर सवालों के बारे में बताएंगे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक विदेशी महिला पत्रकार ने सवाल न लेने पर हंगामा किया। देखते ही देखते भारत में तमाम नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया पर हीरो बना दिया और उनके फॉलोअर्स रातों रात 800 फॉलोअर थे उनके इस पोस्ट के पहले, और 800 से वो अभी जो हमने लास्ट बार चेक किया तो 32,000 हो गए। लेकिन जब हमने इस पत्रकार की क्रोनोलॉजी समझी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आज आपको बताएंगे कि ये महज इत्तेफाक था या कोई योजना थी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कोई राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने वाले सकरे रास्ते यानी चिकन नेक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम ने इसी इलाके को ब्लॉक करके भारत के टुकड़े करने की धमकी दी थी। खतरा इतना बड़ा था कि केंद्र सरकार इस जमीन को सुरक्षा एजेंसियों को सौंपना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इसमें रोड़ा बनी रही। लेकिन अब बंगाल में सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 120 एकड़ जमीन सीधा केंद्र को सौंप दी है ताकि वहां घुसपैठ रुक सके, रास्ते सुरक्षा के लिहाज से अच्छे हो सके और सीमा पर फेंसिंग हो सके। सवाल यह है कि क्या ममता सरकार में बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा से भी एक वक्त पर बड़ी हो गई थी। और इसके बाद आपको बताएंगे कि बंगाल में कल तक ममता बनर्जी की पार्टी के जहांगीर खान खुद को पुष्पा बता रहे थे, कहते थे वो झुकेगा नहीं। आज उसी पुष्पा की सारी अकड़ हवा हो गई। फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मैदान छोड़कर भाग निकले। सवाल यह है कि सत्ता में रहकर पुष्पा बनने वाला ये उम्मीदवार सत्ता जाते ही फायर से कायर कैसे बन गया। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 20% तक कम हो सकती हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है और कैसे पूरे देश में आज ये बात उठनी चाहिए कि हमें पेट्रोल और डीजल को जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन आज सबसे पहले हम उस इंपोर्टेड चश्मे की बात करेंगे जो भारत को भारत की नजर से देखना ही नहीं चाहता। हम आपसे पूछते हैं कि आप भारत को किस नजर से देखते हैं? आप भारत को अपने देश की नजर से देखते हैं या आप भारत को इस निगाह से देखते हैं कि यहां सरकार किसकी है? फिर तय करेंगे कि भारत पर क्या राय बनानी है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की समीक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए देश को भूल जाना सही हो सकता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग थी तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। वो भी मोबाइल उनके पास था, शायद वहीं से वो सवाल पूछती हैं। ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि वो मोबाइल या वो माइक उनके मुंह पे, उस महिला पत्रकार के मुंह के तो करीब था, वो आवाज उनके मोबाइल में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन वहां तक गई या नहीं। अब उन्होंने क्या कहा? इस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं दे रहे। ये बात भी तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से जा रहे थे और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये सब हुआ है। इस मीडिया ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री अपनी बातचीत का सिर्फ ब्यौरा देने आए थे और यह तय किया गया था कि दोनों प्रधानमंत्री अपनी तरफ से आपसी सहयोग पर जो फैसले लिए गए हैं उस पर जानकारी देंगे। लेकिन फिर यह घटना हुई जब अंत हो चुका था, प्रधानमंत्री निकल रहे थे और तब हुई जब वहां ब्रीफिंग रूम में कई पत्रकार बैठे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक महिला पत्रकार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं ले रहे और उन्होंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी बात यह है कि इस घटना का पूरा वीडियो इस महिला पत्रकार ने उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। इस घटना से पहले हम आपको बता दें इस महिला पत्रकार के थे 840 फॉलोअर टोटल, लेकिन आज शाम तक इनकी संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है। हजारों फॉलोअर्स जानते हैं कैसे बढ़े इस पूरे मामले में, तो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने नॉर्वे की इस महिला को एक्स पर फॉलो करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जो भदोही शहर है वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस महिला पत्रकार को फॉलो किया और अच्छा ही किया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आप जिसे चाहें उसे फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ इस महिला पत्रकार को कांग्रेस सिर्फ इसलिए हीरो बना रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो संदेह पैदा करती है। इस महिला पत्रकार का नाम है हेलेलिंग, जिन्होंने भारतीय समय अनुसार 5:32 पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहला एक्स पोस्ट किया था। शुरुआत में इस पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला। 17 बीत गए और सिर्फ 814 अकाउंट्स तक ये पहुंच पाई क्योंकि इतने ही उनके फॉलोअर्स थे। इसका बड़ा कारण यह था कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिखा गया था, इसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब 17 बाद इस पोस्ट को एडिट किया गया, यानी पोस्ट में बदलाव किए गए और इस पोस्ट में इस बार इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लिखा गया, नाम जोड़ा गया नरेंद्र मोदी। और यहां से यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ, 90 से ज्यादा अकाउंट्स तक यह पोस्ट पहुंच चुका है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हेलेलिंग को किसी ने यह सलाह दी कि वो अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम डाले, या स्वतः उनको यह ज्ञान आया कि नरेंद्र मोदी का नाम लिखने से यह पोस्ट बहुत तेजी से भागेगा। इस पोस्ट पर जब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लगे तब भारत के विदेश मंत्रालय ने यह लिखा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं और अगर ये पत्रकार कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो वहां पर ये आ सकती हैं, उनको उनके सवाल का जवाब मिलेगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की इस महिला पत्रकार से तीखी नोकझोंक हुई और इस नोकझोंक का कारण यह था कि ये पत्रकार भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल पूछ रही थी। और यहां पर एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूं, आप इस महिला की भाषा को सुनिए। प्रधानमंत्री की भी सामने उसने अपने देश को तो बड़ा दिखाया लेकिन भारत को नीचा दिखाया। यहां पर भी जब वो विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई जहां पर सवाल लिए जाते हैं, वहां पर भी इसने कहा कि हम भारत पर विश्वास क्यों करें। इसे ही कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर अपने आप को खड़े कर सवाल पूछना जहां पर आपको लगता है आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, आप पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट पे हैं, और फिर झड़क कर सवाल पूछकर यह तमतमाते हुए निकल जाना, हम भारत पर क्यों विश्वास करें, जैसे भारत कोई छोटा और नगण्य देश हो और उनका देश बहुत बड़ा। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भारत को कुछ रिपोर्ट से जज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जवाब दिया, मानवाधिकारों पर बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम आप पर क्यों विश्वास करें, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कहां करते हैं, आप समझ रहे होंगे। अगर ये पत्रकार ऐसा कह रही हैं तो भारत उनके सवाल पर भरोसा क्यों करे, आज ये करारा जवाब इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। इस दौरान ये पत्रकार वहां से उठकर भी चली गई और जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक्सपर्ट बताया कि मैं पानी पीने चली गई थी। मतलब सवाल पूछा, सवाल पूछने पर जिद पर अड़ी रही कि तुरंत जवाब दीजिए, फिर बाहर निकल गई पानी पीने, फिर वापस आई आगे का जवाब सुनने, आप खुद तय कीजिए। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत उनके सवाल पर विश्वास क्यों करे। अब यह बात इसलिए अहम थी क्योंकि इस पत्रकार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो लोगों के मन में शक पैदा करती हैं। जैसे इस पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से पहले अपना आखिरी एक्स पोस्ट जानते हैं कब डाला था, 10 अप्रैल 2024 को लिखा था। सवाल यह उठ रहा है कि जिस अकाउंट पर पिछले 2 से एक पोस्ट नहीं लिखा गया उस पर आज अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का निशाना बनाने के लिए यह पोस्ट आखिर कैसे आया। दूसरा सवाल उस अखबार को लेकर है जिसमें ये पत्रकार काम करती है। इस अखबार का नाम है डैग सेविसन और पहले ये नॉर्वे की नॉर्वेजियन लेबर पार्टी का मुखपत्र यानी माउथपीस हुआ करता था। अब नॉर्वेजियन लेबर पार्टी नॉर्वे की वही राजनीतिक पार्टी है जो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के साथ एक प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। इस प्रोग्रेसिव अलायंस में हमारे देश की कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि जो अखबार नॉर्वे में लेबर पार्टी का माउथपीस रहा और जिसका संबंध कांग्रेस से है, उसी से जुड़ी हुई पत्रकार 2 बाद अपने एक्स अकाउंट से अचानक प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला करती है और जिसके सांसद स्वेर मिरली से साल 2013 में राहुल गांधी भी मिल चुके हैं, उसी की पत्रकार ने उसी मैगजीन जिसका माउथपीस जो इस पार्टी के माउथपीस है उस मैगजीन से जुड़ी हुई ये पत्रकार अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया ब्रीफिंग में ये सवाल उठाती हैं, उसको रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसको पोस्ट करती हैं। उसके बाद भी उनकी आक्रामकता घटती नहीं। जब उनको बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बुलाया जाता है तो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आक्रामक अंदाज में सवाल पूछती हैं और डिमांड करती हैं कि उनको तुरंत जवाब दे। फिर वो बाहर भी चली जाती हैं, फिर आती हैं और पोजीशन ऑफ पावर और एंटाइटलमेंट से पूछती हैं कि हम आप पर क्यों विश्वास करें, व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्रेसिव अलायंस में जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं, जिसके संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को हमारी भारत सरकार ने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। और जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। हमने इस पत्रकार द्वारा लिखे गए कुछ लेखों को भी पढ़ा, जिनसे ये पता चलता है कि इस पत्रकार ने इससे पहले कई मामलों में शी जिनपिंग की खूब तारीफ की है और चाइना को सुपर पावर बताया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की खूब आलोचना की। लेकिन हमारे देश में इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इस पत्रकार को असली हीरो अब बताया है जब उन्होंने ये पोस्ट वीडियो बनाकर डाला। आज ये पत्रकार अपने एक पोस्ट में लिख रही है कि वो राहुल गांधी का इंटरव्यू करना चाहती है और इसने इंस्टाग्राम पर कांग्रेस को फॉलो भी कर लिया, जो इकलौती राजनीतिक पार्टी है। और आप इस लिस्ट को देखिए कि कैसे कांग्रेस के जिला स्तर से लेकर बड़े नेता इस महिला को एक्स पर फॉलो कर रहे हैं और इसकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है। इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी उन्होंने एक्स में। वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है। और नॉर्वे की पत्रकार कौन होती है ये पूछने वाली कि हम भारत पर क्यों विश्वास करें। यहां भी ये सोचने की बात है कि मतलब हर तरीके से आप देखिए तो इस पत्रकार ने हर बार अपने देश को तो भारत से ऊपर रखा। ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे, जबकि भारत को इसने ऐसे पेश किया जैसे हमारे यहां कोई नैतिकता, कोई विश्वास, कोई मानवाधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने फिर भी इनको सबसे बड़ा हीरो बनाया और सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी हार है। जो पत्रकार अपने देश को ऊपर रखती है, भारत को कुछ नहीं समझती, वो भारत में आदर्श बन जाती है। और इस देश के कई लोग, नेता एक बार नहीं कहते कि जिस पत्रकार ने भारत की गरिमा को कम समझा वो उसे कैसे महान मान ले। आज इस बात पर भी पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर इनका व्यवहार कैसा था। कई सारे ऐसे लोग जो इस सरकार की आलोचना भी करते हैं वो आज इस महिला पत्रकार की आलोचना इस बात पर कर रहे हैं कि सवाल तो आप पूछ सकते हैं, आलोचना भी करते हैं वो आज इस महिला पत्रकार की आलोचना इस बात पर कर रहे हैं कि सवाल तो आप पूछ सकते हैं लेकिन आपको जवाब कैसे मिले और जवाब क्या मिले ये आप तय नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बार बार एमईए की इस प्रेस ब्रीफिंग को इंटरप्ट करने की कोशिश की, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मैल इंटेंशन के साथ वहां पर बैठी हुई थी और इसी वजह से वो बार बार उनके हर लाइन पर टोक रही थी और एक आक्रामकता दिखाने की कोशिश थी। और एमईए की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा था उसको सुनने में उनकी रुचि कम और अपनी बात कहने में उनका जोर ज्यादा था। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर अभी ऊर्जा संकट का हल नहीं निकला तो बीते कई दशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात नीदरलैंड्स के एक कार्यक्रम में कही और ऐसे वक्त में कही जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में मंदी की आशंका जताई जा रही है। सुनिए।
1: भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है। लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। पिछले 12 सालों में इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया था। साल 2020 में जब कोविड आया, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तब भी पीएम ने ऐसी बात नहीं की थी। कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा उन्होंने पहली बार कहा है। आज वो ऐसा कह रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़े संकट की आहट मानी जा रही है। क्यों, अब उसे कुछ आंकड़ों से समझिए। युद्ध शुरू होने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे। 4.18 trillion dollars की हो गई थी। इस मामले में जापान भी हमसे पीछे चला गया था। लेकिन ईरान युद्ध के कारण जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना और रुपया कमजोर हुआ, उससे भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान से सीधे छठे स्थान पर खिसक गया। ये वही स्थान है जिस पर भारत साल 2018 में था। यानी मौजूदा ऊर्जा संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था को 8 साल पीछे धकेल दिया और ब्रिटेन और जापान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से हमसे आगे निकल गई। इन आंकड़ों से आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि इस ऊर्जा संकट के कारण बीते दशकों की मेहनत बेकार हो जाएगी। असल में सारी कहानी करेंसी की होती है। करेंसी वो स्तंभ है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था का भार होता है। अगर किसी देश की करेंसी मजबूत हो तो उसके लिए विदेशी मुद्रा में आयात यानी दूसरे देशों से अपनी जरूरत का सामान खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसके पैसे में दम होता है। ऐसी स्थिति में करेंसी की वैल्यू ज्यादा होने से आयात बिल स्थिर रहता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव नहीं बढ़ता। लेकिन इसी जगह जब करेंसी कमजोर हो जाए तो एक चक्र की तरह अर्थव्यवस्था को लेकर आम आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ने लगता है। जैसे इस ग्राफिक से समझिए कि रुपया कमजोर होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, डॉलर महंगा होता है तो आयात यानी इंपोर्ट महंगा हो जाता है। एक एक करके मेरे सामने से देखिए जो लिखा हुआ है। इंपोर्ट महंगा होता है तो तेल महंगा हो जाता है, तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जो माल ढुलाई हम कहते हैं ट्रक से जो भी आवाजाही होती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, इससे महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। इसी के साथ महंगाई का बड़ा असर आपकी नौकरी, सैलरी सब पर पड़ता है। जो लोग गरीबी रेखा के पास है उनके फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने लगती है ना, और अब अर्थव्यवस्था की गति धीमी होती है तो निवेशक डरकर भारत जो बाजार है हमारा, भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालने लगते हैं। और जब यह होता है तो रुपया और कमजोर होता है, यह चक्र बन जाता है। और अभी यही हो रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि कैसे भारतीय रुपया इस वक्त बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है और कैसा ये जो रुपया का डिवैल्यूएशन है वो लगातार दिख रहा है और एक बड़े संकट के तौर पर अब पूरे देश के सामने आ गया है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप 27 फरवरी 2026 को देखेंगे तो यह है मामला जिसमें ये 90.95, मतलब ये अभी फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तब 27 फरवरी का आप वैल्यू देखिए क्या है। कलर्स इसमें लाइट हो गए, ठीक है। और जब आप यहां पे देखेंगे तो ये 96 रुपया हो गया, तो 96 रुपये इसकी स्थिति हो गई है, 96.34। और ये साफ साफ बता रहा है कि जो पैसा टूटा है, आप लोग सोचिए 5.39 यानी मतलब 5.39 रुपए मतलब लगभग 5.92%। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। रुपया का कमजोर होना किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब संकेत लाता है। और खराब संकेत क्यों लाता है, क्योंकि आप जितना भी बाहर से सामान खरीदते हैं उसके लिए आपका ज्यादा रुपया खर्च होता है, क्योंकि उसका वैल्यू घट चुका है। अब देखिए, जब आप अगला नंबर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये वाला, ये करते हैं दूसरा। अब आप देखिए 27 फरवरी को जो भारत यूरो सब का हम आपको वैल्यू बता रहे हैं, फिर 18 मई का देखिए और अंतर देखिए। तो सिर्फ तीन मतलब दो किस किस को फायदा हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको, ये समझ गए कौन, चीनी युआन। क्योंकि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने अपने तेल, रशिया की तो जबरदस्त फायदे में रहा है रशिया सबसे ज्यादा। और अगर कोई इस पूरी वैश्विक परिस्थिति में सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले करता हुआ दिख रहा है तो वो व्लादिमीर पुतिन और रूस है। क्योंकि जैसे ही हॉर्मुज से पूरा तेल बाधित हुआ, सबसे ज्यादा रशिया ने कच्चा तेल पूरे विश्व में बेचा, भारत ने भी अपनी जो खरीद है वहां से बढ़ा दी है। और इसी वजह से डॉलर के मुकाबले अगर कोई एक करेंसी है जो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है तो वो रूसी रूबल है। और देखिए लगभग 4.201 का फायदा, बाकी सारे लॉस में चल रहे हैं सबसे ज्यादा। लेकिन इस लिस्ट में अगर आप देखिए तो पहले नंबर पर -5.34 यानी 5.87 की जो गिरावट है वो भारत के रुपए में दिख रही है। उसके बाद से जापानी येन है जो आप देख रहे हैं लगभग 0.25% के आसपास गिरी है। और ऐसे ही उसके बाद से यूरो भी गिरा है डॉलर के मुकाबले लेकिन कम है, ब्रिटिश पाउंड भी गिरा है डॉलर के मुकाबले लेकिन ये उससे भी कम है। और इधर आप देखिए तो बांग्लादेशी टका भी गिरा है जो उससे कम ही दिखेगा, सबसे कम दिख रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि क्या हालत है इस वक्त, और रुपया का ये गिरना क्यों भारत के लिए एक बहुत जबरदस्त खतरनाक संकेत लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जब आप देख रहे हैं तो कैसे ये 26 मई और 18 मई के बीच का जो ये डिफरेंस दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि किस तरह की परेशानी रुपये के सामने आ गई है। और अब तो सबसे बड़ी आशंका ये जाहिर की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेंचुरी तक पहुंच जाए, क्योंकि तब और भी परेशानियां बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर जब आप देख रहे हैं तो रुपए का कमजोर होना सबसे बड़ी चिंता का सबब है, और रुपए का कमजोर होना इस बात का साफ साफ संकेत है कि हम जो भी सामान अब विदेश से खरीदेंगे, जो हमको खरीदना ही है मजबूरन, तेल लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, दवाई लेनी है, उन सब में हमारा ज्यादा रुपया खर्च होगा क्योंकि डॉलर के मुकाबले वो रुपया कमजोर हुआ है। अब ये समझिए कि रुपया कमजोर क्यों हो रहा है और इसका आपके बजट पर क्या असर होगा। पहला कारण यह है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो भारत को ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है जिससे वो तेल और दूसरा सामान बाहर से खरीद सके। डॉलर की मांग बढ़ने और देश में डॉलर कम आने से रुपया कमजोर हो रहा है, हमें ज्यादा रुपये देकर डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं और अभी की स्थिति खराब हो रही है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, यानी जो विदेशी निवेशक है वो भारत के बाजार में कम पैसा निवेश कर रहे हैं, और जो पैसा उन्होंने निवेश किया भी है उसे वो निकाल कर दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। तो डॉलर की कमी, आप इन आंकड़ों को देखिए, 2001 से 2005 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 तक थी, और यूपीए की एक साल की सरकार में जितना विदेशी निवेश भारत में आया वो हमारी जीडीपी के 2.7% के बराबर था। 2006 से 2010 के बीच यूपीए सरकार में जितना आया वो जीडीपी के 4.5% के बराबर था। 2011 से 2015 के बीच लगभग 3.9% के बराबर विदेशी निवेश आया, लेकिन अब के दौरान में 2016 और उसके बाद से आप देखिए तो ये विदेशी निवेश 2.4 और 1.9 पर पहुंच गया है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डॉलर का भारत में नहीं आना, विदेशी निवेश नहीं आना, या जो विदेशी निवेश है उसको जो फॉरेन बायर्स हैं वो अपना पैसा ले जाए यहां से देश से, ये सब रुपया को कमजोर करता है। अब बड़ी बात यह है कि अगर रुपया कमजोर हुआ तो इससे न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि सरकार को अपनी कई योजनाओं के खर्च में भी कटौती करनी ही पड़ेगी। सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर जो पैसा खर्च करती है, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन देती है, योजनाओं पर इस संकट का असर पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इससे लोगों पर आर्थिक दबाव आएगा, रुपया कमजोर होगा तो भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनने में जो तय साल था, जिस तेजी से हम बढ़ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा। पहले अनुमान था कि भारत 2028 तक इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन अब SBI की रिपोर्ट कहती है कि गिरता रुपया 2030 तक भी भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था शायद ना बनने दे। अब सवाल यही है कि हॉर्मूज की लड़ाई है, ईरान अमेरिका इसराइल का युद्ध है, लेकिन हॉर्मूज और उसकी जंग हमारी प्लेट, हमारी कार, हमारे जीवन तक अब भारी भरकम रूप में पहुंच रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स में कहा कि ये ऊर्जा संकट कई देश दशकों की मेहनत को बेकार कर रहा है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि संकट की घड़ी में समझदारी से खर्च कीजिए। ये ध्यान रखिए कि आप बचत ही जो करेंगे वही आपको इस संकट से आने वाले वक्त में बाहर निकालेगा। यहां हम इस दावे का भी एक फैक्ट चेक करना चाहते हैं जिसमें यह लिखा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। यह जानकारी बिल्कुल गलत है। दुनिया के 5 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में आज भी भारत का नंबर 5वें स्थान पर है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया के बाद $697 billion का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास ही है। 5वें नंबर पर हम हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भारत में संकट की स्थिति नहीं है, ये तय है। हमने आपको एक एक नंबर के साथ बताया कि कैसे हमें तैयारी रखनी चाहिए और कैसे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये संकट की स्थिति है, लेकिन अगर समझ बूझ के साथ हम चले तो इससे उबर पाएंगे। भारत में आज भी दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 87 पैसे, कोलकाता में 96 पैसे, मुंबई में 91 पैसे, चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 82 पैसे महंगा हुआ। इसी तरह 1 लीटर डीजल में 90 पैसे महंगा हुआ और पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ गई हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल आने वाले दिनों में प्रति लीटर 10 रुपए तक महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। पिछले हफ्ते तक तेल कंपनियों को हर दिन कुल 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन जब प्रति लीटर 3 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ये घाटा 250 करोड़ रुपए कम हो गया। अब अगर इस घाटे को पूरी तरह शून्य करना है तो सरकार को प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 रुपए बढ़ानी होंगी और इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 77 पैसे हो जाएगा, सेंचुरी पार। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका कोई समाधान है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहे या मौजूदा कीमतों से कम हो जाए? तो इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाए तो कीमतें कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है जैसे पेट्रोल डीजल GST के 5% के स्लैब में आता है तो इसकी कीमतें 81 रुपए हो जाएंगी, 12% स्लैब में आता है तो 87 रुपए हो जाएंगी, 18% में आता है तो 91 रुपए हो जाएंगी, 28% के स्लैब में भी आता है तब भी 100 से कम 99 रुपए का होगा, और अगर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई तो ये 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए का भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर GST के दायरे में लाने से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है तो फिर ऐसा किया क्यों नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे हमारी सरकारें हैं और इन्हें तेल पर मिलने वाला भारी भरकम टैक्स है। असम में पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने का फैसला साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी से नहीं लिया जा सकता। तो असल में अगर आप देखिए तो सिंपल मेजोरिटी से इसको नहीं लाया जा सकता GST के दायरे में। GST का काउंसिल होता है जिसमें केंद्र भी है, जिसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी आते हैं। तो GST काउंसिल में फैसले वेटेड वोटिंग सिस्टम से होते हैं जिसमें वोट करने वाले सदस्यों के कुल वेटेड वोट का 75% समर्थन जरूरी होता है। अभी केंद्र सरकार के वोट का वेटेज 1/3 है, 33.33%, जबकि सभी राज्यों के वोट मिलाकर 2/3 यानी 66.67% वेटेज रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो केंद्र सरकार अकेले कोई फैसला ले सकती है और ना ही राज्य सरकारें अकेले कोई निर्णय पास करा सकती है। 75% समर्थन की शर्त का मतलब है कि पेट्रोल डीजल को GST में लाने के लिए केंद्र और बड़ी संख्या में राज्य दोनों की सहमति जरूरी है और यही कारण है कि सालों से इस पर चर्चा होने के बावजूद अब तक सहमति नहीं बनी। अगर पेट्रोल GST के तहत आता है तो कई आर्थिक गणनाओं के मुताबिक इसकी कीमतों में लगभग 20% तक कमी आ सकती है। और इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आने वाले वक्त में महंगाई को भी हम नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि माल ढुलाई से ही, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ही सब पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। और अगर साथ ही पूरे देश में ईंधन की कीमतें लगभग एक जैसी होंगी, है ना, ये जो अभी हम आपको बताते हैं, दिल्ली में कुछ कीमत, मुंबई में कुछ कीमत, दूसरे राज्य में कुछ और कीमत, चेन्नई में अलग कीमत, कोलकाता में अलग, वो खत्म हो जाए, एक दाम पूरे देश में चलेगा। अलग अलग राज्यों के वैट अलग अलग है, सेस की वजह से हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग होती है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा विवाद राज्यों की कमाई का है। जैसे पूरे देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 31% वैट आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार वसूलती है, 31%। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार प्रति लीटर 4 रुपए वैट, 1 रुपए रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूलती है। इसके बाद है तेलंगाना, जहां पर सबसे ज्यादा वैट रेवंत रेड्डी की सरकार वसूलती है। कांग्रेस की सरकार है जो इन कीमतों को सबसे ज्यादा मुद्दा बना रही है। तेलंगाना की सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 35.2% वैट वसूलती है और 1 लीटर डीजल पर 27% वैट वसूल लेती है। तीसरे स्थान पर है केरल, जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता है। इससे पहले एलडीएफ की सरकार थी, तब से 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 30% सेल्स टैक्स, 1 रुपए अतिरिक्त सेल्स टैक्स, 2 रुपए सोशल सिक्योरिटी सेस, 1% अलग से सेस लिया जाता है। और केरल में डीजल पर भी राज्य सरकार के टैक्स की यही कहानी है। इसके बाद चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश, बीजेपी की सरकार है। 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र, यहां भी बीजेपी की सरकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही पार्टियां अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलती हैं, क्योंकि आपको इतनी अंदर की बात पता नहीं होती, इसलिए आप सोच लेते हैं कि यह सारा टैक्स अकेले केंद्र सरकार को जा रहा है, जबकि ये बात सच नहीं है। राज्यों को जो वैट मिलता है वो उसमें भी सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक है उनसे नोच लिया जाए। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जब तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन जब इन्हीं तेल कंपनियों को फायदा हो रहा था तब इनके द्वारा ये कीमतें कम नहीं की गई। तो जो प्रॉफिट इन्होंने उस वक्त कमाया है वो कहां गया? जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2022 से 2025 के बीच 97,625 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इन्हीं 4 सालों में 65,122 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 48,114 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ओएनजीसी ने भी इन 4 सालों में पेट्रोल डीजल की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और सोचिए, इतना मुनाफा जब इन तेल कंपनियों ने कमाया तो उस वक्त तो तेल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन आज जब कच्चा तेल महंगा होने से इन्हें घाटा हो रहा है तो इन तेल कंपनीज ने प्रति लीटर 4 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। और यही है तेल की पूरी कहानी। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको अब जो राजनीतिक खबरें हैं देश के अंदर की उनमें बताएंगे पश्चिम बंगाल की हालत। टीएमसी की सरकार थी अब तक, तब चिकन नेक कॉरिडोर का इलाका केंद्रीय एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपा गया, ये सवाल आज जरूरी क्यों है, इसे आप अगले 5 मिनट में अच्छी तरह समझ पाएंगे। और उसके बाद आपको हमारे देश की मुस्लिम वोट बैंक वाली जो राजनीति है ना, उस पर बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि सोचिए देश से भी बड़ा कुछ हो जाए वोट। साल 2020 में जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब इन दंगों के मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम ने कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी इकट्ठा हो जाएं तो चिकन नेक को बंद करके भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से पूरी तरह काट दिया जाएगा। ये चिकन नेक आप देख रहे हैं, ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो भारत का ये हिस्सा बिल्कुल कट जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। शर्जिल इमाम ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि चिकन नेक के इलाके को मुस्लिम अक्सरियत माना जाता है। मुस्लिम अक्सरियत का मतलब यह है कि यहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अब ये बात इतनी खतरनाक थी कि इसके कारण शर्जिल इमाम को आज तक अदालत से जमानत नहीं मिली। ये भारत के खिलाफ था कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को काट दो बाकी भारत से, जबकि केंद्र सरकार ने भी ऐसी कई कोशिशें की जिससे चिकन नेक का इलाका उसकी एजेंसियों को, बीएसएफ को मिल जाए ताकि पूरी तरह हम इसे सुरक्षित कर सकें। ये भारत के नजरिए से स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो अगर कट गया तो हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्य हमसे कट जाएंगे। ये कोशिशें इसलिए हुई क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों का नहीं था, खतरा यह था कि हमारे यहां जो मुसलमान इस इलाके में रहते हैं उनसे चिकन नेक कॉरिडोर का गला घोटने के लिए कहा जा रहा था, और यह कोई मामूली बात नहीं थी। तभी कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया। आप सोचकर देखिए कि जो इलाका पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है उस इलाके पर सिर्फ इसलिए संकट खड़ा होने लगा क्योंकि यहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये कोई दिल्ली में किसी एक जगह पर शाहीन बाग पर रोड जाम करके ट्रैफिक जाम करने की बात नहीं थी, ये पूरे देश के दो हिस्से करने की बात थी, उसके लिए लोगों को उकसाने की बात थी। और हमें ये सोचना पड़ा कि अगर वाकई में इन मुसलमानों ने किसी के बहकावे में आकर चिकन नेक को बंद कर दिया तो आगे क्या होगा। इसी डर और चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिकन नेक के इलाके को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग की। ममता बनर्जी को इसके लिए कई प्रस्ताव भेजे लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस महीने सरकार बदली। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन सीधा केंद्र सरकार को सौंप दी। अब यह जमीन बॉर्डर फेंसिंग, नेशनल हाईवे, सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए इस्तेमाल होगी। और भी सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ सीमा पर एक बाड़ लगाएगी। चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अब यहां मुद्दा यह नहीं है कि टीएमसी ने यह जमीन केंद्र को क्यों नहीं दी और बीजेपी ने क्यों दे दी, असली मुद्दा तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में टीएमसी और बीजेपी की बात कहां से आ गई। क्या जो कॉरिडोर भारत के लिए इतना संवेदनशील है उसे सुरक्षित करने के लिए कोई भी पार्टी टीएमसी को यह जमीन केंद्रीय एजेंसियों को नहीं सौंप देनी चाहिए थी। कल्पना कीजिए अगर बीजेपी इस बार भी चुनाव में नहीं जीतती तो ऐसे ही चलता और नहीं चलता, और अगर केंद्र को यह जमीन नहीं मिलती तो यह चिकन नेक कॉरिडोर हमेशा के लिए भारत की एक सेंसिटिव पॉइंट बनकर रहता। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या ऐसा मुस्लिम वोट बैंक के कारण हुआ, और आखिर चिकन नेक के आसपास इतनी मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाती हूं जिसकी वजह से यह पूरी बात सामने आती है कि क्या यहां पर जो मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ यह है कि यहां पर दरअसल इन्फिल्ट्रेशन के साथ अवैध घुसपैठिए आ गए हैं और इसी वजह से उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं जो मैं आपको इसके जरिए दिखाना चाहती हूं। अब ये देखिए, ये जिस चिकन नेक कॉरिडोर की बात हो रही है ये देखिए ये वाला हिस्सा है। अब ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ये राउंड आप देख रहे हैं, इतनी सी जगह है ये। अब यहां से आप इसको लेकर आइए, चौड़ाई कितनी है 22 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 60 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि यही बस इसका पूरा रेंज है। अब अगला दिखा दीजिए, अब यहीं पर अगर कटता तो हमारे पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो हमसे अलग हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी संवेदनशील ये जगह है। अब जब आप देखेंगे जिस मुस्लिम पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे तो ये यहां पर फिर से देख लीजिए क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि असल पॉइंट क्या है। ये देखिए ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो डार्क ग्रीन आप एरिया देख रहे हैं, चिकन नेक कॉरिडोर यहां पर है। उत्तर दिनाजपुर, ये वो तमाम जगह है जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। यहां पर आबादी कितनी है उत्तर दिनाजपुर में 50%। दक्षिण दिनाजपुर जो नीचे का हिस्सा है, पतले वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, नीचे में 25% है। फिर आइए मालदा, ये जो पूरा इलाका है यहां से होते हुए आ रहे हैं, ये 51% है। और मुर्शिदाबाद में देखिए जो बांग्लादेश से लगी हुई जगह है, 66% मुस्लिम आबादी है। तो ये आप समझ रहे हैं ये पूरा इलाका जहां पर भारी मुस्लिम आबादी है, ये बड़ी वजह, क्योंकि बाकी इलाकों में ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए माना जा रहा है कि क्या यहां पर जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके आने की वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, वो ज्यादा हो गए। यही नहीं, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की क्यों बात करते हैं, आप ये चिकन कॉरिडोर से सटा हुआ ये तमाम इलाका देखिए। किशनगंज बिहार का 68% मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया देखिए 38% मुस्लिम आबादी है। जो राज्य का एवरेज मुस्लिम आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर आबादी है और इसीलिए इस पर आज सवाल पूछे जा रहे हैं। कटिहार में देखिए 44% है, ये भी सरहद के इलाके। तो ऐसा क्या है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए जो सरहदी इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों चाहे वो बिहार के हों, वहां पर जो एवरेज है स्टेट का उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि क्या वहां पर अवैध घुसपैठिए हैं और अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो कैसे ये बड़े संकट का सबब बन सकते हैं और कैसे ये हमेशा एक गले की फांस बना रहेगा कि कहीं यहां पर कोई बड़ा खतरा ना पैदा हो जाए। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अब भारत सरकार इस इलाके में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बना रही है ताकि भविष्य में अगर यह रास्ता बंद भी हो तो आवाजाही जारी रहे। अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत का संपर्क कभी नहीं टूटेगा। अब गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बंगाल में सरकार बनने से पहले कहा था कि चिकन नेक कॉरिडोर को भारत से कोई नहीं छीन सकता।
2: ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या?
0: और गृहमंत्री अमित शाह की ये ललकार आज सच में तब्दील होती हुई दिख रही है जब ये भारत का अति संवेदनशील इलाका अब केंद्र के हाथों में आ गया है और अब इसकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की एक और खबर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ घट रहा है जब से बीजेपी की सरकार वहां बनी है। आज से सबसे बड़ी खबर फलता विधानसभा क्षेत्र से आई है। जी हां, वही सीट जहां 21 मई को दोबारा मतदान होना है। इस सीट से टीएमसी ने जहांगीर खान को अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन देखिए आज क्या हुआ। वही जहांगीर खान जो अपनी रैलियों में खुद को पुष्पा बताते थे, ये कहते थे कि वो फ्लावर नहीं फायर है, वो पुष्पा की तरह झुकते नहीं है, लेकिन आज जहांगीर खान की कहानी में नया ट्विस्ट आया। फायर नहीं कायर निकले क्योंकि उन्होंने फलता के विधानसभा चुनाव से अपना नाम ही वापस ले लिया है। ये कहा कि जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है तब वो इस क्षेत्र की शांति और विकास के लिए अपना नाम वापस ले रहे हैं। वैसे ये सोचने वाली बात है कि केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की सप्लाई बाधित होने पर कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। इस रेट पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ही नहीं कई देशों को बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। एक सच तो यह भी है कि इस वक्त अधिक कीमत देने के बावजूद तेल की सप्लाई टाइम पर नहीं मिल रही है क्योंकि अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी ने पूरा जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, जहां से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आता था, वहां पर व्यापार को लगभग ठप कर दिया है पूरी तरह। गनीमत यह है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई रशिया से भी मिल रही है। सोचिए अगर रशिया यूक्रेन युद्ध और भड़क जाए और रशिया कच्चे तेल की सप्लाई करने की असमर्थता दिखाने लगे तब क्या होगा? तैयारी सारी रखनी है। आज हम इस डरावनी परिस्थिति के बारे में आपको सावधान करना चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन ने रशिया पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है और अब वो मॉस्को पर भी बड़ी संख्या में ड्रोन हमले कर रहा है जिससे रशिया यूक्रेन युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होने लगा है। और ऐसा अगर होता है जिसका पूरा अंदेशा है, देखिए रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने एक दिन में रशिया पर करीब 1000 आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया जिसमें से 150 से ज्यादा ड्रोन का टारगेट मॉस्को रीजन था। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को तो मार गिराया लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में इन्होंने अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में रशिया को काफी नुकसान हुआ है। हम आपको इस हमले में हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।

0: इस भयानक हमले को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव का बदला कहा। उनके मुताबिक ये अटैक 13 और 14 मई को रशिया द्वारा कीव पर किए गए हमले का जवाब है। कीव पर 13 और 14 मई को रशिया ने 1500 से ज्यादा ड्रोन हमले और 50 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए थे। इस हमले में कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और यूक्रेन ने 24 नागरिकों के मारे जाने का उस वक्त दावा भी किया था। रशिया के इस हमले के बाद यूक्रेन ने करारा जवाब देने का दम भरा था। रशिया पर एक ही दिन में 1000 ड्रोन से हुआ हमला वही करारा जवाब था।
1: आज यूक्रेन की रक्षा सेनाओं, हमारी सुरक्षा सेवा और हमारी खुफिया एजेंसियों ने मॉस्को क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की। ये हमारी तरफ से एक सफल हमला रहा। इस बार निशाने 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर थे, जो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मॉस्को क्षेत्र रूस की सबसे मजबूत हवाई सुरक्षा वाला इलाका है। वो अपने क्षेत्र में आने वाले इलाकों की सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं, लेकिन अब यूक्रेन के लंबी दूरी तक वार करने वाले हमले इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी पार कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि रूस को अपनी रिफाइनरी, तेल सुविधाओं और उद्योगों के बारे में सोचना चाहिए, न कि यूक्रेन, मोल्दोवा या किसी दूसरे पड़ोसी देश के लोगों की जिंदगी खराब करने के बारे में।
0: यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध भड़का तो इसका असर रशियन ऑयल की सप्लाई पर पड़ना तय है। और जिस तरह से यूक्रेन ने अपने हमलों की रणनीति बदली है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं उसने एक्सपर्ट्स का डर और बढ़ा दिया है। यूक्रेन अभी तक रशिया के सैन्य ठिकानों, रशियन सेना द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने रणनीति बदल दी है। इस साल यूक्रेन के निशाने पर रशिया के ऑयल डिपोज हैं। ऐसा लगता है जैसे वो ईरान अमेरिका युद्ध से सीख रहा हो। यूक्रेन ने सैन्य रणनीति को बदलते हुए रशिया की कमाई पर चोट करनी शुरू कर दी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता की ऊंचाई पर संतुलन और धीरज जरूरी है। आकाश कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, बैठने की जगह किसी को नहीं देता। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री हैं वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह निर्णय लिया और यह अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है सर, विपक्ष को समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है। साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मेरे तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलए है, वो ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।

0: आने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
1: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
2: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
3: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
4: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
3: सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा।
4: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
5: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
4: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
6: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
6: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है सरकार का काम? इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
4: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
6: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
4: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
7: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
4: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का

0: अंत होगा।
1: आप लोग पांच साल का समय काल जो किया हमारी पुलिस भाई के साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आज तक ब्यूरो।
3: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
4: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
0: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ। क्या सोच समझ कर आया है?
5: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पर कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
0: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
6: रही है तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
0: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया। वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप यह है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया था और वहां फिर जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया।
0: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा?
7: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ।
0: नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
7: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
0: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
8: पहला कलमा तैयार तैयमानी पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद
0: रसूलुल्लाह। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
8: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
0: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
7: कलमा पढ़े
8: हैं, याद है कलमा? पहला कलमा तैयार तैयमानी पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
7: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
5: अभी दूसरा नहीं सीखा
7: है। अशहदु अल्ला इलाहा मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है।
0: 17 साल के विकी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
9: देख एक बार, देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल। बेटे एक बार इसके चेहरे को तो देख।
10: मैंने 4 साल से देखता रहा इनका चेहरा। मैं मैंने जान सके तो अभी हर चीज होगा ना यहाँ पे मीडिया के सामने। अगर ये कुछ नहीं करेंगे अभी देखना क्या होगा यहाँ।
9: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए।
0: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
11: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
12: क्या पता चला?
11: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल SP के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
0: 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, एसपी से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
12: उसे बहला पुरवाकर लेके गए हैं काजी वाले के लड़का।
13: क्या नाम है उसका?
12: वसीम।
0: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था, जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत में परिवार को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वसीम उनके घर आता जाता रहता था और आर्थिक मदद भी करता था, लेकिन हाल ही में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई कि लड़के ने इस्लाम अपना लिया है और हैंडलर्स ने मैसेज भेजा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ।
11: अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
0: दूसरी तरफ बिजनौर में आरोपी वसीम की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत और झूठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है, जहां अवैध धर्मांतरण करवाने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या अब सीएम योगी इस धर्मांतरण का भी हिसाब देंगे? बिजनौर से ऋतिक राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
3: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
0: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
14: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और, ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मोहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है। पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री हैं वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह निर्णय लिया और यह अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है सर, विपक्ष को समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है। साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ, और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा फरमाया रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरि झिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मेरे तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है, वो ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वही अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: विकास बंद करो, नो नीड संकलगु मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
9: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
11: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
9: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
11: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
12: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
9: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
11: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
9: आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
13: मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
9: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
14: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
9: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
15: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
9: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप यह है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया था और वहां फिर जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया।
9: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा? नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
16: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है।
9: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
17: पहला कलमा तैयार तैयमानी बात इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
9: रसूलुल्लाह। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
17: माँ जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
18: माशाल्लाह माशाल्लाह
19: आपको।
9: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
18: तर्जुमे में पढ़ा तो तर्जुमे तर्जुमे ही बता दो।
16: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है।
9: 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
20: देख एक बार, देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है, इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल, देखो एक बार इसके चेहरे को तो देख।
21: मैंने 4 साल से देखता रहा इनका चेहरा, मैंने जान तक, ये नहीं करेंगे
19: हाई कोर्ट जाओ, अभी अभी अर्जी तो बनाया अभी मीडिया के सामने, अगर ये कुछ नहीं करेंगे अभी देखना क्या होगा यार।
20: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए कि
9: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
21: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
22: क्या पता चला?
21: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
9: 17 साल के इस लड़के के धन परिवर्तन करने से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, एसपी से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
23: उसे बहला पुरसवा कर लेके गए हैं काजी वाले के लड़का।
24: क्या नाम है उसका?
23: वसीम।
9: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत में परिवार को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वसीम उनके घर आता जाता रहता था और आर्थिक मदद भी करता था, लेकिन हाल ही में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई कि लड़के ने इस्लाम अपना लिया है और हैंडलर्स ने मैसेज भेजा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ।
21: अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
9: दूसरी तरफ बिजनौर में आरोपी वसीम की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत और झूठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है जहां अवैध धर्मांतरण करवाने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या अब सीएम योगी इस धर्मांतरण का भी हिसाब देंगे? बिजनौर से ऋतिक राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
0: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
9: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
25: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मोहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची, गई मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा, अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया, ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने, 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर, विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, सर विपक्ष के समझना चाहिए क्या,
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ, और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया है।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरि झिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मैंने तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है और ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश की घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: बंद करो, नो नीड संकल्प मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र

0: इमाम मुआज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुआज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
1: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
0: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
1: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
2: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
1: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
0: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, जहां हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
0: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
1: आज तक ब्यूरो।
3: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
4: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।

0: और लोगों ने मुझसे कहा, कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
1: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
2: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
3: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
1: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप यह है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया था, और वहां फिर जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया।
1: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा?
5: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं।
1: नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
5: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
1: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
6: पहला कलमा तैयार, तैयमान पाक, इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
1: रसूलुल्लाह। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
6: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
7: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
7: तर्जमे में पढ़ा, तो तर्जमा ही बता दो।
5: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। अशहद अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है।
1: 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है, और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
8: देख एक बार, देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल। देखो एक बार इसके चेहरे को तो देख।
9: अरे मैंने सब तो देखा, मैं 4 साल से देखता रहा इनका चेहरा। मैंने जान सके तुमको को बेटे, ऐसे ये नहीं करेंगे हाईकोर्ट जा पा गए। अभी हर चीज होगा ना यहाँ पे बेटे के सामने, अगर ये कुछ नहीं करेंगे अभी देखना क्या होगा यार।
8: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए।
1: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा, अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
10: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
11: क्या पता चला?
10: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
1: 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है, और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है, और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है, और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, एसपी से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
12: उसे बहला पुलिसवाला लेकर गए हैं, काजी वाले का लड़का।
13: क्या नाम है उसका?
12: वसीम।
1: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था, जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत में परिवार को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वसीम उनके घर आता जाता रहता था और आर्थिक मदद भी करता था। लेकिन हाल ही में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई कि लड़के ने इस्लाम अपना लिया है, और हैंडलर्स ने मैसेज भेजा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ।
10: अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है, तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
1: दूसरी तरफ बिजनौर में आरोपी वसीम की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत और झूठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है, जहां अवैध धर्मांतरण करवाने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या अब सीएम योगी इस धर्मांतरण का भी हिसाब देंगे? बिजनौर से ऋतिक राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
4: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है, और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
1: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
11: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मोहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक। जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया। ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है। पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री हैं वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह निर्णय लिया और यह अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है सर, विपक्ष को समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है। साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा फरमाया रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरि झिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मैंने तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है, वो ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वही अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र से पहुंची थी।
1: हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संकल्प मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
9: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
11: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
9: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
11: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
12: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, जहां हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
9: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
11: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
9: आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
13: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
9: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
14: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
9: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
15: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
9: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या ईरान से डरा अमेरिका हमले की धमकी देकर पीछे हट गया है? क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक और भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। ट्रंप की माने तो अमेरिका सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाली थी लेकिन इसे एन मौके पर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने कोई मजबूरी आ गई थी या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से डर गया है।
9: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला? क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और ना ही इसके फिर से शुरू ना होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है, यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है। अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी।
16: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
9: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।
16: I was an hour away. We're all set to go. You're talking about yesterday.
17: Yes.
16: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
9: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। चौथी शर्त, ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी।
16: You know how it is to negotiate with a country where you're pleading them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
9: लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने पेंटागन के कहने पर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी निगरानी की ताकत बढ़ा ली है। इस समय वो अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी ज्यादा पुख्ता तौर पर नजर रख सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसके एयर डिफेंस को सटीक निशाना बना सकता है। जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज का दावा है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिकी जेट आसानी से मार गिराए जा सकते थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने भी पेंटागन का हवाला दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को ये बताया कि ईरान ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही उसे ईरान के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। दावा है कि ईरान की चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया। अगर अब हमला होता भी है तो पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया जाएगा और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को रणनीति बनानी होगी और इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इस वजह से ही ट्रंप ने हमला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। ऐसा करके वो ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये गलत फहमी है कि वो ईरानी लोगों और अधिकारियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान की लोहे की मुट्ठी दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरान का दावा ये भी है कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा। अगर अमेरिका का हमला हुआ तो उसने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले फिर से शुरू हुए तो कम समय तक चलने वाला लेकिन बहुत तेज युद्ध हो सकता है। दावा ये भी है कि ईरान इसराइल और आसपास के इलाकों में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलों की जबरदस्त बौछार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है। खाड़ी के तेल के कुएं, बंदरगाह और रिफाइनरियां इनके मुख्य निशाने बन सकते हैं। यूएई, सऊदी अरब और कुवैत भी इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों ने सेना और सरकार के समर्थन में कार रैली निकाली। रैली आजाद स्क्वायर पर आयोजित की गई, जहां जोड़ों ने शादी समारोह के साथ समर्थन प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो।
0: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
9: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
17: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका, एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची, गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा, अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह निर्णय लिया और ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने, 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर, विपक्ष
3: के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ, और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्कॉट गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
4: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मेरे तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलए है और ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं, और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
7: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
8: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
7: बंद करो, नो नीड संघलघु मोर्चा।
8: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
9: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
8: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
10: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
8: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के

0: भाता बंद कर दिया।
1: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
0: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
1: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
2: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
1: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
0: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
0: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
1: आज तक ब्यूरो।
3: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
4: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे

0: संख्या बढ़ाई जा रहे हैं, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
1: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
2: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
3: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
1: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप यह है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया था और वहां फिर जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया।
1: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा?
5: अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ,
6: मैं गवाही देता हूँ।
1: नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
5: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
1: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
6: पहला कलमा तैयार तैयमानी पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
1: सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
6: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
7: माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान
8: अल्लाह, मुबारक है आपको हमारी तरफ से,
9: मुबारक
8: बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से।
1: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
5: कलमा पढ़े
6: हैं, याद है कलमा? पहला कलमा तैयार तैयमानी पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
7: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान
5: अल्लाह।
7: अभी दूसरा नहीं सीखा,
5: अशहदु अल्ला इलाहा,
7: अशहदु अल्ला इलाहा, तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमे में पढ़ा तो तर्जुमे, तर्जुमे ही बता दो।
5: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ,
6: मैं गवाही देता हूँ,
5: अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं।
1: 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है, और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
9: देख एक बार, देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल। देखो एक बार इसके चेहरे को तो देख।
10: मैंने सब देखा, मैं चार साल से देखता रहा इनका चेहरा। मैंने जानता नहीं लोगों को
9: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए।
1: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
11: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
12: क्या पता चला?
11: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल SP के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
1: 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है, और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, SP से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
13: क्या नाम है?
14: वसीम।
1: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था, जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत में परिवार को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वसीम उनके घर आता जाता रहता था और आर्थिक मदद भी करता था। लेकिन हाल ही में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई कि लड़के ने इस्लाम अपना लिया है, और हैंडलर्स ने मैसेज भेजा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ।
11: अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है, तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
1: दूसरी तरफ बिजनौर में आरोपी वसीम की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत और झूठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है, जहां अवैध धर्मांतरण करवाने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या अब CM योगी इस धर्मांतरण का भी हिसाब देंगे? बिजनौर से ऋतिक राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
4: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है, और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
1: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
12: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और ईरान ने हुर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज़ में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची, गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया। ममता सरकार के फैसले को पलटा, अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया, ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने, 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर, विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, सर विपक्ष के समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मेरे तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है और ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की है। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संकलगु मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
9: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
11: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
9: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
11: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
12: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, जब हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
9: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
11: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
9: आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
13: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
9: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
14: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
9: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
15: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
9: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या ईरान से डरा अमेरिका हमले की धमकी देकर पीछे हट गया है? क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक और भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। ट्रंप की माने तो अमेरिका सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन इसे एंड मौके पर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने कोई मजबूरी आ गई थी या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से डर गया है।

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला, क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और न ही इसके फिर से शुरू न होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है, क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है। यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है, अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी?
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।
1: I was an hour away. We're all set to go. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
0: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। चौथी शर्त, ईरान लेबनन सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी।
1: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
0: लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने पेंटागन के कहने पर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी निगरानी की ताकत बढ़ा ली है। इस समय वो अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी ज्यादा पुख्ता तौर पर नजर रख सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसके एयर डिफेंस को सटीक निशाना बना सकता है। जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज का दावा है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिकी जेट आसानी से मार गिराए जा सकते थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने भी पेंटागन का हवाला दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को ये बताया कि ईरान ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही उसे ईरान के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। दावा है कि ईरान की चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया। अगर अब हमला होता भी है तो पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया जाएगा और इसके लिए अमेरिका और इसराइल को रणनीति बनानी होगी और इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इस वजह से ही ट्रंप ने हमला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। ऐसा करके वो ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये गलत फहमी है कि वो ईरानी लोगों और अधिकारियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान की लोहे की मुट्ठी दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरान का दावा ये भी है कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा। अगर अमेरिका का हमला हुआ तो उसने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले फिर से शुरू हुए तो कम समय तक चलने वाला लेकिन बहुत तेज युद्ध हो सकता है। दावा ये भी है कि ईरान इसराइल और आसपास के इलाकों में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलों की जबरदस्त बौछार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है। खाड़ी के तेल के कुएं, बंदरगाह और रिफाइनरियां इनके मुख्य निशाने बन सकते हैं। यूएई, सऊदी अरब और कुवैत भी इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों ने सेना और सरकार के समर्थन में कार रैली निकाली। रैली आजाद स्क्वायर पर आयोजित की गई जहां जोड़ों ने शादी समारोह के साथ समर्थन प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो।
2: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
0: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
3: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है। शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मोहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका, एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची, गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा, अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है, हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया और ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, सर विपक्ष के समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा फरमाया रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरि झिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मेरे तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है, वो ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: बंद करो, नो नीड संकलगु मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया। आप लोग एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर।
9: यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है, यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर।
9: यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है, यानी अब इन्हें कोई सरकारी

0: ने कहा है जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
1: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
0: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
2: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
1: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: आज तक ब्यूरो।
3: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
4: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं।

0: सड़कों पे फैलने देंगे? प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
1: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
2: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पर कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
3: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
1: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप यह है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया था और वहां फिर जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया।
1: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा? नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
5: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है, अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
1: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
6: पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
1: रसूलुल्लाह। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
6: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
1: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
5: कलमा पढ़े
6: हैं, याद है कलमा? पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
7: दूसरा नहीं
5: मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है।
1: 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
7: देख एक बार देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है, इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल, देख एक बार इसके चेहरे को तो देख।
8: मैंने सबका देखा, मैं चार साल से देखता रहा इनका चेहरा, मैंने जानता नहीं सबको,
7: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए।
1: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
9: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
10: क्या पता चला?
9: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल SP के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
1: 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, SP से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
11: वो सब बहला पुलवा कर लेके गए हैं काजी वाले के लड़का।
12: क्या नाम है उसका?
11: वसीम।
1: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था, जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत में परिवार को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वसीम उनके घर आता जाता रहता था और आर्थिक मदद भी करता था, लेकिन हाल ही में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई कि लड़के ने इस्लाम अपना लिया है और हैंडलर्स ने मैसेज भेजा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ।
9: अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है, तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
1: दूसरी तरफ बिजनौर में आरोपी वसीम की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत और झूठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में देश का सबसे सख्त धर्म परिवर्तन कानून लागू है, जहां अवैध धर्मांतरण करवाने वाले को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या अब CM योगी इस धर्मांतरण का भी हिसाब देंगे? बिजनौर से ऋतिक राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
4: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
1: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुज्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
10: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और, ईरान ने हुर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज़ में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। गए मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया, ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने, 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर, विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है सर, विपक्ष को समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है। साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा फरमाया रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मेरे तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है और ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की है। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संकलगु मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
9: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
11: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
9: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
11: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
12: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
9: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
11: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
9: आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
13: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
9: ये ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
14: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
9: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
15: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
9: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप यह है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया था और वहां फिर जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया गया।
9: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा? नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
16: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है, अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
9: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
17: पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
9: रसूलुल्लाह। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
17: माजी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
18: माशाल्लाह माशाल्लाह,
9: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
16: कलमा पढ़े
17: हैं, याद है कलमा? पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
18: रसूलुल्लाह। दूसरा नहीं सीखा,
0: क्या ईरान से डरा अमेरिका हमले की धमकी देकर पीछे हट गया है? क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक और भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। ट्रंप की माने तो अमेरिका सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन इसे एंड मौके पर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने कोई मजबूरी आ गई थी या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से डर गया है।

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला, क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और न ही इसके फिर से शुरू न होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है, क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है। यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है, अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी?
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।
1: We're all set to go. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
0: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। चौथी शर्त, ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी।
1: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly? They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
2: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी की है और खबर यह है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा।
0: ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुश्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है।
3: मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इसराइल से करते, वो इसराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं।

और तो और, ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हुर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर ये भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है।

0: द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी राज में खत्म हुआ खौफ। छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका। एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। गई मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया, ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने, 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर, विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है सर, विपक्ष को समझना चाहिए क्या कि
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है। साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ, और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके वो भी जो हमारा फरमाय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मैंने तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है, और ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं, और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: बोले राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनारा बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: विकास बंद करो, नो नीड संकल्प मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
9: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
11: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।

0: मैसेज चला जाना चाहिए ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
1: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
0: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई के साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
0: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
1: आज तक ब्यूरो।
3: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
4: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
1: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ। क्या सोच समझ कर आया है?
5: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पर कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा

0: रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
2: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
1: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या ईरान से डरा अमेरिका हमले की धमकी देकर पीछे हट गया है? क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक और भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। ट्रंप की माने तो अमेरिका सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन इसे एंड मौके पर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने कोई मजबूरी आ गई थी या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से डर गया है।

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला, क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और ना ही इसके फिर से शुरू ना होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है, क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है, यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है। अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी?
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।
1: We're all set to go. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
0: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। चौथी शर्त, ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी।
1: You know how it is to negotiate with a country where you're pleading them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
0: लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने पेंटागन के कहने पर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी निगरानी की ताकत बढ़ा ली है। इस समय वो अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी ज्यादा पुख्ता तौर पर नजर रख सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसके एयर डिफेंस को सटीक निशाना बना सकता है। जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज का दावा है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिकी जेट आसानी से मार गिराए जा सकते थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने भी पेंटागन का हवाला दिया है। उसके मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को ये बताया कि ईरान ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही उसे ईरान के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। दावा है कि ईरान की चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया। अगर अब हमला होता भी है तो पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया जाएगा और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को रणनीति बनानी होगी और इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इस वजह से ही ट्रंप ने हमला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। ऐसा करके वो ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये गलत फहमी है कि वो ईरानी लोगों और अधिकारियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान की लोहे की मुट्ठी दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरान का दावा ये भी है कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा। अगर अमेरिका का हमला हुआ तो उसने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले फिर से शुरू हुए तो कम समय तक चलने वाला लेकिन बहुत तेज युद्ध हो सकता है। दावा ये भी है कि ईरान इजराइल और आसपास के इलाकों में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलों की जबरदस्त बौछार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है। खाड़ी के तेल के कुएं, बंदरगाह और रिफाइनरियां इनके मुख्य निशाने बन सकते हैं। यूएई, सऊदी अरब और कुवैत भी इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों ने सेना और सरकार के समर्थन में कार रैली निकाली। रैली आजाद स्क्वायर पर आयोजित की गई, जहां जोड़ों ने शादी समारोह के साथ समर्थन प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: Tune in How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: घर के झाड़ू से आपके पैसे रुपए पर असर पड़ सकता है क्या? घर में चाकू आपके संतान पर असर डाल सकता है क्या? कैंची हवा में चलाने पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं? घर की छोटी छोटी चीजों का आपके भाग्य पर कैसा है असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wait.
7: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: Hi, you jump.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नॉर्वे के कामकाज के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की दो टूक, जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट। गृहमंत्री अमित शाह बोले बीजेपी राज में खत्म हुआ